0: रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे, और बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे, और रोड पे कोई हो न हो सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे, और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। आप एक 20 फिट बाय 16 फिट का कमरा चाहते हैं, लेकिन आपके आर्किटेक्ट का मानना है कि 16 फिट बाय 16 फिट का कमरा काफी होता है। कोई एक विचार किसी दूसरे विचार से बेहतर नहीं होता, बल्कि यह तो आप क्या चाहते हैं बनाम आप क्या पाते हैं का मामला होता है। यदि आप आर्किटेक्ट हैं तो यह आप क्या देना चाहते हैं बनाम आपका ग्राहक क्या लेना चाहता है वाला मामला बन जाता है। बात सही या गलत होने की नहीं है, और नहीं अच्छे बुरे या बेहतरीन की, बल्कि उपयुक्त होने और दोनों की सोच की लय ताल की है। कोई वर्गाकार चीज़ अपने आप में उतनी ही ठीक है जितनी की कोई गोलाकार चीज़। तो जब कोई वर्गाकार खूंटी किसी वर्गाकार छेद में और गोलाकार खूंटी गोलाकार छेद में

लगाई जाती है तब कोई समस्या नहीं होती। समस्या सिर्फ तब आती है जब हम किसी वर्गाकार खूंटी को एक गोलाकार छेद में लगाने की कोशिश करते हैं। जो काम एक टूथपिक कर सकती है वह काम बुलडोजर नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छा विचार भी हमारे प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाता। सूरजमुखी सुंदर होता है लेकिन गुलाब के बगीचे में तो वह खरपतवार ही माना जाएगा। कहने का भाव यही है कि बात सही या गलत होने की नहीं बल्कि उपयुक्त होने की है।

जो आदमी किसी स्थापित नियम कायदों वाले संस्थान में काम कर चुका हो, उसे आप किसी ऐसे संस्थान में नियुक्त कर दें जो अभी विकसित होने की अवस्था में हो, तो वह वहां बड़ा भारी असंतुलन पैदा कर देगा। इसी तरह जो व्यक्ति शक्ति और अधिकार, पद और प्रतिष्ठा व प्रोटोकॉल का आदि हो चुका हो, वह किसी ऐसे संस्थान में कभी सहज महसूस नहीं कर सकता जहां ये चीजें ना हो, जहां सभी कर्मचारी एक समान माने जाते हों। ऐसे व्यक्ति के वहां आ जाने से बहुत से लोग इस्तीफा दे देंगे और अंततः वह व्यक्ति स्वयं भी इस्तीफा देकर चला जाएगा। यहाँ इन लोगों की क्षमता पर कोई संदेह नहीं किया जा रहा है, बात बस इतनी है कि वर्गाकार छेद में गोलाकार खूंटी को ठीक से लगाया नहीं जा सकता। अपनी संस्था या संगठन में किसी व्यक्ति को लेते समय हम उसकी योग्यता, अनुभव, चातुर्य, कुशलता, प्रवृत्ति, आयु, लिंग और उसके काम के पिछले रिकॉर्ड पर ही ध्यान देते हैं, जबकि वास्तव में हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या यह व्यक्ति मेरी संस्था या संगठन में प्रचलित संस्कृति और परिवेश के लिए उपयुक्त है। व्यक्तिगत कुशलता सामूहिक कुशलता से बहुत अलग होती है। यह सच है कि शतरंज में घोड़ा पैदल से ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर आप सफेद मोहरों से खेल रहे हों, तब काले घोड़े की अपेक्षा आपका सफेद पैदल आपके लिए ज्यादा उपयोगी और मूल्यवान होता है। उपयुक्तता हो तो एक और एक तीन हो जाते हैं, लेकिन यदि उपयुक्तता ना हो तो एक और एक शून्य ही रह जाता है।

0: हमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हमें अक्सर ऐसे कई लोग मिलते हैं जो अपने भाग्य को इसीलिए कोसते रहते हैं कि उनकी शिक्षा उनकी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से हुई है, जबकि सिर्फ एक वर्ष के नियमित शिक्षण से वे अपनी मनचाही भाषा सीख सकते हैं और अपनी इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं। कितनी ही बार लोग इस परेशानी में पड़ जाते हैं कि उनका ड्राइवर छुट्टी पर चला गया है, इस तथ्य के बावजूद कि उनकी कार गैरेज में खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही है, वे कहीं आ जा नहीं सकते हैं। एक महीने के नियमित प्रशिक्षण से वे कार चलाना सीख सकते हैं और अपनी इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं। जनता के सामने भाषण देने का भय मृत्यु भय के बाद पहले स्थान पर माना जाता है, जबकि कोई भी व्यक्ति नियमित प्रशिक्षण लेकर भाषण देना और जनता के बीच बोलना सीख सकता है और कुछ ही हफ्तों में इस कला में पारंगत हो सकता है। जब किसी कमजोरी को किसी सीमा को तोड़ा जा सकता है तो फिर उससे पीड़ित क्यों रहा जाए और इस कारण खुद को आजीवन अक्षम व अयोग्य क्यों रहने दिया जाए। सीखने में प्रशिक्षण में थोड़ा समय लगाएं, उस कमजोरी को दूर करें और फिर आजीवन उसके लाभ का आनंद उठाएं। नियमित और व्यवस्थित प्रशिक्षण हमें न सिर्फ अपनी सीमाओं पर विजय पा लेने की क्षमता प्रदान करता है, बल्कि हम जो भी हैं उससे बेहतर बनने में वह हमारी सहायता भी करता है।

0: Monsieur.
1: ओए रुक रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
2: पर हवलदार साहब जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
1: वो तो ठीक है पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
3: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी

दौड़ तो कोई भी सकता है, लेकिन यदि आप एक धावक बनना चाहते हैं तो आपको एक व्यवस्थित और नियमित प्रशिक्षण से गुजरना होगा। एक खराब लिखावट भी प्रशिक्षण के बाद सुलेख बन जाती है। नियमित प्रशिक्षण से साधारण बातचीत भी संवाद की कला बन जाती है। नियमित प्रशिक्षण के साथ व्यवस्थित ढंग से किया जाने वाला व्यायाम भी स्वास्थ्य कार्यक्रम बन जाता है। आप यदि शतरंज खेलना चाहते हैं तो किसी से भी सीख सकते हैं, लेकिन यदि आपको शतरंज का चैंपियन बनना है तो आपको किसी प्रशिक्षक से प्रशिक्षण लेना होगा। योगाभ्यास और ध्यान के लिए आपको नियमित दीक्षा लेनी होगी, बशर्ते आप उसे बस समय बिताने के लिए न कर रहे हों। दादी माँ के नुस्खों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन जब वे बीमार पड़ती हैं तो हम उन्हें लेकर डॉक्टर के पास भागते हैं। व्यवस्थित और नियमित प्रशिक्षण का कोई विकल्प नहीं है। किसी मामले में अच्छा, बेहतर और बेहतरीन के बीच के फर्क के पीछे आम तौर पर प्रशिक्षण की गुणवत्ता का हाथ होता है। प्रसिद्ध बॉक्सर मोहम्मद अली ने एक बार कहा था, मुझे अपने प्रशिक्षण से चीड़ थी, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं खुद से यही कहा करता था कि बस इसे छोड़ना मत, इस समय कष्ट उठा लो, फिर जीवन भर चैंपियन बनकर जियो। कोई भी क्षमता व्यवस्थित और नियमित प्रशिक्षण से दक्षता बन जाती है। सर्वोत्तम बनने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। सीखने के लिए नियमित प्रशिक्षण से बेहतर कुछ नहीं है। इसीलिए कभी भी आपको यह लगे कि कुछ कला की आप में कमी है या आप किसी कार्य में साधारण हैं, तो घबराइए मत। उस कार्य को लेकर, उस कला को लेकर प्रशिक्षण लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, आप जरूर उसमें माहिर बन जाएंगे। सीखने के लिए नियमित प्रशिक्षण से बेहतर कुछ नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन पर।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक और अंक में। पिछली कई सारी मुलाकातें हमने की हैं इस कार्यक्रम में और हमने देखा है कि विभिन्न बीमारियों को, विभिन्न परिस्थितियों को जो हम सामना करते हैं, उनमें प्राकृतिक चिकित्सा किस तरह से सहायक है और बहुत ही लाभप्रद भी है। इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन देने के लिए पिछले कई प्रकरणों से आदरणीय डॉक्टर राहुल मोदी जी हमारे साथ रहते हैं। एलोपैथिस्ट हैं, एस्ट्रोपैथ हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन में, और गोरखपुर के बहुत ही जाने माने प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र आरोग्य मंदिर में अपनी सेवाएं दीर्घ काल से दे रहे हैं। आज फिर वो हमारे साथ हैं। पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: निश्चित तौर से स्वस्थ होंगे, और जैसा कि पिछले कई प्रकरणों में आपने प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हमें कई सारे मार्गदर्शन दिए विभिन्न बीमारियों पर, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन वर्तमान समय डॉक्टर राहुल, हम देख रहे हैं कि गर्मी अपने चरम की तरफ बढ़ रही है और टेम्परेचर का जो हाल है वो तो सिर के ऊपर नाच रहा है, तांडव मचा रहा है गर्मी। जो लोग घरों के अंदर रह रहे हैं, जिनके काम अंदर रह करके करने वाले, वो एक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको बाहर जाना पड़ता है, सड़कों पर घूमना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और सीधा सूर्य की जो रोशनी है, प्रकाश है, वो उनके ऊपर पड़ रहा है। और इसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, विभिन्न वर्ग हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसे हालात में जो गर्मी इतनी हाई लेवल पे जा रही है और आगे जाने वाली है, तो ऐसे में प्राकृतिक रूप से अपने आप को कैसे उसके साथ सामंजस्य बैठाएं ताकि हम बीमार ना हो, हमें बीमारियां तकलीफ ना हो, आपका क्या सुझाव है इसके लिए?
1: विशाल भाई, गर्मी से बचने के लिए हमें सबसे पहले पर्यावरण को ठीक करना है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो कृपा करके एक पेड़ लगाइए। ये मत सोचिए कि मैं लगाऊंगा, दूसरे क्या करें, क्या कहेंगे मेरे बारे में, और उससे एक पेड़ से क्या फायदा होगा। अगर आप एक भी पेड़ लगाएंगे तो इसे पर्यावरण का बहुत ज्यादा लाभ होगा। और आप जैसी अच्छी सोच रखने वाले अगर मनुष्य जो है वो सब पेड़ लगाने लगेंगे तो हमारी जो धरा है उसका जो तापमान है वो कम हो जाएगा। अब हमें अभी क्या करना चाहिए?
0: मैं इसमें एक चीज और एडिशन करना चाहूंगा, जो पेड़ लगे हुए हैं कृपया करके उनको भी थोड़ा जल, थोड़ी उनकी सुरक्षा ध्यान रखें, तो वो भी एक सहायक होगा।
1: जी विशाल भैया,
0: जी सर।
1: एक बहुत अच्छा कार्यक्रम में जब मैं छोटा था तब चला था कि स्कूल से लौटते समय किसी भी एक पेड़ को आप अपना बना लीजिए, उसको एडॉप्ट कर लीजिए और अपनी जो बोतल है उसमें जो पानी बच गया है वो उस पेड़ की जड़ में डालकर चले आइए। ये मैंने जब मैं स्कूल जाता था तब मैंने किया था ये, और तब ये लगा था कि यार ये क्या क्यों करवाया जा रहा है, इसमें कुछ क्यों पेड़ को क्यों पानी दिलवा रहे हैं, और अब लग रहा है कि वो कितना जरूरी और कितना अच्छा काम मेरे स्कूल वालों ने सोचा था। दूसरी चीज, अगर आपको निकलना है तो पहला उस चीज का ध्यान रखिए कि आप पानी पी के निकले। और ये कहा जाता है कि हल्का ठंडा पानी, ये भी नहीं कि बहुत ठंडा पानी, हल्का ठंडा पानी। पानी की ठंडक कितनी होनी चाहिए? जितनी ठंडा पानी जो आपकी सुराही या मटके से बाहर निकलता है उतना ठंडा पानी कम से कम 1 से 1.25 गिलास पी के निकलना चाहिए। आपको अगर कमजोर

0: लगती है, बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा निकलना है, तो कृपा करके उस ठंडे पानी में थोड़ा सा नींबू, एक चुटकी नमक और हल्का सा शहद डाल लें, और ये आपको ताकत भी देगा, अच्छा विटामिन सी भी देगा, और जब हमें पसीना होता है तो उससे हमारे शरीर में नमक निकल जाता है, और नमक कम होने से बहुत सारे लोगों की मांसपेशियों में खिंचाव तनाव आता है, चक्कर आता है, तो कृपा करके पानी को पूरा आप 1 से 1.25 ग्लास पानी पी के निकलिए, अपने शरीर को ढक के निकलिए। सब लोग ये
1: जी
0: बोलते हैं गर्मी का मौसम है, टी शर्ट या बनिया, मतलब आजकल तो वो बिना बाह की टी शर्टें आ गई हैं, वो भी पहन के लोग निकल रहे हैं। मेडिकली ये कहा जाता है अपने पूरे शरीर को ढक के निकलिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट या सूर्य का सीधा प्रकाश आपके शरीर पे पड़ेगा तो उससे ज्यादा पसीना निकलेगा, और डायरेक्ट सनलाइट या सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ने से त्वचा के जलने का, त्वचा में जलन होने का, त्वचा में कालापन पड़ने का, ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो कृपा करके पूरा शरीर ढक के निकलिए, चेहरे को भी ढक के निकलिए, टोपी पहनिए। महिला बहनों से मेरा यह कहना है कि अपने सर को चुन्नी ढक के निकले, चेहरे को कवर करके निकले। अगर आप ये करते हैं तो आपको गर्मी से कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ा
1: जी
0: इंडिकेटर कि आपके शरीर में पानी कितना है, ये आपका पेशाब या यूरिन बताता है। अपने यूरिन के कलर का ध्यान रखें। अगर आपका पेशाब सफेद रंग का हो रहा है या हल्का सा पीला हो रहा है तो आप ठीक हैं। अगर आपके पेशाब में पीलापन बढ़ रहा है, इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। आप गर्मी के समय बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के शरबत पीते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जूस हैं या रस हैं उसका सेवन करते हैं। इन सब चीजों में जो मेन कंपोनेंट है, सबसे जरूरी चीज है, वो पानी ही है। तो आप अगर ठीक से हाइड्रेट होंगे या आपके शरीर को प्रचुर मात्रा में पानी मिलेगा और आप अपने को ढक के निकलेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित निकलेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा, खासकर जो यंग या जवान श्रोता मेरी बात सुन रहे हैं उनके लिए, कि तुरंत एसी में घुस गए, तुरंत एसी से निकल गए, अभी जैसे कहते हैं टेम्परेचर चेंज बहुत वो करने लगते हैं, अरे बड़ी गर्मी है, एसी चलाओ एसी चलाओ। मैं खुद देखता हूं जब मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो पहली चीज यही बोलते हैं कि एसी चलाओ बड़ी गर्मी लग रही है। तो
1: जी
0: मैं हमेशा उनको हिदायत देता हूं कि प्लीज अपना पसीना सुखा लीजिए, 5-10 मिनट इंतजार कर लीजिए, फिर आप जाइए। तो आपको सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से जो परेशानियां होती हैं वो आपको नहीं होंगी। थोड़ा सा एक
1: बिल्कुल
0: चीज का ध्यान और रखना है कि हम बाजार में जो भी, अगर हम भोजन कर रहे हैं, शरबत पी रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर खाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम में आपको डायरिया या दस्त होना या उल्टी होना, इन सब की जो चीजें हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि डायरिया में, मतलब जो पानी से होने वाले इन्फेक्शंस हैं, वो बहुत बुरी तरीके
1: जी
0: से फैलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, हमारे सभी श्रोताओं के लिए लाभप्रद होंगी इस वक्त। एक तो ये बात कि वृक्ष लगाएं, एक सबसे बड़ा और चिरकालीन चलने वाला जो साधन है वो तो यही है, वातावरण को ही सबसे पहले ठीक कर लें, और उसके बाद पानी पर आपका ध्यान बहुत रखा है कि पानी पिया जाए जितना वो ठंडा, बहुत ज्यादा फ्रीज वाला पानी ना पिया जाए। आपने बताया कि पानी की जो शीतलता है वो मटके के पानी, सुराही के पानी के जितनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना हो, और उसमें नींबू शहद और नमक डाल लें तो बहुत बेहतर होगा। और याद रखें कि आपका पानी की कमी ये दिखाई देगी आपके पेशाब से, अगर आपका पेशाब का कलर बहुत ज्यादा पीला है तो आपको पानी ज्यादा पीने की आवश्यकता है, और सामान्य रूप से सफेद है या हल्का सा पीला है तो फिर आप तकरीबन सुरक्षित हैं। जहां पानी पीने का ध्यान रखते हैं, वहां पहनने के लिए भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह बताया कि बाहर निकलते वक्त अपने सारे शरीर को ढक करके निकले, बहुत कम हिस्सा आपका एक्सपोज हो सूर्य की किरणों में, और बहुत बेहतर होगा कि आप हल्के और सफेद रंग के कपड़े पहने। ईश्वरी विश्वविद्यालय की तो वेशभूषा ही श्वेत है, तो जहां तक हो सके अच्छा रहेगा कि आप सफेद वस्त्र पहने या हल्के कलर के कपड़े पहने, क्योंकि ये सूर्य की जो रोशनी है उसको ज्यादा खींचते नहीं है। ब्लैक और डार्क कलर के जो कपड़े पहनते हैं तो उसमें गर्मी और ज्यादा पड़ती है, तो ये एक संभाल रखने की आवश्यकता है। तो मेरे सभी जो श्रोता मित्र हैं वो पिछले प्रकरणों से जुड़ते हुए जानना चाहेंगे, जो आपने पहले बताया है श्री भाई के साथ वार्ता होते हुए, ये डायबिटीज एक क्या बीमारी है, किस तरह इसकी गंभीरता है और इसके लक्षण क्या हैं, कैसे आपको समझ में आया कि भाई आपको डायबिटीज हुई है। आमतौर पर आप यही समझते कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, जैसे कि बात की गई थी, कुछ महसूस तो नहीं होता। आप कैसे कहते हैं कि डायबिटीज हो गया, तो आपके माध्यम से बताएं कि कुछ लक्षण हैं जिनसे आप जान पाते हैं कि आपको डायबिटीज हुआ है। अब एक मुख्य बिंदु आ जाता है कि बीमारी तो हो गई, हमको मान भी लिया हमने, अब हम क्या इलाज लें। पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर राहुल जी, कि ये बीमारी हो गई है अब हमको, इसमें हम किन बातों का ध्यान रखें, क्या इलाज लें पहली बात तो, और दूसरा किन चीजों की सावधानियों पर हमारा ध्यान रहे अब होने के बाद।
0: सबसे जो जरूरी बात है प्राकृतिक चिकित्सा की और हमारी जितनी भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है उनका ये सोचना है कि हमें सिर्फ बीमारी नहीं वरना सारे बीमारी के कारणों पे भी काम करना है। हम उपचार के साथ साथ भोजन और साथ साथ मन तीनों को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि आदमी का जो दिमाग है ध्यान है वो भी ठीक रहे, उसका भोजन भी ठीक रहे और उसकी जो लक्षण है बीमारी के वो भी कम हो, उस बीमारी से होने वाले जितनी भी उसको परेशानियां हैं वो कम हो और जितनी भी उस बीमारी की वजह से मधुमेह के उसके शरीर पे पड़ रहे हैं वो कम हो।
1: जी
0: जो पूरी प्राकृतिक चिकित्सा हो या किसी भी पैथी का सबसे पहला लक्ष्य होता है कि शरीर में शक्रा के स्तर को सामान्य के करीब लाया जाए। जो एक
1: जी
0: हम लोग ने पढ़ा है कि हमारा HbA1c 5.7 के नीचे होना चाहिए, हमारा फास्टिंग 100 के नीचे होना चाहिए, बहुत सारे लोग जितने भी हमारा पीपी है कहीं 140 है कहीं 150 है मतलब वो नीचे होना चाहिए उसके। तो जो भी उपचार है उसका लक्ष्य सबसे पहले ये होता है कि ब्लड शुगर को वो संतुलित और नियंत्रित करे। अच्छा इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा सबसे पहले जो अगर आप किसी भी चिकित्सालय में जाएंगे तो वो आपको सुबेरे उठ के व्यायाम और योगाभ्यास कराएगा। हम
1: जी
0: इलाज में सबसे पहले कहते हैं कि आप 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक टहलिए, उसके बाद आप करीब 45 मिनट योगा करिए और अपने दिन की शुरुआत करिए। योगा करने के बाद आप ऋतु के अनुसार फल थोड़ा अंकुरित मूंग हुआ चना हुआ मूंगफली हुआ उसका सेवन करें और इसके बाद आप करीब 200 से लेकर 250 ग्राम फल है उसका सेवन करें। फल के लिए जो सबसे कॉमन चीज जो मैं पुराने एपिसोडों में बोल चुका हूं कि आप कृपा करके जो मौसम चल रहा है उसके अनुसार फल खाइए। फल रस से ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है क्योंकि फल में आपको खुज्जा और आपको फाइबर मिल जाता है। इसके बाद हम प्राकृतिक चिकित्सा के इलाज पे आते हैं। प्राकृतिक
1: जी
0: चिकित्सा के दो सबसे अच्छे इलाज जो शरीर में डायबिटीज कम करते हैं वो है पेट की गर्म ठंडी सेक और दूसरा है गर्म ठंडा कटी स्नान।
1: जी
0: दोनों हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत आता है, दोनों में जो आपका पाचन तंत्र है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाती है, दोनों उपचारों में आपकी जो पैंक्रियाज है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करी जाती है कि वो ठीक मात्रा में इंसुलिन निकाल पाए, दोनों जो उपचार हैं वो आपके पाचन तंत्र एंडोक्राइन मतलब पैंक्रियाज और उसको ठीक करते हैं, पेट की चर्बी को कम करते हैं और आपको डायबिटीज से लड़ने योग्य बनाते हैं और आपके शुगर लेवल को कम करते हैं। गर्म ठंडा कटी स्नान क्या है? कटी मतलब टब, स्नान मतलब उसमें स्नान करना। दो टब ले लिया जाए जिसमें आधा टब पानी भरा जाए और उस टब में आप बैठे, एक में गर्म पानी रखा जाए, गर्म इतना जितना आप सह पाए, ठंडा जो नॉर्मल नल से आपके पानी आ रहा हो वैसा पानी लें, और आप उस टब में बैठ जाएं। ऐसे बैठें कि आपका जो कटी प्रदेश है, जो आपके घुटने से थोड़ा नीचे और नाभि से थोड़ा ऊपर, इतना दूर आपका पानी में होना चाहिए। इसमें 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, और अंत में 3 मिनट गर्म और 3 मिनट ठंडा करके हम लोग इसमें जो मरीज है उसको बैठाते हैं। इस इलाज को लेने से डायबिटीज में बहुत अच्छा जो है वो लाभ मिलता है। इसी इलाज का एक छोटा स्वरूप है पेट की गर्म ठंडी सेक। छोटा स्वरूप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पेट की गर्म ठंडी सेक करने के लिए आपको एक गीला तौलिया चाहिए और आपको एक गर्म पानी की थैली चाहिए, और आप इससे अपने नाक ऊपर, 4 उंगल नीचे, इतने दूर के एरिया को सेकते हैं। इसमें भी वही काम करना है, 3 मिनट गर्म, पहले थैली रखनी है पेट के ऊपर, और उसके बाद 1 मिनट ठंडे पानी का तौलिया रखना है। ये काम आपको 3 बार करना, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, और अंत में 3 मिनट गर्म थैली को रखना है और फिर 3 मिनट ठंडे तौलिए को अपने पेट पे रखना।
1: जी
0: इतना सब करने से आपके पैंक्रियास को बहुत बहुत बहुत लाभ मिलेगा, मगर वो
1: जी
0: सारे उपचार आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और आपके शरीर से टॉक्सिन निकालने के लिए है। गर्म ठंडा कटी स्नान के बाद जो दूसरा इलाज हम लोग यहाँ बहुत देते हैं वो है सारे बदन की गीली पट्टी। सारे बदन की गीली पट्टी हमारे जो नसें हैं, जो नर्वस सिस्टम है, उसको मजबूत करता है, और उसको मजबूत जब वो करता है तो वो हमारे शरीर से ठीक से, जो एंडोक्राइन सिस्टम मेरा जो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, उसमें ताकत लाता है, और इसको लाने से हमारे जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में आने लगती है। हम लोग यहाँ पर हफ्ते में एक बार मालिश भी कराते हैं मरीज की, क्योंकि जब आपकी डायबिटीज जब ठीक होने लगती है तो आपको मांसपेशियों में ताकत आने लगती है, आपका भोजन ठीक होने लगता है, तो वो लोकल आपके रक्त संचार को बढ़ाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। यही 3-4 इलाज हैं जो खासकर डायबिटीज के मरीज को दिया जाता है। जितने भी आसन हैं जो जिसमें आगे झुका जाता है, जिसमें आपका पेट दबता है, शशांक आसन हुआ, मंडूक आसन हुआ, ये सारे आसन आपको कराए जाते हैं। जो थोड़ा एडवांस जो योगा कर लेते हैं उन्हें धनुरासन, मत्स्येन्द्रासन, भुजंगासन भी कराया जाता है। जो श्रोतागण इतना सिंपल समझें कि जिन आसन से आपका पेट दब रहा है वो आसन आपके डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। भोजन में हम लोग,
1: जी
0: जैसा मैंने तो पहले एपिसोडों में बोला है कि हम आपको हाई फाइबर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट को खिलाते हैं, मतलब जिसमें आपके फाइबर ज्यादा हो, तो आपको हम लोग वो भोजन हाई फाइबर डाइट कराते हैं और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भोजन कराते हैं और ये इलाज देते हैं, और हमने इससे इसमें इससे चमत्कारिक लाभ देखा है डायबिटीज में। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा अपने सभी श्रोतागणों को कि अगर आपकी डायबिटीज बहुत बढ़ी हुई है, गड़बड़ है, तो कृपा करके किसी हेल्थ एक्सपर्ट की निगरानी में ही ये सारी चीजें करें, और अपना जो डायबिटीज है उसकी रेगुलर जांच करते रहें। प्लीज किसी का सुनकर उसको ये करके फायदा हुआ करना ना शुरू कर दें, कृपा करके किसी एक्सपर्ट के ही अंडर गाइडेंस इसको करें।
1: जी डॉक्टर राहुल, जैसा कि पिछले एक एपिसोड में आपने बताया था कि दिनचर्या जीवनचर्या के विकृत होने के परिणाम स्वरूप होने वाली डिसीज है, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए कि वास्तव में क्या आइडियल दिनचर्या रखने की आवश्यकता है, किन चीजों को अपनी दिनचर्या में से हटाएं, किन चीजों को शामिल करें जिससे कि आप इस महामारी, इस बीमारी से बचे रह सकते हैं।
0: डायबिटीज में जो चीज हटाने की चीज है वो है एक्सेसिव शुगर इंटेक, बहुत ज्यादा चीनी का प्रयोग करना। वो भोजन का पदार्थ जिसमें बहुत ज्यादा चीनी मिली हुई है, उन सभी चीजों को प्लीज छोड़ दीजिए। क्या चीज आपको जोड़नी चाहिए वो है व्यायाम। हम लोग व्यायाम कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग टहल रहे नहीं हैं, घूम नहीं रहे हैं, तो ये दो चीज अगर हम भोजन पे कंट्रोल कर लें, व्यायाम को हम जोड़ लें, तो हम दो काम करेंगे। ये दोनों करने से हमारा शरीर तो ठीक होगा ही, साथ साथ हमारा मन भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए जैसे भाई आपने बोला कि आपने पुराने एपिसोडों में कहा, अगर आप अपने जीवन से टहलना शुरू करेंगे, आसन करना, योगासन करना, घूमना, खेलना कूदना शुरू करेंगे, वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी अप्रिशिएट करेगा। जहां मानसिक स्वास्थ्य बढ़ेगा, वहां अपने आप स्ट्रेस जो शरीर में है, मन में है, दिमाग में है, वो कम होता चला जाएगा। जहां आपने एक्सेसिव शुगर लेना बंद किया, आपने एक्सेसिव तो आपकी पैंक्रियास को काम कम करना पड़ेगा, आपके शरीर से इंसुलिन को कम निकलना पड़ेगा। भैया आज का ही एक एग्जाम्पल, एक मरीज मुझे दिखाने आए कंधे के दर्द को लेकर। मैंने उनसे पूछा, आपको डायबिटीज तो नहीं है? बोले, नहीं, एकदम नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा, रिपोर्ट दिखाइए। रिपोर्ट में उनका फास्टिंग 100 था, जबकि बॉर्डर लाइन 100 होता है। उन्होंने कहा, देखिए एकदम नॉर्मल है, वो अभी नंबर नहीं क्रॉस किया। मैंने कहा, आपका HbA1c कितना है? उनका HbA1c 6.5 था, मतलब बढ़ा हुआ था। बोले, हाँ कभी कभी पेशाब में जलन हो जाती है, कभी कभी खुजली होने लगती है, कभी कभी। तो हमने कहा ये, बोले इस दिन मुझे टेस्ट कराना था, तो हम लोग 3 दिन से हम कुछ नहीं खाए थे। हमने कहा, आपने एक टेस्ट को अपने चीट करना चाहा, हाँ, कि आपको नॉर्मल से रिपोर्ट मिले। तो और मैं सबको वही सुझाव देता हूँ, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज जोड़ लीजिए। भैया बंद घरों में लोग रह रहे हैं, छोटे आप निकल के 15-20 मिनट टहलिए, आप कुछ देखेंगे। हम और आप भैया सिर्फ एक स्क्रीन को देख रहे हैं आजकल, तो थोड़ा सा बाहर निकले, देखिए, घूमिए, टहलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप अपने भोजन में थोड़े से चेंजेस ले आए, मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड छोड़ दें, थोड़ा घूमने टहलना शुरू करें, तो आप इस बीमारी के प्रकोप से बच सकते हैं।
1: बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर राहुल जी आपने हमें मार्गदर्शन दिया है कि हमें इस बीमारी के होने के बाद किन किन बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है और किस तरीके का इलाज लिया जा सकता है प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, जिसमें खास तौर से आपने ठंडे और गर्म का इलाज बताया, जिसमें कटी स्नान मूल रूप से बताया और पेट की गर्म पट्टी, ठंडी पट्टी के बारे में बताया, जो एक सर्कल है 1 मिनट और 3 मिनट का, 3 मिनट गर्म को रखें, 1 मिनट ठंडे को रखें, ये आप घर में कर
0: जी
1: सकते
0: हाँ,
1: हैं। तौलिए को ठंडा रखें और गर्म एक जो बोतल आती है, थैली घर में होती है, उसको ले लें और उससे भी आप इस प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं और अपनी बीमारी को हटा सकते हैं। इसमें खास तौर से डॉक्टर साहब ने जो ये बात बताई कि अपनी चहलकदमी बढ़ाएं, थोड़ा बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें, सुबह शाम एटलीस्ट निकलें घूमने के लिए, टहलें, थोड़ा मालिश करें, थोड़ा योगासन करें और भोजन पे थोड़ा ध्यान दें। भोजन में आपके हाई फाइबर होना चाहिए और प्रोसेस्ड फूड से बचें। प्रोसेस्ड फूड जो पैक्ड फूड आ रहे हैं, कंपनियों से बंदे आ रहे हैं, उनको न खाएं तो बेहतर है और जैसा वो प्रकृति ने दिया है उनको ऐसे ही खाया जाए, सलाद के रूप में, फ्रूट्स के रूप में। जूस के लिए भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि जूस से बेहतर फल है, आप फल को खाइए और उसका लाभ लीजिए। थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, कुछ आसन कीजिए, वो आसन जो कि आपके पेट को थोड़ा सा प्रेस कर सके, दबा सके, ऐसे आसन किए जा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने स्ट्रेस पे काम कीजिए और उसके लिए मेडिटेशन एक बहुत कारगर साधन है, जो अलग अलग तरीका से लोग सिखाते हैं, परंतु ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी राजयोग के माध्यम से आप अपने मानसिक तनाव को बिल्कुल बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं, जिसके कारण आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये डायबिटीज जो है तो बड़ा चैलेंज, लेकिन अगर इन साधनों का आप इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि हमें इस बीमारी से मुक्ति पानी है, तो ये असंभव नहीं है, संभव है। आज के इस प्रकरण में हमें डॉक्टर राहुल जी की तरफ से बहुत सुंदर समाधान प्राप्त हुए हैं। इसके लिए मैं अपने सभी श्रोताओं की ओर से आदरणीय डॉक्टर राहुल मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: तो मेरे सभी श्रोताओं को आज की इस सहज स्वास्थ्य के अंत में बहुत सारे सहज उपाय प्राप्त हुए हैं और उम्मीद है अगले कुछ और प्रकरण में जब हमारी मुलाकात होगी, कुछ और ऐसी बीमारियां जो लोगों को अपने कैद में लिए बैठी हैं, उनसे प्राकृतिक रूप से किस तरह से हम मुक्त हो सकते हैं या उन पर अंकुश रख सकते हैं, उनको अपने जीवन से हटा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं,

0: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
0: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत है। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में हमने पिछली कड़ी में बात की थी रोल्स की। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं एक एक्टर के रूप में अपने आप को जरूर देखना चाहता है। तो आज मौका मिला है कि हम जिंदगी में किस तरह के रोल अदा करते हैं उन्हें देख पाएं। जब अवेयरनेस, क्योंकि जब भी हम एक्ट कर रहे होते हैं हम अवेयर होते हैं कि हम एक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर जो रोल मैं दिन भर में प्ले कर रहा हूँ उसके प्रति अगर हम अवेयर हो जाते हैं, हमें पता चल रहा है कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी अगर अपने आप को डिटैच करके देख पाते हैं, इट इज़ एक्चुअली लाइक एन एक्टर। हम वो हर रोल को बहुत अच्छी तरह से अदा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड था कि इस रोल को मुझे ऐसे ही डिफाइन करना है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी या पिछली कड़ी अगर हमें देखें, वो हमें फ्रीडम देती है कि मैं हर रोल को, हर सीन को अपने हिसाब से अदा कर सकता हूँ। तो फिर कौन ज़्यादा अच्छा एक्टर होगा जो अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखेगा और फिर उसे प्ले करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने ट्राई किया तो स्क्रिप्ट लिखने में मुश्किल आ रही थी कि कहीं ना कहीं वो पुरानी जो चीज़ें हैं वो टेक ओवर कर जाती हैं। कैसे अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप शेयर करें कि हाउ इज दिस क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि उसमें कहीं फन दिखता है, वो जिंदगी के नज़दीक दिखती है, और स्पिरिचुअलिटी ऐसे लगता है कि नहीं, समथिंग टू रियली यू नो थिंकिंग है या डूइंग में कुछ नहीं हो रहा होता।
1: सी वी फॉरगॉट व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। स्पिरिचुअलिटी मींस कि जो हम कर रहे हैं, हमारा हर कर्म, हमारा हर संबंध, हमारा हर इंटरेक्शन, उसमें मेरा अपनी चॉइस, मेरा अपना कंट्रोल, मेरा राइट वे ऑफ थिंकिंग, राइट वे ऑफ फीलिंग, राइट वे ऑफ परसीविंग एंड देन राइट वे ऑफ एक्टिंग। हर कर्म करते हुए मेरी सही सोच क्या है, उसका रिजल्ट मेरी सही फीलिंग क्या होगी, मैं हर एक व्यक्ति को, हर परिस्थिति को किस दृष्टिकोण से देखती हूँ, और फिर जैसा मेरा दृष्टिकोण होगा वैसा मेरे व्यवहार में आएगा। तो वो स्पिरिचुअलिटी ने मुझे पावर दी है कि वो राइट थिंकिंग क्या है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सिखाया कि मैं थिंकिंग करती हूं, पहले तो यही नहीं पता।
0: वही तो मैं कह रही हूँ कि जो तीन पोर्शंस आपने बताए वो तो ऑटोमेटिक हो रहे थे, मैं सिर्फ एक्टिंग या मैं जो कर्म कर रहा था उस पर केंद्रित था,
1: क्योंकि हमने अपने आप को सिर्फ बाहर देखा है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सीइंग कि वो प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है। यू नो, जैसे एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट रेडी होकर मेरे हाथ में आ गया, लेकिन प्रोडक्ट का जो प्रोसेस था कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कैसे हुआ। तो आज दिन तक बॉडी कॉन्शियस या हम मटेरियलिस्टिक जिसको कहते, मतलब प्रोडक्ट को देखना, दिस पर्सनैलिटी आफ्टर इट इज़ रेडी, तो ये पर्सनालिटी कैसे बोलती है और ये पर्सनालिटी कैसे व्यवहार करती है, लेकिन ये पर्सनालिटी क्या सोचती है वो उसकी फाउंडेशन है। लेकिन जब हमें ये नहीं पता था कि थिंकिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ माय एवरी वर्ड एंड एक्शन, और मुझे ये नहीं पता था कि आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, मेरा हर संकल्प मैं क्रिएट करती हूँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर कि इररिस्पेक्टिव परिस्थिति कैसी भी है, आई हैव द पावर to create whichever thought I want. So basically, gyan ya spirituality hame automated mode se choice ke mode mein le aata hai ki I choose to do, to think, to play, to act the way I want. And this is freedom. This is complete freedom. To isliye spirituality will give me freedom. This freedom will give me creativity. Ki ek bar mujhe samajh mein aa gaya, मेरी फ्रीडम है, मेरी चॉइस है, मैं हर रोल को कैसे भी प्ले कर सकती हूँ, दिस विल गिव मी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी विल एनहांस माई इफेक्टिवनेस। नाउ वेदर इट्स अ पेरेंट्स रोल, वेदर इट इज़ द रोल ऑफ अ बॉस, द रोल ऑफ अ वाइफ, एनी रोल, माई इफेक्टिवनेस इन प्लेइंग दैट रोल विल इंक्रीज, एंड जहाँ मेरी इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी माई सेटिस्फैक्शन लेवल विल ऑल्सो इंक्रीज।
0: डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये रहेगा कि आपको जो कुछ भी मैं एक्ट कर रहा हूँ उसे पहले का प्रोसेस मैं समझ चुका हूँ, और ये मैं अपने कारण कर रहा हूँ।
1: That's why we call the program awakening. कि पहले हम अंदर तो एकदम स्लीपिंग मोड में थे और बाहर काम कर रहे थे, तो मतलब ड्राइवर सोया हुआ था, गाड़ी चल रही थी अपने आप, बट देन इट वॉज जस्ट गोइंग wherever इट wanted. नाउ द ड्राइवर हैज द पावर टू टेक द कार where he wants to take the car and drive exactly the way he wants to drive, and then when the driver wakes up he can drive avoiding accidents. Humne spirituality ko प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखा था कि हाउ इज इट वर्किंग. हमें लगा स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ ध्यान करना, परमात्मा को याद करना, विच इज येस, बट परमात्मा को याद करके फिर उससे क्या करना, उस शक्ति को लेकर जीवन के हर रोल में प्ले करते हुए उसको कैसे यूज करना. सो आई थॉट स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन मतलब सिर्फ परमात्मा को याद करना, तो वो तब करेंगे जब सारे कामों से बाकी फ्री हो जाएंगे.
0: 70 साल में आप जाओ और तब करो.
1: या सो इसीलिए द फर्स्ट कॉमन आंसर दैट कम्स इज आई डोंट हैव टाइम, बिकॉज इट वॉज सपोज टू बी अ सेपरेट थिंग. तो जहाँ की मेरे आज अभी की जो जिम्मेवारियां वो ही नहीं पूरी हो रही हैं 24 घंटे के अंदर, तो एक अलग पहलू के लिए टाइम निकालना, इट इज चैलेंजिंग. वी नीड टू हैव फन, बट बिकॉज वी वर नॉट हैविंग फन इनसाइड, वी वर लुकिंग फॉर फन आउटसाइड.
0: हमने इतना खेला बाहर, इतना खेला और समझ में आया नहीं कि हम मतलब उसको हम एंजॉय नहीं कर पाए बिल्कुल. यस,
1: लेकिन हम फॉर अगेन वी वर लुकिंग फॉर फन इन सिचुएशंस. सी अगेन मटेरियलिस्टिक मींस आप सब कुछ बाहर सिचुएशंस में ढूंढते हो कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे आई विल हैव फन, मैं क्या ऐसा खाऊं, मैं क्या ऐसा पहनूं, मैं क्या ऐसा यू नो लोगों से मिलूं, मैं क्या करूं जिससे आई विल हैव फन, बिकॉज I want to have fun, I want to have joy, I want to enjoy life. But then we were looking for it in physical things because we thought I am the body. Just then samajh mein aaya ke who wants to have fun? I want to have fun. I, not body doesn't want to have fun kyunki iski to koi feeling hi nahi hai, isko nahi aati. I want to have fun. Now where do I have fun?
0: In fact, yes, I just go back to that jab hame ye samajh mein aaya tha ki responsibility sabse pehle kiski hai, meri, you know, like the being, aur uski fir core values kya hai, aur tab purpose of life jo hai, it actually now stays, you know.
1: So spirituality answered this fundamental question ke main kaun hu, aur main kaun hu jab sharir se hatkar आत्मा पर आंसर आया तो सब कुछ चेंज होने लग गया ना. जस्ट द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग चेंज एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग गुड. आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, पहले भी हम सब कुछ कर रहे थे, बट ये ना जानकर कि कौन है वो जो यू नो चाहता है अच्छा फील करना, एक्सपीरियंस करना, आई डिडंट नो. सो सब कुछ करते हुए भी आई वॉज नॉट रियली एंजॉयिंग, एंड फिर वो जीवन कट रहे है वाला एक्सपीरियंस था कि बीत रहा है, हर एक दिन गुजर रहा है. अगेन देयर वाज नो फन. सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बोरिंग, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सीरियस, स्पिरिचुअलिटी इज एक्साइटिंग. आप एक दिन को ही देख लो ना, अगर हर दिन आप इस अवेयरनेस से हम चलेंगे कि आई एम गोइंग टू चूज माई रोल, इट्स एक्साइटिंग, आई विल लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीन. लेकिन अगर मुझे लगे कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, यू नो यू आर गोइंग टू कंट्रोल माई सीन, यू आर गोइंग टू लुक control my dialogue, why should I look forward to the next scene? Then I don't look forward to the next scene, kyunki mera jo experience hai wo ye ki paristhitiyan aur log mujhe aise control karke chal rahe hain aur main sab cheez ke andar jaise fasi hui hu aur bas unhi ki wajah se main jaisa soch rahi hu, bol rahi hu aur vyavahar kar rahi hu, that's not fun at all.
0: Lekin ab kya aa raha hai ki very true, agla पल मेरा क्या होगा, अगला सीन क्या होगा, उसके बारे में अगर मैं अवेयर भी हूँ, अगला रोल मेरा आएगा, पर मुझे लग रहा है कि उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा. वो जो कहीं ना कहीं मेरी स्किल्स जो है वो मंजी हुई नहीं है अभी उतनी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उस पर काम नहीं किया गया है, तो वो थोड़ा यू नो अभी इमर्ज नहीं हो पाया.
1: लाइक व्हाट वी सो लास्ट टाइम वाज के हम पोजीशन कॉन्शियस हो जाते हैं तो एक्टर कॉन्शियस नहीं रहते. एक्टर कॉन्शियस मीन्स सोल कॉन्शियस, लेकिन हम पोजीशन कॉन्शियस हो जाते हैं. और दूसरा, हम अपने रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार बहुत अग्रेसिव डिफेंसिव हो जाता है कि मेरे रोल को कोई कुछ ना कहे, मेरे रोल को कोई यू नो इनसिक्योरिटी ना हो, आई एम एबल टू मेंटेन माय रोल. तो इसलिए भी हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं लाते कि वो जैसे चल रहा है ये ऐसे ही ठीक है, आई डोंट वांट एनी चेंज इन दिस. एंड तीसरा, जैसे आपने कहा था कि सम पीपल से आई डोंट नो हाउ टू एक्ट, आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन, मुझे तो बस ऐसा ही करना आता है, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट करना हो गया. क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्रिएटिव नहीं हैं, क्रिएटिव बहुत थोड़े लोग होते हैं, यू नो वी फील, बट एक्चुअली एवरीवन इज क्रिएटिव, ईच वन ऑफ अस इज सो क्रिएटिव, लेकिन इट्स जस्ट दैट डिपेंड्स कि कौन अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर रहा है और कौन उसको डोमेंट रख रहा है. क्योंकि क्रिएट करना, एक्ट करना मतलब क्या, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर एक्शंस, एवरी थॉट एंड एक्शन दैट आई एम क्रिएटिंग, I am the creator. इसको ही तो act बोलेंगे ना, creator of the action. तो action कौन create कर रहा है सारा दिन? हम क्रिएट कर रहे हैं।
0: मैं पानी का ग्लास भी उठा रही हूँ, right. मैं यहाँ बैठ रही हूँ, चल रही हूँ, ये एक्शन है जिन्हें मैं क्रिएट कर रही हूँ।
1: जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं एक्शन है जो मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो हु इज डूइंग इट? तो हाउ कैन आई से आई डोंट नो हाउ टू एक्ट? लेकिन जब हम उस अवेयरनेस से चलेंगे, हमें पता चलेगा कि रोल मीन्स वॉट। रोल मीन्स अ सेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस, कैसे सोचना और कैसे उसको व्यवहार में लाना, दैट इज माई रोल। एंड आई कैन लर्न हाउ टू डू दैट। आई कैन लर्न टू चेंज माई वे ऑफ थिंकिंग, आई कैन लर्न टू चेंज माई वे ऑफ बिहेविंग। जब हम ये कह रहे हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, एक्चुअली मतलब मैं चेंज होना नहीं चाहती।
0: मैं जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि अब उस पर भी कोई काम करे। अभी तक तो मेरे पास इतने सारे काम है, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मेरे पास इतनी बड़ी डेडलाइन है, मुझे फिर आगे चल के जो है अपने हॉलीडे को भी पूरा प्लान करना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तो अब मैं इस पर कैसे काम कर सकती?
1: लेकिन ये हमने देखा कि इस पर काम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। वो सब कुछ जो आप कर रहे हैं उसको सिर्फ इस अवेयरनेस से करना है, लेट मी डू इट डिफरेंटली, लेट मी डू इट द वे इट विल गिव मी हैप्पीनेस, लेट मी डू इट द वे इट विल गिव मी सैटिस्फैक्शन, बजाय कि एक मोनोटोनस तरह से चलने के लिए। इसको तुरंत अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना ये कह करके
0: मैं
1: नहीं कर सकता। सी अगेन अ नेगेटिव थॉट।
0: इनफैक्ट लेट अस ट्राई।
1: Yes.
0: इसमें कुछ करना थोड़ा है, कर तो हम वही सारी चीजें रहे हैं।
1: Absolutely.
0: लेकिन उसको हम मतलब थोड़ा सा एडवेंचरस तो हमें होना चाहिए।
1: एडवेंचरस तो होना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि एडवेंचर हमेशा अच्छा लगता है, एक्साइटिंग होता है। और दूसरी एक चीज ये भी है कि हम डरते भी हैं। वी आर स्केर्ड ऑफ बींग क्रिएटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सोचा ये जीवन जो है ना एक कॉम्पिटिशन है। तो कॉम्पिटिशन में हार और जीत की कॉन्शियसनेस सारी लगी हुई है कि somebody will win, somebody will lose. आई डोंट want to lose. Definitely. I always want to be a winner. And so I don't want to try anything different. It's all about changing my perception towards the same situation. Challenges, yes. Situations, yes. Suffering, no.
0: No, yes.
1: That's the point. So basically, like you say, लोग सोच रहे हैं कि आप suffer कर रहे हैं. Suffering मतलब अंदर की फीलिंग है, और वो हमें ही पता होता है। कई बार लोग हमसे मिलेंगे तो वो कहेंगे बेचारे आप, आपके सामने कितने दुख आए। हमारे सामने परिस्थिति आई, आप उसको दुख की तरह परसीव कर रहे हैं। हो सकता है आई एम नॉट गोइंग थ्रू एनी पेन इनसाइड। एंड कई लोगों के लिए हमें लगेगा कि नहीं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अंदर से प्रोबेबली दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। तो ये हर एक सिर्फ और सिर्फ अपने को जानता है। इसमें वी डोंट नीड एनीवन एल्सेस यू नो ओपिनियन, बिकॉज ओनली आई नो। सो इफ आई नो दैट आई एम नॉट सफरिंग, देन इवन इफ अदर पीपल से इट डजंट
0: नो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिस्टर शिवानी ये भी एक बिलीफ सिस्टम आता है कि अगर मैं इस सिचुएशन से गुजरा हूँ या कोई और इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो इसमें तो दुख होगा ही।
1: तो इट्स अ कंडीशन्ड बिलीफ ना, क्रिएटिविटी नहीं है। अगेन दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जो कंडीशन्ड बिलीफ सिस्टम्स बन गए थे कि ऐसा होगा ही। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मी, आई नो मी एज अ पर्सनैलिटी, कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ अच्छी तरह से एंड वो मुझसे वापस ठीक से बात नहीं कर रहे, या वो बात ही नहीं कर रहे हैं, यू नो दे हैव व्हाटएवर इशू और व्हाटएवर एनर्जी फ्लोइंग इन बिटवीन, तो वो बात ही नहीं कर रहे। मैं फिर एक तरफ एक बार बात किया ठीक से, फिर भी नहीं बात कर रहे। दो बार किया, अभी भी नहीं बात कर रहे। ना इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ एज द ओल्ड पर्सनैलिटी, मैं एक बार आपसे करूँगी, दो बार करूँगी, तीसरी बार आई विल से ओके, यू डोंट वॉन्ट टू टॉक टू मी, देन आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, इट्स फिनिश्ड, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। वैसे भी मुझे आपसे क्या चाहिए, यू नो इट्स लाइक दैट, आई डोंट केयर फॉर, आपको बात नहीं करनी तो मुझे नहीं करनी। ना आई विल वर्क कि ठीक है वो बात नहीं कर रहे, Do I have a choice? Do I want to play my role differently? This is the question. Or do I want to play my role the same way that I have played for so many years? And then this time I tried, okay, I will continue speaking to you. And with a very pure thought, not upar se. This is fundamental. See, every time hum is program pe jo bhi discuss kar rahe hain, har ek jo usko practice kar raha hai, usko ye dhyan rakhna padega, it has to be internally.
0: Thoughts
1: kuch bhi bahar se nahin kijiye. Kyunki majority time jo hum keh rahe hain, hum kar rahe hain, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम कर रहे हैं लेकिन अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसको अंदर से नहीं कर रहे। अगर आप थॉट और फीलिंग से करेंगे तो यू विल इंजॉय एब्सोल्युटली। तो अब क्या होता है, एक बार दो बार आई कैन गो ऑन टॉकिंग 10 times, 20 times, 100 times to you, because I feel like talking. And every time आप मेरे से नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छा फील करके आपसे फिर भी बात कर रही हूँ. इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ विक्ट्री ओवर माई सेल्फ. नथिंग टू डू विद यू. आप जैसे हैं, पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे हैं, नो प्रॉब्लम. एंड उस एंगल से नहीं बात कर रहे कि आई एम वेटिंग फॉर यू टू चेंज. पहले जब ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा तो बहुत भाई बहने ये लगते हैं, मैंने दो बार बात की, मैंने चार बार बात की, आंट दे सपोज टू नाउ चेंज. नो, नाउ वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनी वन. क्रिएटिविटी मीन्स सिर्फ एक के रोल पर फोकस करना है. अच्छा, 50 बार बात की, वो अभी भी नहीं बात कर रहे. हाउ डू आई वॉन्ट टू प्ले माई रोल? नो, आई स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू नाइसली. स्टिल कंटिन्यू. एंड जिस तरह से हम फिर इस क्रिएटिविटी को यूज करते हैं, हम खुद हैरान होते हैं.
0: और उसमें फिर हमारा हर्ट नहीं आ रहा ना,
1: हर्ट होता है.
0: मेरा डिसीजन, मेरी चॉइस.
1: और मुझे अच्छा लगता है करके, आई एंजॉय डूइंग इट. एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन. हम अपने आप को देखते हैं कि अच्छा, पहले इसी परिस्थिति में हम इस तरह से बिहेव करते, टुडे आई एम डिफरेंट, विच वन मेक्स मी फील बेटर. तो इसलिए आप इसको कल जाकर किसी भी रिश्ते में करके देखिए कि किसी भी रिश्ते में एक पर्टिकुलर कंडीशन रिस्पॉन्स बहुत टाइम से चल रहा होगा. कई बार हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक कंडीशन रिस्पॉन्स हो रहा है कि हर रोज इरिटेशन है ही है, हर रोज आर्ग्यूमेंट है ही है.
0: पूरे दिन की स्क्रिप्ट जो है हमने एक ही तरह से लिखी हुई है, तो हर रोज यही होगा, यही हो, और उसी कारण हम फिर दूर भागते हैं. अगर हम आज देखें कि रिश्तों की जो दूरी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, बिकॉज वी नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. इवनिंग में क्या होगा, सुबह क्या रोल प्ले किया जाएगा, सुबह क्या सीन क्रिएट होगा, वी ऑल सीन इट, वी विजुअलाइज्ड इट, एंड वी स्टिल गेट इनटू इट. And we don't try to change.
1: And now let's create it a different way. ताकि we look forward to the next day. अभी क्या होगा, हो सकता है आपके साथ अगर मैं बहुत सालों से रह रही हूँ, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे आपकी एक एक सोच समझ में आ गई है, व्यवहार समझ में आ गया, तो मुझे पता है कि हर परिस्थिति में आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. लेकिन आजकल कई बार वी डोंट रिस्पॉन्ड इन द सेम वे, बिकॉज समटाइम्स आर रिस्पॉन्सेज हैव बिकम वेरी अनप्रडिक्टेबल आजकल. लेकिन वो जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है, वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर जा रही है, क्योंकि अंदर इतना दर्द भरा हुआ है कि वो लोग जो आज तक काफी ठीक थे, स्टेबल थे, अब वो छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करने लग गए हैं,
0: स्ट्रॉन्ग होने लग गए.
1: बच्चे हमारे जो ठीक थे, सडनली टीनेज एज में आ रहे हैं, वो क्यों इस तरह से जवाब दे रहे हैं, वो क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं, तो अनप्रडिक्टेबिलिटी आ रही है. सो बेसिकली पहले क्या हो रहा था, मुझे आपके रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड पता थे, तो कहीं मेरे भी रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड थे आपके. लेकिन नाउ आई हैव टू बी रेडी कि हर एक के साथ, जिनके साथ मैं डील कर रही हूँ, कोई भी तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है. तो समवेयर आई कैन नॉट फिक्स माई रिस्पॉन्सेज, आई विल हैव टू बी रेडी कि अलग अलग लोगों से अलग अलग रिस्पॉन्सेज आने वाले हैं. हाउ एम आई गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन द बेस्ट वे? कई लोगों के साथ ऑफिस में स्पेशली पता ही नहीं चलता, सडनली आज ये लोग अलग तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, कल तक तो ठीक थे, आज क्या हो गया? फिर क्या होता, जैसे हमें दूसरे के रिस्पॉन्स में कुछ डिफरेंस दिखाई देता, हम उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ये आज इस तरह से क्यों नहीं बात कर रहे. सपोज आपके अंदर कोई टेंशन है, आपने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा सुबह, आप कॉरिडोर में मुझे ऐसे ही क्रॉस करके चले गए, अब मैं आपके बारे में ही सोचना शुरू कर दूंगी, क्या बात है, मेरे से नाराज है?
0: हाँ, मुझसे मैंने कुछ रूठ क्यों हो गए हैं, मेरे साथ, मेरे इनके साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, कि किसी और ने तो नहीं कहा?
1: एग्जैक्टली. सी वेयर ऑल द थिंकिंग इज गॉन, एंड पूरी कॉन्शियसनेस किस पर है कि आपने अपना रोल किस तरह से प्ले किया, और अब मैं क्या करूँ जिससे आप अपना रोल चेंज कर. That's it. Why not कि ठीक है, आपने गुड मॉर्निंग नहीं किया या आपने ठीक से बात नहीं की, why can I just not continue? Is it necessary कि जैसे ही आपका रोल चेंज हुआ, मुझे भी चेंज करना है कि उन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं किया तो फिर अब मैं क्यों गुड मॉर्निंग करूँ? No, I have to be creative with my role, and कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी, मेरी क्रिएटिविटी, फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो क्रिएटिविटी जरूर जागृत करेगी. दैट इज डेफिनेट. सो लेट्स बी कॉन्शियस, अवेयर. अवेयरनेस जहाँ आई कि हर पल अवेयरनेस ऑफ हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माई रोल. अब इसके ऊपर ये शायद सुनने में थोड़ा सा लगे, कैसे कैसे करेंगे, इज इट वेरी डिफिकल्ट? इसको तुरंत आज या कल में जाकर करना है कि जहाँ कोई रिश्तों में फिक्स्ड आ रहा था, या कहाँ हमें बहुत दिनों से एक दूसरे से, किसी से अगर हमने बात नहीं की थी या ठीक से बात नहीं की थी, जस्ट गो एंड बी क्रिएटिव, एंड जस्ट डू इट अ डिफरेंट वे टुडे
0: एंड इनफैक्ट यू नो वो चेंज होता है या नहीं होता उन तक आपकी वाइब्रेशंस पहुंचती है नहीं पहुंचती
1: डोंट वेट फॉर दैट
0: आपकी अपनी वाइब्रेशंस जो हैं वो आपको बहुत खुशी दे देंगे
1: बिकॉज़ हमने खुद को ही खुशी देनी है दैट्स व्हाट वी सेड हर चीज जो हम करेंगे इट मेक्स मी फील गुड अभी मैं सोच रही थी पहले कि आप मुझे अगर ठीक से विश करोगे सुबह में आके देन आई विल फील गुड बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड आप करो या नहीं करो अगर मैं आपको

0: तरह से विश करती हूँ, आई फील गुड, दैट्स ऑल. अब मैं हर स्टेप पे हर एक को मिलती जाऊँ, हर सीन में क्रॉस करते जाऊँ और हर स्टेप पे ध्यान रखती जाऊँ, फील गुड फैक्टर मेरा.
1: You know, I feel so light, actually. Yes.
0: पहले आपको देख देख कर, आपके बारे में सोच सोच कर मैंने यहाँ बहुत भारी कर लिया था. इसने क्यों नहीं आज ठीक से बात की, इसने इस तरह से क्यों व्यवहार किया, इसने जवाब क्यों नहीं दिया, यू नो, हर चीज़ में भारी. अब मुझे सिर्फ एक के बारे में सोचना है और एक पर ध्यान देते जाना है कि उन्होंने जैसा भी किया मुझे कैसा करना है. अ न्यू रिस्पॉन्स एवरी टाइम, दिस विल मेक मी फील वेरी लाइट एंड ये मुझे बहुत हल्का रखेगा और क्रिएटिविटी मुझे एक मोटिवेशन देगी सारा दिन एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट. और उससे क्या होगा, मेरे कोई भी रिश्तों में वो दूरी नहीं आएगी क्योंकि जहाँ अगर मुझे लगा भी कि कहीं दूरी आ गई है तो वो किसके हाथ में है,
1: मेरे अपने हाथ.
0: Quickly go, change, play the role a different way. दूरी आई क्योंकि हम इतने particular time से उस role को इस तरह से play कर रहे थे. अगर लग रहा है दूरी आ रही है and if you want to change it, you know, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो just go and play the role a different way.
1: But हम तो basically क्या होता है, कई levels पे पहुँच के हम change ही नहीं करना चाहते, हम उसको ठीक ही नहीं करना चाहते क्योंकि हम कहते हैं कौन करे क्या है, उनसे हमें मुझे मिल के, जैसे आप कह रहे हैं कि उनसे मुझे मिल क्या रहा था,
0: उनसे नहीं मिल रहा है ना.
1: पर हाँ, but basically ये मुझे empower कर रहा है.
0: Absolutely. तो इसको आई थिंक अगर हम आज के आज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर.
1: एंड इफ ही इज गोइंग टू बी विद मी, जिनके साथ भी मेरा रिश्ता है, अगर वो मेरे साथ ऑफिस में होने वाले हैं तो उनका इम्पोर्टेंट रोल होगा ही.
0: Absolutely.
1: तो मैं उनके साथ दूरी क्यों बढ़ाऊँ.
0: क्यों ना हम जितनी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं उतनी करते जाएं, क्योंकि वो सारी किसके हाथ में है, सारी अपने हाथ में है, तो उसको करते जाओ. एंड इसके लिए एक बहुत सिंपल कुछ एक बातों का हमें ध्यान देना है. सबसे पहला है हमारा दृष्टिकोण, माय परसेप्शन हैज टू बी वेरी राइट कि मेरा जीवन के प्रति क्या परसेप्शन है.
1: हाँ, लोगों को छोड़ो, स्थितियों को छोड़ो, अब लाइफ के प्रति,
0: लाइफ के प्रति मेरा क्या परसेप्शन है. एंड इट हैज टू बी अ वेरी क्लियर परसेप्शन कि ये वर्ल्ड ड्रामा है, ये एक ड्रामा है, इसमें मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ. रोल प्ले कर रहा हूँ इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड एवरी टाइम आई हैव टू टेल माई सेल्फ इट्स जस्ट अ रोल. उसके अंदर इतना यू नो ना अटक जाएं कि
1: बस वहीं रुक जाएं.
0: इट्स जस्ट अ रोल एंड जब मुझे याद रहेगा दिस इज जस्ट अ रोल, दिस इज जस्ट अ सीन, हर सीन जो गया इट्स जस्ट अ सीन. नो वन सीन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर सीन, एवरी सीन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट अ सीन एंड आई एम प्लेइंग अ रोल, आई एम एन एक्टर. जब मुझे ये याद रहता है, ये परसेप्शन रहती है कि आई एम एन एक्टर, आई एम प्लेइंग अ रोल, मुझे ये भी याद रहता है आई कैन क्रिएट इट द वे आई वॉन्ट. मुझे ये भी याद रहता है कि मेरे पास चॉइस है, मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मुझे एक पर्टिकुलर तरह से नहीं प्ले करना. मुझे ये भी याद रहता है कि आई विल नॉट स्विम विद द करंट, मैं फ्लो नहीं हो जाऊंगी, आई विल बी एबल टू डिटैच माई सेल्फ जहाँ चाहिए क्योंकि इट्स जस्ट अ सीन. और फिर मुझे ये याद रहेगा कि फाइनली ये सीन भी खत्म हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी परिस्थिति आज, इट्स जस्ट अ सीन विच विल फेड अवे एंड आई ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस रोल विल ऑल्सो वन डे फेड अवे. द ओनली वन हु रिमेन्स
1: मी
0: इज द एक्टर. तो वो राइट दृष्टिकोण से मुझे इस जीवन की यात्रा में चलना पड़ेगा कि ये रोल भी आज है, कल हो सकता है नहीं है. द ओनली थिंग इटर्नल इज आई द एक्टर. तो जब सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं एक्टर का ध्यान दे, एक्टर को भूल के रोल के कॉन्शियसनेस में अगर इतने फिट हो जाते हैं तो ये परसेप्शन अगर रहता है इट्स जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ ड्रामा, इट्स जस्ट अ रोल.
1: एंड आई हैव अनदर चॉइस, यू नो, लाइक अगर ठीक है इस सीन में मैं बहुत अच्छा नहीं भी कर पाया फिलहाल, आई हैव अनदर ऑप्शन, अगला सीन जो है उसमें आई कैन डू माय बेस्ट,
0: आई कैन डू. सो इट गिव्स मी दैट फ्लेक्सिबिलिटी. और उससे क्या होगा, जब यहाँ इस तरह से हम जीवन को देखेंगे तो हम बहुत प्लेफुल हो जाएंगे, यू नो, जैसे हम प्ले करते थे तो उसमें कितना मजा आता था, जीवन में क्यों नहीं वो मजा आ रहा.
1: बिल्कुल, हम थिएटर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कितने कितने घंटों हम बैठ पाते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी क्रिएटिव चीज में होते हैं इट्स वेरी टाइम रुक जाता है.
0: एब्सोल्युटली, इट्स वेरी एंजॉयबल. तो वो क्रिएटिव पर्सपेक्टिव को जीवन की यात्रा में ले आओ. दिस इज ऑल अ ड्रामा, एवरीवन इज़ एन एक्टर, वी आर ओनली प्लेइंग रोल्स, रोल्स में इतने ना फंस जाएं क्योंकि एक सेकेंड एंड ये रोल खत्म हो जाएगा, एक मिनट लगेगा एंड द रोल कैन फिनिश. उस रोल में इतने नहीं अटैच्ड हो जाओ कि एक्टर ही भूल जाए, तो वो इन्जॉय नहीं करेगा. तो रोल प्ले करेंगे क्रिएटिवली, बहुत प्लेफुल हो जाएंगे. प्लेफुल होंगे ना तो वो जो आनंद का अनुभव हम करना चाहते हैं हर स्टेप पे, it will become very easy. And creativity ki jo basic energy hoti hai wo hai love, pyar. So when I'm creative continuously, love as my quality will just flow naturally. You know, aap kisi bhi artist ko dekho, love ki energy hai to unka jo wo art hai wo kitne उस तरह के रूप से निकल कर आता है. तो मैं आत्मा हूँ ही प्रेम स्वरूप. सो व्हेन आई एम यूजिंग माय क्रिएटिविटी, आई विल नॉट हैव टू फोर्सफुली बी यू नो क्रिएट लव, प्यार स्नेह मेरा फ्लो करेगा,
1: सारी हैप्पीनेस फ्लो करने लगती है जब भी हम किसी भी क्रिएटिव एस्पेक्ट में होते हैं. जब राइटर लिख रहा होता है, जब पोएट पोएम लिख रहा होता है, वो बिल्कुल कहते हैं कि वो ब्रह्मानंद में है, वो कहते हैं खुद. और जब वो पेंटर कुछ भी क्रिएट कर रहा होता है, तो हमारे पास तो क्रिएट करने को हर पल है.
0: इट्स लाइक अ कैनवस, या उस पे कुछ भी क्रिएट
1: जीवन में है. तो अब में से हम में से हर कोई जो कह रहा था कि मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, आई एम नॉट अ राइटर, आई एम नॉट अ पेंटर, बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग, यू नो, हु कैन एक्चुअली क्रिएट ईच मोमेंट,
0: एंड देन इट विल बिकम लॉट ऑफ फन. लेकिन इसको करके देखना है, लेट्स नॉट जस्ट कीप इट हियर, वी विल हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड देन सी इफ द रिजल्ट वर्क्स फॉर अस.
1: वंडरफुल, थैंक यू सो मच सचिवानी. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: कोई सवाल, कोई बात, कोई सजेशन अगर आपके पास है, आपके बहुत से सजेशन हम तक आते हैं जिन्हें हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, तो आपका हम एक खुला निमंत्रण देते हैं. ये मंच आपका है, इस पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें फोन कीजिए या फिर ईमेल कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. रोल्स को देखते हुए ये एक्सपेरिमेंट जो हम आपसे कह रहे हैं, उसका अनुभव जरूर ले. आगे आपसे फिर मुलाकात करेंगे. ओम शांति.
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। गुरुवार का दिन है, सदगुरुवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 23 जुलाई 2026 आज का तारीख है और राष्ट्रीय शके 1948 शके 1 गते 7 आषाढ़ गुरुवार आज है। विक्रम संवत 2083 आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी गुरुवार विशाखा आज है। इस्लामी हिजरी 1448 8 सफर जुमेरात जुबान आज है। गुप्त नवरात्रि आज समाप्त हो रहा है और इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज है। तो आज के इस खूबसूरत दिन की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप भी इस विशेष एपिसोड के साथ साथ अपने आज के दिन को यादगार बनाइए। और नवरात्रि समाप्त हो रहा है तो उसके बारे में भी आप अपना अगर उपवास वगैरह कुछ तप कर रहे हो तो ज़रूर अपने अनुभव को साझा कीजिए और बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और आइए अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ। जैसे कि आज गुरुवार है तो ब्रह्मा कुमारी इसमें विशेष भोग का जो है रहता है प्रोग्राम, तो सीधे मैं आपको ले चलता हूँ शांति वन के आंगन में जहाँ से आप सीधा प्रसारण सुनेंगे।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करूंगा आप सद्गुरुवार के इस खूबसूरत दिन को बहुत ही अच्छी तरह से शुरुआत की होगी, और नहीं कहिए तो अब अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आ गए हम भूल जाओ गम। तो आइए, गुप्त नवरात्रि भी समाप्त हो गया है और इस प्रकार शारदीय और चैतन्य नवरात्रि, आषाढ़ और माघ महीने के नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान होता है और इसके रहस्य को पता चलता है। तो जो लोग इसका इस विधि को अपनाते हैं उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आता है। गुप्त नवरात्रि मनाने और इनकी साधना का विधान देवी भागवत व अन्य धार्मिक ग्रंथों में विशेष मिलता है। श्रृंगी ऋषि ने गुप्त नवरात्रि के महत्व को बताते हुए कहा कि जिस प्रकार वास्तविक नवरात्रि में भगवान विष्णु की पूजा और शारदीय नवरात्रि में देवी शक्ति की नव देवियों की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं के होते हैं। यदि कोई इन महाविद्याओं के रूप में शक्ति की उपासना करे तो जीवन धन्य धन्य, राज्य सत्ता और ऐश्वर्य से भर जाता है। तो ये खास बात है, अगर आपने नहीं किया तो अगले समय में जब अगली बार जब नवरात्रि शुरू होगा, गुप्त नवरात्रि, तो आप इस पर ज़रूर काम कीजिएगा। सामान्यतः लोग वर्ष में पड़ने वाले केवल 2 नवरात्रि के बारे में जानते हैं, चैत्र और वसंत नवरात्रि, अश्विन या फिर शारदीय नवरात्रि, जबकि इसके अतिरिक्त 2 और नवरात्रि भी होते हैं जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। कम लोगों को इसका ज्ञान होने के कारण, ये इसके छिपे हुए होने के कारण ही इसको गुप्त कहा जाता है। वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि आते हैं, 2 विशेष रूप से नवरात्रि आते हैं जिसे प्रत्यक्ष रूप में सभी लोग मिलकर मनाते हैं। इस प्रकार वर्ष में मिलकर कुल 4 नवरात्र होते हैं। ये चारों ही नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। इस विशेष अवसर पर अपनी विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ आदि किए जाते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ, और कहते हैं ईश्वर खड़ा है तेरे द्वार, है ना। जब आप ऐसे फील करेंगे तो निश्चित तौर पे ये भी एक बहुत बड़ा मेडिटेशन का कार्य करता है, आपके मनोस्थिति को सुंदर और समृद्ध बनाता है। सुनते रहो मस्कराते।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। तेरे द्वार खड़े भगवान भगत भर ले रे झोली, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। चलिए, गुप्त नवरात्रि के बारे में हमने आपको बताया, और जब भी आपको ऐसा लगे कि नवरात्रि शुरू हो रहा है तो अपना 10 दिन का एक तपस्या वाला प्रोग्राम जरूर शुरू कर सकते हैं। पूरा दिन नहीं तो सही, सुबह या शाम को ज़रूर एक एक घंटा आप करके भी अपने इस पूरे 10 दिन का जो शक्ति है वो ग्रहण कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज है और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे अंग्रेजी में कहते हैं, और भारत में हर साल 23 जुलाई को ये मनाया जाता है। हर दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था, तो इतिहास गवाह है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कितना इम्पोर्टेंट है। भारत में रेडियो प्रसारण को लेकर काफ़ी साल से भी अधिक हो चुके हैं, 90 सालों से भी अधिक हुआ। इस दिवस को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक के में हुई थी, और पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले दो ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा भी शुरू हो गई थी, और इस तरह से सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें परिचालित करना शुरू कर दिया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया, और 1997 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है बनी, और ऑल इंडिया रेडियो भारत के राष्ट्रीय प्रसारण के रूप में ऑल इंडिया रेडियो AIR जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के लिए सेवा कर रहा है। ये शुरुआत से ही अपने उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का अनुसरण कर रहा है। भाषाओं की संख्या में मामले में दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है, और AIR के देश भर में 413 स्टेशन हैं, और इनकी पहुंच देश के 99.19% हिस्से में है। आकाशवाणी का 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण होता है। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM। नए किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, तो चलिए एक और सुंदर गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आशा करूंगा आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, हमारे बीच गोविंदा उदयपुर से बिलोंग करने वाले फतेह सिंह जी हैं और आप सुपरवाइजिंग का काम करते हैं, किसानों के साथ रहते हैं, हमेशा खेतीबाड़ी का काम देखते रहते हैं और लोगों को गाइड करते रहते हैं। तो फतेह सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। और मैं चाहूँगा कि आपका जो तीन दिन का विशेष एग्रीकल्चर का जो सेमिनार हुआ, शिविर हुआ, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया, उसको आपने अटेंड किया है, तो हम चाहेंगे कि आपका अनुभव ज़रूर सुनाइए, अच्छा लगेगा।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: मैं यहाँ आने से पहले मेरे मन में विचार चल रहा था कि ये क्या चीज़ होगा, क्या है। नाम तो पहले सुना हुआ था,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब फ़ोन आया कि वहाँ जाना है और 30 किसानों को लेके जाना है, ऐसी कई सारी मीटिंग्स की जहाँ जैविक खेती और अन्य चीज़ों के बारे में तो सभी बताते ही हैं, लेकिन जो यहाँ आके जो महसूस किया वो एक नया था। मानो कोई चीज़ है, जब तक अपन का स्वयं का परिचय अगर सही नहीं हुआ है तो अपन कोई भी कार्य स्वयं अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ आकर मैंने ये महसूस किया कि जो अपन लौकिक एक पहचान थी वो तो एक झूठी पहचान थी, अपन को स्वयं की जो असली पहचान है वो यहाँ आके
0: मिल गई।
1: और उसके साथ ही एक और महसूस किया कि भाई, जैसे जब तक अपन स्वयं पवित्र नहीं होंगे, अपने पास सही ज्ञान नहीं होगा, अपन अगर सात्विक भोजन, अच्छा भोजन नहीं करेंगे, तब तक अपन दूसरों को ये सब चीज़ें दे ही नहीं सकते। और अभी तक जैसे मैं कृषि विभाग में था, कोई भी किसान को मार्गदर्शन दे रहा था तो वो गलत मार्गदर्शन ही दे रहे थे जो परंपरागत अपना चलता आ रहा था, क्योंकि मैंने भी वही सीखा हुआ था। लेकिन यहाँ आके पता चला कि किसी भी को अगर अपन उसको प्रत्यक्ष रूप से भी अगर कोई जहर खिला रहे हैं, या उसको अप्रत्यक्ष रूप से जैसे खेती में यूज़ करके अगर किसान खिला रहा, तो वो भी एक पाप ही है। तो एक वो आत्म का जागरण जो हुआ वो यहाँ के ऐसा महसूस हुआ।
0: तो अभी जाके क्या करने वाले हैं आप?
1: यहाँ आते ही तो पहला दिन और जब दूसरा दिन हुआ, तो दूसरे दिन ही मैंने ये संकल्प तो यहाँ ले ही लिया था कि मेरे को अभी किसी किसानों को रासायनिक खेती के बारे में तो कभी ज्ञान देना ही नहीं है, चाहे मैं 30 साल की आगे सर्विस करूँ या 20 साल, जो भी होगा। और अब जो एक तो किसानों को सबसे पहले उसका मन क्यों दुखी है, वो क्यों परेशान है, सबसे पहले तो उनको खुद का ज्ञान, वो सारी चिंता से मुक्त हो जाए, वो उसका असली क्या है वो चीज़ समझ जाएगा, तो वो स्वतः ही दूसरी चीज़ें जैसे रासायनिक का प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें वो उसके अंतरात्मा से ही छोड़ देगा, उसको कहने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं बदल गया है, तो उसकी स्वयं की पहचान हो गई है, तो वो उसको ज़्यादा फोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा फतेह सिंह जी, अच्छा लग रहा है आपकी भावनाएं और आपके मन जो है शुद्ध हो गया है, तो आप ये संकल्प लिया है कि लोगों को जो है कभी भी अब जो खेतों में जो केमिकल्स डालते हैं उसके लिए आप कभी भी राय नहीं देंगे। और जो यहाँ से सीखा है आपने, जो एग्रीकल्चर जो सेमिनार हुआ जिसमें आपने जैविक खाद और जो जैविक जो चीज़ सिस्टम है उसको समझा आपने, तो वो विधि विधान को आप अपना कर लोगों को जो है बीज रोपण कैसे करना है, रिचार्ज कैसे करना है, और अच्छा जो है खेती आने के लिए क्या क्या चीज़ों की संभावना है, और किस तरह से हम अपने ही घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके इसको समृद्ध बना सकते हैं, खेती अच्छा कर सकते हैं, ये आपने सीखा है। तो और साथ ही साथ आपने मेडिटेशन, मन का जो है प्रभाव खेती पर पड़ता है, ये भी आपने बताया। तो मन भी हमारा शुद्ध हो, मन भी हमारा धुंध रहता है हमेशा, तो मन की गरीबी खत्म हो जाए तो फिर हर व्यक्ति साहूकारी है, क्योंकि ईश्वर ने उसे संपन्नता के साथ इस संसार में भेजा था, अब फिर से उसे संपन्न बन के वापस अपने निज धाम की ओर यात्रा करना है। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करूंगा फतेह सिंह जी का अनुभव सुनकर आपको अच्छा लग रहा होगा। एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सभी किसान भाइयों को?
1: सभी किसान भाइयों को और यही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो जैसे है अपने, एक तो ब्रह्मा कुमारी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार देना चाहता हूँ, क्योंकि जो किसान मेरे साथ आए उन्होंने स्वयं ने मेरे को कहा कि यार सर आप इतनी अच्छी जगह लेके आए और ये हमें पता ही नहीं था और अगर हम नहीं आते तो बहुत
0: पछताते,
1: बहुत मतलब अपनी स्वयं की पहचान नहीं कर पाते और अंधेरे में ही रह जाते। तो जब उन्होंने ये बोला तो मुझे लगा कि कुछ काम अच्छा अपन ने आज किया है। तो किसान भाइयों को और विभाग वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अपने ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो चलाई जा रही है इसमें भेजें, तो इससे अवश्य ही एक दिन यौगिक शाश्वत खेती का स्थापना होगी।
0: चलिए फतेह सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि आप अपने इस मिशन को लेकर जाइए और मिशन को सफल बनाइए, गोगुंदा को एक जो है सैंपल बनाइए जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हैं, तो वहाँ के किसानों को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देकर उनसे करवाइए, ताकि दूसरे जो राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के लोग आपके गोगुंदा के किसानों को देखने आए, उनकी खेती को देखने आए, उनकी महिमा मंडन पूरी दुनिया में हो, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए, हमने फतेह सिंह सुपरवाइजर से बातें की और अभी प्रैक्टिकल जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले किसान भाई हैं उनसे भी बातें कर लेते हैं। धुनीलाल जी हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग बातें करते हैं। स्वागत है किसान भाई, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ सर।
0: और बताइए, आपने भी शिविर अटेंड किया तो आपका अनुभव भी हम सुनना चाहेंगे।
1: ओम शांति। सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि इनके नेतृत्व में ही मैं अपने अबरूड आया और मेरे को यहाँ आने के बाद पता चला कि खेती तो हम करते ही पहले से करते थे, लेकिन यौगिक खेती करते हुए हम लोगों को कैसे स्वस्थ मतलब खाना दे सके, सब्जी दे सके, मतलब रासायनिक उर्वरकों का बिना प्रयोग किए हुए, ये मेरे को यहाँ आने के बाद पता चला। और एक स्वयं की पहचान, हम कौन हैं, ये भी यहाँ आने के बाद पता चला। और परमात्मा कौन है, उनसे कैसे संबंध बनाए, और परमात्मा से संबंध बनाते हुए अपन खेती करते हैं तो उसमें मतलब पौधों जो पौधे तैयार करते हैं, सब्जी करते हैं, तो उसको मतलब कैसे उनको भगवान का नाम लेते हुए मतलब काम करें ताकि वो निरोगी बने और स्वस्थ मतलब भोजन हम लोगों को खिला सकें। और दूसरा, ये एक यहाँ आने के बाद हमने एक प्रण लिया कि बिना रासायनिक खेती किए हुए भी हम गांव में जाकर मतलब योग के साथ साथ एक जैविक खेती कर सकते हैं, योगी खेती कर सकते हैं, जिसे किसी के काम को जहर नहीं खिला सके, अपन सही खाना खिला सके।
0: तो किसान भाई, आपने क्या सीखा और आप जाके किस तरह से कार्य करेंगे आप?
1: मैंने ये सीखा कि यहाँ से कम अब यहाँ से जाने के बाद चाहे आधे बीघे में सही, एक बीघे में सही, लेकिन बिना रासायनिक का छिड़काव किए हुए यौगिक तरीके से यौगिक खेती करूँगा, जिससे आगे और भी किसान हैं उनको भी समझाऊँगा कि इस तरह से अपन को खेती करनी है, जहरीली खेती नहीं करनी है। एक संदेश के रूप में यही है, किसान खेती बाड़ी करने वाला है वो अपन आज से ये प्रण लेवें कि अब रासायनिक उर्वरक जो भी खेतीबाड़ी करते हैं वो आज से रासायनिक उर्वरक की खेती करना बंद कर दे, तो ही हम सबके लिए अच्छी चीज़ है। क्योंकि इस प्रकृति में जो जमीन की जो उर्वरकता जो क्षमता है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है, इससे आगे आने वाले समय में बहुत ही मतलब विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है इसका।
0: चलिए किसान भाई, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया कि अब जो है हमें जहरीली खेती नहीं करना है, हमें जो है ऑर्गेनिक जो विशेष योगी खेती को अपनाना है, जिससे हमारा जीवन जो है अच्छा बनेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ चलिए किसान भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। और मैं चाहूँगा कि आप अभी जाके जिस तरह से ऑर्गेनिक खेती करेंगे उसी तरह का जो है लोगों को संदेश में मिलेगा, आपको देखकर दूसरे किसान भी आपकी तरह खेती करना शुरू कर देंगे। चलिए किसान भाइयों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ही सुंदर आपने अनुभव सुना और निश्चित तौर पे आप सभी सुनने वालों को एक नया एस्पेक्ट मिल गया होगा कि कैसे हम लोग खेती में भी नवाचार कर सकते हैं और अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में एक इनकम बढ़ाना सेकेंडरी है, लेकिन पहले अपने आप को बेहतर बनाना, ये इसका सीक्रेट पार्ट है। जब आप अगर योगिक खेती का पार्ट को देखते हैं तो वहाँ पर खुद के बारे में खुद को जानना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है।

0: चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत

0: करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मन्नलूर और पिल्पाइक्कम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 30 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
1: What is the most important?
2: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: With deep feelings, emotional intelligence.
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
4: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के यूशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
5: पीओजे के में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने को हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
8: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
7: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम बात करते हैं विशेष लोगों का जिनका जन्मदिन आज है, तो आइए बात करते हैं। आज जन्मदिन है विशेष बाल गंगाधर तिलक के बारे में। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक अपने समय के एक बहुत ही विशेष व्यक्ति रहे हैं और विद्वान रहे, गणितज्ञ रहे, दार्शनिक रहे और उग्र राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आज़ादी की नींव रखने में विशेष काम किया। आइए दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, हम शांत हैं। सर, मैं बोलता हूं जताना से, कैसे हो सर?
0: जी बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं? और
1: बहुत अच्छे हैं, सुन रहे कार्यक्रम। सुबह में बता दिया हमारे फतेह सिंह ने, बहुत अच्छी बात बताई खेती के बारे में।
0: जी जी जी जी,
1: और कैसे खेती करनी है, क्या करना है, कैसे खाद डालना है, कई सारी बातें बताई। लेकिन आज सर नहीं बताओ तो हर एक लोग समझते नहीं है, जो हर किसान भाई समझ जाएगा। तो ये खेती जो अभी यूरिया खाद डालते हैं वो नहीं डालेंगे, क्योंकि आज क्या है, लोगों को जल्दी तैयार हो जाए, रस वही है, लेकिन कई सारे नुकसान है कि वो खाद डालने से कई बीमारियां भी आज हो रही है इसी वजह से। तो जो हम पहले तो क्या था, हमारे जो गाय भैंस रखते थे उसका ही गोबर से खेती में डालते थे और उसका अच्छा उपज होता था और कोई बीमारियां भी नहीं होती थी। लेकिन आज नहीं है, आज बस लोग सब यूरिया खाद डाल रहे हैं और लोगों को जहर दे रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्या करें, खाना तो पड़ता है, जहर खाए चाहे वो खाए, क्या करे। क्योंकि हम तो उगा नहीं सकते, हम तो हमारे पास तो खेती है नहीं, जमीन भी नहीं है, वरना तो हम जमीन होती तो हम खुद वो गाय भैंस रखते थे और वो खेती करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्या करें। तो आज रेडियो प्रसारण दिन भी मनाया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: शुरुआत हुई थी ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता था।
0: जी जी,
1: तो मैं बताऊँ सर, वो ऑल इंडिया रेडियो का जो बहुत एक बल वाला थी पहले, वही ऑल इंडिया रेडियो से ही रेडियो की शुरुआत हुई थी। और कई सारे प्रोग्राम आते थे, गाने आते थे। मैं बताऊँ तो सर, मैं 12:30 बजे रात को कार्यक्रम सुन के ही मैं सो जाता था ऑल इंडिया रेडियो पर, जो गाने आते थे 12:30 रात को से 1 बजे तक। तो वो लास्ट गाना में, वो लास्ट प्रोग्राम में सुन के मैं सोता था। मैं जो सो गया तो सुबह तक रेडियो चालू रहता।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: और देखता हूँ तो सुबह में वो जो सेल आता था वो खलास हो जाता है, दूसरे दिन नया सेल डालना पड़ता था। क्या करें सर, क्योंकि वो तो एक सप्ताह पूरा दिन रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो बिना तो चलता नहीं। आज भी हम रेडियो का ही यूज करते हैं।
0: जी जी,
1: रेडियो बिना तो हम रह नहीं सकते।
0: सही बात है।
1: तो चलो, रेडियो की तो बोल बाला ही है, आज भी बोल बाला हो रही है रेडियो की। अब तो FM में आ गया है, मोबाइल में आ गया है, तो और अच्छा सुनने को मिल रहा है, क्लीन सुना रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं आती है। चलो, हमारी तरफ से सभी मित्रों को आज को सब गुरुवार है, तो गुरुवार की बहुत शुभकामनाएं, बाबा सबको अच्छा रखे।
0: जी जी जी।
1: और गाना तो हमने कुछ सुबह में याद किया था, लेकिन आपका कार्यक्रम चल रहा था खेती के बारे में, तो मैंने सोचा चलो बाद में आपको गाना दे दूँ। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण।
0: जी जी जी,
1: तो वही गाना है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सभी हमारे जो गोरी लाल है, हमारा बुरा राम जी को भी हमारा राम राम है, सभी मित्रों को भी राम राम है। नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: बारिश की तो शुरुआत बहुत जोरों से
0: अच्छी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल।
1: और हिंदी हमारे प्रति सर काम है, लेकिन जो सूरत है वहाँ तो समझो दरिया ही बन गया सूरत पूरा। अभी पूरा सूरत दरिया में ही है, पानी में ही। तो क्या करे, बहुत जहाँ जरूरत वहाँ नहीं आती है, नहीं जरूरत वहाँ दे दिक्कत है, भगवान बस कोई दे दिक्कत करते है, यहाँ जरूरत है तो यहाँ आता नहीं, बारिश क्या करे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलो आएंगे, क्या करें, अपने हमें तो है नहीं, परमात्मा का सब कुदरत ही है।
0: जी जी,
1: नमस्ते सर। नमस्ते, ओम शांति।
0: नमस्ते, ओम शांति। श्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है आपने बता दिया। और आइए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे खास विशेष हमारे फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक के बारे में बातें कर रहा था। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं विशेष बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जिनका आज विशेष जन्मदिन है। जी हाँ साथियों, बाल गंगाधर तिलक एक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी की नींव रखने में सहायता की और उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की 1914 में की और इसके अध्यक्ष भी रहे, तथा 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसमें आज़ादी के लिए संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रावधान बनाया गया था। तो ये थी कुछ खास बातें बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। तो लीजिए ये प्रभु प्रेम का गाना, आपके नाम।

0: सर्विसेज।
1: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हमने बातें की, और जैसे कि सार्वजनिक सेवा की उनकी विशेषता रही है, तिलक जी ने स्कूल के बाहर से स्वयं को मुक्त करने के बाद अपना अधिकांश समय सार्वजनिक सेवा में लगाने का निश्चय किया। अब उन्हें थोड़ी फुर्सत मिली थी इस समय लड़कियों के विवाह के लिए सहमति की आयु बढ़ाने का विधायक वायसराय की परिषद के सामने लाया जा रहा था। तिलक पूरे उत्साह से इस विवाद में कूद पड़े, इसलिए नहीं कि वे समाज सुधार में सिद्धांतों के विरुद्ध थे, बल्कि इसलिए कि वे इस क्षेत्र में जोर जबरदस्ती करने के विरुद्ध थे। सहमति की आयु का विधायक चाहे इसके उद्देश्य कितना ही प्रासंगिक हो क्यों न हो, वास्तव में हिंदू समाज में सरकारी हस्तक्षेप में सुधार लाने का प्रयास था, इसलिए समाज सुधार के कुछ कट्टर समर्थक इसके विरुद्ध थे। इस विषय में तिलक के दृष्टिकोण से पूना का समाज दो भागों में कट्टरपंथी और सुधारवादी में बढ़ गया था, और दोनों के बीच की खाई नए मतभेदों और नए झगड़ों के कारण बढ़ती गई। हेलो जी, नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए, आगे बोलिए कुछ।
2: बुराराम बोल रहा हूँ।
1: बुराराम जी, स्वागत है आपका।
2: जब आपको राम राम और सब मधुबन भाइयों को राम राम, और सुरेश भाई जोड़ाना वाले मेरे से नाराज हो गए, मेरे ख्याल से मेरे घर से बाजू होके दर्शन करे, दर्शन नहीं आए बोल देना।
1: गाई गाई गाई में हो रहेंगे। जी जी जी,
2: और मेरा एक फरमाइश सुनाएंगे क्या?
1: जी जी जी,
2: दुनिया
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन सा गीत आप बोल रहे थे? हेलो जी, बुराराम जी, अब क्या फोन कट गया क्या? नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और जिस तरह से समाज सेवा में तिलक जी कूद पड़े, उसी समय इन विचारों के एक बुजुर्ग व्यक्ति विष्णु कृष्ण चिपलूनकर उनसे मिले, जो विष्णु शास्त्री के नाम से जाने जाते। उन्हीं दिनों सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था वो, और क्योंकि अपने अफसरों से उनकी नहीं बनती थी, इस निश्चय के साथ पूना आए थे कि वो प्राइवेट हाई स्कूल चलाएंगे, और वे मराठी के सर्वोच्च गद्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। तिलक और अगरकर ने उनकी योजना को जानने के बाद उनके साथ विचार विमर्श किया, और बाद में इन तीनों के साथ एक और व्यक्ति शामिल हो गया, एम बी नम जोशी, जो साधारण बुद्धि और ऊर्जा से परिपूर्ण थे। चिपलूनकर और तिलक ने नाम जोशी की सहायता से 2 जनवरी 1880 को पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल शुरू किया। वीएस अट्टे ने जून में और अगरकर वर्ष के अंत में एमए करने के बाद उस स्कूल में शामिल हो गए। इन पांच आदमियों ने अपनी गतिविधियों को स्कूल तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि फिर धीरे धीरे समाज सेवा भी उसके माध्यम से उन्होंने शुरू किया। और तिलक ने प्लेग की बीमारी के दौरान देशवासियों की जो सेवा की, उसे भी नहीं बुलाया जा सकता। जैसे ही पूना में प्लेग के लक्षण प्रकट हुए, हिंदू प्लेग हॉस्पिटल शुरू किया, और कई दिनों तक इसके लिए धन जुटाने का कार्य भी किया। जहां पूना के अधिकांश नेता नगर छोड़कर भाग गए थे, तिलक वहीं रहे, लोगों को दिलासा भरोसा दिलाया। वे खोजी दलों के साथ स्वयं सेवक के रूप में काम करते हुए हॉस्पिटल के प्रबंधन में अपनी भूमिका निभाते रहे, और निशुल्क रसोई की व्यवस्था भी की, और जनता के साथ सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में श्री रेड तथा महामहिम गवर्नर को बताते रहे। अपने समाचार पत्रों में उन्होंने प्लेग की समाप्ति के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को समर्थन दिया, और उसके ऊपर काफ़ी काम किया। हेलो जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सुभाष जी,
3: सभी दोस्त और जो गेस्ट आए थे, तो जिन्होंने खेती के बारे में जानकारी दिया, सुबह से चार से प्रोग्राम हमेशा की तरह सुनता हूँ, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, हम आ गए हम और मिट जाएगा हम और मिट जाएगा। फिर नवरात्रि के बारे में, राष्ट्रीय प्रसारण दिन के बारे में सुरेश भाई जी और हमारे सभी दोस्त
1: गुडीलाल जी, गुडाराम जी
3: के बातें कही, फरमाइश कही, बहुत ही प्रोग्राम अच्छा लगा। और अभी भी बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जानकारी दे रहे, पहले भी दिया था, अभी भी दे रहे, दिन विशेष की भी जानकारी बहुत अच्छे लगे। तो सभी को नमस्कार और ओम शांति भाई जी, ओम शांति,
1: ओम शांति, ओम शांति। सुभाष जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। बुराराम जी, ये गीत आपके

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और चलिए, बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे और इसके साथ ही बाल गंगाधर तिलक की जीवन कहानी से आपको थोड़ी बातें शेयर की हैं। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूं और बात करते हैं हम लोग आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आज है। जी हाँ, चलिए, हमारे एक मित्र जो है बड़े प्यार से याद कर रहे हैं आप सभी को और याद भी भेजा है उन्होंने, और हमारे मदन जी भी याद कर रहे होंगे। अभी वो देखते हैं कि कैसे उनको जुगाड़ बनता है, वैसे फ़ोन करते हैं फिर कहते हैं लेट हो गया, क्योंकि उनको काम पे भी जाना होता है, काम करते हुए बात भी करना होता है। और आइए, जुलाई 23 की बातें अगर मैं कहूँ तो आज जिन जिन का जन्मदिन है, ताराशंकर बंदोपाध्याय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बंगाल साहित्यकार 1898 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद 1906 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ। उग्र राष्ट्रवादी दार्शनिक गणितज्ञ बाल गंगाधर तिलक, इनका भी जन्मदिन आज है। 1856 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। मदर टेरेसा की संस्था मिशन ऑफ चैरिटी की मुख्य निर्मला जोशी 1934 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और पंजाबी भाषा के एक विख्यात कवि थे शिव कुमार बटलावाली 1936 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय रंगमंच के कलाकार, फिल्म अभिनेता और मनोचिकित्सक मोहन अगस्से 1947 में इनका जन्म हुआ। इसके साथ ही प्रतिभाशाली भारतीय वायलिन वादक और संगीतकार एस बालसुब्रमण्यम, इनका भी जन्मदिन आज है 1947 में। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन आज है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे जी। नमस्ते, स्वागत है आपका। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार कंचन भाई, बहुत बहुत स्वागत है, काफी दिनों के बाद याद किया आपने, बताइए।
1: हाँ जी सर, क्या है कि भाई बारिश नहीं आ रही थी तो थोड़ा किचन है नहीं, कंफ्यूज हो रहे थे।
0: जी जी जी जी।
1: तो आज रात को 12 बजे से बारिश आई।
0: हाँ,
1: बर्फ
0: के साथ। जी जी जी जी।
1: और अच्छी बारिश आई, किसानों में भी बहुत खुशी का माहौल है। आज छठ गुरुवार का दिन, तो मैंने सोचा कि चलो सबसे बात किया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अभी एक सप्ताह बाकी है करीबन मेरे सबसे।
0: जी जी,
1: गुरु पूर्णिमा आएगी। तो हम गुरु का पूजन करेंगे।
0: जी जी जी।
1: गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु भगवान। तो ये भजन आपके पास आए तो खास कर जरूर सुनाना। और गुरुवार के दिन जो गुरु के दिन तभी तो गुरु करना।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कंचन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा गीत याद किया और सद्गुरुवार के दिन सबको याद करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं शाम 4 बजे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

पिने अर नरत करे सिंगार। हर नात न्यू कहते हैं भाई प्रेम करूं संसार। हाँ भाई,

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेश सा। अब आपको बहुत ही

जो हमेशा कहता है मैं ठीक हूँ। तो इस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे और आज बनाएंगे मठिया, गुजराती डिश। सीखने के लिए तैयार रहिएगा और प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: रुक रुक रुक। तो सुनाई नहीं देती? तो ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारी के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत।

थे आज का सुंदर सा विचार, ध्यान से सुनेंगे। पहले आपको सुना चुकी हूँ, फिर भी हमारे ऊपर विपत्तियाँ आती है तो हम अक्सर अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, परंतु वो भी मजबूर होकर के सहायता नहीं कर सकते, तो लास्ट में हम किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार बहुत ही सुंदर है, एक दृष्टांत के साथ समझाना चाहूंगी कि बहुत समय पहले त्रिकुट नामक पर्वत के पास एक गज माने हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। वहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर था, मीठी नदियाँ, बगीचे, रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से वह स्थान अति सुंदर लगता था। एक दिन गज अपने परिवार के साथ सरोवर में नहाने के लिए निकला। सरोवर में बहुत आनंद से और स्वच्छंदता पूर्वक तैर रहा गज माने हाथी आने वाले संकट को पहचान न सका। उसी सरोवर में एक ग्राह माने मगरमच्छ भी रहता था। ग्राह ने गज के पैर को पकड़ करके अंदर खींचना शुरू किया और दोनों ने अपनी अपनी शारीरिक शक्ति को आजमाना शुरू किया। गज अच्छे ढील डोल वाला विशाल काय शक्तिशाली प्राणी था, परंतु उसकी शक्ति सफल नहीं हुई। ग्राह खींचता ही गया, गज जल में धंसता चला गया। गज के प्राण संकट में पड़ गए, पुकारने लगा अपने रिश्तेदारों को। किनारे पर खड़े गज के साथी परिवार वाले सदस्य देखते ही रह गए, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर सके, गज की कोई मदद नहीं कर पाए। आखिर गज ने सोचा कि संकट से बचाने वाला एक ही ईश्वर है। ऐसा निश्चय करके, सभी को भूल करके, एक ही परमात्मा को अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगा। दयालु ईश्वर ने तुरंत प्रत्यक्ष होकर के सुदर्शन चक्र से ग्राह का संहार कर दिया और गज को बचा लिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कि हमारे ऊपर विपत्तियां आती है तो हम अक्सर क्या करते, पहले अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं। जब रिश्तेदार मदद नहीं करते ना, तो फिर भगवान याद आते हैं। लेकिन हमें कौन याद आने चाहिए? अगर कोई विपत्तियां आती है तो ईश्वर को याद करे, न कि अपने रिश्तेदारों को। रिश्तेदार क्या कर पाएंगे? भगवान जो कर सकेगा वो रिश्तेदार नहीं कर पाएंगे। तो यह है आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बड़े सुंदर नुस्खे, बहुत ही अच्छे सुंदर नुस्खे दूंगी कि भाई चाय की पत्ती को उबाल करके क्या करेंगे। तो चाय की पत्ती को उबाल करके उस पानी से बाल धोइए, इससे बाल कम झड़ेंगे। ठीक है, तो चाय की पत्ती उबाल दीजिए पानी में डाल करके, फिर उस पानी को छान दीजिए, उससे सिर धोइएगा, इससे बाल कम गिरेंगे। बहुत बाल गिरते हो तो क्या करें, कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा ना, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। अब आपको अगला नुस्खा दे रही हूँ, बैंगन के भरते में शहद मिला करके खाइए, इससे अनिद्रा रोग का नाश होता है। ऐसा शाम को भोजन में भरता बनाते समय करें, सुबह नहीं। ठीक है, बैंगन के भरते में शहद मिलाकर खाइए, इससे अनिद्रा रोग का नाश होगा, परंतु शाम के समय। अगर शाम को आप भरता बना रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। और भी सुनेंगे आप अगला नुस्खा कि संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिला दीजिए और दिन में 3 बार 1-1 कप पीजिए। गर्भवती माताओं के लिए है ये, तो गर्भवती माताओं को जब ये दस्त की शिकायत होती ना तो दूर हो जाएगी। संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिला करके दिन में 3 बार 1-1 कप पीना है गर्भवती माताओं को, इससे उनके दस्त की शिकायत होगी, वो ठीक हो जाएगी। और भी सुनेंगे आपके गले में खराश होने पर सुबह ही सुबह सौंफ चबाइए, इससे बंद गला खुल जाएगा। गले में खराश हो रही हो तो सुबह ही सुबह आप सौंफ चबाइए, इससे बंद गला खुल जाएगा। और लास्ट नुस्खा है कि सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरिया निकाल करके कुछ दिन खाइए, इससे घुटनों का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरिया निकाल करके कुछ दिनों तक लगातार आपको खाना है, इससे घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये सारे ही नुस्खे लाजवाब है, आप चाहो तो आजमा सकते हो, और जो भी ये समस्या कही है वो आप ठीक कर सकते हो। और हाँ, ज़्यादा है तो देखिए डॉक्टर को भी बताइए, कम है तो हम खुद ही घर पर करने की कोशिश करते हैं, पर ज़्यादा है तो लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, और अब आज का प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझाए। कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है, अब आप जवाब देंगे, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस इतना सही कहूंगी कि भाई बेटी को समझाते हैं लेकिन वो समझ जाते हैं, अब वो कौन है जो समझ जाते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा, हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अभी सुनेंगे गीत, उसके बाद में पुनः लौट करके आ रही हूँ खुशनुमा जीवन में अच्छे विषय पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझ जाए। आज का ये प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। तो आज का प्रश्न बड़ा सुंदर है, आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, फिर भी आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और आज का विषय है कि इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी कहते हैं कैसे हो आप, तो वो बोलेंगे हम ठीक है। ये आज का विषय है। क्या कहेंगे आप इस विषय पर, आप अपने राय जरूर व्यक्त करिएगा और प्रश्न का जवाब भी जरूर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर विषय है। देखते हैं आप चर्चा में कौन कौन भाग लेते हैं। नंबर हमारे हैं 94-14-15-14-15। प्रश्न भी बड़ा सुंदर है, विषय भी बड़ा सुंदर है कि इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जिसका अपना सब कुछ लुट गया हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, फिर भी उनको कहते हैं कि कैसे हैं जी आप, मिलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं ना, सबसे पहले नमस्कार या राम राम करते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, कैसे हो आप, तो क्या कहते हैं। अगर उदासीन व्यक्ति होगा तो मुंह लटका करके बोलेगा ठीक हूँ। खुश मिजाज व्यक्ति होगा तो क्या कहेगा, हाँ जी बिल्कुल, हम तो ओके है, बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए आप कैसे हो। और ज़्यादा ही उमंग उत्साह वाला होगा तो क्या कहेगा, अरे ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, हम तो एकदम ओके है, आप सुनाइए आप कैसे हो। तो बोलने का लहजा अलग अलग होता है। अरे मैं ही बोले जा रही हूँ इतने सुंदर और सरल विषय पर, मैं तो आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ इस विषय पर कि इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो मैं तो आपके साथ बात करना चाहती हूँ। शायद इस विषय पर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्या? ठीक है, मुश्किल लग रहा है तो हम ही चर्चा कर लेते हैं भाई, हम तो बैठे किस लिए, इसीलिए है। पर अवसर हम आपको देते हैं कि आप भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि सरल विषय है। तो बहुत सारे देखे, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अपनों से ही रूठे रहते हैं, परायों से बड़े खुश रहते हैं। वो कहते हैं कि अपने ही काम आते हैं और अपने ही काम बिगाड़ते हैं, दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार,
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: बस बिल्कुल अच्छे हैं और काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे।
1: जी जी जी,
2: काम भी चलता है, बात भी चलती, सुनते भी है, क्योंकि हर साथ में काम होता है।
1: जी जी बिल्कुल,
2: सुविधा है रेडियो की, हम आराम से सब कुछ कर सकते हैं रेडियो सुन के।
1: जी जी जी, क्या बात है।
2: तो बहुत अच्छा, दोनों ही आपने प्रश्न भी अच्छा पूछा, विषय भी अच्छा है कि आज आप बता रहे, बिल्कुल सही है कि आज चाहे लोग के पास कुछ ना हो, फिर भी कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। कई लोग हमने देखा है, कई लोग को भी हमने सुना है कि चाहे कितने प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी परेशानी हो, पैसा ना हो, पैसे की दिक्कत हो, फिर भी कहते हैं कि हम अच्छे हैं।
1: जी
2: वही तो सही है दीदी, क्योंकि कई बार क्या होता है, पैसा वाला होता है, पैसा बहुत ज्यादा होता है, सब अच्छा होता है, फिर भी बोलता है कि ठीक है।
1: जी
2: तो
1: जी जी,
2: ठीक का मतलब तो ठीक ही होता है, लेकिन कहते हैं कि भाई हम बहुत अच्छे हैं।
1: जी
2: तो वही तो एक कहते हैं कि हमारे हम चाहे 600 रोटी खा के बाहर निकले, लेकिन जब हमें ऐसा किया कि चलो हम सब कुछ 32,000 का भोजन खा के बाहर निकले हैं।
1: जी जी,
2: तो ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हम ऐसे कहेंगे चलो भाई हमको ठीक नहीं है, ऐसा नहीं तो कोई कुछ देता तो नहीं है, कुछ कोई देने वाला नहीं है।
1: जी,
2: लेकिन हम हमारे सोच से दूसरे अच्छे हैं तो अच्छे ही

0: क्योंकि आज कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है
1: जी।
0: तो हम भी चाहे कुछ भी हो, देरी आज तक चाहे कितनी दिक्कत आई हो, लेकिन हमने क्या है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे हैं।
1: क्या बात है।
0: क्योंकि अब तो क्या दीदी, पहले तो हमारी परिस्थिति बहुत नाजुक थी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, हम बहुत अच्छे हैं।
1: जी जी जी।
0: तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं, आज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आगे।
1: क्या बात है। वो कहते हैं हम पॉजिटिव रहते हैं ना, तो पॉजिटिव एनर्जी आती ही है, मिलती ही है और हम अच्छे हो जाते हैं।
0: फिर नहीं ऐसे मोह लटका के बैठे रहेंगे और उसको कहेंगे नहीं हमको अच्छा नहीं है यार, अच्छा तो कोई देने वाला तो नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, उल्टा हम ऐसे कहेंगे तो सामने वाला भी उदास हो जाएगा।
0: इससे जो आपके ऊपर हट्टी उड़ाएंगे और आपका फायदा उठाएंगे, ऐसे करके नाम से बहुत बहुत अच्छे हैं। आज हमारे को कितने लोग पूछते हैं, ठीक है, हमारा एक ही जवाब होता है, बहुत अच्छे हैं
1: जी,
0: बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे ही रहेंगे जब तक हमें
1: जी जी जी। बहुत सुंदर। अच्छा, और आज के प्रश्न का जवाब आप ऑफ एयर देंगे?
0: हाँ, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तो है कि थोड़ा सा सुनने में समझने में दिक्कत है, तो अब थोड़ा सा जरूर बात ऐसा थी कि आपका कहना क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं।
1: बिल्कुल, हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही अच्छा, सरल प्रश्न है, अगर नहीं आएगा तो हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, बाकी बहुत ही सरल है।
0: लेकिन थोड़ा तो सही है, लेकिन थोड़ा सा
1: जरूर जरूर
0: हो जाए तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं।
1: हाँ जी हाँ जी, जरूर हम थोड़ा सा हिंट देंगे। ठीक है जी जी, नमस्कार। तो देखिए प्रश्न बड़ा सुंदर है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। बहुत ही सरल और सुंदर प्रश्न है, थोड़ा सा सोचिए, आप दिमाग जरूर लड़ाइएगा। हेलो,
2: राम राम दीदी।
1: राम राम जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: हम हनुमान जी बोल रहे हैं।
1: हाँ जी हनुमान जी, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
2: बढ़िया है दीदी, एकदम बढ़िया।
1: क्या बात है, हमेशा अच्छे ही रहिए, हम तो यही चाहते हैं। और आज का विषय आपने सुना?
2: विषय वो हाथी वाला, गज और ग्रह वाला
1: नहीं, वो तो हमारा विचार था, जो विचार को एक्सप्लेन किया। आज का विषय है कि इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। क्या कहेंगे आप?
2: जी जी, वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में एक ये चलन सा हो गया है, जो मर्जी जैसे मर्जी बंदा हो उसके ऊपर कितनी भी विपत्ति हो, पर जब एक दूसरे से हाल चाल पूछते तो हर कोई सही ही बताता है, पर वो वास्तव में सही जब होगा तो सही बताते समय भगवान पे ध्यान रखे, उस पर विश्वास करे, और वैसे हर कोई सही ही बताता है। और जब हम सामने वाले को अपना अगर दुख भी सुना देंगे ना तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे अच्छा हम अगर दुख सुनाएं तो भगवान को सुनाएं और लोगों से खुद मिजाज के बीच में रहें, अपनी उसकी प्रॉब्लम को सलूशन ढूंढने में लगे रहें, और क्या।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा है। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
2: हाँ, उसी लिए तो मैंने फोन किया था।
1: हाँ जी, बता दीजिए।
2: ये जो पर्सन है, ये पर्सन इशारा कर रहा है हमें बहू को समझाने को।
1: अच्छा,
2: तो बेटी को कहेंगे ना तो बहू समझ जाएगी, और डायरेक्ट हम बहू को नहीं कह पाएंगे कुछ।
1: देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत, आप आशियाना सुनते रहिए, ठीक है, हम जवाब जरूर देंगे आपका। और हनुमान जी, आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन से गांव के रहने वाले हैं?
2: हम उत्तर प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से हैं, इधर नेपाल से सटा हुआ है जी।
1: अच्छा, बलरामपुर।
2: हाँ, और ये एप्लीकेशन के माध्यम से सुनते हैं, कई बार हमें दिक्कत भी होती है नेटवर्क से, एप्लीकेशन में टूट जाते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं टूट जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सारे दिन पकड़े ही रहता है
1: जी,
2: तो मौसम के हिसाब से होता है जी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, कभी कभी मौसम ऐसा होता है तो वो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है।
2: हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, कई बार तो सही रहता है मौसम, तो सही पकड़े रहता है कई बार, तो वैसे इस समय तो चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बीच में बहुत दिक्कत हुआ करता था
1: जी जी जी,
2: तो हम कई बार सुनते भी नहीं थे, क्या करें जब नहीं पकड़ते तो क्या करें
1: जी जी जी। चलिए, आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका, रेडियो से जुड़े आप इसके लिए, और जरूर जुड़ते रहिए, हम तो यही कहेंगे। हमारे जो नए नए श्रोता बंधु सुन रहे हैं, जो बात नहीं कर पाते हैं, वो भी जरूर एक बार तो जरूर बात करें, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन रेडियो मधुबन सुनते हैं। इसलिए देखिए, गुप्त मत रहिए,
3: गुप्त रहने से कोई पहचान नहीं पाएंगे। आप सामने आइएगा, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई देख रहे हैं, आपकी आवाज पहुंच रही है ना, तो अच्छा है, हमें भी अच्छा लगेगा कि कौन कौन रेडियो मधुबन सुनते हैं। और आज का प्रश्न और विषय दोनों ही अच्छा है। प्रश्न है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। तो जवाब जरूर दीजिएगा। नंबर हमारे है रेडियो मधुबन के 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट करके आ रही हूँ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब जरूर दीजिएगा। नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। और आज का विषय भी बड़ा सुंदर है कि कोई भी विकट परिस्थिति हमें घिरे हुए हो, चाहे सभी साथ छोड़ दे, लेकिन कोई पूछे कि कैसे हो आप, तो क्या कहेंगे हम? ठीक है, अब वो सभी के बस में नहीं है ऐसा कहना। हर कोई नहीं कह सकता विपरीत परिस्थितियों में कि हम ठीक है। कोई कोई तो क्या कहते हैं कि अरे अरे बात मत पूछो भाई, अभी हमारे बात करने का मूड नहीं है, हम कैसे, हम ही जानते हैं, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो। अब ये कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो वो इतने निराश, इतने हताश, इतने उदास हो जाते हैं कि वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं और अंदर अंदर घुटते जाते हैं। परिवार में अगर बच्चा कुछ कहता है तो उस पर भन्नाएंगे, ऐसे चिल्ला कर बात करेंगे। पत्नी कुछ कहती है तो उसको भी डांट देंगे। परिवार के अन्य सदस्य भी बात करना चाहते हैं तो उनको भी ऐसे खराब मूड से बात करेंगे, चिड़चिड़ेपन से बात करेंगे। तो इससे तो कोई समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है भाई। समस्या किसके जीवन में नहीं आती है, हर कोई। अगर मैं अभी पूछूं कि अच्छा किस किस के जीवन में समस्याएं आई, तो हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़ जाएंगे कि हाँ बहन जी हमारे जीवन में आई थी। सभी के जीवन में आती है ना, और समस्या आती है तो अच्छा है कि हमें उस समय पता चलता है कि कौन अपने कौन पर आए। दूसरी बात यह है कि हमें इस परिस्थिति में कैसे हम अपने आप को स्टेबल बना करके रख सकते हैं वो भी पता चलता है। फिर तीसरी बात यह है कि हम दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और चौथी बात यह कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि परिस्थितियां आती है ना तो अपने ही दामन छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो अपने ही साथ छोड़ेंगे, अपने भाई, अपने काका, चाचा, मामा, जो भी है कुटुंब के, वो साथ छोड़ेंगे कि अरे ये तो दिवालिया हो गया, ये तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अभी बात करेंगे तो पैसा मांगेगा या कुछ मदद मांगेगा। तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ते हैं, और अपने साथ छोड़ देते हैं तो फिर इंसान को ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। फिर कोई कोई व्यक्ति तो गलत काम भी कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। कोरोना काल में आपने सुना होगा, कोरोना इतना भयंकर रूप से पहला कोरोना आया था, तब बहुत समय तक रहा और बहुत समय तक ये बाज़ार बंद रहे, दुकानें सब बंद रही। उसके बाद व्यापारी बहुत जनों के व्यापार ठप हो गया, किसी के देना हो गया और बहुत कुछ हो गया। तो बहुत लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि उस समय उन लोगों ने सुसाइड कर ली। तो ये कोई समस्या का समाधान नहीं है कि हम अपने आप को ख़त्म कर देवे। अरे जिएंगे तो समस्याओं से लड़ेंगे, मरने के बाद क्या सुखी रह पाएंगे? मरने के बाद की बात अलग है, लेकिन कहते हैं ना कि जो हम करते हैं वैसा हमें भरना पड़ता है। मरने के बाद भी कहीं हम जाने वाले नहीं, फिर से जन्म लेकर इसी दुनिया में आने वाले हैं, तो फिर और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज समेत भुगतना पड़ेगा। अभी तो क्या है कि ठीक है, जो समस्या आई है उसका ही सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम उससे छूटने की कोशिश करेंगे तो समस्याएं ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा जटिल हो जाएगी। इसलिए जो भी समस्याएं आती है, लेकिन कोई भी पूछे, कोई भी मिले, कैसे हो आप, तो जी हम ठीक है, तो कोई भी आपसे बात करने की इच्छा करेगा और उदास होकर के ठीक हूँ, कैसा हूँ, आपको क्या लेना देना। बहुत जने ऐसे होते हैं जो ऐसे फटकारते हैं सामने कि हम कैसे भी हैं, आपको क्या लेना देना। अरे भाई लेना देना तो किसी को नहीं है, लेकिन जब परिस्थितियाँ आती हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हर कोई हमको टोंट से बात करता है, जबकि सामने वाला स्वाभाविक रीत से पूछता है कि कैसे हो भाई साहब या कैसे हो बहन जी। लेकिन परिस्थिति में घिरे रहने के बाद वो कहते हैं ना कि हमारी बुद्धि भी काम करना बंद हो जाती, ऐसा लगता है कि अरे इन्होंने टोंट पास किया कैसे हैं, क्योंकि हम दुखी हैं ना तो इनको भी मज़ा आ रहा है, जबकि उनको पता ही नहीं कि हम कैसे हैं या हमारे अंदर से दुखी है या नहीं है, तो हमें क्यों बताना, बिल्कुल अच्छे हैं। अगर आप हंस करके अच्छे मूड से बोलेंगे हाँ जी हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, तो सामने वाला अगर थोड़ा सा उदासीन होगा ना तो वो भी खुश हो जाएगा कि देखो जब भी इनसे बात करते हैं बड़े मुस्कुराहट के साथ आते हैं कि हाँ जी हम अच्छे हैं। और ऐसे लोगों के साथ लोग बात करना पसंद करते हैं, अपनी समस्याएं व्यक्त करते हैं कि देखो आज मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि पता है कि इतने एनर्जी के साथ कहा है कि मैं हाँ जी हम खुश हैं, तो एक दिन नहीं जब रोज इसी तरह कहते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि अपनी कुछ अंदर की बातें हैं जिनके साथ शेयर कर सकते हैं, ये हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ दुख सुख की बातें भी करते हैं और उसका समाधान भी मिलता है। भले हम अंदर से दुखी हैं वो हम जानते हैं और ईश्वर जानता है, लेकिन हमें अच्छी सलाह देनी है लोगों को, उनको ये नहीं जताना है कि हम अंदर से टूट चुके हैं या दुखी है। अरे भाई इधर उधर भटकने के बजाय हम एक ही लगन से कार्य करें, एकाग्रता से कार्य करें और एक ईश्वर के याद में कार्य करें कि हे भगवान जो भी हुआ है ये सब शायद पहले से ही लिखा हुआ था, हो गया, लेकिन मैं अच्छा करने का प्रयत्न करूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। हम ईश्वर को याद करें, देहधारियों को क्यों याद करें, क्यों हम अपने रिश्तेदारों से मदद मांगे। बहुत सही है कि देखिए रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि हम भी कभी उनके काम आए होते हैं तो अपेक्षाएं रहती है कि हमारे भी वो काम आए, लेकिन ये भूल जाइएगा कि हमने मदद की तो वो भी करेगा हमारी, ये बिल्कुल आप भूल जाइएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। भूल जाइएगा कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है, करने वाले होंगे वो सामने आकर के कहेंगे, कोई तकलीफ तो नहीं है, अगर तकलीफ हो तो ज़रूर बताना, हम तैयार हैं आपके लिए। करने वाले होंगे वो सामने कहेंगे, नहीं करने वाले आपसे 10 फुट दूर हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि ये। और सबसे पहले पता कैसे चलता है, किसको चलता है, जब समस्या आती है तो अपनों को ही पता चलता है कि अब इसके ऊपर ये विपत्तियां आई है, भाई खिसक लो साइड में हो जाओ, और फिर आपसे अच्छी तरह बात नहीं करेंगे। आप बोलेंगे बात करने जाएंगे तो कहेंगे अरे समय नहीं है अभी, वहाँ जाना है वहाँ जाना, ऐसे अपने आप को व्यस्त बताएंगे कि जैसे कि वो बहुत ही राजा भोज हो, बहुत ही व्यस्त रहने वाले हो, जबकि भले उनके पास समय ही समय है लेकिन वो आपको समय नहीं देंगे, ऐसा जताएंगे कि हमें बहुत सारा काम है, जानते हैं कि अगर उसको समय दिया तो वो कुछ मांग लेगा, इसलिए पहले से किनारा कर लेते हैं। और ये मैंने तो अच्छी तरह देखा है, बहुत जनों की कहानियां मैंने अपने आंखों से देखी है, वो सारे रिश्तेदारों की आज भी फ़ोन कॉल्स आते हैं तो कहते हैं कि बहन जी जब ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे मीठे मीठे बोलते हैं, अपने ही देवर जेट इतने मीठे मीठे बोलेंगे, और अरे भाई तुम ये कर लो वो कर लो, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा किनारा करते हैं कि बात करना भी बंद कर देते हैं। मतलब कैसे इस नेचर को बना सकते हैं कि आप घर के समय तो गधे को भी बाप बना लेते हो और फिर आप दूर हट जाते हो, जब आपका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो फिर आपके तकलीफ आई तो आप आ जाते हो और फिर आप दूर हट जाते हो, लेकिन कोई कोई लोग क्या है ऐसे मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे मतलब रहते हैं कि जैसे सामने वाला यही समझता है कि नहीं ये तो हमारे है, भले उनके साथ बार बार छल कपट करते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि फिर से आएंगे और इतने प्यार से चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे कि बंदा फंस ही जाएगा। अरे नहीं नहीं मेरा भाई है ना, अरे नहीं नहीं मेरा रिश्तेदार है, ऐसा नहीं हो सकता है। हेलो
3: हेलो गुड मॉर्निंग ओम शांति नमस्कार।
2: हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार, स्वागत आपका कंचन भाई, कैसे हो आप?
3: बस बहन जी सस्ता अनाज की दुकान में आज जो मिलता है तो चोखा तो लेने के लिए आए हैं।
2: जी जी जी बहुत अच्छी बात है।
3: जेब में है सुनता हूँ घड़ी मोबाइल।
2: जी जी
3: बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं आप, हम भी सुन रहे थे।
2: जी
3: तो हाँ जीवन में सही बात है बहन जी, जो हमने किसी का काम किया है तो वो भूलेगा नहीं, वो तो सही बात जरूर हमारा काम मदद में आएगा।
2: जी
3: हमने भी कई अनुभव किए हैं जीवन तो
2: जी।
3: हमें ये करना चाहिए। तो आज सवाल क्या,
2: आज का सवाल है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझ जाए।
3: बिल्कुल
2: जी
3: सही बात है, इसमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। और ये क्या है आज का
2: जी, आज का विषय अब पूरा हो गया, समय समाप्त हो गया।
3: और
2: आप बहुत लेट जुड़े।
3: हाँ जी थोड़ा बाइक पे था तो।
2: अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप प्रश्न हाँ। सोच करके जवाब जरूर दीजिएगा, फिर से आप फोन कॉल्स कर सकते हो, ठीक है
3: जी जी।
2: जी बहुत बहुत आभार आपका। और अब प्यारे श्रोता बंधु, आप समझ गए होंगे कि कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपना रोना किसी के सामने नहीं रोना है, अपने दुख को किसी के सामने जताना नहीं है, अंदर अंदर उसको समझ करके परिवार के साथ, अपने ही परिवार, बीवी बच्चे जो भी है उनके साथ मिल करके अपने बातचीत करके फिर कैसे आगे बढ़ा जाए और उस समस्या से कैसे सुलझा जाए। ठीक है, बाकी कोई भी आपको कहे कैसे हो तो एकदम ठीक है, हम बहुत ही एनर्जी के साथ कहिए ताकि सामने वाला भी फुल एनर्जी में आ जाए। ठीक है, इससे क्या है कि सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है, दुआएं मिलती है, यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आइए बढ़ते हैं एक गीत की ओर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो भाई हम जरूर नए व्यंजन सिखाएंगे, जिसमें आपको बता चुके हैं कि मठिया पे गुजराती रेसिपी आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी दीपावली के दिनों में आप देखेंगे कि घर घर में सुवारी, मठिया, चोराफली, घोघरा ये तो लगभग आपको खाने को मिलेंगे, घर घर में बनाए जाते हैं। और सुवारी, मठिया, चोराफली, ये घोघरा ऐसी चीज़ है कि आप 15-20 दिन तक रखो ना बना करके इकट्ठा, तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, आराम से फिर आप नाश्ता कर सकते हो भाई। क्योंकि त्योहार वार पर हम एक दूसरे के घर पर जाते हैं, क्योंकि नए दिन कहलाते हैं ना, दीपावली के बाद के सारे दिन कहते हैं भाई नया दिन है। अब नए दिन में सब एक दूसरे से मिलते हैं, तो स्वाभाविक है भोजन बनाने में लेट हो जाते हैं। तो इस तरह आप घर पर नाश्ता कर सकते हो, ये चीज़ें बना करके रखोगे तो आप आराम से खा सकोगे, ताकि इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी भोजन की। कभी कभी त्यौहार वार पर वो कहते हैं ना कि इन चीज़ों से काम चलाना पड़ता है, हमारे घर इतने मेहमान आते हैं कि उनको सभी को यही नाश्ता वगैरह रखना पड़ता है और हमको समय भी देना पड़ता है, तो भोजन हम नहीं बना पाते, नहीं खा पाते। ऐसी परिस्थितियां बहुत जनों के सामने क्रिएट होती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, इन चीज़ों से भी पेट भर जाता है और कभी कभार खाने में कोई तकलीफ भी नहीं। तो मठिया की सामग्री आप सभी को लिखवा रही हूँ कि आप ले लीजिए मटकी दाल। मटकी दाल लीजिएगा आप, अगर 1 किलो ले रहे हैं तो आप लीजिए 700 ग्राम मटकी दाल, ठीक है, और इसमें 300 ग्राम उड़द की दाल लीजिएगा। और आटा बनवा दीजिए इसका, ठीक है, पिसवा करके आटा तैयार कर लीजिए और छान दीजिए आटे को। और अब सामग्री में लेना है आपको एक तो नमक, खाने वाला मीठा सोडा, अजवाइन, तीखी वाली हरी मिर्च और हींग। हींग तो आपको विशेष लेनी ही है, ठीक है, और शक्कर, ठीक है, यही सामग्री है। फिर से दोहरा रही हूँ, मटका आटा मतलब मटकी दाल का आटा, उड़द की दाल का आटा, इसमें आप मोगर ले सकते हो, बस दोनों ही दाल को धुलाई करके सुखा दीजिए, सुखा करके आप पिसवा लीजिए, ठीक है, तो ये आटा। और फिर नमक, खाने का सोडा, मिर्ची, हरी मिर्च तीखी वाली, अगर आप सफ़ेद मिर्च लेना चाहो तो सफ़ेद मिर्च भी ले सकते हो स्वाद के अनुसार, ठीक है, और बाकी हरी मिर्च ले सकते हो। और फिर लेना है शक्कर, स्वाद के अनुसार शक्कर भी लेनी है, ठीक है। और फिर आप ले लीजिए अजवाइन थोड़ी सी और थोड़ी सी हींग। तो ये हो गई सामग्री। तेल तो लेना ही है तलने के लिए। बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि आप ऐसा करेंगे कि इसमें भी देखिए बनाने की अलग अलग विधि है, कोई किस तरह से बनाते हैं, कोई किस तरह से, कोई क्या करते हैं कच्चे मसाले ही इसमें डाल देते हैं, जैसे हरी मिर्च की अच्छी पेस्ट करके डाल देते हैं, हरी मिर्च नहीं डालते तो सफ़ेद मिर्च का पाउडर आता है वो मठे में डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, दोनों आटों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, उड़द की दाल का और मठ की दाल का आटा छान करके मिक्स करके इसमें सारे ही मसाले कच्चे ही डाल देते हैं, और फिर हींग भी ऐसे डाल करके फिर 9 सेके पानी से इसको बांध लेते हैं फिट। बांधने के बाद इसको अच्छी तरह कूटते पीटते हैं, शक्कर वगैरह सब डाल देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है कि एक तो कूटने की मेहनत है और एक इसको तुंबने की मेहनत है। तुंबने के बोले तो दोनों हाथों में जब ये अच्छी तरह कूट करके मिक्स कर दो आप, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइट चाहिए, ठीक है, आटा जो हम गूंद रहे हैं वो, फिर उसको मूसल से कूटो या फिर बहुत जने गुजरात में क्या करते हैं कि प्लास्टिक का कट्टा ले लेते हैं और प्लास्टिक के कट्टे के थोड़ा सा तेल लगा करके इस आटे को मतलब थोड़ा सा इसको पानी डाल करके गूंद दिया है, फिर उस कट्टे में रख करके कट्टे को फोल्ड करते हैं, फिर माताएं बहनें क्या करती, पैरों से उसको कुचलती है, क्योंकि आटे के डायरेक्ट पैर नहीं लग रहे हैं, वो प्लास्टिक के कट्टे के बीच में है और ऊपर कट्टा आ गया है, फिर ऊपर माताएं बहनें पैरों से कुचलती है, क्योंकि अब हाथ से तो इतनी मेहनत नहीं होती ना, हाथ ही दर्द करने लग जाते हैं। तो इस तरह किल्ला किल्ला दो दो किल्ला का आटा होता है, तो पैर से अच्छी तरह तुम करके मतलब अच्छी तरह उसको कुचल करके फिर उस कट्टे को ऊपर का भाग हटा करके उसको लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा तोड़ करके फिर दोनों हाथों से उसको खींचते हैं,
इससे क्या है, जितना तुंबते हैं ना उतने ही मठिया सॉफ्ट बनते हैं। तो बहुत इसको खींचना पड़ता है और खींचने के बाद फिर लास्ट में लुए बनाते हैं, लंबी सी बेल, जैसे पापड़ की बेल कैसे बनाते हैं ऐसी लंबी सी गोल गोल करके एक बेलन की तरह इसकी बेल बनाई जाती है। फिर अंगूठे में धागे को फंसा करके एक हाथ से उसके लुए काटे जाते हैं और फिर उसको बेल करके तले जाते हैं। पापड़ तो यह है कि बस सुखा करके हम भर देते हैं डिब्बे में, जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। मठिया क्या है, आजकल तो वैसे मठिया रेडीमेड भी मिलने लगे हैं, पहले नहीं मिलते थे, पहले हाथों से ही बनाते थे। तो बनाने के बाद बस सारा बेल करके इकट्ठा, पहले वाले सूखते जाते थे थोड़ा थोड़ा, तो उनको इकट्ठा करते जाते थे, दूसरे बेलते जाते थे, क्योंकि ज़्यादा सूख जाएगा तो भी मज़ा नहीं आएगा, वो फूलेंगे नहीं, सॉफ्ट नहीं बनेंगे, है ना, तो उसको टूट जाएंगे मतलब। तो ज़्यादा नहीं सुखाना है, इस तरह झेट बना करके फिर इनको तलना है। और आजकल तो ऐसा है कि मठिया आप बना करके जब इच्छा हो तब तल सकते हो, कि ताज़ा ताज़ा तल के खाना है तो इकट्ठी थप्पी करके एक अच्छे से एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए और जब मूड हो, जब इच्छा हो तब आप तलिए। ऐसा हो गया, पहले नहीं रखे जाते थे, पहले तो आटा रात को रात नहीं रखते थे, कोई भी प्रकार का गूंदा हुआ आटा रात नहीं रखते थे। अब आज समय के साथ परिवर्तन हुआ है तो रात भी रखते हैं और जब चाहे तब बनाते हैं, लुए बना करके भी रख देते हैं, दूसरे दिन भी बेलते, ऐसा भी होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ठीक है, ये मठिया की आपको विधि सिखाई है, ज़रूर आप बना करके खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये मठिया की दूसरी विधि भी आपको मैं सिखाने वाली हूँ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ठीक है, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकालकर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे मठिया, और मठिया की दूसरी विधि अब फिर से आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि मठिया अच्छी तरह बना लीजिए, सुवारी अच्छी तरह बना लीजिए, कुछ एक दो रेसिपी और भी सिखाएंगे दीपावली से पहले, वो अच्छी तरह बन जाए ना तो बस और क्या चाहिए, फिर तो आप दूसरी चीज़ें बना सको ना बना सको तो भी आपके गुणगान हो ही जाएंगे कि अरे वाह क्या आपने स्वादिष्ट बनाया। अभी तो देखिए समय के साथ इतना चेंज आ रहा है कि मठिया रेडीमेड लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि माताओं बहनों को इतना समय नहीं होता है, अक्सर कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, और दीपावली के दिन ऐसे होते हैं कमाने के दिन होते हैं, इस समय ज़्यादा बिजनेस चलता है और जॉब वाले भी छुट्टी नहीं देते हैं कि नहीं नहीं भाई अभी तो आपको आना ही है। दीपावली के एक आध दिन पहले भले छुट्टी देंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें एकदम तो नहीं बना सकते ना, दीपावली के दिन या एक दिन पहले तो नहीं बना सकते हैं भाई। धनतेरस के बाद तो ये सब कुछ बनाना बंद कर देते हैं, फिर तो त्यौहार की खुशियां मनाते हैं ना, दीपक जलाए जाते हैं और घर की सजावट में ही हम लग जाते हैं। पहले हाँ थोड़े से घर की साफ सफाई पहले शुरू होती है, कुछ खाना बनाना ये सब ग्यारस से शुरू हो जाता है एकादशी से, ताकि क्या है कि एकादशी से पहले भी बनाते हैं, जैसे कि सातम आठम से ये करवा चौथ चली गई ना, करवा चौथ के बाद माताएं बहनें सफाई अच्छी तरह पहले से कर लेती है, उसके बाद ये खाना खजाना ही बनाती है, क्योंकि जिनको शौक है वो तो अपने हाथ से ही बनाते हैं और हाथ से बनाते हैं उसमें समय लगता है, तो फिर वो शुरू कर देती है करवा चौथ के बाद, ताकि दीपावली पर कुछ करना ना पड़े, आराम से सब्जी रोटी बनाई और ये सारी मिठाइयाँ पहले से ही तैयार है, नमकीन आइटम पहले से तैयार है, तो सब्जी और पूरी बना देते हैं, बाकी ये मिठाइयाँ वगैरह रख देते हैं और रिलैक्स रहते हैं, ताकि हल्के रहते हैं कि कहीं जाना हो, घर पर कोई आवे, देव दर्शन मंदिर जाए तो भी सरल रहता है। तो इसलिए मैं आपको अब मठिया सिखा रही हूँ, ताकि आप बना करके आराम से रख दीजिए, 20-25 दिन कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। महीने भर के बाद थोड़ा सा तेल चढ़ना शुरू हो जाता है, बाकी कच्चा पक्का महीना आप निकाल सकते हो ऐसी चीज़ें बनाकर रखने से, ठीक है, हाथ से बनाते हैं तो क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि मठिया बना करके रख दो, जब चाहो तब तल सकते हो, तलने में कोई समय नहीं लगता, चीज़ बनी हुई तैयार है तो तलने में समय नहीं लगता, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी विधि बता रही हूँ, आप क्या करेंगे, देखिए भोजन क्या करते हैं, नमक को

सेकते हैं और नमक को सेक करके दूसरे मसाले कच्चे डालते हैं और फिर सिका हुआ नमक डालते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी विधि बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा पानी लीजिए, ठीक है। हरी मिर्ची की पेस्ट भी आप तैयार कर लीजिए और उस पानी में आप शक्कर, नमक, पापड़ खारा, हरी मिर्च ये डाल करके थोड़ा सा गर्म करिए, ठीक है। अजवाइन भी इसमें डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, हींग मत डालना, ठीक है। अजवाइन भी इसमें डाल दो और इसको अच्छी तरह गर्म कर दो। गर्म करने के बाद इस पानी को छान दो, ठीक है। छानने के बाद थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, हाँ आप इसमें थोड़ा सा घी डाल दो, गरम गरम में थोड़ा सा घी डाल दो, एक किलो है तो एक छोटा चम्मच घी डाल दो, ठीक है। और जब ये पानी गर्म हो जाए तो इसको छान दो। छान करके जब ये ठंडा हो जाए तो नवसेका रहे तो भी चलेगा, फिर आप मट्ठिया के लोट को इसी तरह बांध दो, ठीक है। पानी आवश्यकता के अनुसार ही लेना है, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है क्योंकि भाई उसमें सारे मसाले पड़े हुए हैं। ज़्यादा पानी डाल दिया तो मठिया का टेस्ट बिगड़ गया और वो पानी आपका वेस्ट चला गया, ऐसा नहीं करना है। ऊपर से आप पानी ऐड कर सकते हो लेकिन मसाला वाला पानी ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे आप, वो तो काम नहीं आएगा ना, फिर मठिया का टेस्ट बिगड़ेगा। इसलिए आप आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा ही पानी लो, ज़रूरत पड़े तो ऊपर नवसे का पानी करके आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इस पानी को छान करके इससे आप बांध दीजिए, तिखास मिठास जैसा आप पसंद करें वैसा डालिएगा और अच्छी तरह इसको, वही प्रोसेस है फिर उसके बाद कि पानी से इसको अच्छी तरह मिक्स कर दो। सारे आटे को सूखा नहीं रहना चाहिए, फिट भी होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, अगर आप प्लास्टिक के कट्टे में रख करके पैरों से कुचलना नहीं चाहते हैं तो फिर आप लोखन वाला हमामदस्ता का मूसला लीजिए, ठीक है। और पत्थर होना चाहिए, टाइल्स पर मत आप पीटिएगा नहीं तो टाइल्स टूट जाती हैं। मजबूत पत्थर हो वहाँ पर आप एकदम तेल लगा करके, मतलब पहले तो उसको पोछा लगाइए अच्छी तरह, फिर वहाँ पर पोछा लगाने के बाद सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लीजिए, फिर तेल लगा दीजिए और फिर मठिया के लोट को वहाँ डाल करके अच्छी तरह आप उसको कूटिए, ठीक है। जितना हो सके आप में दम है उतना आप कूटिए और कूट पीट करके ऐसा उसको बना देना है कि एकदम वो खींचो ना तो वो टूटे नहीं, एकदम खींचा जाए रबड़ की तरह खींच जाए, ऐसा सॉफ्ट आपको बना देना है। इतनी देर आपको इसमें क्या है, मेहनत ही कूटने पीटने की है भाई। मठिया ऐसे ही नहीं बनता है, सुवारी मठिया चोराफली ऐसे ही नहीं बनते, इसमें बहुत मेहनत लगती है। फिर हाँ, तलने में कोई मेहनत नहीं है, तो बस इस तरह आपको अच्छी तरह कूटने में तुमने में मेहनत लगती है। तो कूट लिया आपने अच्छी तरह, फिर उसके बाद छोटे छोटे लोए बना करके उसको अच्छी तरह तुंबिए, जितना हो सके आप खींचिए, फिर लोए को मिक्स करिए, फिर खींचिए, फिर लोए को मिक्स करिए। लास्ट में जब आपको लगे कि बहुत अच्छी लोच आ रही है, आप खींचने से भी आटा टूट नहीं रहा है, वो खींचा जा रहा है रबड़ की तरह, वो खींचा जा रहा है, तो फिर आप उसको अच्छी तरह गोल गोल करके फिर इसका बेलन की तरह वही बेल बना दीजिए और वही धागे से अंगूठे में धागे को पलटिए, फिर एक हाथ में उस धागे को पकड़ करके एक हाथ में उस बेल को लीजिए और ऐसे जो भी साइज आप पसंद करते हो गोल गोल काट लीजिए। काटने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा आपको रखना है, ठीक है। थोड़े से आटे में तेल डालना है, ठीक है। और तेल डाल करके फिर ये जो लुए तैयार हो गए हैं ना, इनको उस आटे वाले तेल वाले आटे में इनको पलटना है। जैसे हम चपाती बनाते हैं तो बीच बीच में आटा लगाते जाते हैं ना, इसमें बीच बीच में आटा नहीं लगाना है, तेल आटा मिक्स करके इसमें अच्छी तरह इन सारे लुए को आपको ऐसे तरह हिलाना है कि सभी के वो तेल वाला आटा लग जाए। फिर आपको क्या, बनाते समय कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बेलते समय। तो ये लुए आप रख दीजिए और जब चाहो तब आप बेलिए, जो साइज आप पसंद करना चाहते हो उस साइज के ही लुए काटिए ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और उसके बाद फिर आप बेल करके फिर आप तलिए, तलने का भी बड़ा ध्यान रखना है, एकदम लाल नहीं होना चाहिए। आप एक बार तेल को गर्म कर दीजिए, फिर उसको मध्यम आँच पर कर दीजिए, ज़रूरत पड़े तो बीच में स्लो कर दीजिए, फिर ज़रूरत पड़े तो गैस को तेज कर दीजिए, तलने की भी कला होती है, ठीक है। और फिर आप डालिए और चिमटे से ही निकालना है, ठीक है। हींग आपको बताई ना कि हींग हमको गर्म पानी में नहीं डालना है, फिर वो लोट बांधते समय ही उसमें हींग का पाउडर डाल देना है, हींग से अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। अजवाइन तो आपने डाल ही दिया है, तो फिर इस तरह तलिए, हल्का हल्का सा रेड होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे आप तलेंगे ना तो उसके वो फूलेंगे, एक वो क्या कहते हैं, बूंदी की तरह फूलेंगे,
फूले हुए मट्ठे ही अच्छे लगते हैं, बैठे हुए तो फिर पापड़ हो जाएंगे, पापड़ की तरह हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। फूलने चाहिए बीच बीच में से, ठीक है, टिपके टिपके फूली हुई होनी चाहिए। तो सही मायने में प्रॉपर मठिया उसे ही कहते हैं। फिर अब आप तल करके डिब्बा भर दो और उसके बाद जब चाहो तब खा सकते हो। तो चलिए, जब चाहे तब क्यों, अभी ही भोग लगा देते हैं। तो लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप सुवारी रखिए, मठिया रखिए, सब्जी चपाती जो भी बनाई है रखिए, और तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए। ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा मठिया का, साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं, बहुत ही सुंदर आपको विचार दिया है, जरूर उस पर गौर करिएगा और उसके भी बड़े अच्छे हैं, जरूर आप आजमा सकते हो। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत अच्छी हुई है कि कोई भी हमें कहे कैसे हो तो बड़े खुशी से एनर्जी के साथ बोलना है, हम ठीक है, हम अच्छे हैं, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बड़ा सुंदर था, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझ जाए। तो कौन समझ जाए भाई? हमारे भाई जो हनुमान जी है उत्तर प्रदेश बलरामपुर से, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि भाई आजकल क्या है, बहुओं को डायरेक्ट नहीं कह सकते हो आप, बेटी को सुनाएंगे तो बहुत समझ जाएगी। पहले के समय में लोग क्या करते थे कि कोई भी बात होती, पहले क्या है कि जल्दी शादियां हो जाती थी, बहुएं भी बेचारी कम उम्र की आती थी तो वो समझ नहीं पाती थी, तो माँ अक्सर माता पिता घर में तो पहले संयुक्त परिवार होते थे, तो माताएं ऐसे मिल करके अपनी बेटियों को समझाते थे, देखो बेटा तुम ससुराल में जाओ तो ऐसे रहना, ऐसे करना, वैसे करना। अब बहू भी सुन रही है सब, तो फिर बहू भी फॉलो करती है कि अरे मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे चलना है। तो और आज का समय भी ऐसा है, पहले तो फिर भी बहुओं को आप दो बात सुना देते थे, लेकिन आज सुना के देखो, दो सुनाओगे तो दस सुनने को नहीं मिले तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। सभी के लिए नहीं कह रही हूँ लेकिन अक्सर, ठीक है। तो आज भी माताएं बहनें यही करती है कि अगर घर में बहू भी है बेटी भी है, बहू कहना नहीं मानती या फिर कहना मानती है लेकिन डायरेक्ट तो उनको शिक्षा नहीं दे सकते ना, तो बेटियों को ही समझाती है, कुछ भी बात होती है तो बेटियों को ही डांटती है ताकि बहू सुने और वो भी समझे। तो हनुमान जी ने सबसे पहले जवाब दिया, उसके बाद तो खैर सभी ने दिया है, सुरेश भाई चोटाना से और कंचन भाई मंडाली से, आप सभी का जवाब सही है। सुरेश भाई ने कहा है कि बेटी को समझाएंगे तो बेटा समझ जाएगा, मतलब सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। तो देखो बेटा और बेटी तो माता पिता का अधिकार है, वो बच्चों को डायरेक्ट ही डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन बहू को डायरेक्ट नहीं कह सकते, एक मर्यादा रहती है और कहीं बहू को बुरा ना लग जाए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बहू को कोई डायरेक्ट नहीं कहते, मतलब कह सकते हैं। तो सबसे पहले तालियां बजेगी हनुमान जी के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया सबसे पहले, और उसके बाद सुरेश भाई चौटाना से, कंचन भाई मंडाली से, आपने भी सही जवाब दिया, इसके लिए तालियां। और बाकी सभी ने कोशिश अच्छी की, सुरेश भाई ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। और अब आज का सुविचार आपको सुना रही हूँ कि फूल है जीवन तो सुगंध है दोस्ती, तन है मंदिर तो आत्मा है दोस्ती। अब मैं आपको एक प्यारा सा हनुमान जी पर भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। ये भजन इस तरह का है कि जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा जब बाण लगता है और वो अचेत हो जाते हैं तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। अब जाते हैं लेकिन आने में विलम्ब होता है तो इधर सभी घबरा जाते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर भजन है, सुनेंगे।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है जागृति इस कार्यक्रम में। जागृति ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए डेडिकेट किया हुआ कार्यक्रम है और हम अभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और पिछले कड़ी में हमने मानसिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन विषयों के ऊपर हमने चर्चा की है और हमें मदद किया है इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे विशेषज्ञ हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आप दोनों साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, लेकिन आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है अनिद्रा के बारे में। यानी कि कई बार हम ये महिलाओं के अंदर देखते हैं कि दिन भर की मेहनत करने के बावजूद, थकान होने के बावजूद रात को चैन से सो नहीं पाते हैं या नींद नहीं आती है। वो कारण कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है या फिर वो किसी बात की चिंता में पड़ी हुई है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है। कारण कुछ भी है लेकिन उसका जो रूप है उनके जीवन में वो अनिद्रा के रूप में दिखता है। तो कई बार वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या है जो अनिद्रा का कारण बनता है और हम एक चैन की नींद सोना क्यों जरूरी है और नींद अच्छी होने से हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव पड़ता है, आज इन विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ, जैसे हमने कहा कि पिछली कड़ी में हमें जिस तरीके से हर्षिता जी और वीरेंद्र जी ने मदद किया है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से, आप हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में अब अपनी सेवाएं दे रहे हैं हरियाणा में और आज रेडियो मधुबन पे बने हुए हैं अपने अनुभवों से आप सभी को मदद करने के लिए। तो हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस दूसरी एपिसोड में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद
1: जी। तो हम आज आपसे ये सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि एक जो कॉमन बीमारी है, या शायद इसको बीमारी कहे या ना कहे आप बता सकते हैं, अनिद्रा होना या सो नहीं पाना। महिलाएं दिन भर काम करती हैं बावजूद उनको ये कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है, घर पे ही तो बैठी हुई थी। मगर उसका एक रिजल्ट, एंड रिजल्ट में ये देखने को मिलता है कि वो सो नहीं पाती है। तो उसका क्या कारण हो सकते हैं और नींद ना होने से उनके जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है?
3: नींद मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा इंडिकेटर या सबसे बड़ा इशारा है। एक अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब वो नींद कितनी उचित है वो पर्सन से पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग शॉर्ट स्लीपर होते हैं जो 4-5 घंटे सोकर एकदम फ्रेश हो जाते हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती। कुछ लोग लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं जिनको 10-11 घंटे का नींद चाहिए, बट उन्हें एवरेज अगर देखा जाए तो 7-9 घंटे का नींद जो है वो एक नॉर्मल मनुष्य को चाहिए होता है अपने अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगर कभी भी नींद में कुछ दिक्कत आ रही है, अनिद्रा आ रही है, अनिद्रा हो रही है, तो हमें समझना होगा कि वह क्यों आ रही है, उसके कारण हमें ढूंढकर निकालने होंगे। अब अनिद्रा की जो बीमारी है वो या तो प्राइमरी इंसोमनिया हो सकता है जिसको हम बोलते हैं, जो अपने आप आ रही है, जिसके पीछे और कोई कारण नहीं है, सिर्फ नींद कम हो रही है। वो या तो सिर्फ नींद कम हो रही है या फिर उम्र के साथ साथ नींद कम होती जा रही है। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके नींद का समय कम होने लग पड़ता है। हम सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं वो 16 घंटे 17 घंटे 20 घंटे सोते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद की ड्यूरेशन कम होती रहती है। अडल्ट लाइफ आने के बाद में आपकी नींद 7-8 घंटे की सेट हो जाती है, वो फिर काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और जब उम्र ढलने लगती है या जेरेट्रिक एज ग्रुप आने लगती है, जब आप 50-55 साल के ऊपर के हो जाते हैं, तब आप नींद आपकी धीरे धीरे कम होकर 5-4 घंटे की रह जाती है। अगर आप उतनी नींद लेकर भी खुद को फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, जब आप सुबह उठे तो आपका दिमाग एकदम स्वस्थ है, फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, आपको काम करने में कोई थकान महसूस नहीं हो रही, तो मतलब आपकी नींद बिल्कुल ठीक ठाक है। पर जब ऐसा नहीं हो रहा तो वो अनिद्रा है। अब अनिद्रा के अगर कारणों में जाएंगे, जिसको हम सेकेंडरी इंसोमनिया बोलते हैं, तो वो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। अब उसके कारण कुछ शारीरिक हो सकते हैं, आपको बुखार है, आपके शरीर में कुछ दर्दें हैं, आपको कोई और शारीरिक परेशानी है, डायबिटीज के अंदर में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हाइपरटेंशन में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से निद्रा हो सकती है। या फिर कोई मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, डिप्रेशन में नींद ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है, एंग्जाइटी की दिक्कत, बेचैनी की दिक्कत जिसे बोलते हैं, उसमें भी नींद की दिक्कत आती है, या और कुछ गंभीर मानसिक बीमारियां लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन डिसऑर्डर, जो ऐसी बड़ी मानसिक बीमारियां हैं, उनमें भी नींद कम या ज़्यादा होती रहती है।
1: जी सर, ये आपने बात तो सही कहा कि बीमारियां हो तो फिर नींद नहीं आती है, वो समझ में आता है कि ये इस कारण से हो रहा है। लेकिन एक आम तौर पे महिलाओं का अगर हम टेंडेंसी देखते हैं, ऐसी बड़ी बीमारियों के आइडेंटिफिकेशन तो उनके अंदर नहीं होता है, लेकिन वो सो नहीं पाती है, चाहे वो उनको आने वाली कल की चिंता हो या पूरे दिन में जिस प्रकार की बातें या फिर जिस तरीके के व्यवहार उसने सामना किया है वो उसको दिमाग में खा रहा है, या जो भी है मन को शांत नहीं कर पा रही है, अगर हम सरल भाषा में कहें तो, उस कारण से भी जब सो नहीं पाती हैं, तो ऐसे में वो क्या प्रैक्टिस करे ऐसे दिन भर में, या फिर रात को सोने से पहले वो ऐसा क्या खुद के लिए वैसा करे जिससे वो मन को शांत कर सके और वो सो सके।
3: अच्छी नींद के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे स्लीप हाइजीन बोलते हैं, जैसे हमारी डेंटल हाइजीन है, फिजिकल हाइजीन है, वैसे ही नींद, अच्छी नींद के लिए स्लीप हाइजीन होती है। उसके अंदर में कुछ प्रमुख चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको करेंगे तो आपकी नींद लगभग ठीक हो जाएगी, अन्यथा वो किसी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है। अगर सिर्फ कुछ चिंता या कुछ कारणों की वजह से आपको नींद नहीं आ रही तो वो उससे ठीक हो जाएगी। उसमें सबसे जो ज़रूरी है वो है आपको अपनी नींद का समय फिक्स रखना पड़ेगा कि मुझे हर रोज इस समय सोने के लिए जाना है और इस समय उठना है, हफ्ते के सातों दिन, रविवार को लेकर। अधिकतर हम देखते हैं कि लोग शनिवार रात को लेट नाइट तक जागते हैं, पर उसका इम्पैक्ट, उसका असर अगले दिन भी रहता है, अगली नींद भी आपकी खराब होगी। तो रोजाना एक समय पर सोना शुरू करें, रात को 9 बजे के बाद में किसी भी ब्राइट लाइट का एक्सपोजर कम से कम रखें, लाइक मोबाइल फोन का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद, टीवी का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद ना करें, क्योंकि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्स स्टेट में चला जाना चाहता है। अगर वो एक्टिवेटिंग स्टेट में है तो हमें कभी भी अच्छी नींद नहीं आएगी। जब हम बहुत देर तक फोन या टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को 10, 11, 12 बजे तक फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद जब हम सोने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो इमीडिएटली रेस्ट स्टेट में नहीं जाएगा, वो बहुत देर तक उन्हीं वीडियोस को सबकॉन्शियस लेवल पे घुमाता रहेगा और चलाता रहेगा। इसलिए जब हम सुबह उठेंगे तो हम सो भी गए हैं, साथ वाला आदमी बोलेगा कि तो अच्छा खासा सो रहा था, खराटे ले रहा था और ये कर रहा था, बट आप जब सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेश फील नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो नींद की क्वालिटी है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है, आपकी नींद की क्वालिटी भी खराब हो गई। तो उसको ठीक करने के लिए आपको रात को 9 बजे के बाद ब्राइट लाइट एक्सपोजर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना है। तीसरी चीज़ जो होती है वो शाम को 5 बजे के बाद कैफीन इनटेक को कम कर दीजिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, रेडबुल, जो ऐसी चीज़ें जो एक्टिवेटिंग या जगाने वाली चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल शाम को 5 बजे के बाद बिल्कुल बंद कर दीजिए, ताकि ब्रेन को कूल डाउन होने के लिए 3 से 4 घंटे मिले। अपने बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। बिस्तर पर बैठ के अगर टीवी देख रहे हैं, बिस्तर पर बैठ के अगर खाना खा रहे हैं, तो उस चीज़ का अवॉइड करें, क्योंकि बिस्तर का आविष्कार सिर्फ सोने के लिए हुआ था। तो जब बिस्तर पर सिर्फ सोने के लिए जाएंगे तो ब्रेन को ये ऑटोमेटिक सिग्नल जाएंगे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ सोना है। सोते समय कोशिश करें कि एब्सोल्यूट डार्क रहे कमरा, बिल्कुल अंधेरा रहे, रोशनी ना रहे बिल्कुल भी, टेम्परेचर हमेशा ठीक ठाक हो कि आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगे, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा हो। और सोने से पहले कभी भी भारी काम मत करें, मतलब बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम मत करें कि शरीर में कोई पीड़ा रह जाए, तो उस वजह से भी नींद गड़बड़ होने लग पड़ती है। तो शाम के समय अगर एक्सरसाइज करनी है तो एकदम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी, 10-15 मिनट का सैर कर लिया हल्का, बिना शरीर को ज़्यादा कष्ट दिए हुए। और आई थिंक ये अगर चीज़ें करेंगे तो स्लीप हाइजीन बहुत अच्छी रहेगी और आपको नींद अच्छी आएगी। डॉक्टर हर्षिता, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं?
2: जब हम सोने जा रहे हैं, सर ने बहुत अच्छी स्लीप हाइजीन एक हमारे लिए 6 से 7 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे ऐड ऑन करे हैं। इसमें बस मैं 2 से 3 पॉइंट्स और है जो ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो जो आपका पिलो है उसका मेजर ध्यान रखें कि वो 3 से 4 इंच का पिलो है जो आपके नेक के लिए, और बिना पिलो लिए नहीं सोना है। या तो आप बेडशीट को फोल्ड करके सोएं, क्योंकि आपकी जो गर्दन की शेप है वो उस हिसाब से डिजाइन है। जो पिलो का साइज है वो कम से कम 3 से 4 इंच का होना चाहिए। आप उतना पिलो लगाकर ही सोएं, आपकी गर्दन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और रात को सोते हुए एक एक्सरसाइज है जो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिसको हम जैकॉब्सन रिलैक्सेशन मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो JPMR आप ये लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज अगर आप करके सोते हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको सोने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। ये एक्सरसाइज आप एक ऐसे नाइट रूटीन बना लें कि ये तो मुझे करके ही सोनी है, इसके बिना मुझे सोना ही नहीं है। आप फील करेंगे कि अगर ये पूरी स्लीप हाइजीन आप मेंटेन कर रहे हैं, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा और फ्रेश होगा। लास्ट चीज जो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब भी हम स्टिल कह रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, सब कुछ तो कर लिया, एक बुक उठाएं, पढ़ने लग जाएं, नींद आने लग जाएगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बोरिंग काम हमें लगता है। बोरिंग काम करते हुए हम कैसे बच्चों को नींद आने लग जाती है पढ़ाई के नाम पे, बोरिंग से बुक उठाएं या फिर कुछ ऐसी जो कुछ शिक्षादायक हो, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ भी नेगेटिव, कोई नोवेल, वो चीजें पढ़ने की जगह आप कुछ पॉजिटिव उठाएं, वो पढ़े, पढ़ते पढ़ते आपको जरूर नींद आ जाएगी। एक प्रॉपर 10 से 12 पॉइंट्स जो हमने मिलके बताए हैं, ये आप अगर करेंगे बहुत ही अच्छी आपको नींद आएगी।
1: जी ये बहुत सारी अपने टिप्स दी हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मैं एक और बात जानना चाहती हूँ। वो महिलाएं जो शाम को निकल नहीं पाती हैं या जो भी हैं, ये सारी चीज़ें अपने बाहरी तौर पे एक फिज़िकल कंफर्ट दे सकें और एक कॉन्शियस लेवल पे हमको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि मुझे अभी सोना है तो सोने के लिए मुझे ये चीज़ें नहीं करना है, मतलब शाम से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे, रात को मुझे ये सोना है तो ये चीज़ें करनी है। उसके साथ साथ जो सुबह से हमारे दिमाग में जो लोड है, सुबह से जो कैरी किया है हमने चीज़ें, वो भी कई बार सताते हैं। और जैसे आपने कहा कि लाइट होने से भी नींद नहीं आती है, तो वो भी एक फिज़िकल ऐड ऑन वर्क है, लाइट्स बंद कर दिया, सब कुछ बंद किया, लेकिन जो दिमाग में जो चल रहा है, जो पीड़ा वो पकड़े हुए हैं या वो पीड़ा जो सता रही है, अगले दिन की चिंता हो या फिर जो सुबह से बातें हुई है, वो खुद को जवाब नहीं दे पा रहे हैं या फिर उसको स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मोमेंट में उन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल करें?
2: इसका बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि जब सुबह से हम उठे, ऐसा तो नहीं है जीवन में चीज़ें होनी बंद हो गई, रिश्तेदारों ने कुछ कहना बंद कर दिया, या फिर परिवार वालों से टोन नहीं मिले, या फिर बच्चों ने कुछ गलत नहीं बोला। नॉर्मल है, सुबह उठते हैं उनके लिए काम करना शुरू करते हैं, रात तक जब तक वो सोते हैं उनके लिए काम करते ही रहते हैं, और उनके अगले दिन उठने से पहले महिलाएं उठ जाती हैं। तो सुबह से लेकर रात तक आप जिनके लिए काम करते हैं उन्हीं से आपको चीजें फेस करनी पड़ती हैं। हमें प्यार तो है अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने आसपास के लोगों से, लेकिन जब हम चीजें सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है, फिर हम कहते हैं कि हम हर्ट होते हैं, हमें ये जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हमें एट द एंड कर तो हर्ट ही रहे हैं, अपनी बातों से करते हैं, अपने एक्शन से करते हैं। अब आते हैं कि चीज़ें हम नहीं बदल सकते, हम लोग नहीं बदल सकते, हम परिवार नहीं बदल सकते, लेकिन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें निकालना है। तो इसका जो सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है कि हमें कुछ अपने मेंटल हेल्थ में चेंज करना है, वो ये है कि आपको वेंट आउट करना है, अपनी चीज़ों को बाहर निकालना है। अगर आप बाहर निकालते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, आप अच्छा फील करते हैं, आपको हल्का फील होता है। अब वेंट आउट करने के 3 से 4 तरीके मैं आज आपको बता सकती हूँ। एक जो लोग या महिलाएं लिख सकती हैं वो एक डायरी राइटिंग करना शुरू करें, सुबह से लेकर रात तक जो भी आपको कुछ भी ऐसा फील हुआ, जो आपको नेगेटिव फील होता है, किसी की कोई बातें फील होती हैं, वो आप लिखना शुरू करें। बेस्ट सोल्यूशन है अपनी फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए। दूसरा, जिनको आलस आता है कि मुझे लिखना नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो नहीं लिख पाऊंगी इतना ज्यादा।
1: कई बार हो सकता है वो महिला को लिखना भी नहीं आता हो।
2: हाँ एग्जैक्टली, उसी के लिए मैंने बताया। तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, आपको किसी को बुरा भी लग रहा है किसी को कुछ कहना, लेकिन आप उसके फेस पे नहीं कह पा रहे, लेकिन अगर अंदर रखेंगे तो राय का पहाड़ तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए आपको उसको पहाड़ को नहीं बनने देना है, उसको वहीं के वहीं खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए आप बोलिए, आप बात करिए, ठीक है। तीसरा है कि अगर जिनको लिखना आता है वो उस इंसान के लिए डायरी राइटिंग कर सकते, जैसे हमने बोला वैसे ही लेटर राइटिंग कर सकते हैं। ये तीन सॉल्यूशंस हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपके वो जो विचारों का एक लूप चल रहा है, जो टर्न ऑन की जगह ऑफ नहीं हो पा रहा, वो स्विच आप ऑफ कर सकते हैं।
1: जी, तो कुल मिला के यही है कि हम उसको स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी हुआ है, जो चीज़ बीत गया है, उसको पकड़ के बैठे तो फिर उसका समाधान नहीं है। या तो हम उसके लिए सोल्यूशन खुद से ढूंढें, अगर नहीं ढूंढ पाता है तो किसी और से सोल्यूशन ले, लेकिन उसको वहाँ पे उसको ख़त्म कर दें।
2: नहीं, अंदर ना रखें, उसको बाहर निकालें। उसको जितना अंदर रखेंगे आप अपने आप को ही खराब कर रहे हैं, उसको बाहर निकालें। जैसे मैंने चार तरीके बताए, चारों में से ये उनके लिए भी है जो लिख सकते हैं, उनके लिए भी है जो नहीं भी लिख सकते, नहीं भी पढ़ सकते। चारों में से जो आपको सेट बैठता है आप वैसे वेंट आउट करें, बट करें जरूर। किसी को अपना फ्रेंड बनाएं या कुछ कैसे भी, बट आप वेंट आउट जरूर करें।
1: जी, मैं आप दोनों से एक और सवाल करना चाहती हूँ। हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें हमारी लाइफस्टाइल में कि ये मेरी नींद की डिसऑर्डर या इंसोमनिया या निद्रा, जिस भी कारण से जो नींद डिस्टर्ब हुआ है, उस कारण से ये मेरे लाइफस्टाइल में चीज़ें आ रही है या फिर मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो कई बार जैसे हेडेक है, क्रॉनिक हो जाता है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, इरिटेशन है, ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो कई बार ये हम नहीं समझ पाते हैं कि ये मैंने नींद पूरा नहीं किया या फिर टाइम पे खाना नहीं खाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जो ऐड ऑन होकर के उसका रिफ्लेक्शन दूसरी तरीके से होता है। तो फिर ये अनिद्रा से किस प्रकार की हमारी लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंसेस होते हैं या फिर हमारे जीवन शैली में क्या ऐसे नुकसान दिखते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ, मुझे ये नींद ना करने के कारण मेरे अंदर ये दिख रहा है। मुझे सामने वाले व्यक्ति को या किसी को ब्लेम करने की जगह मुझे खुद को ठीक करना है।
3: देखिए, सबसे पहले एक अच्छी नींद का इंडिकेटर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो है अगली सुबह आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप सुबह उठे तो आप अपने आप को कितना फ्रेश महसूस कर रहे हैं अगले दिन के चैलेंजेस को लेने के लिए। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपकी नींद अच्छी हुई है या नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नींद का समय से उतना लेना देना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो 5 घंटे सोकर भी अगले दिन सुबह एकदम फ्रेश होते हैं और कुछ लोग 12 घंटे सोने के बाद में अगले दिन सुबह फ्रेश फील करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप सुबह उठे तो आपका मन कितना शांत है, आपका मन कितना संतुलित है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, अगले दिन के काम करने के लिए। सिर्फ मन ही नहीं, शारीरिक भी। अगर आपकी नींद ठीक नहीं होगी तो अगले दिन आपको शारीरिक रूप से भी थका थका लगेगा, आपको काम करने में एनर्जी महसूस नहीं होगी। जिस तेजी से आप भाग सकते हैं आप उस तेजी से नहीं भाग रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा साइन है अच्छी नींद होने का। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि आप बिना बात के बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, बातचीत में सबके साथ में थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो रहा है, किसी की छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बुरी लग रही हैं जो कि पहले नहीं लगती थी, तो आपको सबसे पहले अपनी नींद के ऊपर ध्यान देना होगा कि मेरी नींद ठीक हो रही है या नहीं, मैं अच्छे से सो पा रही हूँ या नहीं सो पा रही। उसके अलावा अगर आपकी शारीरिक कुछ बीमारियाँ, अगर आपका हाइपरटेंशन अचानक से बीपी बढ़ने लग पड़ा है, आपकी शुगर ठीक नहीं रह रही है, आप खाना ठीक ठाक परहेज कर रही हैं फिर भी दवाई भी ले रही हैं फिर भी शुगर ठीक नहीं रह रही, तो तब भी आपको उसी समय आप ध्यान कीजिए कि आपकी नींद 90% चांस है कि आपकी नींद ठीक नहीं हो रही, क्योंकि नींद से फिजिकल और मेंटल दोनों इश्यूज आते हैं। तो आपके जो बीमारियां आपको चल रही हैं, थायराइड की, शुगर की, बीपी की, उसमें गड़बड़ आएगी, आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप एनर्जी, आपके काम के लिए प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ेगी और आपके बिहेवियर में लोग देख पाएंगे और आपको बोल पाएंगे कि पहले तो तू इतना चिड़चिड़ी नहीं हुआ करती थी, अब तू क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा कर रही है, क्यों हर बात को इतना दिल से लगा रही है, और आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं चीजों को ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ।
1: जी, तो हमारी जीवन में जब अनयूजुअल बिहेवियर को हम खुद नोटिस करते हैं तो उसमें हम अपनी नींद को चेक करना बहुत जरूरी
3: है। जी,
1: इसके अलावा कोई और मेथड्स या कोई और पैरामीटर्स जो आपको लगता है कि इन चीज़ों पे नींद के लिए अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, खासकर के एज वाइज स्लीपिंग ऑर्डर्स में? जैसे आपने कहा कि एज के अनुसार स्लीप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम होते जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। आजकल हम यंग एज गर्ल्स को देखते हैं, वो नौकरी के कारण है या जैसे भी, लेट नाइट सोना, और फिर वो लेट नाइट सोने से कई बार हम ये भी डॉक्टर्स के साथ या किसी से सुनने को मिलता है कि मोटापा बढ़ने में भी नींद का बहुत
3: बिल्कुल मोटापा बढ़ने में, हार्मोन्स चेंज होने में, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है लड़कियों के अंदर में, मोटापा बढ़ता है, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है, हार्मोनल चेंज होने लग पड़ते हैं लड़कियों के अंदर में, उस सबका नींद के साथ में रिलेशन है। तो एक अच्छी नींद जो है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों को आइदर पूरा कंट्रोल कर देती है या फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका कंट्रोल करने में मदद करती है, और दवाइयों का असर भी ज़्यादा बेटर होता है अगर आपकी नींद ठीक ठाक है।
1: जी, ये तो यंग एज गर्ल्स के लिए आपने कहा कि इस प्रकार की बीमारियों से वो बच सकती हैं अगर वो अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करती हैं। तो ये जो 12 बजे 2 बजे 3 बजे के बाद जो सोते हैं उससे क्या असर पड़ता है लाइफ में?
3: जब आप लगातार 12 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसा करके, देखिए सबसे पहले हमें चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भगवान ने चीज़ों को बनाया तो दिन और रात जब बने तो रात नींद के लिए दी गई, तो इसलिए समय को उसी तरह से बनाया गया कि हमारे शरीर के अंदर में क्लॉक होती है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या सिकार्डियन रिदम, वो डिसाइड करती है कि हमें कब सोना है। जैसे जैसे दिन ढलता है तो हमारी बॉडी के अंदर में कुछ केमिकल चेंज होने लग पड़ते हैं अपने आप से, और वो भगवान ने वैसे ही बना के दिए। जब वो केमिकल चेंज आने लगते हैं तो हमें अपने आप से नींद आने लग पड़ती है और हम एक समय के बाद सो जाते हैं, और जैसे ही सूरज निकलता है तो उसके बाद फिर से हमारी बॉडी में केमिकल चेंज होने लगते हैं और हम दोबारा से जाग जाते हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन है, जो कि हम बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कर रहे हैं जो भगवान ने बनाकर भेजी है। पर जब हम उस क्लॉक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, जो किसी भी भगवान की बनाई हुई चीज़ से जब हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस या उसके रिजल्ट तो आएंगे। तो जब हम बहुत देर तक रात को 2 बजे तक 3 बजे तक लगातार काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पर सोने को अवॉइड कर रहे हैं और उसकी जगह हम लोग उसको दिन में सोने को शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि वो सोने का समय उन्होंने चेंज कर दिया और रात को 3-4 बजे सोते हैं फिर सुबह 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो उसके शरीर को अपने नुकसान होते हैं, उसके शरीर को नुकसान होते हैं, मानसिक नुकसान होते हैं उसके, क्योंकि हम नेचर की बनाई हुई चीज़ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं।
1: तो ऐसे में क्या डिस्टर्बेंसेस देखते हैं साइकोलॉजिकली या फिजिकली?
3: लोग बहुत चिड़चिड़े रहने लग पड़ते हैं, बिहेवियरल इशू आने लग पड़ते हैं, जब आप सुबह नहीं उठ रहे, जब आप लेट उठ रहे हैं तो आपका दिन काम करने का बहुत छोटा हो जाता है, आपका लोगों से मिलने का समय बहुत छोटा हो जाता है। देखिए अगर आप 4 बजे तक जाग रहे हैं रात को तो रात के समय तो कोई आपसे नहीं मिल रहा, तो जो आपका ह्यूमन टच का जो काम है जिसमें आप लोगों से मिल रहे हैं वो आपका समय अपने आप से छोटा हो जाएगा अगर आप 2 बजे सोकर उठ रहे हैं, 2 से लेकर शाम को 6 बजे तक 3-4 घंटे ही आप अपने काम कर पाएंगे, बाकी सब काम ऐसे हैं जो आप अकेले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लग पड़ते हैं। आप देखेंगे कि इस तरह के लोग बिना वजह गुस्सा रहते हैं, काम करने में उनका जो ध्यान है वो कम होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ती है और उनको जो शारीरिक नुकसान है वो भी होने लग पड़ते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि आपकी बीपी शुगर की समस्याएं और ये सब प्रॉब्लम भी आने लग पड़ती हैं।
1: लेकिन कई युवा महिलाएं जो इस तरीके से नाइट शिफ्ट में काम करती है या ऐसा, उनका ये कहना होता है कि दिन में हमारा काम नहीं होता है, वो क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी जो है वो रात को ही होती है।
3: ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि सिर्फ क्रिएटिव काम में सिर्फ रात को कर सकती हैं या दिन में नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आप दिन में भी सभी प्रोडक्टिव और सभी क्रिएटिव काम कर सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ रात में बैठकर ही क्रिएटिव काम कर पाएंगी और सुबह नहीं कर पाएंगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और हम तो बचपन से मतलब सिखाया गया है कि सुबह का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, सुबह अगर आप 4-5 बजे उठ रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं तो आई थिंक उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव समय आपको कोई नहीं मिलेगा।
1: जी, सो लास्ट में व्हाट इज द आइडियल टाइम कि यही लास्ट आवर है, इसके बाद जागना नहीं चाहिए, इस समय सोना है, एंड दिस इज द लास्ट आवर, इसके बाद सोना नहीं है।
3: देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से तो हमें बहुत जल्दी सो जाना चाहिए, हमारा जो नींद का समय है वो 8-8:30 बजे बनता है और सुबह जल्दी उठना उसके साथ में लगभग 4-4:30 बजे उठ जाना, तो 8 घंटे की नींद भी हो रही है और हम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं। बट फिर भी आज के मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से अगर आप 10 बजे के आसपास भी सो रहे हैं और सुबह 6 बजे भी उठ रहे हैं तो आई थिंक वो समय आपके लिए बहुत ठीक है
1: जी, लेकिन 10 के बाद फिर जागना कोई फायदेमंद नहीं है।
3: नहीं,
1: थैंक यू सो मच आप दोनों को, वीरेंद्र जी और हर्षिता जी, हमारी जो ये स्लीप हाइजीन, आज एक नया शब्द हमको सीखने को मिला है, और आइडियल टाइम क्या है सोने का और नहीं सोने के कारण समय पे हम और सही तरीके से उससे क्या नुकसान होता है और उसको कैसे ठीक करना है, सबसे बड़ी बात है कि सॉल्यूशन कि हम उसको कैसे ठीक करें, आज आप दोनों ने हमें उपलब्ध कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम, अनिद्रा के बारे में, खास करके महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जागृति इस कार्यक्रम में। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें आरसी संदीप का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह हाजिर हूं प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के, और आप सब तो जानती हैं इस कार्यक्रम में हम लोग ऐसे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने कुछ अनोखा करके दिखाया है या जिनके अंदर कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खास बातें हैं जो शायद औरों से हट करके हों, और सही मायने में जिन्होंने अपने मन की आंखों से कुछ कर दिखाया हो। तो ऐसे ही एक मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं नागपुर महाराष्ट्र से, भारती जी। भारती जी, रेडियो मधुबन के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्ते सर।
0: तो भारती जी, हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताइए कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, आपको कौन सी परेशानी है।
1: जी सर, मैं नागपुर से हूँ और मैं अभी LLM क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट हूँ दीक्षा भूमि अम्बेडकर लॉ कॉलेज से। और पहले मैं देख सकती थी, लेकिन 10वीं के बाद मुझे ये तकलीफ शुरू हुई और मुझे डॉक्टरों से पता चला कि मुझे रेटिना प्रॉब्लम है और धीरे धीरे मेरे आंखों के पर्दे पतले हो रहे हैं और जलते हुए आ रहे हैं, और फर्स्ट ईयर से मेरा पढ़ना असंभव हो गया तो मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा सर। 8 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी और मेरी लाइफ 8 साल हॉस्पिटलाइज रही, 2.3 पॉइंट ब्लड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन, यही मेरी जिंदगी रही। डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने गुरु अकी

0: गैप के बाद। और अब फिर मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर लॉ किया सर, और अभी मैं LLM सेकेंड ईयर की विद्यार्थिनी हूँ क्रिमिनल लॉ में।
1: बहुत खूब। तो अभी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है भारती जी?
0: जी सर, अभी मुझे सिर्फ 20% दिखाई देता है।
1: अच्छा, तो धीरे धीरे आपको ऐसा भी लग रहा है कि दिखना कम हो रहा है आपको?
0: धीरे धीरे करके मेरी आंखों की रोशनी पूरी चले जाएगी, डॉक्टरों का कहना है। मेरी दादी की आई डोनेट करने वाले थे 2010 में, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि अगर आई डोनेट भी की जाए तो मेरे अंदर की बीमारी वो नई आंखों को भी खराब कर देगी, इसलिए आई डोनेट करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा उनका कहना था सर।
1: तो भारती जी, फैमिली में कौन कौन है आपके?
0: जी, मेरे पापा सुरेश महादेव यादव, जो मेहो हॉस्पिटल PWD में क्लर्क थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। मम्मा हाउसवाइफ है मेरी, और हम तीन भाई और तीन बहन है सर।
1: अच्छा, 6 भाई बहन है जी। तो आप सबसे छोटे हैं, बड़े हैं या बीच में हैं?
0: जी सर, मैं दूसरे नंबर की हूँ।
1: अच्छा, आप सेकंड नंबर पे। तो 8 साल डिप्रेशन में जब आप रहीं भारती जी, तो क्या किया उस दौरान आपने? मतलब
0: सर, उस दौरान तो सिर्फ सोच थी मेरे दिमाग में कि आंखें जाने के बाद मैं करूंगी क्या, और मैं फ्यूचर में बोला जाए तो दूसरों पे डिपेंड रहूंगी, ना मैं कमा सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो लाइफ बोला जाए तो उसी डिप्रेशन के कारण 2 पॉइंट ब्लड होना, 3 पॉइंट ब्लड होना, अनेमिया, जिसके कारण मैंने अपने 8 साल ऐसे ही गवा दिए।
1: उस दौरान कुछ सीखने का भी काम कर पाए या बिल्कुल एकदम खाली हो गए? बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ करने का मन ही नहीं किया आपका?
0: नहीं सर, वो 8 सालों में तो पहले तो कोई गाइडेंस करने वाला मिला ही ना था। डैडी का कहना था कि मैं आज रिटायर हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को पाल सकता हूँ, रास्ते पे अगर जाएगी कम ज्यादा हो गया तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जब गुरु अकील अहमद सर को मेरे फैमिली डॉक्टर से पता चला कि सिर्फ किताबें दे दी जाए तो वो फिर से जीने की उम्मीद जाग उठेगी, और फिर सर ने मुझे ब्रेल में एडमिशन कराया। फिर मैंने 1 महीने में ब्रेल कंप्लीट की, और फिर उसके बाद मैंने LLD कॉलेज में फिर से एडमिशन कराया BA में।
1: तो आपने ब्रेल लिपि कौन से इंस्टीट्यूट से सीखी?
0: जी, आत्मदीपम सोसाइटी जो अंबाझरी में है सर, वहां से सीखी।
1: नागपुर में ही है आपके?
0: जी हाँ
1: तो अब आप ब्रेल अच्छे से जानते हैं, ब्रेल लिपि?
0: जी हाँ सर।
1: अच्छा, तो अब जो आप LLM की पढ़ाई कर रहे हैं अभी इन दिनों में, वो कैसे कर रहे हैं?
0: सर, वो LLM की पढ़ाई में इंस्टा रीडर है हमारे पास, जो ऐप है मोबाइल में, उसमें बुक की फोटो क्लिक कर लो तो वो रीडर पढ़ता है। और सर अभी क्या बोलते हैं, हम जो मोबाइल में नेट पैक होता है, जिसमें यूट्यूब में बहुत सारे लॉ के वीडियोज आते हैं, GK नॉलेज आते हैं, अगर हम उस नेट पैक का सही में अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, FB इंस्टा रीडर में वक्त बिताने से बेटर अगर हम इस तरफ वीडियो पे फोकस किया जाए, तो सर LLB की पढ़ाई हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने तो अपना ज्यादातर समय अपने मोबाइल में यूट्यूब के वीडियो, जनरल नॉलेज, इन्हीं रिसेंटली केसेस, इसी में बिताया। और सबसे बड़ा सहयोग मेरे कॉलेज के टीचर्स का रहा, जैसे मेरे प्रोफेसर शाजिया मैम, डॉक्टर हिमा विनोन मैम, वर्षा देश पांडे मैम, प्रतिमा लोखंडे मैम, और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल मेहरे मैम और बहादुर है सर। और ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे प्रिंसिपल मैम इतने सपोर्ट करते हैं हमें कि उन्होंने चेन्नई फाउंडेशन जो अभी गोवा की है सर, और ये हमें 10,000 की स्कॉलरशिप ब्लाइंड स्टूडेंट को देती ही है। साथ ही साथ जो अभी क्या बोलते हैं, लैपटॉप के जो जितने भी क्या बोलते हैं कोर्स है, अभी MSCIT हो गया, टैली हो गया, ये सारे कोर्स करने के लिए हमारे कॉलेज की मैम ने एक बड़ा सा रूम दिया हुआ है, जिसमें चेन्नई फाउंडेशन की जो सर है वो हमें प्री MSCIT की क्लासेस कराते हैं, ताकि हम उनका मोटिव हमें स्कॉलरशिप देना ही ना हो, हमें टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी हासिल कराना है, ताकि हम एक पर्टिकुलर जॉब हासिल कर सके।
1: तो अब आप फोन वगैरह भी चला लेती हैं अच्छे से?
0: जी हाँ, मैं टॉकबैक सिस्टम से फोन अच्छे से चला लेती हूँ।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। यानी कि जिस तरह से आपने वापस एक तरह से अपने आप को खड़ा किया, तो मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हो सकते हैं, क्योंकि 8 साल डिप्रेशन में रहना कम बात नहीं है। ये बताइए भारती जी कि लॉ फील्ड में जाने का सपना कब देखा आपने?
0: सर, ये सपना तो मैंने बचपन से ही देखा था। छोटी सी थी तो अदालत सीरियल देखती थी, जिसमें वकीलों को देखती थी कि क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कैसे, तो मेरी इच्छा थी कि मैं लॉयर बनूं। लेकिन
1: क्या बात।
0: ये सपने जब 10वीं के बाद टूटते हुए नजर आए कि मैं पढ़ नहीं सकती अब, तो फिर मैंने वहां जब ब्रेल सीखने गई आत्मदीपम सोसाइटी में, वहां नंदिता त्रिपाठी मैम को देखा, और वो

0: असिस्टेंट गवर्नमेंट लॉयर है और वो भी टोटली ब्लाइंड है। लेकिन टोटली ब्लाइंड होने के बावजूद भी आज मैंने जब उनको देखा तो मेरे सपने फिर जाग उठे कि भारतीय जब मैम भी टोटली ब्लाइंड है, उन्होंने तो दुनिया नहीं देखी, अंधेरे के सिवा भी देखा, लेकिन तो भी आज एक वो लॉयर है और क्रिमिनल मैटर में वो केस लेते हैं, तो मेरे लिए वो सपने फिर से जाग उठे। और दूसरी बात, फिर मैंने डॉक्टर शिप्रा सरकार मैम को जब मैं बीए में एलईडी में थी उनको देखा, उन्होंने मुझे हर बार एक ही चीज बोली कि भारती इंसान बोला जाए तो सब कुछ कर सकता है, हमने तो दुनिया नहीं देखी, इंसान कैसे दिखते हैं हमने ये नहीं देखा, लेकिन तो भी आज हम आगे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों फिर आंखों के लिए रो रही हूँ, जिन्होंने दुनिया आज तक नहीं देखी, रंग कैसे होते हैं, इंसान कैसे होते हैं, वो जब दुनिया से इतने खुश है और अपनी जिंदगी में वो कामयाबी पे है, तो मैं इन सब के लिए रोते हुए अपना क्यों समय बर्बाद करूं। और मैंने फोकस अपने एलएलबी के तरफ किया, और तब तक तो मैं बीए में एडमिशन कर चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर लॉ करूं और फिर एलएलएम में मैंने एडमिशन किया, और आज मैं एलएलएम लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ सर।
1: वेरी नाइस। तो ये शिप्रा मैम भी ब्लाइंड है?
0: जी, शिप्रा सरकार मैम भी ब्लाइंड है। और सर साइड बाय साइड मेरे साथ बोला जाए तो बहुत सारी संस्थाएं थी, जैसे गायत्री वात्सल्य मैम जो ऑटिस्टिक बच्चे और जो बोला जाए तो जो बातें ठीक से नहीं कर सकते वो बच्चों की संस्था चलाती है, एसबीके शिक्षा संस्था, जिसमें मैंने ये देखा कि वो बच्चे ऑटिस्टिक होने के बावजूद भी अभी उन्होंने झनकार ब्रांड लॉन्च किया है, और जिसमें अनूप ताइड़े सर इन बच्चों को पढ़ाते हैं और सारा खर्चा वो मैम उठाती है उन 17 बच्चों का, कि यानी कि टीचर हायर करना, फिर और उनसे कोई पैसे नहीं लेती, उनका मोटिव यही होता है कि वो बच्चे कुछ बन सके। और फिर बाद में विलासिता मैम की एक संस्था है सर, जो कैंसर सर्वाइवर बच्चे और गरीब बच्चों के लिए कार्य करती है, और इतने ऑनेस्ट है कि वो स्पॉन्सरशिप नहीं लेते। और आत्मदीपम जो ये आशादीप सोसाइटी है, उसमें से मेरी 40 कविता प्रकाशित हुई वेद सोच करके, जिसमें मेरी 40 कविता है सर, और वो साइड बाय साइड क्या बोलते हैं, हमें रिकॉर्डिंग भी बीए तक तो देते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग का भी वो संस्था कार्य करती है, और जिन्हें राइटर लगे तो वो राइटर भी देती है सर। और अभी दिल्ली में एक उपाध्याय सर की संस्था है प्रोग्रेसिव फेडरेशन करके, बालचंद्र उपाध्याय, ये संस्था का मोटिव हमें राजनीति में भी हमें आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ऐसी बात है जब हमें चुनाव का अधिकार है तो हमें खड़े होने का भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो दिमाग के बल पर चलती है ना सर, और जब राजनीति दिमाग के बल पर चलती है तो आप एक ब्लाइंड के दिमाग को ये उसके आंखें न होने पर आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो राजनीति के लायक नहीं है। तो अभी हमारे उपाध्याय सर का मोटिव यही है कि हमें राजनीति में भी दिया जाए, कि राजनीति में भी हमें जगह चाहिए, हमें सिर्फ चुनाव का अधिकार ही नहीं, हमें आरक्षण मिला है नौकरी में, और लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमें सब जब इक्वल समझा जा रहा है तो राजनीति के दौर पे हमें क्यों नहीं इक्वल समझा जा रहा है। और इसीलिए अभी उनकी अयोध्या में 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक उन्होंने कार्यक्रम रखा है, साइड बाय साइड यही मोटिव होता है कि तीर्थ धाम के दर्शन भी हो सके और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो सके। और अभी मुझे ऑडियंस के डिमांड पे कविता बनानी है सर।
1: जी भारती जी, बहुत खूब। तो भारती जी, आपकी बातों से ये भी समझ में आ रहा है कि आपने अपने अंदर कविताएं लिखने का जो शौक है वो भी पैदा कर लिया है, तो ये कब सोचा कविताएं लिखने का?
0: सर पहली बात तो मैं कोई पोएटिस्ट ही नहीं, बीए से अचानक पता चला कि मुझ में जो गुण है, और मेरे दोस्तों ने कि भारती वहां कविता चल बोल रहे हैं लोग, तो मैं सोचा मैं ऐसी मजाक में गई माइक में कि मैं भी कविता बोलूंगी करके, और पता चला मैंने अपनी पहली कविता बनाई गुण स्वभाव और संस्कार पे, जिसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, और सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे दोस्तों का रहा सर। मेरी एक दोस्त है शुभांगी बाव ने, उसकी हर बातें नहीं पता कविताएं बन जाती, और हर दोस्त होते हैं जो खुशियां बांटते हैं, लेकिन मेरे दोस्त का स्वभाव बोला तो पानी पूरी जैसा था, कभी कड़वा कभी तीखा, और हर गुणों में एक मैंने कविता देखी। ऐसी बात नहीं कि दोस्त लड़ते झगड़ते तो सारे दोस्त है, लेकिन ये दोस्त वो थी जो फिक्र के साथ मुझे एक कविता की सौगात देते गई, और शीघ्र कवि बनने का श्रेय मेरा उसी पे जाएगा। हालांकि मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, स्वप्नाली है, प्रीति है, कल्याणी है, उन्नति है, निर्मिषा है, जो एलएलबी में मेरी मदद करते हैं, लेकिन शीघ्र कवि का श्रेय बोला जाए तो शुभांगी बावने पर ही जाता है। और मेरे जो अंकल थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, विजय अंकल, वो हर बार मुझे कहते थे कि भारती जिस मंच पर खड़े हो जाओ वो मंच समझना अपना है, और अपना कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होने देना, और इसी बातों ने आज मुझे हर मंच से विजेता बनाकर लाया, मैं कभी हार कर वापस नहीं आई। तो मुझे साइड बाय साइड बोला जाए तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट मिलता गया और मैं आगे बढ़ते गई सर।
1: वो जो पहली कविता है उसकी दो लाइनें सुना सकते हैं आप हमारे श्रोताओं को?
0: घमंड किया इंसान ने, घमंड किया इंसान ने रूप रंग धन दौलत पे, ना किया घमंड गुण स्वभाव संस्कार पे। नादा इंसान भूल गया रूप रंग धन दौलत मट्टी बन गई, गुण स्वभाव और संस्कार की वो कीमती दौलत ले गया।
1: वाह, बहुत खूब भारती जी। और आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिला, आपने बताया भी, और आपने खुद ने भी अपने अंदर हिम्मत पैदा की, जो कि सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। श्रोताओं, आज सुन रहे हैं मन की आंखों से कार्यक्रम में आप भारती जी को, जो कि नागपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं और जो देख नहीं पाती हैं। तो भारती जी, अब भविष्य में क्या करना चाह रही हैं?
0: सर, पहली बात तो साइड बाय साइड मेरी कविता है, सारे मेरे दिव्यांग दोस्तों के लिए रहेगी, कि उसमें जो भी मेरा इनकम होगा, जो भी वो कविता है कल चल के कौन से भी लेवल में जाए, लेकिन ये कविताओं का सारा श्रेय जब मेरे दोस्तों पर जाता है, तो मैं सारी कविताएं अपने दिव्यांग दोस्तों के काम आ सके, मैं यही मोटिव के साथ आगे चलूंगी। और हाँ, मैंने LLB इसलिए किया सर, क्योंकि आजकल कई ऐसे मैटर है जिसमें क्या बोलते हैं फ्रॉड हो जाते हैं, ब्लाइंड के साथ तो ज्यादातर होते हैं, कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें दिव्यांगों के साथ गलत हो जाता है, लेकिन उनको न्याय जस्टिस मिल ही नहीं पाता सर, क्योंकि एक तो गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है, और दूसरी तरफ कि वो अच्छा वकील हायर नहीं कर सकते। तो मेरा मोटिव तो ये रहेगा कि अगर मैं फ्री लीगल एड बन सकी, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती होगी कि मैंने न्याय के लिए लड़ा।
1: इसके अलावा जॉब वगैरह के बारे में क्या सोचा है?
0: सर, साइड बाय साइड यही कि मैं लॉयर बनकर एक अच्छा वकील बनूं, और साइड बाय साइड अपनी कविताओं में नया रंग भरती रहूं।
1: तो भारती, जब ये आंखों की प्रॉब्लम हुई तो फैमिली का क्या कहना था उस समय?
0: सर, फैमिली में तो बोला जाए तो मुझे सपोर्ट ही किया, बोला जाए तो मेरे भाई ने सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। वो एक ही चीज बोलता था, भारती अगर आप घर के अंदर से बाहर नहीं निकलोगे, तो ब्लाइंड लोग बाहर निकलते हैं तो उनको एक हैबिट हो जाती है मोबिलिटी की, अंदर से जब डर नहीं निकलेगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो भाई की वो शब्दों की प्रेरणा, और साइड बाय साइड डैडी को डर था मेरे लिए कि रास्ते पे कम ज्यादा हो जाए, तो ये हर माता पिता को ये डर होता है सर। साइड बाय साइड फिर मैं जब पढ़ने लगी और मेरे जब अच्छे परसेंट आने लगे मैं, तो मेरे फैमिली भी बहुत खुश हुई कि मैंने आज यानी कि धीरे धीरे करते प्रोग्रेस किया अपने लाइफ में।
1: अब आज आपकी प्रोग्रेस को देख करके अब क्या फैमिली अब क्या कहती है?
0: फैमिली को प्राउड होता है मुझ पे कि आज आके नहीं रहने पर भी मैं आज LLM कर रही हूँ, साइड बाय साइड कविताएं भी लिखती हूँ।
1: तो और इसके अलावा क्या क्या करती हैं? कविताएं और पढ़ाई के अलावा भारती क्या क्या करती है?
0: जी, पढ़ाई जी। और इसके अलावा बोला जाए तो सर, मैं अखिल अहमद सर के क्लास में संगीत के स्टूडेंट को सुनकर, उनके गीतों की मधुर आवाज को सुनकर ऑन द स्पॉट कविता बनाती हूँ, और अखिल सर से मैंने यही सीखा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि संगीत वो प्लेटफॉर्म है जो इंसान के दिमाग को खुश रहना सिखाता है, लेकिन आज संगीत बोला जाए तो BSA ही है, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि पहली से दसवीं तक क्यों नहीं है? एग्जाम्पल तो मैं हूँ, जब मुझ जैसा इंसान आज डिप्रेशन से निकल गया, तो जरूरी थोड़ी ना दिव्यांगी डिप्रेशन में जाते हैं, आंख वाले भी तो जाते हैं ना सर। और आज जब मैंने BA में स्टूडेंट की जो सिचुएशन देखी कि BA में उस लेवल से कुछ नहीं आता, अच्छा करते हैं तो वही लोग करते हैं जिन्होंने प्राइवेट क्लासेस लगाई है, लेकिन सर हर कोई क्लासेस नहीं लगा सकता ना प्राइवेट, इसीलिए अगर पहली से लेकर दसवीं तक अगर स्कूल में ही ये चीजें दी जाए, तो आज जो BA में जो स्टूडेंट की सिचुएशन है, तो सिर्फ प्राइवेट क्लास लगाए वाले बच्चे ही नहीं, जिनको पहली से लेकर दसवीं तक भी म्यूजिक का नॉलेज दिया गया है बेसिक, तो वो लोग भी तो अच्छे करेंगे ना सर। आज गोल्ड मेडलिस्ट बोला जाए तो MMA वही लोग है जिनको पहले से बचपन से ही प्राइवेट क्लासेस में वो शिक्षा दी गई, लेकिन आप भी जानते हो कि आज गरीब घर का बच्चा या तो उसकी मम्मी डैडी उसकी फीस भर पाएंगे या तो क्लासेस का खर्चा दे पाएंगे। तो सर ये चीज बोला जाए तो संगीत आज वंचित है लोगों से, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर पहली से लेकर दसवीं तक दिया जाए तो सब अच्छा करेंगे। और जहां तक मैंने मेरे ब्लाइंड दोस्तों को देखा, तो ये ज्यादातर ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम करते हैं सर, गाना गाते हैं, तो इन्हें ये चीज बेसिक नहीं मिला, लेकिन तो भी ये आज इतना अच्छा गाते हैं, तो आप ही सोचिए अगर ये इन्हें पहली से लेकर दसवीं से ही मिले तो ये कितना अच्छा गाएंगे। इनकी आवाज क्या इंडियन आइडल में जाने लायक ये है अगर वो चीज उन्हें बचपन से दी जाए तो?
1: सही है, बिल्कुल सही है। संगीत में आप क्या, आपकी भी रुचि है संगीत में?
0: जी हाँ, मैंने प्रवेशिका पूर्ण तक की एग्जाम दी है सर।
1: गायन में?
0: जी हाँ, लेकिन मैं उतना बेस्ट नहीं गाती हूँ। लेकिन हाँ अपने दिमाग को सही जगह पर लाने के लिए, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए संगीत ने मुझे खुश रहना सिखाया। बोला जाए तो संगीत के गुरु अकील अहमद सर मेरे दूसरे जीवन दाता है।
1: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अकील अहमद सर भी ब्लाइंड है?
0: नहीं सर, अखिल अहमद सर देख सकते हैं, और ज्यादातर तो अगर अखिल अहमद सर ब्लाइंड हो गए तो मुझे राह कौन दिखाएगा।
1: नहीं क्यों, वैसे तो ब्लाइंड लोगों ने भी तो राह दिखाई है आपको
0: सर, ऑब्वियसली। लेकिन सबसे पहली बात सर, मेरे दोस्त बोला जाए तो मैं बहुत लेट मिली उनसे, लेकिन जब मैं पहली बार मिली तो मैं गुरु अखिल अहमद सर से मिली, क्योंकि मैं जानती नहीं थी कोई ब्लाइंड संस्थाओं को, क्योंकि अब तक बचपन से लेके अभी तक साइटेड के बीच में रही, तो ये सब नहीं पता था कि ब्लाइंड स्कूल बच्चे कैसे होते हैं। और मेरे दोस्त बोला जाए तो आज हीरे हैं सर, भले ही उनके पास आंखें नहीं है लेकिन उनकी मन की ज्योति इतनी प्यारी है कि उनके गुण और स्वभाव और संस्कार के कारण आज मैं उन पर खींची जाती हूँ, जो बहुत बड़ी बात है। कि बोलते ना कि आंखों से देखा जाए इंसान धोखा खाता है, मन से पढ़ा जाए आईना साफ नजर आता है। तो शायद भगवान ने मुझे दिव्यांग इसीलिए बनाना था ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ मिल पाऊँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा भारती जी। तो अभी आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कविताओं का, और शीघ्र कवि एक शब्द जो आपके लिए कहा जाता है,
0: तो सर आप मुझे कोई भी शब्द वहां से दे दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके दिए हुए शब्दों को मैं कविताओं में ढाल पाऊं।
1: ये भी एक आपका हुनर है, गुण है ये आपका बहुत बड़ा।
0: जी हाँ।
1: आपने रेडियो सुना है, रेडियो के बारे में जानते हैं आप?
0: जी हाँ सर।
1: क्या जानते हैं
0: सर रेडियो के बारे में? संगीत और न्यूज मिलते हैं हमें वहां से, सारी खबरें मिलती है, दूसरों के विचार हम सबको दूर भी रहकर यहाँ तक हम सुन पाते हैं। और जहाँ तक है आपके कार्यक्रम का नाम है मन की आंखों से, तो आज बोला जाए तो मैं दूर भी हूँ लेकिन मन की आंखों से आज सभी कोई मेरी आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो शब्द देता हूँ मैं आपको।
0: जी
1: बताइए।
0: जी ठीक है, आज इसे दूरदर्शन ही बोलूंगी ना सर मैं हिंदी में?
1: नहीं नहीं, दूरदर्शन अलग चीज है, वो टीवी का एक रूपांतरित रूप है।
0: तो रेडियो बोल सकती हूँ ना मैं ऐसे हिंदी में?
1: हाँ रेडियो बिल्कुल बोल सकते हैं।
0: आज रेडियो के माध्यम से देखो आप सबके समक्ष में आ गई, अपनी गहरी शब्दों की सोच लेकर मैं आपके समक्ष में आ गई। आवाज मेरी सुनकर शायद आप खुश हो जाओगे, लेकिन आपको बिन देखे ही मैं खुश हो जाती हूँ। दूर दूर से जब मधुर आवाज की ध्वनि कानों में मेरे पड़ती है, दूर दूर से जब मधुर आवाज की ध्वनि कानों में मेरे पड़ती है, सारी खबर मुझे जल्दी जल्दी मिलती है। दूर रह के भी आपके विचार मुझ तक आ ही जाते हैं, तो जानो ऐसा लगता कि रेडियो ने जानो वो अहम भूमिका बनाई है। इसीलिए तो संचार के माध्यम से आप सभी की बातें मैं तो सुन ही पाती हूँ, और जानो हर शब्दों को सुनकर शब्दों की नई सोच बनाती हूँ। दूर दूर ही हो लगता उस समय के पास आप मेरे नजर ही आते हो, रेडियो के माध्यम से बिल्कुल मेरे समक्ष नजर ही आते हो। तो जानो ऐसा लगता मुझको रेडियो मेरा साथी आज ही बन गया, जिसने शब्दों की सोच दी वो अनोखा अनमोल साथी रेडियो आज मेरा बन गया।
1: क्या बात है, वाह बहुत खूब बहुत खूब, सचमुच ये बहुत जबरदस्त गुण है आपका, और आपने इसको पहचाना ये और अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि आपको इसमें और मेहनत करनी चाहिए।
0: जी सर।
1: और लगातार मेहनत करनी चाहिए इस तरीके से कि श्रोता बंध जाएं आपके शब्दों के साथ।
0: जी सर।
1: बहुत खूब भारती जी, तो कुछ गा के भी सुनाने का मन है एक दो लाइन?
0: जी नहीं सर, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगी कि मैं उतनी बेस्ट सिंगर नहीं हूँ। हाँ मेरे बाजू में मेरी दोस्त है।
1: सवाल बेस्ट का नहीं है, सवाल सवाल बेस्ट का नहीं है, सवाल सिर्फ गुनगुनाने का है
0: सर। पहली बात तो सर अभी मेरे वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, तो शायद नहीं कर पाऊंगी सर।
1: नहीं कोई बात नहीं। तो भारती जी, जो संस्थाएं जिनके साथ आप जुड़ी हुई हैं,
0: जी सर,
1: उन संस्थाओं में भी आप जाकर के अपना योगदान देती हैं, उनमें कोई पद वगैरह आपने ले रखा है?
0: हाँ सर, वो संस्थाओं में भी मैं जाती हूँ, अपनी कविताएं प्रस्तुत करती हूँ, और अपने दिव्यांग दोस्तों के लिए भी कविता बनाती हूँ, तो वो कहते हैं कि मेरी कविताएं उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्योंकि मेरी एक कविता है कि भगवान से प्रश्न मैं करती, निरंतर चलती है सोच मेरी, उन सोच को कैसे कागज कलम पर लिख मैं पाऊँ। भगवान मुझे बता दो कि कैसे इन शब्दों को लिख मैं पाऊँ। ब्रेल टपते हाथ है दुखते, ब्रेल टकते हाथ है दुखते, कैसे कागज कलम से लिख मैं पाऊँ। तो भगवान मेरे कहते, ना लेता तेरी आँखें और नाखों का दर्द कैसे बताती, दिव्यांग की पीड़ा कविताओं के सुनहरे अक्षरों में कैसे सजाती, ना लेता किसी के आँख हाथ और पैर, इस दुनिया को उन अंगों की कीमत कैसे बताता, हर होते हैं अंग कीमती, इस दुनिया को मैं कैसे बताता। माना है कमजोर कदम ये, आज गिरते पड़ते लड़खड़ाते हैं, पर खुद ही तो संभल जाते हैं। गिरना पड़ना लड़खड़ा कर संभलना, यही जिंदगी होती है, इन्हीं दोनों पहलुओं से तो संसार की रचना होती है।
1: बहुत खूब भारती जी। आपने एक बुक का जिक्र किया कि आपकी एक पुस्तक भी छपी है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो कैसे शुरुआत हुई?
0: सर मेरी वेद सोच बुक प्रकाशित हुई। वैसे तो मैं लिखती नहीं हूँ सर ब्रेल में, मेरे दिमाग में जो भी चीज रास्ते में हो या कहीं पे भी हो, अगर जो चीज बन जाती है तो मैं तुरंत उसको वॉइस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो जब मैंने वेद सोच बुक लिखी तो मैंने 20 कविता मैम को दी थी, फिर मैम बोले भारती 40 कविता चाहिए, तो मैंने आधे घंटे में 20 कविता बनाकर मैम को दे दी।
1: क्या बात है। फिर
0: फिर अभी मेरे पास 250 कविता है सर, और अगर बनाने बैठू तो एक घंटे में 25-30, जो जो टॉपिक आगे वाला देते जाएगा मैं कविता बनाते जाऊंगी।
1: तो वो जो 40 कविताएं हैं जो बुक आपकी निकली है वेद सोच, आपने उसका नाम बताया, तो ये मार्केट में मतलब भी है या केवल एक तरह से आपने इसको?
0: सर ये बुक तो आशादीप संस्था में आपको मिलेगी, जो प्रतिमा शास्त्री मैम है इन्होंने ये बुक क्या बोलते प्रकाशित की है, तो ये बुक वहीं से मिलती है सर, आशादीप संस्था से।
1: ब्रेल लिपि में?
0: जी नहीं सर, ये साइटेड लिपि में है ये बुक।
1: अच्छा, इंक में है। ओके जी जी जी जी जी। और सारी कविताएं इसमें हिंदी में ही हैं?
0: जी सर सारी कविताएं हिंदी में हैं। मैम ने मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग को सुन सुनकर वो कविताओं को लिखा है, यानी उन्होंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि जो कविता मैं बोल दूं दोबारा बोलोगे कि भारती उसे फिर से बोल, तो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी।
1: ये सबके साथ होता है भारती जी, एक बार जो शब्द आ जाते हैं मन में वो दोबारा बदल जाते हैं। इसके अलावा हिंदी के अलावा भी किसी भाषा में लिखती हैं आप?
0: जी नहीं सर।
1: जैसे आपकी अपनी भाषा तो शायद मराठी होगी?
0: नहीं नहीं नहीं, मेरी अपनी भाषा हिंदी है सर, मराठी मुझे नहीं आती है।
1: अच्छा मराठी नहीं आती
0: है, पर बोलते ठीक से नहीं आता है।
1: घर में आपके हिंदी ही बोलते हैं?
0: जी हाँ सर, सभी हिंदी बोलते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप हिंदी में ही लिखती हैं?
0: जी हाँ।
1: तो और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, हमने थोड़ी देर पहले भी पूछा था आपसे।
0: सर हॉबी तो मेरी बहुत है, जब मेरे पास आंखें थी तो मुझे बाम्बू आर्ट आते थे, सिरामिक वर्क आता था, और थर्माकोल के बड़े बड़े मंदिर बनाती थी मैं गणपतियों के, और मेहंदी क्लासेस लेती थी, और एलईडी कॉलेज में प्रथम पुरस्कार भी मैंने जीता था मेहंदी में। तो बोला जाए मुझे सभी कलाएं आती है। तो फिर बाद में जब मेरे पास आंखें गई और मैं कॉटन का गणपति बनाती हूँ बियर के बॉटल पे, वो चीज सिर्फ मेरे पास है अभी कि मैं बिन हाथों के स्पर्श से वो कॉटन का गणपति बना सकती हूँ, लेकिन बाम्बू आर्ट, सिरामिक वर्क, मेहंदी ये सब अब नहीं कर सकती सर।
1: ये नहीं कर सकते आप? तो ये जो आपका आर्ट है उसको आप कर रहे हैं अभी उस पर काम, या आप छोड़ दिया वो भी आपने उस पर?
0: हाँ,
1: भी
0: सर, बाकी के जो बारीक काम है उसके लिए आंखें लगती है।
1: नहीं, ये जो आपने गणपति बनाने का जो बताया कॉटन से,
0: जी सर ये बनाती हूँ मैं। अच्छा। मुझे 2.5 घंटे लगते हैं इसे बनाने में, बियर की बॉटल पे पूरा तैयार करने को फ्रेम।
1: फिर उसको बनाते हो, मतलब मेरा मतलब ये कि लोगों को देते हैं आप या नहीं?
0: हाँ शादी में मेरे दोस्तों के गिफ्ट करती हूँ, लेकिन अच्छा। सर बेचने के इससे नहीं बनाती, क्योंकि वैसे बहुत समय लगता है, बारीक वर्क भी, उसकी आंखें बनाने के लिए मुझे मेरे दोस्तों की हेल्प लेनी पड़ती है, तो इसीलिए वो बोला जाए तो शादी में रुखवंत के लिए ही बना के देती हूँ सर।
1: ओके ओके, बहुत खूब। तो अभी आपने LLM में मतलब LLB जब किया आपने, तो क्रिमिनोलॉजी को ही क्यों चुना?
0: सर मेरा मोटिव यही था कि मैं क्राइम के मैटर लूं, कि मर्डर हो गए, रेप हो गए, जो
1: तो इसी को ही क्यों चूज किया आपने? जी
0: इसीलिए किया सर कि आजकल बोलो तो क्राइम इसी में तो ज्यादा हो रहे हैं ना, क्योंकि बोला जाए तो आज इतनी लड़कियों के साथ गलत हो जाता, लेकिन अच्छा वकील नहीं मिल पाता पैसों की कमी के कारण। तो मैंने ये सोचा कि मैं ऐसी फील्ड चुनूं जिसमें सही में लोगों के काम में आ सकूं।
1: तो आप इस माध्यम से यानी अपनी जो लॉ प्रैक्टिस है उसकी मदद से भी आप लोगों को हेल्प करना चाहती हैं?
0: जी हाँ सर।
1: इसके अलावा आपकी अध्यात्म में भी रुचि

0: है भारती जी,
1: जी हाँ सर।
0: कैसे, क्या करते हैं आप उसके लिए?
1: सर जैसे कि मुझे रामायण सुनना अच्छा लगता है, तो ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है। चालीसा सुनना, सप्तशृंगी सुनना, मुझे मंदिर जाना सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे लाइफ में सिर्फ दो ही काम है, खाना बनाना तो मुझे आता नहीं, पूजा करना और पढ़ना, ये दो ही काम आते हैं मुझे।
0: अच्छा, और कविताएं लिखना?
1: जी हाँ, इसलिए तो
0: कविता
1: मैंने अपनी
0: लिखना?
1: कविताओं का नाम वेद सोच रखा ना सर, क्योंकि मैं उसे कंसीडर सरस्वती से करती हूँ। और बोला जाए तो जो किताबें हैं, वेद पुराण, ये सब वो ज्ञान है जिसके माध्यम से आज हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और जब तक हमारे दिमाग में ही ज्ञान नहीं होगा तो कविता कहाँ से क्या बोलते बनेगी सर।
0: अच्छा, कविताएं लिखना तो ठीक है, कविताएं सुनने का भी शौक है आपको?
1: जी जी हाँ सर, सुनने का शौक है मुझे। सबसे ज्यादा हरीश्वर राय बच्चन की कविता बहुत अच्छी लगती है।
0: हरिवंश राय बच्चन,
1: जी,
0: कोई याद
1: हरिवंश
0: है
1: राय
0: उनकी कोई
1: बच्चन
0: कविता याद है, दो लाइनें आपको?
1: की। जी सर, उतनी ज्यादा याद नहीं है लेकिन सुना है। और अटल बिहारी वाजपेयी की कविता।
0: तो आपके पसंदीदा कवियों में बच्चन साहब हैं और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी हैं
1: जी सर,
0: जी, और किसी जो प्रोग्राम होते हैं कवि सम्मेलनों के,
1: जी
0: वहां
1: सर,
0: कभी गए हैं आप?
1: जी हाँ सर, मैं विदर्भ कवि सम्मेलन में गेस्ट बन के गई थी वहां
0: नहीं,
1: पर।
0: कवयित्री के रूप में गए कहीं आप?
1: जी हाँ, कवित्री के रूप में मुझे गेस्ट बनाकर बुलाया गया था विदर्भ कवि सम्मेलन में सर।
0: अच्छा, कब की
1: अभी
0: बात है ये?
1: ये 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात, जब मैं LLB फाइनल ईयर में थी सर।
0: अच्छा, फिर वहां आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही?
1: सर वहां पे मैंने, बोला जाए तो तुरंत ही कोरोना खत्म हुआ था, तो मैंने उस समय कोरोना को तुरंत एनालाइज किया और अपनी कविता बनाई। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। किसी के मांग का सिंदूर है छीना, बेटे को पिता से छीना था, कितने बच्चे अनाथ हुए, कोरोना विश्व में आया था। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। अब कारखाने में चिमनी धुआं अब ना उगले, अब मंदी चढ़ी बाजारों में, घर में चूल्हे ना जले, अब आग लगी शमशानों में, चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। नई नवेली दुल्हन कितने सपने लेकर आई थी, अच्छे संस्कारों से ससुराल की बगिया को महकाए, वो तो आशाएं लेकर आई थी, कोरोना इसमें नजर लगाए, नई नवेली दुल्हन सफेद लिबास में नजर ही आई थी। हाथों की चूड़िया टूट गई, हाथों की चूड़िया टूट गई, जबकि मेहंदी की हाथों की फीकी ना होने पाई थी। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। जिस पिता ने बेटे को उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था, बुढ़ापे का वो बनेगा सहारा, अपना पेट काट काट कर बड़ा इंसान उसे बनाया था, कोरोना इसमें नजर लगाए, बेटा पिता का सहारा न बन पाया था, अंतिम समय में पिता अपने लाल की सूरत देख न पाया था। यह बेटा पिता को अग्नि देता, यह बेटा पिता को अग्नि देता, पिता ने जलती हुई चिता दूर से देखी थी। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। खुशियां मची है घर में, देखो नन्ना मेहमान आने वाला है, इस घर का कुल दीपक देखो वारिस आने वाला है। सपने सारे सपने रह गए, घर का वारिस माँ के कोख में ही चला गया, किलकारी ना गूंजी घर में, मातम देखो फैल गया। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। और इस कविता ने सर 3 बार मुझे पुरस्कार दिया। त्र्यंबकेश्वर में भी मैंने प्रथम पुरस्कार लिया, LLD कॉलेज में भी मुझे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त हुनर है ये आपका, वाकई में कहना पड़ेगा। लुई ब्रेल साहब, अभी अभी हमने ब्रेल जयंती भी मनाई और
1: जी हाँ
0: वर्ल्ड
1: सर,
0: ब्रेल डे भी मनाया, तो लुई ब्रेल पर भी आपने कोई कविता लिखी है भारती?
1: जी हाँ सर, मैंने वो इंटर पॉइंट पे कविता लिखी थी, जो छह अक्षरों की ब्रेल होती है ना, उस पर कि जैसे वो छह अक्षरों की पार्टी पे, उस पे मैंने अपनी कविता लिखी थी सर।
0: अच्छा, लुई ब्रेल साहब पर नहीं लिखी आपने?
1: जी नहीं सर, वो इंटर पॉइंट पे मैंने कविता लिखी थी।
0: सुनाइए दो, उसकी दो लाइनें
1: छह
0: याद है?
1: अंकों पर देखो, छह अंकों पर देखो आज कितने कमाल में कर गई। कविताओं के सुनहरे अक्षरों को ब्रेल की पाटी पर ही घड़कर देखो शब्दों की रचना घड़ गई। अ आ ई नहीं मैं, अम आहा हूं मैं, तभी तो पूरे शब्दों की बारह खड़ी हूं मैं। न होती वो ही ब्रेल पाटी तो कैसे कविताओं को लिख मैं पाती, और कैसे स्पर्श कर उन कविताओं को मैं खुद ही पढ़ ही पाती। उभरे हुए ये सारे अक्षर, उभरे हुए ये सारे अक्षर सफेद मोती की भांति लगते हैं। कागज में जब कलम से लिखो तो वो काले काले मोती अलग ही जानो लगते हैं, लेकिन मन के दर्पण को देखो आज सफेद रूप में मैंने ब्रेल के माध्यम से आज उतारा है। देखो न काले मोती का सहारा लेकर मैंने सफेद मोती के सहारे से ही तो ब्रेल लिपि के माध्यम से आज अपनी कविताओं के सोच को घड़ ही डाला है।
0: क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो खाली समय में क्या करती है भारती?
1: सर, खाली समय में सिर्फ शब्दों में गुम रहती हूँ कविताओं।
0: अच्छा?
1: से क्योंकि मैं पढ़ के थक जाती हूँ सर। बोला जाए तो मेरी पढ़ाई, बोला जाए तो 8-9 घंटे पढ़ो तो ही मैं पास होगी। तो उसके बाद जब दिमाग पूरा थक जाता है तो मैं अपने शब्दों में कविताओं की दुनिया में समय बिताती हूँ।
0: अच्छा, और फैमिली के साथ समय कब बिताती हैं भारती जी?
1: सर वो तो बहुत कम।
0: तो ये शिकायत नहीं रहती कभी फैमिली को?
1: नहीं, उनको पहले से पता है कि मैं बचपन से अकेला रहना ज्यादा पसंद करती हूँ, अपने किताबों के साथ और जब दिखता था तो अपने आर्ट के साथ। तो उन्हें पता है कि मैं ज्यादातर शांत अपने रूम में रहना पसंद करती हूँ, तो कोई परेशान भी नहीं करता। उसे पता है ज्यादातर मेरे कान में हेडफोन होता है सर, कि मेरी रिकॉर्डिंग चलते रहती है यूट्यूब की, तो मम्मी को पता रहता है कि पढ़ रही करके, तो कोई डिस्टर्ब तो करता नहीं है।
0: आपके फैमिली में भारती जी किसी और को भी कभी ये प्रॉब्लम हुई आंखों की? या
1: जी
0: आप
1: नहीं,
0: ही पहले
1: सर, किसी को नहीं हुई, परिवार में सभी देख सकते हैं, सिर्फ
0: आपको
1: मैं
0: ही हुई। आपको हुई। अच्छा भारती जी, कुकिंग वगैरह का भी कुछ है शौक या वो नहीं करती हैं बिल्कुल भी आप?
1: सर वो बताते हुए तो मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे चाय बनाना भी नहीं आता।
0: आपको नहीं लगता कि नॉर्मली ये सभी ज्यादातर लोगों की ये दिक्कत रहती है ब्लाइंड होने के बाद, तो आपको इस फील्ड में भी मतलब कोशिश करनी चाहिए, या आपको फैमिली करने नहीं देती है?
1: सर पहली बात तो मुझे खाना बनाना ये बिल्कुल नहीं पसंद है।
0: अच्छा, आपको लगता है जोमेटो स्विगी है, कहाँ दिक्कत है, क्यों?
1: जी हाँ, वैसे है ना सर, मम्मा है।
0: नहीं नहीं, कभी अकेले भी अगर हुए किसी मामले में तो ऑर्डर कर देंगे
1: ना, उनके घर चले जाऊंगी खाना खाने,
0: उनके घर चली जाऊंगी, ये भी ठीक है। इसलिए आपको कुकिंग पसंद नहीं है?
1: जी बिल्कुल नहीं पसंद है।
0: और इसीलिए उस तरफ आपने
1: कुकिंग के साथ मुझे खाना खाना भी नहीं पसंद है सर।
0: ओ, तो इसीलिए आपने
1: बोला जाए तो मैं चल फिर पाऊं,
0: जीने के लिए खाना पड़ता है।
1: जी हाँ,
0: और इसीलिए आप उस फील्ड में नहीं गए, वरना कुकिंग में भी आप अपना हाथ आजमा सकते थे, राइट?
1: जी जी जी।
0: चलिए, तो कोई नहीं, ये पता चला हमको कि भारती कुछ ऐसा भी है जो भारती जी को नहीं आता है।
1: जी हाँ। तो सर अगर सभी इंसान सभी तरह से संपूर्ण हो जाए तो भगवान की जगह ले ले, हम इंसान है इसलिए तो हमने कुछ ना कुछ कमियां होती है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने कि हर एक में कोई ना कोई कमी होती है। भारती जी बताइए कि तो जीवन तो अच्छा खासा चल ही रहा है, अब डिप्रेशन से अब आप बाहर आ गए हैं, बल्कि आप खुद बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन गए हैं, कुल मिला के सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अब कभी बात होती है फैमिली में शादी वगैरह के बारे में?
1: सर पहले से मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ, शादी के मैं खिलाफ हूँ, और इसीलिए अच्छा। भाई को भी पता है कि अगर शादी की बात की जाए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, फिर 2 पॉइंट ब्लड पे चले जाऊंगी, इसलिए ये सब बातें तो कोई करता ही नहीं। और मुझे सिर्फ पूजा पाठ करना और पढ़ाई करना पसंद है, थर्ड चीज के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, शादी ब्याह इन सब के बारे में कभी सोचा नहीं सर, और ना ही कभी सोचूंगी।
0: आपने तो नहीं सोचा कभी फैमिली, मम्मी वगैरह पापा वगैरह?
1: नहीं नहीं, भाई ने भी कभी प्रेशर नहीं डाला, ना ही पापा ने ना ही मम्मी ने।
0: अच्छा, ओके। और आपने ये सोच ही रखा है कि आपको अकेले मतलब रहना है, मैंने यानी बिना शादी के ही आपको रहना है ना?
1: जी जी जी सर।
0: अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने डिसीजन में बिल्कुल पक्के हैं, ये आपने सोच रखा।
1: जी हाँ सर।
0: इस वजह से कोई बात भी नहीं करता है?
1: नहीं नहीं नहीं, मैं बीएफ और जीएफ वालों से पहले ही दूर रहती हूँ सर, क्योंकि मुझे वो आध्यात्मिक विषय पसंद नहीं है। हाँ पढ़ाई के टूवर्ड्स अगर मुझे कोई मेरे दोस्त मेरी किताब लेके अगर वो अपनी आंखों से देख देख के पढ़ रहे हैं तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए मेरे दोस्त बोला जाए तो गिनती के 3 या 4 दोस्त हैं अभी तक, और इससे ज्यादा दोस्त नहीं बने कभी, वो मुझे बोरिंग समझते हैं।
0: भारती जी होता क्या है ना कि जो आप कह रही हैं वो एक पहलू हो सकता है, लेकिन हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है ना कि जो समाज में कई सारी चीजें होते हैं उनमें से विवाह भी एक है, शादी ब्याह भी एक उसमें से।
1: हाँ सर आपकी बात सही है
0: जी, इसलिए हर कोई गलत हो ऐसा भी नहीं है।
1: नहीं सर देखो हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन मैं इंटरफेयर भी नहीं करती हूँ किसी के मामले में, क्योंकि ऐसी बातें मैं अपने विचारों से शादी के खिलाफ हूँ, मेरे दोस्त हो ये जरूरी थोड़ी ना,
0: जरूरी नहीं, इसीलिए मैं कह रही
1: हूँ अपनी लाइफ जिए, लेकिन मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ किसी केस में।
0: बिल्कुल ठीक। तो अब तो आंखों को लेकर के तो आप चिंतित नहीं है कि क्योंकि अब आपने एक राह पकड़ ली है, अब अच्छी चल रही है जिंदगी आपकी, या अभी भी आपको कभी कभी अकेले में ख्याल आता है कि अरे कहां ही गड़बड़ हो गई है सब आंखों को लेकर?
1: जी कभी कभी आता है कि मुझे कैसे, मुझे पढ़ने का शौक है और कभी रिकॉर्डिंग जल्दी नहीं मिलती, तो उन किताबों को पढ़ने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है कि काश मेरे पास आंखें आ जाए मैं पढ़ लूं, मैं खुद पढूं, ना कि रिकॉर्डिंग में कब रिकॉर्डिंग मिलेगी और कब कोई सर्च करके देगा, क्योंकि एलएलएम की सारी नोट्स अभी गूगल से सर्च करना है सर, कोई मार्केट में किताब नहीं है, तो जब वो आगे वाला सर्च करके देगा उस टॉपिक पे तभी मैं पढ़ूंगी, और मुझे रोज पढ़ने की आदत है, एकदम से पढ़ना नहीं होता मुझसे, तो इसीलिए ये चीज का एहसास होता है सर कि मैं खुद करूं जल्दी से पढ़ूं और मेरा सिलेबस पेपर के पहले मैं पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लूं, तो होती है ये चीज का एहसास होता है,
2: अवेलेबल नहीं हमारे को।
0: तो भारती आपका जो जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पसंदीदा टॉपिक कौन सा है क्रिमिनोलॉजी में?
1: हाँ सर मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा टॉपिक है जो मेरी मैम पढ़ाती है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 14 के बारे में उन्होंने मुझे पढ़ाया था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन कोरोना के समय मुझे एहसास हुआ कि इक्वालिटी किधर है, जब मैंने ये देखा कि क्या बोलते सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, उन किताबों को सिर्फ मैं देख सकती हूँ, उन काले अक्षरों को मैं पढ़ नहीं सकती, तो शिकायत सबसे पहले मेरी भगवान से थी, मैंने भगवान से कहा कि मेरी मैडम आर्टिकल 14 पढ़ाती है इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो भगवान मेरे प्रश्नों का उत्तर दो कि संविधान की किताब मैं पढ़ती हूँ समान अधिकार, सोच सोच खुश हो जाती हूँ, फिर भगवान से शिकायत करती हूँ तेरी दुनिया में भगवान समान अधिकार न दिए दुनिया में लोगों को, भविष्य के वकीलों की कतार लगी है, मैं गुनहगार बनकर कटघरे में खड़ी नजर आई, सब आंखों से देख के पढ़ते भगवान मैं कानों से सुनती पढ़ती हुई नजर आई, सोचा ना था पहला मुकदमा अपने आप के लिए ही लड़ना होगा, अपनी कमजोरी के संग आगे मुझे ही बढ़ना होगा, तो हर लेक्चर ने मुझे एक कविता दी, और ज्यादातर मेरी कविताएं मेरी मैम जो पढ़ाती गई तो साइड बाय साइड मेरे नॉलेज के साथ वो मुझे कविताओं की भी सौगात देते गए।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि नॉलेज तो जब बढ़ता जाता है तो फिर हमारा सोचने समझने का जो दायरा है वो भी बढ़ता जाता है, और कहीं ना कहीं वो आपकी कविताओं में भी दिखता है। बिल्कुल ठीक। तो आए दिन रोज अखबारों में क्राइम की खबरें तो छाई रहती हैं भारती जी, परेशान नहीं होती हैं आप उन सबको पढ़ करके देख करके?
1: नहीं।
0: अच्छा आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं?
1: मंदिर में अपना मूड क्रिएट करने चले जाती हूँ, क्योंकि
0: आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं?
1: समाज में होते ही रहेगी।
0: न्यूज़पेपर पढ़ती हैं भारती आप?
1: जी हाँ सर।
0: कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती हैं?
1: भाई पढ़ते हैं तो मैं सुनते रहती हूँ नवभारत, दैनिक भास्कर, तो वो बताते हैं कोई अगर खबर आई तो पूरा पेपर तो वो मुझे बता नहीं सकते पढ़ के, लेकिन मम्मा बताती है जैसे क्या हो रहा है समाज में तो मम्मा बताती है, और इच्छा होती है कि पूरा न्यूज़पेपर पढूं, लेकिन तो भी उतने ही सेटिस्फाइड हो जाती हूँ जितना भाई पढ़ के बताते हैं।
0: कोई ऐसा केस आपके सामने आया, आपने कभी उस पर आपका ध्यान गया हो जिसने आपको अंदर तक हिला करके रख दिया हो? और जो
1: पहली बार तो वो निर्भया केस जो हुआ था
0: जी,
1: और अभी जो क्या बोलते वो डॉक्टर का केस जो हुआ, तो ये बोला जाए तो बहुत ही इतना दहशत थी कि ऐसा लग रहा था कि इंसानियत शायद अभी रही नहीं।
0: बिल्कुल सही कह रहे जी। अच्छा भारती, काफी हम कविताएं तो सुन ही रहे हैं आपसे और प्रोग्राम में बातचीत भी चल रही है, मम्मी पर भी कभी कुछ लिखा है आपने? माँ पर?
1: जी हाँ जी। मम्मी पे लिखा है, माँ की ममता का तुमको महत्व आज बताऊं, उसके अनमोल प्यार की मैं कीमत कैसे लगाऊं। जिस माँ की बेटी दिव्यांग हो जाती है वो अपने मम्मी के चिंता का कारण बन जाती है। कॉलेज में जब बेटी जाती माँ चिंतित हो जाती है, सही सलामत मेरी लाडली घर को आ पाती है। माँ की ममता का तुमको महत्व आज बताऊं, उसके अनमोल प्यार की मैं कीमत कैसे लगाऊं। घर के सारे काम करे पर मन बेटी में होता है, बुरी बुरी बातों से उसका मन घेरा हुआ होता है। लोगों की बुरी नजरों से क्या मेरी लाडली बच पाती है, सही सलामत मेरी लाडली घर को आ पाती है। माँ की ममता का तुमको महत्व आज बताऊं, उसके अनमोल प्यार की मैं कीमत कैसे लगाऊं।
0: बहुत अच्छे, बहुत खूब। वही मैं इसीलिए मुझे लगा कि इस पर जरूर आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो अभी आंखों की दवाई वगैरह भी चल रही है आपकी?
1: जी नहीं सर,
0: अब सब बंद। तो बहुत खूब भारती जी, काफी अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और मुझे लगता है बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी आपकी बातें सुन करके। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है मन की आंखों से, आपने अपनी आंखों की रोशनी के कम होने के बाद, इतने सालों तक डिप्रेशन में रहने के बाद, अपने आप को जिस दमदार तरीके से खड़ा किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत जबरदस्त बात है ये। तो नागपुर के बाहर कहाँ गए आप प्रोग्राम के लिए भारती?
1: सर मैं त्र्यंबकेश्वर गई ना, और क्या बोलते हैं अभी अयोध्या जाऊंगी, इसके पहले भी मैं सर
0: गए कहाँ अभी वो बताइए, अभी तक कहाँ गए हो?
1: सर अभी तक तो मैं इधर ही तक गई हूँ, नागपुर के बाहर नहीं गई हूँ। बोला जाए अच्छा। तो त्र्यंबकेश्वर इधर तक ही गई हूँ, बॉम्बे तक गई हूँ बस, उसके आगे नहीं गई सर।
0: अच्छा, मतलब अभी तो आप महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकले हैं?
1: नहीं नहीं नहीं सर।
0: और ज्यादातर प्रोग्राम आपके नागपुर में ही होते हैं?
1: जी हाँ सर, यहीं पे हुए।
0: तो हर महीने एक आध प्रोग्राम हो जाता है?
1: सर हर महीने बोला तो 5-6 प्रोग्राम हो जाते हैं।
0: अच्छा 5-6 प्रोग्राम हो जाते हैं। इसमें कुछ आपको भारती जी हम जानना ही चाह रहे हैं कि कुछ मतलब आर्थिक सहयोग भी मिल जाता है या केवल परफॉर्मेंस के तौर पर?
1: वैसे तो कॉलेज के जितने भी कॉम्पिटिशन हो तो उस लिफाफे में 1,000-2,000 ये तो मुझे मिल ही जाते हैं। और त्र्यंबकेश्वर में भी मैंने जब प्रथम पुरस्कार जीता तो उसमें मुझे 2,000 रुपए प्रथम पुरस्कार दिया गया।
0: यानी कुल मिला के आप जहां भी जाते हैं प्रोग्राम के लिए वहां पे एक तरह से आपको आर्थिक सहयोग भी मिल जाता है, आपकी पॉकेट मनी भी निकल जाती है, आराम से आप अपना खर्चा भी निकाल लेती हैं, राइट?
1: जी सर।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: पॉकेट मनी नहीं, मेरे जो भी पैसे आते हैं वो भगवान के मंदिर में जाते हैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं जैसे कि जिस उद्देश्य से मैं चल रही हूँ कि ये कविताओं के पैसे मैं अपने दिव्यांग दोस्तों के लिए कल चल के उनको सहयोग करूँ, तो जब तक मैं कुछ नहीं बन जाती तो वो अमानत तो मंदिर की दान पेटी की है ना, तो मेरे लिफाफों के सारे पैसे मंदिर में जाते हैं।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छी बात है भारती जी, आपको जो एक कला आपके अंदर है कविताएं लिखने की और कविताएं सुनाने की, सबसे बड़ी बात इंस्टेंटली यानी तुरंत शीघ्रता से किसी भी विषय पर कविता लिखने का ये जो हुनर है ये बहुत ही अच्छा है, और आगे और इसमें आप तरक्की करें यही हम चाहते हैं, और जिंदगी में आपके जो भी सपने हैं वो सब पूरे हों। और जो अब आंखों की जो समस्या है उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरीके से परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि आप तो अब लोगों को रोशनी एक तरह से दिखाने का काम कर रही हैं, रास्ता दिखाने का काम कर रही हैं, तो उसी में ही आपको लगे रहना चाहिए। रेडियो मधुबन पर आज मन की आंखों से कार्यक्रम में आपने आकर के इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि चलते चलते कार्यक्रम के अंत में आप हमारे श्रोताओं को कोई प्रेरणादायी कविता सुनाएं, और आप क्या कहना चाहते हैं, आपका मैसेज क्या है लास्ट में?
1: अपने श्रोताओं से मैं इतना कहना चाहूंगी, आप सभी के सहयोग के कारण ही तो आज मैं आगे बढ़ ही पाई हूँ। आप न होते हर मंच पर जब मैं कविताओं की सोच प्रस्तुत करती हूँ तो कैसे मेरे कविताओं में नई रंगत मैं ढा पाती, और आप सभी के सहयोग के बिना कैसे कविताओं की दुनिया में मैं रंग जमा ही पाती। धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत खूब भारती जी, ये भी शीघ्रता से आपने लगता है सोच लिया अभी अभी, है ना
1: जी।
0: चलिए बहुत खूब, तो आपको आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भारती जी, आज एक बार फिर से आपने जो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। तो श्रोताओं,
1: धन्यवाद सर।
0: मन की आंखों से कार्यक्रम आप सबको जरूर पसंद आएगा, उम्मीद करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा 94-14-15-14-15 पर। मिलते हैं फिर किसी और कार्यक्रम में, तब तक दीजिए इजाजत मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ने ये सीरीज शुरू किया है लाइट लेट्स इग्नाइट टुगेदर करके, और इसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग सब टॉपिक्स पे बातें करते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक हमारा जो है एजुकेशन विद ह्यूमन टच, इस विषय को लेकर बातें करेंगे, जहाँ पर हमारा शिक्षा तो हो, शिक्षा के साथ में हमारी मानव मूल्य भी हमारे साथ हो, मानवता भी हमारे साथ हो, और एक संवेदना जो हमारे साथ होनी चाहिए वो हमेशा बनी रहे। कई बार होता है कि हम लोग स्वार्थ बस एजुकेशन तो ले लेते हैं, नंबर आगे भी ले लेते हैं, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं वो संवेदना या ह्यूमन टच जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो शिक्षा ये नहीं कहता कि आप मानव होके मानवता के गुणों को भूल जाओ, है ना। शिक्षा का प्राथमिकता यही है कि पहला पेज जब आप पन्ना खोलते हो किसी भी टेक्स्ट बुक का, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये पहली लाइन हमारी प्रार्थना भी होती है, जो 365 दिन हम 10 साल तक रटते हैं, लेकिन जब 10 साल पूरे हो जाते हैं या हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है, उसके बाद शायद वो पहली लाइन ही हमें पूरी तरह से कार्यबंध करने में मुश्किल लगती है। तो कितनी बड़ी विडंबना है शायद। आज इसी विषय को लेकर ह्यूमन टच क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो हमारे साथ विशेष आज के मेहमान हैं खास नवनीत अरोरा सर, आप IIT रुड़की से जुड़े हुए हैं, और आपको यहाँ देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे अपना सौभाग्य समझता हूँ आपको इंट्रोड्यूस करने में। आप शिक्षाविद हैं, काफी समय से इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं, एजुकेशन विद ह्यूमन टच इस विषय को लेकर आप बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चों के अंदर जो इनबिल्ड संस्कार होनी चाहिए वो शायद आपको सुनने के बाद हर बच्चा जो है जरूर याद रखेगा कि हमारी शिक्षा जो है हमें क्या सिखाती है और हमारा जीवन कैसा होना। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते नवनीत सर, बहुत बहुत स्वागत जी। अमित जी, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने नवनीत सर को यहाँ पर जोड़ा है, और हमारे दर्शक मित्रों में से जलगांव से सुभाष जी ने ओम शांति और आप सभी का भी स्वागत भेजा है उन्होंने। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम लोग चाहेंगे नवनीत सर आप थोड़ा सा अपने बारे में, वर्तमान में आप जिस खूबसूरत स्थान पर बैठे हैं ऋषिकेश, वहाँ का थोड़ा नजारा हमें बताइए और कैसे वहाँ पहुँचे आप।
1: अच्छा, चांस की बात देखिए, बड़ा हिस्टोरिक दिन है मेरे लिए भी। हाँ, मैं भी यहाँ गुजरा तो सैकड़ों बार हूँ, यहाँ से आया भी बहुत बार हूँ, लेकिन क्योंकि रुड़की इज वेरी क्लोज टू ऋषिकेश।

0: बीटेक मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से किया था, आज से 34 साल पहले पास आउट हुआ था,
1: जी जी
0: 1988। फिर मैंने एमटेक किया रुड़की से, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं एमटेक वेल्डिंग में, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, और मुझे लगभग 32 साल हो गए हैं टीचिंग में,
1: क्या
0: जिसमें
1: बात
0: से 1.5 साल पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ पढ़ाया, 7 साल कुरुक्षेत्र एनआईटी आलमा मैटर में पढ़ाया, और यहाँ पर मुझे 24 वर्ष हो गए हैं आईआईटी रुड़की में। तो हमारे यहाँ कई पोस्ट होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर। तो मैं पिछले लगभग 8-9 साल से प्रोफेसर के पद पर हूँ। ये थोड़ा सा परिचय है। इसके अलावा दो ऑर्गेनाइजेशंस मैं रन कर रहा हूँ, एनजीओ कह लीजिए, ट्रस्ट कह लीजिए, और उसमें काफी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे सेवाएं काम होते हैं। सेंटिव टेम्परामेंट, ह्यूमन वैल्यूज, और जो गरीब लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड, उनकी एजुकेशन में हेल्प करना, बहुत से काम है जो चल रहे हैं। तो कभी
1: बिल्कुल
0: फिर
1: बिल्कुल
0: नजदीक नजदीकी और बढ़ेगी, किसी को इंटरेस्ट होगा तो बताया जा सकता। और फिलहाल मैं आईआईटी रुड़की के अंदर एक गूंगे बहरों का स्कूल है, अनुश्रुति एकेडमी फॉर द डेफ, उसमें मैनेजर के पद पर एडिशनल काम भी कर रहा हूँ। ये छोटी बहुत बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी
1: बिल्कुल
0: बात है मैं खुश बहुत हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। और अंदर से एक होता है दिखाने के लिए, एक होता है अंदर से खुशी है, उसके बहुत से कारण है, और उसका बहुत
1: सही
0: बड़ा कारण यह है कि एजुकेशन का मतलब समझ में आया है, कि एजुकेशन इज नॉट गैदरिंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, डिग्रियां इकट्ठी करना या नॉलेज इकट्ठा करना, उसको रिप्रोड्यूस करना कागजों पर, वो नहीं है। एजुकेशन वो तमीज है, वो सेंस है, वो संवेदना है। अगर मैं उसको एक लाइन में कहूं कि हम नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, उसके सारे किंगडम्स के साथ कैसे मेल में रहें, पशुओं के साथ
1: बिल्कुल
0: भी, पौधों के साथ भी, इंसानों के साथ भी, पर्यावरण के साथ भी। नेचर इज नॉट ओनली प्रकृति, ये नहीं कि पेड़ पौधे हैं। प्रकृति मीन्स ह्यूमन काइंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इनएनिमेट वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, सारे एस्पेक्ट्स कवर करके द टोटल नेचर। उसके साथ जितना हम हार्मनी में रहते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को उसके लिए ब्लिसफुल बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे हैं। और वो अनपढ़ भी पढ़ा लिखा हो सकता है, कभी अनपढ़ थे लेकिन होश की बात करते थे, तो हम उनको पढ़ा लिखा मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं दिल से। तो उसके लिए डिग्रियां काफी नहीं है, डिग्रियां एडिशनल है। इसका मतलब नहीं अपनी डिग्रियां फाड़ दें या पढ़ाई लिखाई ना करें, वो भी जरूरी है कि करें। और लेकिन ये चीज है कि जितनी हमारी जिंदगी दूसरों के साथ मेल में है, उनके लिए फलदायक है, वरदान है, उतने हम पढ़े लिखे कहे जा सकते हैं। ये बेसिक चीज समझ में आई है। और ह्यूमन वैल्यूज का टच बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ। बड़ा कोई भी सकता है जो गुणों से बड़ा है। छोटी बच्ची भी कोई है, बच्चा भी है, वो भी बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ों की इज्जत इसलिए करता हूँ, चाहे उम्र के लिहाज से हो, चाहे पद के लिहाज से हो, चाहे गुणों के लिहाज से हो, क्योंकि उनमें मेरे से गुण ज्यादा है और अच्छाइयां मेरे से ज्यादा है। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, चाहे कभी हुए हैं, किसी धर्म में हुए, किसी जाति में हुए, किसी देश में हुए, पूरे विश्व में जो भी शख्स गुणों के कारण, वैल्यूज के कारण मेरे से श्रेष्ठ है, मेरे लिए नमन के काबिल है। और जो छोटे हैं, अजीज हैं, ठीक है, उनको अभी खिलने का, बढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उनके गुनाह मेरे से कम है, उन्हें गलतियां मेरे से कम की है। दे आर रिस्पेक्टफुल अगेन बिकॉज ऑफ दैट पार्ट। जो चीजें सीखी हैं, मैं आपको बहुत थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा, मैं पीपीटी बना सकता था, बहुत सी चीजें दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमारा स्टाइल ही होता है टेक्नोक्रेट्स का, चीजों को प्रोड्यूस करने का, डाटा चीजें बहुत जानते हैं। मैं सिर्फ आज के इसमें जो भी सुन रहे हैं, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो कभी काम आएगी, वो चीजें बताना चाहूंगा जो मुझे समझ में आई। जानते हैं
1: बिल्कुल
0: बहुत कुछ
1: बिल्कुल
0: है, हम समझते बहुत कम है, जानना बहुत होता है, समझ कम होती है। और
1: समझ कम
0: एक मैथमेटिक्स होता है सेट, सबसेट, देन सबसेट, ये सेट है, ये सबसेट, फिर छोटा होता है सबका सबसेट। होता क्या है कि हम जानते इतना है, और कई बार ज्यादा जानकारी से हमारे अंदर अहम आ जाता है कि हम इतना जानते हैं, मुझे इतने अध्याय याद हैं, इतने श्लोक याद हैं, जो भी जिस भी हम संस्था जुड़े हैं या किसी ग्रंथ से जुड़े हैं, तो उसको याद करना और उसका ज्ञान होना बहुत बड़ा पांडित्य और बड़ी बात समझी जाती है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि मैंने बहुत लोगों से पाला पड़ा है, एक लेवल के बाद जब ज्ञान ज्यादा हो जाता है, वो अहंकार बढ़ा देता है और उसके काम का भी रह जाता। तो मेरा मानना है कि ज्ञान थोड़ा कम हो तो चलेगा, उसकी समझ ज्यादा जरूरी है। अगर समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो अहम नहीं आता। और उससे भी ज्यादा कहीं जरूरी है कि समझ तो है। मान लो मुझे ज्ञान है कि सिगरेट पीना नुकसानदायक है, एज ए डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर हूं, तो मैं, मेरे साथ कौन जाने, एमबीबीएस हूं मैं बाय चांस, तो मैं बेस्ट बता सकता हूं कि कौन सी चीज क्या खाना हितकर है, क्या नुकसानदायक है, इफ स्मोकिंग की बात करें हार्मफुल है, लेकिन समझ नहीं रहा हूं, खुद पी रहा हूं, तो क्या समझ रहा हूँ फिर मैं, ऐसा ज्ञान का क्या लाभ है। तो उससे बड़ी बात है कि समझ के बाद अगर आप जानते हैं, उसको जीवन में धारण नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान वही काम की बात है, हमारे लिए वही चीज काम की है जो मेरे जीवन में उतर गई। जो ज्ञान जीवन में ढला नहीं, जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं, मैं कड़वा शब्द यूज करता हूँ, बोझ है आपके ऊपर। वो ज्ञान जरूरी है, लेकिन उसको ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो हम सुन रहे हैं इसको समझें और जीवन में धारण करें। तो मैं कुछ ऐसी बातें प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, समझता भी हूँ किसी हद तक, और जीने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, और जीने से जो आनंद आ रहा है वो आपके साथ अपना आनंद ही शेयर कर रहा हूँ। पहली बात, एक लाइन पड़ी थी, ये आंधी है दरख्तों को चटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। जब आंधियां आती हैं, दिखते हैं तकलीफें जिंदगी में आती हैं, हर एक की आती

0: है तो जो दरख्त हैं वो चटक जाएंगे, जो अकड़े हुए पेड़ हैं वो उखड़ जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं बड़े बड़े पेड़, और जो
1: बिल्कुल
0: टहनियां जो कोंपले जो घास झुक जाती है वो
1: झुक
0: जिंदगी
1: जाती है और रह
0: में
1: जाती।
0: लचक के साथ कामयाब हो जाती है। ये बात बड़ी दिल से समझ में आई, मैंने बहुत लोगों के जीवनों को बहुत पास से देखा कि बहुत अकड़ के चक्कर में वो सच्चा सम्मान ही नहीं पा पाए, और थोड़ी अकड़ कम होती तो ज्यादा इज्जत मिलती। तो झुकते हैं वही,
1: मुर्दे
0: एक लाइन और पड़ी थी, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है।
1: की
0: शायद
1: पहचान
0: हमें से कई बच्चों ने तो मुर्दा ढंग से देखा नहीं होगा, लेकिन आप मुर्दा मुर्दे को देखे ना तो उसको कफन पहनाना ही मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत नजदीक से अपने कई बुजुर्गों को देखा है कि कपड़े भी फाड़ के पहनाते हैं साथ में उसको। जो मेरे पापा मेरे दादा जो फ्लेक्सिबल थे, जब उनके अंदर से जान निकल गई ना तो ये शरीर मुड़ता नहीं है, अकड़ जाता है, मुर्दे की निशानी है अकड़ना। तो जिंदगी में प्रैक्टिकली मैं चलते हुए आपसे बात करते हुए आपसे मिलते हुए पत्नी के साथ माँ बाप के साथ अपने विद्यार्थियों के साथ अपने पड़ोसी के साथ अगर अकड़ के चलता हूँ कहीं भी किसी छोटे व्यक्ति के साथ, मान लो कोई रिक्शा वाला है कोई गरीब है मजदूर है और मैं अकड़ के बात करता हूँ तो समझो मेरे में जान नहीं है, मैं मुर्दा हूँ। ये बात नहीं समझ में
1: बिल्कुल
0: आती है। और
1: बिल्कुल
0: कहते हैं गरूर ना कर शाहे शरीर का, ये शाहे शरीर है चमक दमक है चेहरे पर अभी कायम है, ये इसकी अकड़ करने की जरूरत नहीं है। गरूर ना कर शाहे शरीर का मेरा भी खाक होगा, ये दूसरे के लिए भी है अमित जी, आपके लिए भी मेरे लिए भी सच है, मेरा भी
1: मैं
0: खाक होगा
1: आप
0: तेरा भी खाक होगा, हम सब
1: जी
0: समाप्त होने के लिए हैं शरीर रूप से।
1: बिल्कुल
0: इसलिए अपने शरीर का अपने धन का अपनी चीजों का जो नाशवान है उनका कभी भी अकड़ नहीं करना। जिंदगी में कितना भी ऊंचा उठो रिमेन हम्बल, रूल नंबर वन। जिंदगी में हम कामयाब उसी को समझ सकते हैं सही मायनों में जो विनम्र रहता है। देखिए आपकी पर्सनैलिटी को जो बहुत इफेक्ट करती है, दैट इज हम सोचते हैं कि बहुत पावरफुल आदमी वो है, पावर की आंकना ऐसी की जाती है कि वो कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। मैं समझता हूं कि सफलता का जो दूसरा पैमाना मेरे सामने है, सफल वो है जो स्वयं को कंट्रोल कर सकता है, और उसने खुद को कंट्रोल कर लिया बस सब काम सही हो जाएगा फिर। और सबसे पहले जो सेल्फ कंट्रोल है उसमें है बोलना। आप सही बोलते हैं तभी लोग बुलाते हैं, वक्ता के रूप में भी, और दोबारा भी आपका नंबर तब लगेगा, नहीं तो आने देंगे अमित जी और रमेश जी मिलकर के कैसे नलायक को बुला लिया, इसको बोलने की अकल नहीं। पहली चीज वही है कि जो आप बोल रहे हैं आपका कंट्रोल होना चाहिए। जिंदगी में सीखिए, आपकी जबान पर अगर आपको तमीज नहीं है, कंट्रोल नहीं है, आपका कैच नहीं है, पकड़ नहीं है, तो आपकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। आप कैसे इंसान में बाद में पता चलेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, आप कैसा बोलते हैं वो पहले समझ में आएगा। तो सोचो वही जो बोला जा सके, सोचो वही जो बोला जा सके। आपको पता है कि जो बोला नहीं जा सकता वो सोचते रहोगे तो किसी दिन स्लिप ऑफ टंग हो जाए। हम कहते भी हैं यार मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो स्लिप ऑफ टंग इसलिए हुआ कि हम वो चीज सोचते रहे जो बोलने नहीं थी चाहिए थी। तो अगर आपको पता है जो मैं बोल नहीं सकता बिकॉज ऑफ माय पर्सनालिटी माय स्टेटस, मैं एक प्रोफेसर हूं या पढ़ा लिखा हूं या पिता हूं या एक मेरा एक स्टेटस है, मैं वो बात नहीं कह सकता ना आपको। जब मैं कह नहीं सकता तो मेरा मानना यह है जो मैंने थंब रूल बनाया कि अपना दिमाग खराब क्यों करना सोच सोच के, फिर वो जो मुझे कहना नहीं है वो मुझे सोचना भी नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: अब बोलना क्या है, बोलने के भी चेक पॉइंट है एक बड़ा मजेदार, कहते बोलो वही जिसके नीचे हस्ताक्षर कर सको। मान लो मैं अपने किसी अजीज को अपने किसी कुली को कहूं तेरा दिमाग ठीक नहीं है, कह दो मैं दिया और वो लिख के ले आया कि ये मैंने लिखा है मेरा आपका दिमाग ठीक नहीं है, अब साइन कर दीजिए, मैं साइन करूंगा, साइन नहीं करूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा। जब इसका मतलब जिस चीज पे मैं साइन नहीं कर सकता, जिसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मुझे बोलना भी नहीं। दो बैरियर है मेरे माइंड में जो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना, एक बार डिसिप्लिन में अपने आप ढाल लिया काम आसान हो गया। जो चीज मैं लिख के नहीं दे सकता दूसरे को, कहना नहीं तू पागल है, तेरे गधा है, तेरे अकल नहीं है, तू समझता क्या, ऐसी बातें क्यों बोलनी किसी को भाई जो आप लिख के नहीं दे सकते, जो आने वाले टाइम में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिसपे आपको कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी बातें कहने का अपने आप को ही ट्रेनिंग प्रोसेस है, अपने आप को ट्रेन करना है, स्वयं को नियंत्रित करना है, अभ्यास डालने की बात है कि मैं वो नहीं बोलूंगा जो मैं लिख के नहीं दे सकता, और जो मैं बोल नहीं सकता फिर वो मैं सोचूंगा क्यों। और ज्यादातर क्या होता है, लोग केवल लिख के नहीं देते, बोलते भी नहीं, लेकिन मन खराब करते रहते हैं, अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। ये पोल्यूशन जो यहाँ है ना, इसको भी घटाना है। अपना सुकून बहुत जरूरी है। जब यहाँ ही गाली नहीं है, अब शब्द मेरे यहाँ ही नहीं है, तो उसका सुकून मुझे है। एक बात और याद रखने वाली है, वाणी के ऊपर बात चल रही है, तो आप कब सही थे से कोई याद नहीं रखता। मैं अब एक घंटा आपके बीच में हूँ बोलने के लिए, हो सकता है मैं एक घंटे में 60 बातें अच्छी कर जाऊं, लेकिन अगर मैंने एक अपशब्द यूज कर दिया, कोई गलत बात बोल दी, तो 10 साल बाद भी अगर अमित जी कहेंगे रमेश जी को कि नवनीत जी को बुला लें, तो रमेश जी कहेंगे अच्छा वो प्रोफेसर जिसने ये शब्द यूज किया था। 60 में से 59 मेरी बातें निकल जाएंगी सही वाली, गलत एक पकड़ी जाएगी। याद रखिए बात, आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे कोई कभी भूलता नहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं सॉरी कर लो, वेरी सॉरी कर लो, पैंव पकड़ लो। मैं कहता हूं अपने ऊपर इतना, हमारे ऊपर इतना प्यारा से, हम बहुत प्यारे इंसान है ना, तो हमें इतना प्यारा नियंत्रण अपने ऊपर होना चाहिए ताकि मैं माफी मांगने की जरूरत ही ना पड़े मेरे को। ऐसी स्थिति क्यों आए, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बेइज्जती कराऊं अपनी। पहले से ही अगर मैं प्लान वे में काम करूंगा तो ऐसी गलतियों से बचा जा सकता। पका हुआ फल जैसे होता है ना, पका हुआ फल की पहचान होती है। एक तो आम है या पपीता है, हम ले जाते हैं ना, एक केला भी, कोई फ्रूट देखिए आप। एक तो पपीता, जैसे मैं आज सुबह ही खाया, मैंने काटा, बड़ा एंजॉय करता हूँ पपीता, बड़ा अच्छा मिल जाता है कई बार, तो उसमें एक तो नरम हो जाता है, दबा के पड़ जाता है। देखा आपने कभी पपीता को दबाइए, आप पता नरम हो गया। एक उसको टेस्ट, अगर मेरी आंखें बंद कर दीजिए, मेरे मुंह में डालेंगे तो मैं पका हुआ बता दूंगा, वो ना कच्चा होगा ना स्मेल वाला होगा, वो मीठा होगा। कोई भी फल एक नरम हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, मीठा, मीठा हो जाता है, मीठा, स्वीट। आमतौर पर स्वीट फल जो होते हैं स्वीट हो जाते हैं, चाहे अंगूर है, चाहे पपीता है, चाहे आम है। और तीसरा उसका रंग बदल जाता है, रंग बहुत सुंदर हो जाता है, दूर से ही पता चल जाता है, रेडी वाले को देखते हैं हम रुक जाते हैं कि इसका रंग बहुत सुंदर है पपीते का, और जब टेस्ट करके देखते हैं तो मीठा निकलता है, और दबा के देखते हैं नरम निकलता है। तो तीन गुण हो जाते हैं एक मीठे फल में, आमतौर पर पके हुए फल के अंदर, नरम, मीठा और उसका रंग, कलर।
1: नवनीत सर एक बात और पूछना चाहूँ, एक बात हम लोग अभी जो है अमित सर के पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, तो वो चाहेंगे कि आपसे बात करें, क्वेश्चन आंसर सेशन पूरा।
0: हाँ, मैं टाइम दूंगा, वेलकम, तो मैं चाहूंगा, इसका मतलब सुन रहा है ध्यान, अगर क्वेश्चंस हैं तो इसका मतलब कोई इंटरेस्ट ले रहा है और ध्यान से सुन रहा है।
1: जी
0: अभी अमित सर करते हैं, थोड़ा बात कर लें फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: नवनीत जी, एवरी वर्ड ऑफ योर,
0: ऐसे ही परिपक्व मेच्योर्ड व्यक्ति, एक अच्छी पर्सनैलिटी के भी यही गुण होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा विनम्रता, अकड़ नहीं, विनम्र, दबाओ तो जैसे फल था नरम,
1: बिल्कुल
0: ऐसे वाणी की बात की हमने, वाणी में मिठास, और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मबल का, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है उससे, जब आपका करेक्टर अच्छा होता है तो आत्मिक बल का तेज आता है, रंग आता है। तो तीनों गुण पके हुए फल वाले, नरम, मीठा और रंगत, तो चेहरे पर रंगत, वाणी में मिठास और व्यवहार में विनम्रता। ह्यूमन टच की बात जो हम कर रहे थे वो तो हर जगह काम आती है जिंदगी में, इंसान इंसान तभी है अगर उसमें इंसानियत है। आपका व्यवहार सबसे पहले आपको इंसान है, कोई किस पोस्ट पर है, क्या काम करता है, वो बाद की बात है। मान लो अमित जी हैं या ये बेटी रोशनी थी, छोटी उम्र की लग रही है मुझे, तो इनकी गलती नहीं है कि बाद में पैदा हुए, मैं जल्दी पैदा हो गया। ईयर ऑफ बर्थ इफ इज अर्ली, इट डजंट मीन कि मैं इनके साथ, छोटों के साथ, अनुज के साथ सही व्यवहार ना करूं। तो मेरा व्यवहार अच्छा, मुझे अच्छा पढ़ने का मौका मिल गया, मुझे माँ बाप से अच्छा दिमाग मिल गया, तो मैं प्रोफेसर बन गया। तो मान लो कोई क्लर्क है या किसी और, कोई और कार्य करता है, कोई रिक्शा वाला है, इंसान की कीमत इंसान लिहाज से हमेशा हमारे हृदय में होनी चाहिए, और इंसानियत हर पग पर हृदय को टच करती है, उसको खुशी देती है, और बदले में रिएक्शन में इको के रूप में आप तो भी खुशी चाहते हैं। अगर आप जिंदगी में खुश रहना, कोई भी पढ़ ले कमा ले, अल्टीमेटली इंसान खुश होना चाहता है, आई शुड रिमेन हैप्पी। तो हैप्पीनेस की सीक्रेट यह है, वो ये FD कीजिए, प्यार की, स्नेह की, व्यवहार की, इंसानियत की FD कीजिए। बहुत बार मैंने इसको जमा कर देखा है, छोटी छोटी FD इतना प्यार देती हैं। मैं एक बार बस स्टैंड स्टेशन पे उतरा तो मेरे हाथ में अटैची थी, आजकल बड़ा लकी है कि रोलर लगे होते हैं, तो रोलर से आप लेके आ जाते हैं, छोटा बैग था, तो इमीडिएटली एक बुजुर्ग वार, अच्छी उम्र के होंगे मेरे से 15-20 साल बड़े, एक रिक्शा पुलर आए और मेरा अटैची उठाने लगे। मैं क्या आप क्यों उठा रहे हैं, कह सर मैं रिक्शा तक ले जाऊंगा। मैं क्या आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं उठाऊंगा। इतना कहते तो इसकी आंखों में चमक आ गई, कहते बाबू जी मुझे उम्र में बड़ा देख रहे हैं। तो एक छोटा सा सम्मान उसके प्रति, उसको कितनी खुशी थी। और जब घर उतरे तो मैंने कहा कितने पैसे, उसने कहा 30, मैं 30 दे दिए। मैं कहा रुक जाओ नीचे उतरो, नीचे उतरा, मैं उसको कहा आपसे गले मिलना है, तो जबकि उसको पसीना भी आया हुआ था, मुझे नहाना ही था घर जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं उसको गले मिलके, जबकि वो मुस्लिम भाई थे और कपड़े भी ऐसे थे और दाढ़ी ऐसी थी, लेकिन मैं उसको जफ्फी डाली। मैं कहा यार तुम ईमानदारी की कमाई खाते, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ये ह्यूमन टच है, पर्सनल टच है, इंसानियत का टच है। उसकी आंखों में पानी तैर गया इतनी बात, और 10 रुपए और दिए कि तुम ईमानदारी की कमाई खाते हो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। एक फ्रूट वाले से मैं, दो भाई थे, मैं कहा भाई दोनों इधर बाहर आओ। कहते सर क्या हो गया, मैं कहा मिलना है, बात करनी है। मैं कहा कमाई के बहुत से साधन हो सकते हैं, तुम लोगों को हेल्दी चीज खिलाते हो, फ्रूट खिलाते हो, उन दोनों को प्यार किया, वो आज तक उस जफ्फी को भूले नहीं है कि सर आपने मैं अप्रिशिएट कभी किसने किया ही नहीं। हजारों लोग हमारे से फ्रूट ले, किसी ने यही नहीं कहा तुम्हारा प्रोफेशन अच्छा है। तो एक पर्सनल टच, एक अप्रिशिएशन, एक अच्छा वाक्य किसी के लिए कितना हेल्दी हो सकता है। चंडीगढ़ में मैं एक बार किसी काम से गया तो मोची ने बहुत अच्छे से काम किया, मैंने मोची भाई को कहा मैं आप खड़े हो सकते हैं, कहते क्यों खड़ा हो जी, मैं आपको प्यार करना है। तो मोची भाई खड़े हो गए, मैंने उनको प्यार किया, मैं इतने अच्छे से काम करते हो दिल लगा के। उसने फिर अपनी स्टोरी सुनाई शुरू की कि सर मैं हमेशा ही ये नहीं देखता कितने रुपए का काम है, कैसे है, मैं सोचता हूँ कि इसको दोबारा मेरे पास लाना पड़े, दी बेस्ट करके दो। एक बार मैं हमारे यहाँ स्टेट बैंक में एक गार्ड बंदूक वाला, मैंने देखा कि वो जो भी बुजुर्ग बहुत बड़ी उम्र का आता है 85-90 ईयर्स ओल्ड, तो उनका हाथ पकड़ के उनको गाइड करता है कि आप यहाँ खड़े हो जाए। कई बार अंदर इंस्ट्रक्शन देता है जो हेल्प के, मैडम देखना ये बुजुर्ग आए 90 साल के, इनकी हेल्प कर दीजिए। तो किसी का फॉर्म भरने में हेल्प कर रहा है, कोई कभी किसी की हेल्प करता है, तो आउट ऑफ द वे जाके वो हेल्प करता है। मैंने दूसरी बार देखा फिर वो सबकी हेल्प कर रहा था, तो मैंने उसको फिर कहा मैं आपसे सेल्फी लेनी है। कहते सर बैंक में सेल्फी अलाउड नहीं है, मैं बाहर आ जाऊँ। बाहर आए सेल्फी ली, तो मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट की, वो वायरल होते होते उनके स्टेट बैंक के मैनेजर पे पहुंच गई। मैनेजर ने उसको बुला के तारीफ की कि आपने हमारे SBI का नाक ऊंचा किया, इतने लोगों की तारीफ नहीं हुई, तुम्हारे व्यवहार की तारीफ हुई है। तो छोटी छोटी चीजें, हमारे यहाँ एक वॉशरूम बगल में है, मैं आपको ह्यूमन टच की बता रहा हूँ बात। बहुत कुछ दिन से मैंने महसूस किया साफ रहता है, तो मैं यूज करके बाहर आया, तो वो स्वीपर जो थे वो वहां पर थे, तो मैंने उनको कहा कि आइए सर बताइए क्या क्या बात है। मैं क्या आपको ना थपकी देनी है। कहते किस बात की? मैंने कंधे बात रखा, मैं जब से आप आए, अभी आए ना आप 2-3 हफ्ते पहले, कहते हाँ, मैं जब से आप आए ये स्थान बहुत साफ रहता है। आप देखिए कि वो कहते हैं वो एक जहर होता है पोटेशियम साइनाइड, वो बहुत तीव्र रिएक्शन करता है। मैं उसका तो रिएक्शन मैंने कभी अनुभव किया नहीं कि लगा के देखूं कितनी जल्दी करता है, लेकिन मैं अप्रिशिएशन का दिल से निकली प्रशंसा और उसके अच्छे शब्दों का असर मैंने देखा है। मेरे कहते ही लेस देन सेकंड उसकी आंखों में पानी आ गया। वो स्वीपर भाई कहने लगे, कहते शायद शुक्र है किसी ने देखा तो सही। मैंने जब कहा कि आपके आते हुए ये स्थान बहुत साफ रहने लग गया है, उसकी आंखों में पानी आ गया। कहते सर शुक्र है किसी ने देखा तो सही, लेस देन सेकंड पानी आंखों में आ गया। इतना इंसान मैंने एक बार, और हमारे दूसरे विभाग में मैं गया तो वहां एक स्वीपर थे, मैंने गले में हाथ रख के कहा पीठ पे, मैं आप कैसे हो? कहते सर पहली बार किसी ने गले मिलकर ऐसे पूछा आप कैसे हो। पूछता हूं तो इंसान ही नहीं मानता कोई। तो ये देखिए कि जितना आप छोटा छोटा व्यवहार किसी इंसान के साथ करते हैं, कितना वो खुशी आपको देता है, कितना खुशी उसको देता है, यही इंसानियत है। जितना हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम जीते हैं, उतनी हमें कुछ खुशियां मिलती चलती हैं जिंदगी में। एक और गुण बहुत हेल्प करता है जो मैंने बहुत अजमा के देखा है, वो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जिंदगी में बहुत कुछ हमें दिया है, ये जिंदगी बहुत प्यारी है। लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। मैं हमेशा बच्चों से कहा करता हूँ, प्लीज डोंट इंसल्ट योर लाइफ, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट मदर नेचर हैज गिवन यू। यूटिलाइज इट फुली, एवरी सेकंड, एवरी डे, एवरी मिनट, हर पल इसका एंजॉय करने के लायक है। एंजॉय का मतलब ये नहीं कि प्योर पड़ जाओ, ये मतलब नहीं है। रुचियां जो है वो आपको गलत दिशा में ले जा सकती हैं। दो किस्म का होता है, एक विनाश, विकास। रुचियां वो फॉलो करनी है, खुशियां वो फॉलो करनी है जो विकास के पथ पे लेके जाए। तो जिंदगी विकास पे चलने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, तो यू हैव टू बी सिलेक्टिव। उच्च खुशियां, नीच खुशियां, अदना खुशियां। अदना खुशियां दुखों में फंसाएंगी। इसलिए कोई भी नशा किसी किस्म का भी है, फौरी आपको हेल्प दे सकता है, आराम दे सकता है, सुकून दे सकता है, मजा दे सकता है सो कॉल्ड, बट अल्टीमेटली टेक टू विनाश। क्यों? गलत दिशा है वो, तरीका गलत है। तो जो उच्च खुशियां हैं, पॉजिटिव चीजों में खुशी है, वो खुशी जीने के लिए है, पाने के लिए है। तो उसमें एक बहुत चीज जो हेल्प करती है खुश रहने में और आपको ग्रो करने में, नेचर का लॉ भी है, वो है ग्रेटिट्यूड। और इसका बड़ा क्रिटिकल सा नियम है, बड़ा मजेदार नियम है, जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह और समृद्ध होता जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी धीरे धीरे उससे ले लिया जाएगा। अगर कृतज्ञता नहीं है, इफ यू डोंट काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो धीरे धीरे ब्लेसिंग्स छिनने लगेंगी आपसे, खोती चली जाएंगी। और जब अपनी ब्लेसिंग्स को आप काउंट करते हैं तो ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होने लगती हैं। तो ग्रेटिट्यूड इज ए मैग्नेटिक पावर, इट इज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक बुक भी आई थी, अगर किसी ने पढ़ी हो, सीक्रेट, वो तो बात ही कर रही है, ग्रेटिट्यूड की मेनली बात करते हैं वो। तो समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर हम जो चीज हमारे अंदर है, पॉजिटिविटी है, थैंकफुल है, तो आप वैसे देखिए, अगर घर में कोई लेडी काम करती है, भाई काम करती है, कोई आपका अजीज है, कुछ मांग के ले जाए, दो बच्चे हैं, कुछ आपसे चीज ले गए, बुक ले गए, एक ने कभी आपको पलट के थैंक यू नहीं कहा, भूल भी गया, पहचानता नहीं है, और एक आपके लिए बहुत थैंकफुल फील करता है, बहुत आपको याद करता है, धन्यवाद देता है, आपको सजदा करता है, आपको दोबारा किसको देने का मन करेगा? आप ही देख लीजिए। जो रिकॉग्नाइज करता है, जो थैंकफुल है, जो ग्रेटफुल है, उसके लिए आप कुछ भी करने तैयार होते हैं। किसी किसी के लिए हम कहते हैं इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो व्यक्ति अक्सर वही होता है जिसके लिए आप कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है। यही मदर नेचर का कंसेप्ट है। जो थैंकफुल है, जो ग्रेटफुल है, जो किसी के किए को, एहसान को मानता है, उसको मदर नेचर और ब्लेसिंग्स देती है। तो लकी है वो जो अपने अंदर कृतज्ञता के भाव को जगा सके। एक जिंदगी में हमारे पास एनर्जी और टाइम बड़ा लिमिटेड है, एम्पल नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सिचुएशंस के अनुसार रिएक्शन ना करें, रिस्पॉन्स करें। डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। पेशेंस, धैर्य हृदय में होगा, टॉलरेंस होगी, सहनशीलता होगी, तो आप परिस्थितियों में रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट करना आसान होता है, रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होता है। रिस्पॉन्ड में स्थिति को संभालना पड़ता है, दो पानी के घूंट पीके शांति से बात करनी पड़ती है। बीरबल का आप देखिए कितना बड़ा एग्जांपल है, हमारे रोल मॉडल है। वो कभी भी सिंपल से सिंपल रिप्लाई भी एकदम नहीं देते थे, सोच के समझ के देते थे कि जहां पर ना कल बताऊंगा, नेक्स्ट डे। यूजली ही हैज बीन रिस्पॉन्डिंग नेक्स्ट डे, और द नेक्स्ट डे रिस्पॉन्स वॉज वेरी गुड। हम कई बार कहते हैं ओवर रिएक्शन में रहते हैं, ये कहा ये आंसर, वो गलत भी हुआ था, ठीक भी हुआ था। तो इसलिए जिंदगी में पेशेंस पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, हम रिएक्ट नहीं करें बल्कि रिस्पॉन्स करना सीखें, और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना भी सीखें। जैसे कहते हैं कि दुनिया में बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक मामूली सी मुस्कुराहट, किसी ने गलती कर दी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, रिलैक्स हो जाए। देखिए जब हम एज ए फादर एज ए टीचर खड़े होते हैं, बच्चे से गलती होती है तो वो कब तक वेट करता है, उसको कब पता चलता है कि उसको माफ कर दिया, जब हल्का सा मुस्कुरा देते हैं बात आई गई हुई रफा दफा हो गई। और अगर हमारे से गलती हो गई है तो हल्की सी छोटी सी सॉरी बोलकर भी जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो सकती है। लेकिन कई बार टाइमली सॉरी ना बोलकर या टाइमली किसी को माफ ना करके इतना हमारा रिश्ता खिंच जाता है कि कई बार रिपेयर ही नहीं हो पाता। तो रिश्तों में चाहे कहीं भी है, हमें थोड़ा सा धैर्य और सहनशीलता का गुण भी अपने अंदर रखना है। इसके अलावा हम जो संसार में सेवा के लिए बड़ा जोर देते हैं, लोग सेवा कीजिए, हर संस्था में जाइए आप सेवा बहुत जोर है, तो हम सेवा देते नहीं है। असल में सच्चाई है वी आर रिटर्निंग व्हाट वी हैव गॉट, और हमारे पास कुछ होगा नहीं तो देंगे कहां से, कुछ मिला है उसमें से हम लौटा रहे हैं। चर्चिल की बात बड़ी अच्छी लगती थी, मैं पढ़ी एक जगह लाइन, मुझे बड़ी टच की, वो वी मेक ए लिविंग बाय व्हाट वी अर्न एंड वी मेक ए लाइफ बाय व्हाट वी गिव या व्हाट वी रिटर्न। जिंदगी में जो हम कमाते हैं वो तुम्हारी जीविका है, जो भी हम अर्न कर रहे हैं किसी भी रिसोर्स से। असली जिंदगी वही है जो हम किसी के लिए काम आते हैं, किसी को जो हमें मिला है जिंदगी में हम लौटाते हैं, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिंदगी में हम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कितना काम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बातें बहुत हैं, बहुत सी की जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि मुझे इशारा किया गया है कि क्वेश्चंस हैं तो बेटर है कि क्वेश्चंस की रिप्लाई कीजिए, तो ज्यादा अच्छा प्रयास करता हूं कि मैं कितना सफल हूंगा देखते हैं। प्लीज
1: जी जी अमित जी हमारे साथ अभी आपको सवाल जवाब करेंगे। जी अमित जी,
2: नवनीत जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मेरी कोशिश ये थी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच नवनीत जी, और आपका एवरी वर्ड ऑफ योर्स फुल ऑफ विजडम, और मेरी पूरी कोशिश थी उसको एक एक पॉइंट को जोट डाउन करना।
0: So kind of you.
2: और ये जो भी आपका एक एक पॉइंट है, ये जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे रोशनी, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एवरी वर्ड ऑफ योर्स जो आप बात करेंगे अभी और जो अभी तक आपने की है, इस पे चिंतन होगा, मंथन होगा, बहुत सारी चीजें निकाली जाएंगी। एटलीस्ट फॉर अ वीक हम लोग हर स्पीकर को फॉलो करते हैं।
0: जी जी जी
2: जी,
0: मैंने कोई थ्योरेटिकल बात नहीं बताई, जो प्रैक्टिस में चीजें आ सकती है जो हम कर सकते हैं, इस पे और खुल के बात हो सकती है, और अभी क्वेश्चन हो तो पूछिए आप।
2: जी सर जी, क्वेश्चंस हमारे पास में इंटरनेशनल डिवाइन कॉलेज से रोशनी है, और इनका पार्ट है ह्यूमन वैल्यूज का, इनको पढ़ाई जाती है ये सारी चीजें, लेकिन आप अपने प्रैक्टिकल अनुभव जब उनको बता रहे हैं तो बहुत गहराई से इनको ये बात छूने वाली है। जी रोशनी, आपका सर के लिए प्रश्न आपका।
3: थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, हमें नवनीत सर जैसे शख्सियत से मिलने का मौका मिला है, वो बहुत अच्छा सिखा रही है, उनकी वैल्यूज बहुत अच्छी है, उनका सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट बहुत अच्छा है, चलिए धन्यवाद, अपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरे आपसे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मेरे पास आपके लिए थोड़े से कुछ प्रश्न है। जैसे आप हर किसी को भी प्यार देते हो, चाहे मोची हो चाहे कोई कैब ड्राइवर हो, आप सबको इतना प्यार देते हो, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं कॉलेज में थी, प्लस वन प्लस टू में थी, मेरे बाल अच्छे से नहीं होते थे, मेरी यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं होती थी, इसलिए बच्चे ना मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करने के लिए बहुत ज्यादा बुली करते थे, मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे, पर मैंने उसे फाइट किया, मैं लड़के बाहर आ गई, और मैंने इतना नेगेटिव वो था, सहा था, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, दो साल एटलीस्ट 2 साल मैंने डिप्रेशन में काटे हैं, मैं नींद की गोलियां लेती थी, तो मैं उससे रिलेटेड आपको पूछना चाहूंगी कि आगे मैं टीचर बन रही हूँ, मैं बीएड कर रही हूँ, मेरे आगे बच्चा ऐसा काम ना करे, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर मुझे ये बताइए कि मैं अपने बच्चों को क्या शिक्षा दूं कि वो किसी के साथ नेट बुलिंग ना करे, किसी को परेशान ना करे, वो सबसे जो मैंने
0: मेरे बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक काम करें, मैं एक कभी देखो बहुत सी चीजें बताने वाली थी, अभी भी थी तो ये जुड़ गई है बात, अब आ गई, मैंने बताई नहीं थी अभी तक। मैं बच्चों को अक्सर कहा करता हूँ, खुद भी इसको काफी हद तक फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, कि चार बातें जो हैं उसको डस्टबिन में फेंक दो, शुरू में पहली बात लोग क्या कहेंगे। आपको किसी को मेंटर बनाना चाहिए, चाहे वो अमित जी हो, नवनीत जी हो, XYZ कोई भी हो, जिसको आपको प्यार पसंद आता है कि यार ये बंदा सही है, थोड़ा फॉलो करो, जज भी करो उसको थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आप आंख बंद कर चलो उसके पीछे। अगर वो कह रहा है इट मे बी योर फादर, इट मे बी योर मदर, इट मे बी सिस्टर और सम फ्रेंड इवन, वहां तक फॉलो करो, जहां तो थोड़ा जजमेंट भी रखो, लेकिन उसको खुश करना है, मतलब उसके मोहर लगवा लो। आप सोसाइटी में इतनी वैरायटी है, सबसे मोहर लगवाओगे तो कभी भी कंक्लूड नहीं कर पाओगे। एक तो जो व्यक्ति हर किसी को प्लीज करना चाहता है दुनिया में कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि इतनी डिमेंशंस हैं, किसी को झूठ बोलना पसंद है, किसी को सच बोलना पसंद है, दोनों को पसंद करूंगा मैं, दोनों के पीछे चलूंगा तो कहां जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा ना। तो इसलिए अपने आप को फोकस पॉइंट कम रखना चाहिए, लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए, पहला उसने डुबो दिया कहीं, आप थोड़ा सा अपना लॉजिक अपना माइंड ब्रेन यूज करो, लेकिन आपको जहां तक ठीक लग रहा है उसको फॉलो करो, और उससे पूछो पूछो ये सही है गलत है, वो कहे सही है तो बढ़ो आगे, लोग क्या कहेंगे पब्लिक ओपिनियन के चक्कर में कई बार गड़बड़ हो जाती है। दूसरी बात ये कोई भी चीज सोचना कि मुझसे नहीं होगा, अगर एक से हो सकता है दूसरा भी करने की कोशिश तो कर ही सकता है, उतना नहीं होगा तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं एवरेस्ट नहीं चढ़ सकता लेकिन छोटी पहाड़ी चढ़ सकता हूं मैं भी, तरीका तो उसी का है। तो ये कहना कि मुझसे नहीं होगा, पहले ही डिक्लाइन कर देना, ये भी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, जो भी आप मेंटर जिसको कर रहे हैं उसको ये सेंटेंस काट दे, और एक अभी मेरा मूड नहीं है, ये मूड कहां से स्विच ऑन होगा, ये तो मूड कभी नहीं बनेगा। तो ये सेंटेंस ऐसे है कि यू शुड बी रेडी, लाइफ इज शॉर्ट, आपको हमेशा तैयार रहना है। और चौथी बात, मेरी तो किस्मत ही खराब है, किसी पहलू में अगर आप सफल नहीं होते तो किस्मत को दोष देना, ये चारों चीजें हमें आगे नहीं बढ़ने देती। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, अभी मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। असल में जब आपका ये लेवल तब रहता है जब आपके, जैसे बिटिया कह रही थी बालों के बारे में कि उनको लेके लोग जज करते हैं, मैं डिप्रेशन में आ गई। असल में चीज क्या है कि जब तक हमारी लाइफ में बैलेंस वायर्ड है, लाइफ इज ए बैलेंस, बाहर की चीजें भी मैटर करती हैं लेकिन भीतर जो है ज्यादा मैटर करता है। अभी मैं एक जगह एक लेक्चर दे रहा था, मैं बताया था कैलगरी टावर है कनाडा में, बहुत मशहूर टावर है, उसका जो मटेरियल है वो लगभग मान लो 10,000 टन है रफली, जो मटेरियल लगा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल टोटल, आपको सुन के हैरानी होगी कि लगभग 6,300 टन यानी कि ऑलमोस्ट 65% या 60% इन बिटवीन इज इन साइड द अर्थ, जो अर्थ लेवल है उसके नीचे कितना है, से मोर देन 60%। तो जो टावर इतना ऊंचा बना है, जो वर्ल्ड फेम का कैलगरी बल्कि है सही उसको प्रोनाउंस करें तो वो उसमें लोग जाते हैं देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से, तो उसका 60% कहां है, इन साइड द अर्थ नीव फाउंडेशन। तो अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, हमारी पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, अपनी डेप्थ बढ़ाने की जरूरत है फीलिंग्स के अंदर, पॉजिटिविटी के अंदर, बाय स्टडी, बाय प्रैक्टिस, इट समटाइम कम बाय मैच्योरिटी बाय टाइम। तो 60% इनसाइड है तो बाहर 40% मैटर करता है। उस 40 में आपकी एजुकेशन भी है, आपकी शक्ल शक्ल भी है, आपकी गाड़ी भी, आपके ठहरने का हालात भी, आपकी बातें करने का ढंग भी है, आपकी एजुकेशन, ये बाहर की चीजें हैं जो बाहर से पैरामीटर स्टडी किया सकते हैं। 60% तो बिल्डिंग में ही अंदर थी, तो इंसान की बिल्डिंग तो असली 90% अंदर है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है आपके 90% पर। तो मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मेरा रंग काला है, या मेरा कद छोटा है, मैं मोटा हूं, मैं ये हूं, ये बातें 10% है। मैं एक अच्छा इंसान हूं, मेरी सोच अच्छी है, आई एम ए गुड ह्यूमन बीइंग, 90% मैटर्स। तो मुझे उस 90% पर अपने अंदर विश्वास जगाना है, और बच्चों के अंदर भी विश्वास जगाना है कि वो सही है, उनकी दिशा सही है। तो सही के साथ कुदरत खड़ी होती है, कायनात खड़ी होती है, विश्वास रखिए। कॉस्मिक एनर्जी में नियम है, जो हेल्पिंग फोर्सेज होती हैं, जो राइट पर्सन होता है, विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सही रहा हो उसको दिखते ना आई हो, रिकॉर्ड समझिए, उसके सही होने का प्रमाण ही होता है कई बार कि वो दिक्कतों तकलीफों को फेस कैसे करता है, ये भी उसका एग्जामिनेशन है। जैसे हम बीटेक करते हैं या एमबीबीएस करते हैं तो कई कोर्सेज कंपलसरी कोर्सेज होते हैं, ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो अगर आपको एक जीवन में एक लेवल से ऊपर उठना है तो कुछ हर्डल्स को पार करना ही पड़ेगा। उसमें से एक हर्डल हो सकता है लोग कुछ कुछ कहेंगे आपको, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, हो सकता है आप ईमानदार लोग आपको बेईमान कह रहे हो और आपका करेक्टर सही हो, आपको करेक्टरलेस बता रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन सब चीजों को हम कैसे हैंडल करते हैं, इतनी मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं, और उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उनका शुभ हो। आप देखिए जितने ग्रेट मैन हुए हैं उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, तब भी उन्होंने कहा, अपने गॉड को कहा कि भाई इसको माफ कर देना, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर दयानंद जी जो आर्य समाज के जो फाउंडर थे उनको जहर दिया गया, उन्होंने अपने जहर पीने वाले को उसने पिलाया था, उसको भी पोटली दी थी, धन दे के बाहर भेज दिया नेपाल कि निकल जाओ तुम्हें मार देंगे। कल्प्रिट को, मतलब आप देखिए कितने इतिहास भरा पड़ा इन घटनाओं का, कि कितना टॉलरेंस, कितनी पेशेंस, कितना बड़ा दिल होता है, क्योंकि वो इनसाइड उनका 90% जो होता है अंदर वो मैटर करता है। शरीर चला गया कोई बात नहीं, 10% मैटर करता है। तो हम फोकस किस पे कर रहे हैं उसके कारण दिक्कत आती है। तो अगर जैसे आपने बताया कि डिप्रेशन या आप डाउन गए, तो उस समय शायद अगर ऐसी मेंटरिंग उससे पहले आपको किसी ने की होती, इस पे काम आपने भी किया होता, तो स्थिति आती नहीं। तो आपके बच्चे की फैमिली में कल को, या आपके स्टूडेंट्स, या आपके सराउंडिंग में लोग हैं, उनके ऊपर काम करके यही समझाना है कि 90% जो अंदर है, भाव, सोच, पॉजिटिविटी, उसकी ग्राउंड मजबूत कीजिए। 10% में लोग कुछ कुछ कहते रहेंगे, इसी पे के लोग कहते हैं, कहते रहें तो कोई बात चलेगा।
2: जी, एक सवाल हमारे पास में और आया सर, कि ये जो ह्यूमन टच से जो आज के दिनों में ये मिसिंग एलिमेंट है, ये देखा गया कि सिर्फ सिलेबस को आपने फिनिश करना है ऑन डेडलाइंस, और ह्यूमन टच वहां पे लैक कर रहा है। लैक होने की वजह से क्या क्या सोसाइटी एट लार्ज हम जो चीजें देख पा रहे हैं, और कैसे हम ह्यूमन टच इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एक सवाल। और जब हम ह्यूमन टच से एज अ पर्पस टीच कर रहे हैं, तो आत्म उत्थान में आपको कैसे ये मदद करती हैं चीजें?
0: मैं समझता हूँ कि टीचिंग इज सच ए नोबल प्रोफेशन, इसमें इसका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक आपका दिल बच्चों के साथ नहीं है तो आप उनकी लाइफ को एक पॉजिटिव मोड नहीं दे सकते। उनको अर्निंग मशीन तो बना देंगे आप। अभी एक बच्चे ने सुसाइड किया हमारे रुड़की में, वो बीटेक कंप्यूटर साइंस था, यहीं से आईआईटी रुड़की से लॉन्ग बैक 5-6 साल पहले एमएनसी में जॉब कर रहा था। उसके फादर भी यहीं से पढ़े हुए थे रुड़की के, मतलब आईआईटी के पढ़े हुए थे, और उसके ग्रैंड पापा जो थे ग्रैंड फादर हुई वाज प्रोफेसर इन आईआईटी सम टाइम बैक। तो आप देखिए इतनी लर्नर्ड फैमिली में होते हुए बच्चे ने 5 साल एमएनसी में जॉब करके जॉब छोड़ दी और अल्टीमेटली 2-3 साल घर में रहकर तोड़फोड़ करके परेशान होकर बहुत बुरी हालत में उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया उस बच्चे ने। देखिए लाइफ की फ्रस्ट्रेशन, कहने को आईआईटी में एडमिशन होना बहुत बड़ी कामयाबी है, जिंदगी बन गई, जिंदगी कहां बनी, जिंदगी तो खत्म हो गई, इससे तक मजदूर अच्छा जी लेता है। तो लाइफ इज ए बैलेंस, जब तक बैलेंस नहीं होगा और पर्सनल टच नहीं होगा, अगर टीचर्स का स्टूडेंट्स का पर्सनल टच होगा तो उनकी लाइफ को बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है। और टीचिंग में तो सबसे बड़ी चीज जो है बच्चों से रिस्पेक्ट तो मिलती है, प्यार तो मिलता है, और वो तभी मिल सकता है अगर आपका पर्सनल टच होगा। अगर आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से वहां जाते हैं, फॉर्मेलिटी से पढ़ाते हैं, उनके जीवन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो वो भी आपको अपना नहीं समझते हैं। तो ये गिव एंड टेक दोनों तरफ से है, समय के साथ चीजें प्रोफेशनल होती जा रही है, मैं भी देख रहा हूँ समय के साथ, तो वो उतना ही टीचर रिस्पेक्ट खोते जा रहे हैं। तो बच्चे अभी भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, मेरा अनुभव यह है कि बच्चे अभी भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास एज ए टीचर कुछ वाकई में ऐसा देने को है जो देने लायक है, उनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसका रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, उसको रिसीव करते हैं और वो लाइफ लॉन्ग उस पे चलने की कोशिश भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ टीचर्स और पेरेंट्स की जिम्मेवारी ज्यादा है कि वो देखिए मीडिया का, सोशल मीडिया का, मोबाइल का, चीजों का युग तो है तो बच्चे उधर फोकस हो जाते हैं, लेकिन अगर आप टच देंगे, आप भी फोकस रहेंगे अपने छोटी जिंदगी में, तो वो फिर कट जाएंगे। तो दोनों तरफ से है, बच्चे भी इंटरेक्ट करें, सीखें उनकी लर्निंग से, कि बहुत सी चीजें जिंदगी के निचोड़ जो है वो आपको व्हाट्सएप और गूगल पे नहीं मिलते, वो पर्सनल टच से ही मिलेंगे। तो दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स से जो बेस्ट हम ले सकते हैं लेने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ टीचर्स और पेरेंट्स की जिम्मेवारी अधिक है, उनका अनुभव अधिक है, उनको पता है कि उनको पता है, तो वो दें, कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है, बच्चा नहीं सुनता तब भी सुनाए, बताएं, क्योंकि वो बड़ा यूजफुल है इंटरेक्शन। वो इंटरेक्शन पर्सनल टच बहुत रोल प्ले करता है। लव इज द मोस्ट पावरफुल पावर यू कैन कॉल इट इन द वर्ल्ड स्टिल। प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और वो बिना टच के, ह्यूमन टच के, पर्सनल टच के नहीं आ सकता, ठीक है। तो खाली माँ का प्यार नहीं चाहिए, हर किस्म का प्यार एक इंसान को चाहिए होता है। तो वो प्यार जो है निस्वार्थ प्रेम जिसे कहते हैं आप, प्यार के लिए प्रेम इज बेटर वर्ड आई फील, नो भी निस्वार्थ भाव से जो होगा उसका लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है आदमी की पर्सनैलिटी के ऊपर। वो हम बड़ों का, जो सीनियर है, सीनियर सिटीजन है, घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, सबका रोल है कि वो दें। तो ये सोसाइटी में जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, जो अवसाद बढ़ रहा है, जो नेगेटिविटी बढ़ रही है, ये उसमें बहुत बड़ी ब्रेक लग सकती है जब पर्सनल टच होगा। वो जो बचपन में जैसे हम छोटे थे, दादा दादी नाना नानी गोद में लेकर कहानियां सुनाया करते थे, उन सब कहानियों के पीछे कोई मॉरल होता था, तो वो कहानियां अब भी सुनाई जानी चाहिए। अब अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, टीचर्स सुनाएं, हम आपस में जो वॉलंटरली जो काम कर सकते हैं बच्चे, वो छोटी छोटी चीजें शेयर करें। हमारे यहाँ तो पंचतंत्र की बहुत कहानियां थी, छोटी छोटी चीजें बहुत लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। एक जो हमने सुनी थी बात बचपन में कि लालच बुली बुरा है, मैं समझता हूँ ये किताबें, सारा ग्रंथ, सारे एक्सपीरियंस एक तरफ, एक घटना सुनी थी कि वो लोमड़ी बड़ी चलाक थी, उसने कौवे को कहा कि तू बहुत अच्छा गाता है, उसके मुंह से वो टुकड़ा गिरा और वो लेके भाग गई। तो ये चलाकी चुस्ती के कारण कितना उसका लॉस हुआ, उसको खाना चला गया, ये एक छोटी सी बात सुनी हुई जो है वो कितनी इम्पैक्ट क्रिएट करती है, लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो वो चीजों की अभी भी जरूरत है, उसको इग्नोर ना करें बड़े, वो शेयर करें और बच्चे भी शेयरिंग लें, दोनों की जिम्मेदारी, ताकि इंटरेक्शन बना रहे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सर जैसे कि कोई टीचर अगर पूरी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ में लविंगली पर्पसली यही उसकी इंटेंशन है कि बच्चों को इम्पावर करना है और उनकी लाइफ में मीनिंगफुल चेंजेस लाने हैं खुद इम्पावर्ड होके, तो जब इस रास्ते पे कोई टीचर चलता है तो इसका कनेक्शन हमारी आत्म उत्थान, हमारी अपनी शांति, हमारी अपनी जिंदगी में उसके साथ में क्या कनेक्शन है, क्या थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस पे?
0: देखिए हम जो भी हम गति करते हैं, एक्शन करते हैं या थॉट प्रोसेस करते हैं या कर्म करते हैं या बोलते हैं, वो हम किसी ना किसी फीलिंग से करते हैं। हमेशा कोई फीलिंग इन्वॉल्व होती है, कोई भावना इन्वॉल्व होती है उस काम को करते हुए। वो नेगेटिव भावना हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। जब हम किसी बच्चे को मेंटरिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट को या अपने बच्चों को मेंटरिंग कर रहे हैं, पड़ोसी कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ हेल्पफुल होने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं किसी भावना से कर रहा हूं। वो भाव मुझे पता हो सकता है, आपको नहीं पता कि मैं अहम से कर रहा हूं या विनम्रता से कर रहा हूं, सरलता से कर रहा हूं, कृतज्ञता से कर रहा हूं कि जिंदगी में पाया इतना मैं थोड़ा बांट दूं, भाई बोझ बोझ है मेरे कंधों पे, बहुत सीखा है मैंने, थोड़ा बांट दूंगा तो शायद बोझ कम हो जाए। ये भावना हो सकती है। एक हो सकती है कि मैं अहंकार से बोलूं, देखो मुझे कितना पता है, ये सब सुन रहे मेरी बात, तो मैंने क्या खोया क्या पाया सिर्फ मुझे पता है। तो हम जो भी काम करें, देखिए बनिया बोलते हैं, कास्ट होती है बनिया, जो बिजनेस कम्युनिटी होती है, है वो तो ठीक है, मैं उस जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, असल में बनिया बिजनेसमैन वो है जो बनाने का काम करे, गेन का, कि उसका खर्च कम हो आमदनी ज्यादा हो, वो है बनिया, वो है व्यापारी। तो जीवन के लिहाज से हमें सच्चे व्यापारी बनना है, हमने लूज कम करने हैं पॉइंट्स, गेन ज्यादा करने हैं, तब हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो जो भी हम काम कर रहे हैं जिंदगी में वो हमने अपने आप को तोल के करना है कि मेरी कौन सी भावना है इसके पीछे, और वो भावना पॉजिटिव है तो मेरा अपना निर्माण होता है, मेरे आत्मिक पॉइंट्स बढ़ते हैं। असल में जैसे इंडेक्स होता है ना, ये सेंसेक्स होता है या निफ्टी होता है, वो आपकी मार्केट की वैल्यू को बताता है, ऐसे ही इंसान के अंदर आत्मबल होता है, उसका आत्मिक धन होता है, वो उसकी यूटिलिटी को बताता है कि नेचर में विश्व में हमारा लेवल क्या है, हम कहां खड़े हैं, और वो उतना ही बढ़ता जाता है जितना हम पॉजिटिव होते हैं, उसके लिए किसी की मोहर की जरूरत नहीं है। जैसे हेल्थ का इंडेक्स है, जितना मैं अच्छा खाता हूं, सलाद खाता हूं, फ्रूट्स खाता हूं, अच्छी हवा सांस लेता हूं, पानी साफ पीता हूं, नशों से विषयों से बचा रहता हूं, उतनी मेरी हेल्थ, आई फील बेटर फ्रॉम इनसाइड, उसके लिए मुझे किसी मोहर की जरूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। टेस्ट आप कर सकते हैं चीजों से, नहीं उसकी खुशी मेरे साथ ही है कि मैं हेल्थी हूं। तो जैसे हेल्थ पाना किसी पे एहसान नहीं, उसकी एंजॉयमेंट खुद होती है, ऐसे ही आत्मिक रूप से पॉजिटिविटी का जो लाभ है उसकी एंजॉयमेंट भी आपके पास ही है। तो उसके लिए किसी के तालियों की क्लैपिंग सीरीज खत्म हो जाती है। यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड, यू फील वर्थ लिविंग, यू फील योर लाइफ ब्लेसिंग। दूसरों को लगता ही है कि ब्लेसिंग है, आपको खुद लगता है मेरी लाइफ दूसरों की ब्लेसिंग है।
2: बिल्कुल,
0: ये अच्छा करने का सबसे बड़ा लाभ है। अच्छी हवा में सांस लेंगे तो फेफड़े धन्यवाद देंगे ना आपको, तो आपकी आत्मा जो है, आपकी इनर जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत लाइट फील करता है। जब अच्छी सोच से आप काम करते हैं, आपकी निगाहें अच्छी होती हैं, आपकी वार्ता अच्छी होती है, आपके काम अच्छे होते हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो आपकी आत्मा लाइट फील करती है, एंजॉय करती है, फ्लाई करती है, उड़ रहा हूं मैं, ऐसा फील होता है। और जितना आप गलत सोचते हैं, भारीपन आता है, यू फील हैवियर, बर्डन फील होता है।
2: जी जी,
0: कभी भी कोई महान आत्मा मरने की बात नहीं करेगा, मैं मर जाऊं, खत्म हो जाऊं, जिन्हें फायदा क्या है, नेगेटिविटी में मन करता है चीजों का, इसलिए डिप्रेशन आता है। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी कि आपने अच्छा सोचा, अच्छा किया किसी के लिए, यू आर एंजॉयिंग, आप खुश हैं बहुत अंदर से, ये सबसे बड़ी खुशी है। ये बाकी साइड इफेक्ट हैं, सम्मान मिलेगा, वो बाकी छोटी, ये सब छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं, ये एडिशनल बोनस हैं। अरे एक बात मैं बताता हूँ, रोशन भाई बताता हूँ आपको, बेटा आप जिंदगी में जब अच्छे रास्ते में चलते हैं, मैं सबको कहा करता हूँ, उसकी ब्लेसिंग सबसे बड़ी क्या है, आपको अपने से भी नेक और अच्छे लोग मिलते जाएंगे जिंदगी भर, एक से एक आपके इतने अच्छे इंसान हो सकता है, इतने अच्छे सर हो सकते हैं, अब और मिलेगा और अच्छा और अच्छा, क्योंकि आप खुद सही रास्ते पे हैं। और जब वो गलत रास्ते पे होते हैं तो आपको अपने से बड़ा शैतान, अपने से बड़ा गुंडा, अपने से बड़ा नेगेटिव, अपने से बड़ा डिप्रेस मिलेगा, अपने से बड़ा पागल मिलेगा आपको, कह रहे इतना बड़ा पागल, मेरे से बड़ा पागल है। तो दुनिया में पूरी वैरायटी है, ना सही दिशा में ना गलत दिशा में, आपका पाथ कौन सा है, आप जिस पाथ पर हैं उससे भी आपसे कितना बड़ा बदमाश है उसको उससे बड़ा बदमाश मिल जाता है। कह मैं 10 मर्डर किए हैं, आप महीने दो महीने बाद आपको 15 वाला मिल जाएगा। आगे से आगे चीजें बढ़ती चली जाती है, इसलिए बहुत लक्की है जिनकी सोच और दिशा सही होती है जिंदगी में, उनको अपने से बहुत अच्छे नेक इंसान मिलते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनकी खुशियां मिलती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जो है सर्व होते हैं, शेयर होते हैं, और प्यार सम्मान तो मिलता ही है, खुशियां मिलती हैं, और वो खुशियां स्थाई होती हैं, सबसे बड़ी बात है, वो टेम्परेरी नहीं होती हैं, वो खुद गुजरती रहती हैं। अभी मैंने घटनाएं जो बताई, अभी बच्चा को जिक्र कर रहा था, आपने पढ़ा कोई कि वो आपने माली से बात की या मोची से बात की, अब जो वैसे खुशियां होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं। मैंने अभी यहाँ मान लो रसगुल्ला खाया नहीं, मैं वैसे ही बैठा हूँ, खाया पिया कुछ नहीं मैंने यहाँ के अभी, लेकिन कल्पना करो खाया, वो कल तक भूल जाएगा, कुछ चीज और एंजॉय की तो कब तक उसका साथ रहेगा। लेकिन एक अच्छी घटना, एक अच्छा व्यवहार आपको 10 साल 20 साल बाद भी गुदगुदाता रहता है, खुशी देता रहता है, जो आप किसी के लिए अच्छा करते हैं वो आपका जीवन का एसेट बन जाता है, आपकी दौलत बन जाती है।
2: वेरी वेल सेड सर, बहुत बढ़िया कहा आपने कि जब हमारी इंटेंशन, हमारी भावना प्योर है, बल बढ़ रहा है आपकी आत्मा का, और वर्थ लिविंग हो रही है आपकी लाइफ, एक ब्लेसिंग बन गई आपकी जिंदगी, और बाय प्रोडक्ट उसका सम्मान है और बहुत सारी चीजें। और जब आप इस रास्ते पे चल रहे हैं तो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी पे, सेम फ्रीक्वेंसी ऑन अ पॉजिटिव नोट या उससे हायर फ्रीक्वेंसी पे, और नेक इंसान भी आपको रास्ते पे मिलते हैं, तो जैसे आप हैं वैसी चीजें आप खींचना शुरू कर देते हैं। बहुत बढ़िया कहा सर आपने। और दूसरा आपने कहा कि आपकी जो आत्मा है आप लाइट फील करते हैं, और दूसरी तरफ अगर वही नेगेटिव इमोशंस हैं या इंटेंशंस हैं तो आप भारी महसूस करते हैं, और उसका असर आपके मन पर, शरीर पर और आत्मा पर बीमारियों के रूप में भी हमें आजकल देखने,
0: इसकी साइंटिफिक स्टडी भी हो रही है और भी होती चलेगी कि हमारे हार्मोन्स पे बहुत असर पड़ता है। देखिए ये तो कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि बीपी रह जाता है कि आप चिंता ना किया करें, आपके चिंता से होता है, आप एंग्जायटी से होता है, ये चीजें तो दिखने लग गई हैं। शुगर की पेशेंट भी जो है या तो इनहेरिटेड होता है कुछ, लेकिन शुगर भी टेंशन रखने से बहुत हो जाती है, टेंशन बहुत होती है, शुगर हो गई। तो ये चीजें वैसे भी कहते हैं कि हम जैसे जंगल में गए मान लो, तो वहां शेर आ गया, तो हम किसी को सुना रहे होंगे, मैं शेर मेरी गाड़ी से आगे निकल गया, मैं तो हल्के सूख गया, तो शेर में पानी कमी थोड़ी थी। आप देखिए एक शेर पेड़ को देखकर या भेड़िए को देखकर या किसी जंगली जानवर को देखकर आपका हलक क्यों सूख गया, इसका मतलब माइंड के ऊपर जो प्रेशर पड़ा, जो आपने सोचा, जो डर आपके अंदर आया, उसका शरीर पर असर पड़ा नहीं पड़ा। कई बार आपको लूज मोशन लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है किसी घबराहट की बात सुनकर, कईयों को कोई ऐसी बात डेथ की न्यूज मिल जाए तो उनको पसीने आ जाते हैं। तो बॉडी रिएक्ट करती है इंसान की, तो हार्मोन्स भी रिएक्ट करते हैं। खुशी के हार्मोन्स अलग हैं, सेवा के हार्मोन्स अलग हैं, जेलसी के अपने इफेक्ट हैं हार्मोन्स के ऊपर, ईर्ष्या के अपने असर हैं। तो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर चीजों का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। असल में बॉडी और सोल इज वन यूनिट बेसिकली, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर है और दोनों इंपैक्ट डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। जब शरीर ठीक नहीं होता तो मन भी कई बार नहीं लग रहा होता। मैं अभी स्वस्थ बैठा हूं तो आपसे अच्छे से बात कर रहा हूं, और शरीर स्वस्थ नहीं होगा किसी कारण से, फीवर है और है, तो मैं इतने ठीक से बात भी कर नहीं पाऊंगा, सेवा ठीक से नहीं कर पाऊंगा। तो शरीर बीमार है तो आत्मा पर असर पड़ता है, और आत्मा बीमार है तो शरीर पर असर पड़ेगा। तो दोनों को हेल्दी रखना हमारी जिम्मेदारी है।
2: जी जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि आपकी जो थॉट्स हैं और आपकी जो इंटेंशंस हैं उसका असर आपकी बॉडी के ऊपर। जो सर ने कहा कि अभी बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं कि उनके ऊपर जो आपके ऊपर बीमारियां हैं वो भी उनमें से, जैसे साइकोसोमेटिक इलनेसेस जिसे हम लोग कह देते हैं, कि
0: एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत विश्वविख्यात है, वहां पर ये जो आपने बताया अभी सेकेटरी वाला पार्ट और फिजियोलॉजी वाला पार्ट दोनों को मिला के डिग्री उन्होंने क्रिएट की उन लोगों ने, कि सोचने का प्रोसेस और फिजिक जो है इंसान की फिजियोलॉजी, हाउ दे आर क्रिएटिंग म्यूचुअली, मतलब इंपैक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, उसमें मास्टर प्रोग्राम शुरू हुआ है स्टैनफोर्ड में।
2: अमेजिंग। और एक सवाल हमारे पास में ये आया कि शिक्षा हम लोगों को कैसे बेहतर इंसान और बेहतर जिंदगी जीने में हेल्प करती
0: है। आपको जीने के लिए कमाने की शिक्षा है बेसिकली, जब तक वो वैल्यू ओरिएंटेड नहीं होगी, उसमें मॉरल वैल्यूज या ह्यूमन वैल्यूज का टच नहीं होगा, ह्यूमन टच नहीं होगा, तब तक वो इंसान नहीं बनाएगी तो आपको खुशी नहीं देगी। वो कमाने की कला सिखा देगी, सिर्फ मशीन बना देगी आप। शिक्षा इनकम्प्लीट है, अधूरी है विदाउट ह्यूमन टच। ह्यूमन वैल्यूज के साथ, इंसानियत के साथ अगर एजुकेशन होगी, जहां से मैंने बात शुरू की थी, हमें चारों जगतों के साथ, इन एनिमेट वर्ल्ड भौतिक जगत जिसमें धरती सूरज चांद सितारे पानी हवा और प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम और फिर ह्यूमन काइंड मैनकाइंड, ये चारों पक्ष जो नेचर के हैं, इनके साथ रहने की बैलेंस्ड वे में, एक होलिस्टिक वे में रहने की कला एजुकेशन का फर्ज है। अगर हमें कोई एजुकेशन इस पहलू में बढ़ाती है, मे बी स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और व्हाटएवर एजुकेशन वी आर ट्राइंग टू शेयर राइट नाउ नॉलेज, अगर ये हमें, ये लेक्चर कितना अच्छा रहा, अब आपके पास 20 लेक्चर होंगे, ये 20 लेक्चर एजुकेट करने के लिए हैं। कौन सा लेक्चर कितना इफेक्टिव है जिसकी बात से इस पहलू में आपको मदद मिले कि चारों जगतों के साथ, चारों किंगडम के साथ आप हार्मनी में कैसे रहें। कोई सत्संग, कोई व्याख्यान, कोई पुस्तक कितनी श्रेष्ठ है, कोई ज्ञान उतना ही श्रेष्ठ है जितना हमें पूरे विश्व के साथ हार्मनी में रखने की प्रेरणा करता है। इफ आई वांट टू कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशंस, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन भाई जिसके अंदर जाके मुझे प्रेरणा मिलती है, मैं चारों जगतों के साथ, पूरी नेचर के साथ इंसान बन के कैसे रहूं, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दे रही, उतनी अच्छी है।
2: जी जी जी जी, बहुत बढ़िया कहा आपने। और हमारे पास में बस समय की ऐसा है कि आपको सुनते रहे और आपकी विजडम हमें मिलती रहे, लेकिन समय हम लोगों को इजाजत नहीं दे रहा। और एक दो सवाल मैं आखिरी आपसे लूंगा ब्रीफ में, क्योंकि समय अब हम लोगों को इजाजत नहीं दे रहा। तो सवाल आपसे ये है कि कोई ऐसे टीचर आपकी जिंदगी में जिन्होंने आपको बहुत गहराई से आत्मिक स्तर पर आपको छुआ और आपको प्रेरित किया एक अच्छा टीचर बनने के लिए, उनमें क्या गुण थे और किस तरीके से उन्होंने आपको प्रेरित किया?
0: ये तो बहुत लंबा टॉपिक है। आई एम सो थैंकफुल यू हैव टच दिस सेंसिटिव टॉपिक, बट मेरे पास तो मेरे घर में इतने फोटोज रखे हुए हैं उन बुजुर्गों के, महान टीचर्स के, जिन्होंने मेरी लाइफ को हिला के रख दिया, एक अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा भी दी, और वैसे भी मेरे एजुकेशन में जो टच दिया उन्होंने, मैं तो उनको रोजाना याद करता हूँ, अक्सर याद करता हूँ, अपने टीचर्स डे पे भी याद करता हूँ, उनके बच्चों, उनके पोतों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपके बाबा जी ने, आपके पिताजी ने मेरा इतना भला किया था। तो इसको तो मैं प्रैक्टिकली जीता हूँ, तो घंटों का टॉपिक है मेरे लिए, लेकिन आप बात को समाप्त करते हुए एक मैं बताता हूँ। मेरे 8th क्लास में 99 नंबर थे 100 में से मैथ्स में, और जब 10th किया तो 150 में 150 थे बोर्ड एग्जाम में, हरियाणा बोर्ड में। तो लेकिन जब उसके 11th हुआ तो उस जमाने में ये कंपटीशन जेई और एग्जाम नहीं होते थे आईआईटी या किसी में इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए, तो सिर्फ पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का रोल होता था। तो लेकिन मेरे नंबर 120 रह गए 200 में से 11th क्लास में, और 11th के बाद इमीडिएटली बीटेक में एडमिशन होना था, तो 60% नंबर से मेरा बीटेक में एडमिशन नहीं हो सकता था। तो मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि कॉलेज की लाइफ थी 11th कॉलेज में होती थी उस जमाने में। तो मैंने किसी टीचर को ढूंढा, अपने पुराने टीचर को, उनकी हेल्प लेके मैं प्रोफेसर के पास गया कि मुझे पढ़ा दीजिए, बुजुर्ग थे उन्होंने मना कर दिया, मेरे पे टाइम नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से नेगोशिएट करके उन्होंने मुझे कहा एक टॉपिक पढ़ा सकता हूं, वन यूनिट। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज पढ़ाई थी, ट्रिग्नोमेट्री, ओनली 5 लेक्चर्स। प्रोफेसर विद्या साहब उनका नाम था, ही नेवर आस्क्ड माय नेम, ही नेवर आस्क्ड माय फादर्स नेम एंड हिज स्टेटस, ओनली टॉट 5 लेक्चर्स, और वो 3 क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आए, तीनों 100% ठीक हुए, एंड आई गॉट 187 आउट ऑफ 200, जो कि 120 थे दिसंबर में, मार्च में 187 हो गए यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और उसके कारण मैं बीटेक में एडमिशन ले पाया। आज उनकी फोटो मेरे घर में सजा के रखी हुई है। एक टीचर कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, मैं इंजीनियर होता और नहीं होता, जमीन आसमान का अंतर पड़ता, बीटेक एमटेक का प्रोफेसर कहां से बनता मैं, और मेरा एडमिशन ही नहीं होता। तो एक व्यक्ति के 5 प्यार भरे लेक्चरर्स ने, जिसे मेरा नाम भी नहीं पूछा, आज मैं उसका नाम गा रहा हूं, प्रोफेसर विद्यासागर जी, उनके बेटे विकास अग्रवाल दिल्ली में बिजनेसमैन है, मैं उनको हर साल याद करता हूं। वो कहते हैं कि आपने मुझे याद रखा है, मेरे पिताजी को याद रखा है, कोई याद नहीं करता। मैं कहता हूं क्योंकि मेरे मेंटर श्री एस एन अग्निहोत्री जी हैं, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने मुझे कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया है, जिनको स्पिरिचुअल नेम का देवात्मा है, जिनकी टीचिंग्स पे मैं काम करता हूं, उन्होंने मुझे कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया कि जिसके जिंदगी में तुम्हारे कोई काम आया है उसको भूल जाओगे, तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। तो बीसियों अध्यापक हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैं सिर्फ एक का जिक्र किया है। उनका शुभ परलोक में, आई एम सो थैंकफुल टू हिम एंड टू माय स्पिरिचुअल मास्टर देवात्मा श्री एस एन अग्निहोत्री जी, हु टॉट मी ए लेसन ऑफ ग्रेटिट्यूड।
2: अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही प्रीशियस विजडम सर ने शेयर किया, और उसको कंक्लूजन हम लोग करते हैं, और लास्ट में जो सर ने कहा पूरे लेक्चर्स में, तो कोशिश करूंगा उसको सम अप करने की। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सर ने शेयर किया, रैंडम चीजें पिक कर रहा हूं मैं, कुछ चीजें मैं शेयर कर रहा हूं मैं, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता का एहसास, वेरी ब्यूटीफुल सर ने कहा, एंड अप्रिसिएशन, एक्नॉलेज करना हर इंसान को और उनको वो फील कराना वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड, और खुशियों के जब हम रास्ते पे चल रहे हैं, यानी खुशियों को जब हम बांट रहे हैं तो हम इवॉल्व हो रहे हैं, और हम लोगों को सिलेक्टिव भी होना है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए और वैसे लोगों से एसोसिएशन। और सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जिनकी वजह से सर की लाइफ में इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, अपने टीचर का भी जिक्र किया, और सर ने कहा कि जो लव है, लव से ऊपर कोई बात नहीं है, और जहां पर प्यार है, प्यार में इतनी ताकत है कि वो आपसे बड़े से बड़े काम आपसे करवा लेते हैं। बहुत ब्यूटीफुल कहा सर ने, और सर ने ये कहा कि जब हम अच्छे से प्योर इंटेंट से जब हम पढ़ा रहे हैं, इंपावर कर रहे हैं, उनको इनहेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी आत्मा का बल बढ़ रहा है और वो आपको दे रही है पीस और आपको सेटिस्फेक्शन और वर्थ लिविंग यू फील कि आपकी जिंदगी जो है वो वर्थ लिविंग है। इन सारे शब्दों के साथ में सर थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम और इतनी वैल्यूएबल विजडम आपने हम लोग के साथ में शेयर करी, एंड आई विल मेक श्योर पर्सनली वी ऑल कि एवरी वर्ड ऑफ योर्स एटलीस्ट फॉर वन वीक जब तक नेक्स्ट स्पीकर नहीं आते, इन सब पे मंथन किया जाता है और उसका पूरा रिपोर्ट क्या रहा वो आपसे शेयर भी किया जाएगा, स्टूडेंट्स के साथ में पढ़ाने के बाद वो सारा आपसे शेयर किया जाएगा।
0: YouTube पर मेरे लेक्चर्स और वीडियो स्मॉल क्लिपिंग्स अवेलेबल हैं, शुभ हो बेटर लाइफ के नाम से, बच्चे या विद्यार्थी उसको देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। वो क्लिपिंग्स कई बार बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत हेल्पफुल हैं, 5-10 मिनट की बात, लेकिन इंपैक्ट क्रिएट करती है। कई बार कईयों को बहुत हेल्प मिलती है, लोग बाद में मिलते हैं तो कहते हैं वो उस क्लिप ने मुझे बहुत इफेक्ट किया। तो शुभ हो बेटर लाइफ,
2: शुभ हो बेटर लाइफ जी,
0: हाँ वो यूट्यूब चैनल है, उस पर देख सकते हैं।
2: थैंक यू सो मच नवनीत सर फॉर योर प्रीशियस टाइम, वी लर्नड अ लॉट, आई पर्सनली लर्नड अ लॉट सर, थैंक यू सो मच सर,
0: थैंक यू ऑल जिन्होंने टाइम दिया, मुझे सेवा का मौका दिया, मैं सबके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। सबका शुभ हो, सबका विकास हो, हम जो सुना है इसको समझे और उसको जीवन ढाल सके, मैं और अच्छे ढाल सकूं, हम सबका इसी में भला है, सबका शुभ हो। थैंक यू,
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

0: नमस्ते दोस्तों, भाई मेरे बारे में एक बात आप नहीं जानते और वो ये कि मैं एक बहुत अच्छा कवि भी हूँ। लो सुनो मेरी नई कविता। सोमवार के बाद आता है मंगल, सोमवार के बाद आता है मंगल, शेर है एक राजा और उसका घर है जंगल। है ना बढ़िया कविता?
1: क्या कहा, एकदम बेकार है।
0: चलो कोई बात नहीं, अब मिलते हैं मीना से जो स्कूल से वापस लौट रही है मिट्टू के साथ।
2: रवि, ये रवि वहाँ खड़ा क्या कर रहा है?
3: रवि, रवि,
4: मीना आ जाओ।
2: रवि, जरा अपनी भूगोल की कॉपी दिखाना तो।
5: भूगोल की कॉपी? क्यों, क्या तुमने अपनी कॉपी में प्रश्न उत्तर नहीं लिखे?
2: लिखे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना देखना चाहती हूँ कि कहीं मुझसे कोई चीज छूट तो नहीं गई।
5: ठीक है, ये लो।
2: ये क्या रवि, तुमने तो एक भी उत्तर नहीं लिखा।
5: मीना, आज सुबह से मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं कुछ लिख नहीं पाया।
3: लिख नहीं पाया? कॉपी खाली छोड़ आया।
2: मिट्टू चुप। रवि, अगर तुम्हारे हाथों में दर्द है तो तुम्हें नर्स बहन जी के पास जाना चाहिए।
5: चला जाऊंगा।
2: समझी, अभी तुम कंचे खेलना चाहते हो, है ना?
5: खेलना तो चाहता हूँ लेकिन खेल नहीं सकता।
2: क्यों?
5: यही हाथों के दर्द की वजह से।
2: रवि, चलो मेरे साथ।
5: कहाँ?
2: नर्स बहन जी के पास।
0: मीना रवि को लेके नर्स बहन जी के घर की तरफ चली, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद।
2: रवि, तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो? नर्स बहन जी का घर तो इस तरफ है।
5: मीना, मुझे पहले पहलवान चाचा से मिलना है।
2: पहलवान चाचा से? लेकिन हम तो नर्स बहन जी के घर जा रहे हैं।
5: तुम चलो तो।

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि अगर मैं अभी से टोकरियां बुनने में उनकी मदद करूंगा तो मैं जल्दी ही ये काम अच्छे से सीख जाऊंगा। लेकिन पहलवान चाचा, टोकरियां बुनने की वजह से मेरे हाथ थक जाते हैं।
1: रवि, अब मैं समझी कि तुम्हारे हाथों में दर्द क्यों हो रहा है। पहलवान चाचा, हाथ में दर्द होने के कारण आज रवि ने ना तो भूगोल के प्रश्नोत्तर लिखे, ना ही ये अपने दोस्तों के साथ कंचे खेल पाया।
0: वो सब छोड़ो ना मीना। पहलवान चाचा, आप तो बस मुझे पहलवानी सिखा दीजिए जिससे मेरी बाजुओं और हाथों में ताकत आ जाए।
2: रवि बेटा, मैं तुम्हें पहलवानी जरूर सिखाऊंगा, लेकिन सही समय आने पर।
0: सही समय?
2: हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब। देखो बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ना पहलवानी सीखने की है ना काम करने की, बल्कि पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की है।
0: पिताजी कहते हैं कि अगर मैं अभी से टोकरियां बुनना सीख जाऊंगा तो आगे जाके इस काम में पूरी तरह निपुण हो जाऊंगा और तब मेरा भविष्य भी सुरक्षित होगा। क्या सोच रहे हैं पहलवान चाचा, कुछ तो बोलिए।
2: चलो मेरे साथ।
3: पहलवान चाचा रवि और मीना को लेके भोला यानी रवि के पिताजी के पास पहुँचे, जो उस वक्त एक टेम्पो में टोकरियां रखवा रहे थे।
4: अरे भैया, जरा संभाल के रखो।
2: और भोला, क्या हाल है?
4: अरे पहलवान जी, आप? नमस्ते।
2: नमस्ते
1: चाचा जी, नमस्ते।
4: जीती रहो मीना बेटी। रवि बेटा, जल्दी से अंदर जाओ और सारी टोकरियां इस टेम्पो में रखवा दो।
0: जी पिताजी।
2: रुक जाओ रवि। भोला, तुम्हें पता है रवि के हाथों में इतना दर्द है कि ना तो आज ये स्कूल में कुछ लिख पाया है और ना ही अपने दोस्तों के साथ खेल पाया है।
4: ये आप क्या कह रहे हैं पहलवान जी?
2: सही कह रहा हूँ, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है।
4: मेरे कारण?
2: हाँ। अरे भाई, अभी क्या इसकी उम्र है ये सब काम करने की?
4: वो
2: कुछ नहीं, अभी रवि के लिए सबसे जरूरी चीज है इसकी पढ़ाई लिखाई।
5: पढ़ाई लिखाई? नहीं समझ रहे भोला भाई।
1: चुप।
4: पहलवान जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन वो।
2: लेकिन क्या?
4: आपको तो हमारी हालत पता ही है, सुबह कमाना शाम को खाना। अब अगर ऐसे में रवि स्कूल जाएगा तो टोकरियां बुनने में मेरी मदद कौन करेगा? और फिर आगे चल के भी इसने करना तो यही काम है, तो क्यों ना ये अभी से शुरू कर दे।
2: भोला, किसी समझदार इंसान ने कहा है कि नजदीक का फायदा सोचने से पहले दूर के नुकसान का सोचना चाहिए।
4: पहलवान जी, मैं कुछ समझा नहीं।
2: मैं समझाता हूँ। तुम्हें ये तो दिख रहा है कि अगर रवि काम में तुम्हारी मदद करेगा तो तुम्हें आसानी होगी, दो पैसे का फायदा होगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि पढ़ाई छूटने के कारण इसका और तुम्हारा कितना नुकसान होगा।
4: क्या मतलब?
2: मतलब ये कि अगर रवि पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम्हारे साथ काम में लग गया तो वो जीवन भर बस टोकरियां ही बनाता रहेगा, क्योंकि इसे कुछ और करना आएगा ही नहीं। भोला मेरे भाई, बात को समझो, पढ़ने लिखने से इसका भविष्य संवरेगा, हजार तरह के हुनर सीख सकेगा तुम्हारा रवि, और अभी से काम में लग के सिर्फ एक ही चीज सीखेगा, टोकरियां बुनना।
5: टोकरियां बुनना, बात को ध्यान से सुनना।
6: कितनी देर और लगेगी भैया, जल्दी से माल डलवाओ ना टेम्पो में।
4: हाँ हाँ भाई, एक मिनट।
0: पिताजी, आप तो टोकरियां हमेशा बैलगाड़ी से भेजा करते थे, फिर आज ये टेम्पो क्यों?
4: रवि बेटा, ये टोकरियां मैं शहर भेज रहा हूँ।
0: शहर?
4: हाँ, शहर में एक रंगसाज है, वो इन टोकरियों पे सुंदर रंग करेगा और फिर हम मंडी ले जाके उन रंगीन टोकरियों को बेच देंगे, दो पैसे फालतू मिलेंगे रंगीन टोकरियों के।
0: लेकिन पिताजी, टेम्पो का किराया और फिर वो रंग करने वाला भी तो पैसे लेगा।
4: अरे बेटा, रंगीन टोकरियां बिकेंगी भी तो अधिक दाम पे।
0: लेकिन पिताजी, इन टोकरियों पे रंग तो यहाँ भी किया जा सकता है।
4: यहाँ?
0: हाँ पिताजी, वो भी बिना कोई पैसे खर्चे।
4: वो कैसे?
0: पिताजी, थोड़े दिन पहले स्कूल में बहन जी ने हमें एक पाठ सिखाया था जिसमें हमें बताया गया था कि पौधों की मदद से कई रंग बनते हैं जिनका इस्तेमाल चीजों को रंगने के लिए किया जा सकता है। तुम्हें याद है ना मीना?
1: हाँ रवि, मुझे अच्छी तरह याद है।
4: रवि, मीना, तुम सच कह रहे हो?
1: जी पिताजी।
4: टेम्पो वाले भैया, आप जाइए, अब मुझे ये टोकरियां शहर नहीं भेजनी। पहलवान जी, मुझे नहीं पता था कि स्कूल में बच्चों को ये सब चीजें भी सिखाई जाती हैं।
2: भोला भाई, स्कूल में जाके बच्चा

0: हजारों चीजें जैसे जीवन कौशल और विभिन्न विषय सीखता है जो आगे जाके उसके जीवन में बहुत काम आती हैं। तुम तो रवि को बस टोकरियां बनाने का काम सिखाना चाहते हो ना, लेकिन स्कूल जाके ये पता नहीं क्या क्या करना सीख जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकेगा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बने? बोलो।
1: आप ठीक कह रहे हैं पहलवान जी। रवि बेटा, आज से तुम्हें मेरे साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम करोगे सिर्फ पढ़ाई लिखाई।
2: पढ़ाई लिखाई, भोला चाचा को बात समझ में आई।
3: दोस्तों, अब आप सब भी मुझसे एक वादा कीजिए कि आप खूब पढ़ेंगे लिखेंगे और दुनिया को कुछ बन के दिखाएंगे। आप लोगों को मेरी कविता तो पसंद नहीं आई, लेकिन मीना और मिट्ठू की कविता जरूर पसंद आएगी। ठीक कहा ना मैंने? तो चलो सुनते हैं उन दोनों की एक नई कविता।
4: पढ़ लिख कर कुछ बनना है ये हमने दिल में ठाना,
2: अभी से काम में लग गए तो पड़ेगा फिर पछताना।
3: भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: गाना तो सचमुच बहुत बढ़िया था, और अब हाँ अब खेलना है तो जल्दी से चलो मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं तुम सबको एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है, और हर नए शब्द से जुड़ा क्या बनाना है?
2: मुहावरा।
1: हाँ, तो आज का शब्द है सितार। चलो बच्चों अब सितार के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ।
3: बहन जी, सितार का पहला अक्षर है स, और स से होता है सफेद।
1: शाबाश मोनू। अब सफेद से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
4: चेहरा सफेद पड़ना।
1: हाँ रानो, और इस मुहावरे का मतलब?
4: बहुत घबरा जाना।
1: बिल्कुल ठीक। चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बताएगा?
5: स के बाद सितार में आता है त, और त से होता है ताला।
1: शाबाश कृष्णा। और ताले से जुड़ा मुहावरा?
6: अकल पे ताले पड़ना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना।
1: बिल्कुल सही दीपू। अब अगला शब्द कौन बताएगा?
3: मैं।
1: हाँ मोनू बताओ।
3: स और त के बाद सितार में आता है र, और र से होती है रात।
1: शाबाश मोनू। और रात से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
4: मैं बताऊंगी बहन जी।
1: हाँ हाँ मीना बताओ।
4: रात दिन एक करना, और इसका मतलब होता है बहुत परिश्रम करना।
1: शाबाश मीना। तो बच्चों खेल में मजा आया ना?
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: मजा तो आपको भी खूब आया होगा है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
4: दोस्तों मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: गोपी चंद, पात्र परिचय आकाश, वेदांत, आदित्य प्रकाश, आदित्य यश।
3: क्या तुम भूतों को मानते हो?
4: भूत सर, सर सर क्या
3: भूत खेड़ी में? चलो हमें आज ही निकलना होगा।
2: रूप चंद और गोपी चंद भूत खेड़ी पहुंच जाते हैं। सरपंच और गांव वालों से पूछते हैं,
3: सरपंच जी आखिर बात क्या है? मामला कुछ गड़बड़ा ऐसा लग रहा है।
5: क्या कहें बाबूजी, जब से तांत्रिक दमदम बाबा को खोपड़ी मिली है तब से कभी कुएं का पानी लाल हो जाता है तो कभी गांव के तालाब में बाबा कुछ पत्थर फेंक देते हैं तो आग निकलती है। बाबूजी जरूर गांव पर भूत प्रेत का साया है, इसलिए दमदम बाबा साधना करेंगे गाँव की खुशहाली के लिए।
6: सर मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, यह सब तो कोरी बकवास है।
5: हुजूर ऐसा न कहिए, दमदम बाबा अभी आपको तालाब में आग निकलते हुए दिखा सकते हैं और कुएं का लाल पानी तो आप देख ही सकते हैं।
3: तो चलो फिर बाबा के पास चलते हैं।
2: गांव के तालाब पर तांत्रिक दमदम बैठा था। पास ही एक बर्तन में मिट्टी के तेल में कुछ ठोस टुकड़े पत्थर रखे हुए थे। बाबा ने कुछ टुकड़े उस बर्तन में से उठाए और पानी में फेंके, सचमुच आग की चिंगारियां निकल रही थीं।
4: गोपी जी वाकई यहाँ भूत परेत है, चलिए मैंने तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया है, भाग चले।
3: रूपचंद ये क्या बचपना है, तुम्हारी एक नादानी से गोपीचंद का नाम बदनाम हो जाएगा।
4: सर मैंने कातिलों को पकड़ा, चोरों व आतंकवादियों को जकड़ा, लेकिन भूत का यह नया कैसा है, इसीलिए डर लग रहा है।
3: भूत क्या? जैसे मेरे कहने से तुम एकदम डर गए, यही डर इन गांव वालों के दिमाग में घर कर गया है।
2: गोपी चंद और रूप चंद बाबा की अंधेरी डरावनी कुटिया के अंदर जाते हैं। बाबा अपनी साधना में लीन थे।
7: सर देखिए बाबा कितने ज्ञानी हैं, आज भी केमिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं।
3: ओह तो ये केमिस्ट्री ही सारी भूत प्रेतों की हिस्ट्री है।
2: गोपीचंद सरपंच और गांव वालों को बुलाते हैं।
3: सरपंच जी डरने की कोई बात नहीं है, आपके गांव का भूत मिल गया है। ये रहा दमदम बाबा, यही आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं।
4: जी कैसे?
3: भाइयों रसायन शास्त्र से पानी में आग लग जाती है, ये रहे सोडियम के टुकड़े जिन्हें पानी में डालने पर आग लग जाती है, और कुएं का पानी भी इसने किसी रसायन से लाल किया है।
8: गोपी जी मुझे माफ कर लीजिए, पैसों के लालच में मैंने गांव वालों को मूर्ख बनाया।
3: साथियों विज्ञान से आदमी असमान में उंड सकता है और पानी में कुछ रसायनों से आग लगा सकता है, तो ये भूत प्रेत नहीं विज्ञान है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, 8वां पाठ, गाड़ियां और पहिए, पृष्ठ 81। इस पृष्ठ पर बहुत सारे कार्य होते हुए दिखाए गए हैं, जैसे लड़की का रोटियां बनाना, ठेले पर बोरियों का लादकर जाना, साइकिल चलाना, लड़के का पहिए को ढकेलना और पतंग उड़ाना, कुम्हार का बर्तन बनाना, ट्रैक्टर पर जाना, बस का जाना और सब्जी वाले का सब्जी बेचते हुए चित्र, और साथ में एक लड़के का अपनी मां के साथ चित्र। लड़का बोला,
3: अरे देखो इसके कितने बड़े पहिए हैं, मैंने इससे बड़े पहिए आज तक नहीं देखे।
2: तुमने ऐसी गोल गोल चीजें अपने आसपास जरूर देखी होंगी। तुम अपनी कॉपी में इस तरह की गोल गोल चीजों की एक सूची बनाओ। पृष्ठ 82, चूड़ी से गोला बनाओ। क्या तुम कभी चूड़ियों की दुकान पर गए हो? यहां पर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ 3 चूड़ियों के चित्र हैं और बाईं तरफ भी चूड़ियों के चित्र हैं, जिस पर लिखा है कांच की चूड़ियां, और साथ ही एक महिला का चित्र भी है। महिला कहती है,
3: मैं ये चूड़ियां नहीं पहन सकती, ये बहुत छोटी हैं।
2: इनमें से कौन सी चूड़ी तुम्हारे हाथ के नाप की है, अंदाजा लगाओ। एक तार लो और अपने लिए चूड़ी बनाओ। क्या तुम्हारी मैडम या मां ये चूड़ी पहन पाएगी? रिक्त स्थान। चूड़ी का इस्तेमाल गोला बनाने के लिए किया जा सकता है। कुछ और चीजों के बारे में सोचो जिनका इस्तेमाल गोला बनाने में किया जा सकता है। यहां पर दिए गए खाली स्थानों में उन वस्तुओं के नाम लिखो जिनका इस्तेमाल तुम गोला बनाने में कर सकते हो। अब तुम अपनी कॉपी में या पास के मैदान में उन चीजों की मदद से गोला बनाओ जिनसे तुम्हें लगता है कि गोला बनाया जा सकता है। किस चीज की मदद से सबसे छोटा गोला बन सकता है? रिक्त स्थान। और किस चीज की मदद से सबसे बड़ा गोला बन सकता है? रिक्त स्थान। पृष्ठ 83, गोल घेरे के खेल। बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं। यहां पर खेलों के 2 चित्र हैं, चित्र खेल 1 और चित्र खेल 2। खेल 1 में बच्चे गोला बनाकर रुमाल उठाने का खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खेल 2 में 2 बच्चे गोले में रुमाल को रखकर उठाते हुए दिख रहे हैं और बाकी बच्चे उनके पीछे खड़े होकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्या तुम इन खेलों को खेलते हो? इनको खेलते हुए तुम कौन सा गाना गाते हो? अपने स्कूल में इन खेलों को खेलो। इन खेलों को खेलने के लिए हम गोल घेरा क्यों बनाते हैं? अगर आयत बनाते तो क्या होता? चर्चा करो। कुछ और खेलों के बारे में सोचो जो गोल घेरे बनाकर खेले जा सकते हों। इस पृष्ठ के अंतिम हिस्से में एक लड़की को कमर में रिंग से खेलते हुए दिखाया गया है। पृष्ठ 84, गोला बनाना। नैना, चिंपू और अरीबा एक खेल खेलना चाहते हैं। वो मैदान में एक बड़ा गोला बनाना चाहते हैं, लेकिन वो इसे बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए अरीबा एक टहनी की सहायता से मैदान में गोला बनाने की कोशिश करती है। चिंपू और नैना कहते हैं,
4: ये तो बिल्कुल भी गोल नहीं लग रहा है।
2: अरीबा कहती है,
4: अच्छा
2: तुम दोनों ही कोशिश करके देख लो। चिंपू और नैना दोनों मैदान पर अपना अपना गोला बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर तीन चित्र दिखाए गए हैं और तीनों में बच्चों को गोला बनाते हुए दिखाया गया है। क्या इनमें से कोई गोले की अच्छी ड्राइंग है? क्या तुम चौक से फर्श पर गोला बना सकते हो? कोशिश करो। अपनी कॉपी में भी पेंसिल से गोला बनाने की कोशिश करो। अपने दोस्तों की कॉपी में बने गोले देखो, किसने सबसे अच्छा गोला बनाया है। शिक्षकों के लिए निर्देश: इस अभ्यास का उद्देश्य छात्र को मुक्त हस्त से वृत्त बनाने का अवसर देना है। फर्श के अलावा छात्र मैदान में किसी नुकीली चीज से वृत्त बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। विभिन्न चित्रों की तुलना से उन्हें वृत्त के आकार का एहसास होगा। पृष्ठ 85। रस्सी की मदद से गोला बनाना। अरिबा ने तय किया कि वो धागे और कील की मदद से मैदान पर गोला यानी वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया। फिर अपने एक दोस्त की मदद से गोला बनाया। नीचे बने हुए चित्र को देखो कि उन्होंने गोला कैसे बनाया। यहां पर दो बच्चों को रस्सी और कील की मदद से गोला बनाते हुए दिखाया गया है और उसके सामने एक बंदर का चित्र है जो कह रहा है,
4: क्या तुम भी अरिबा की तरह कील और रस्सी की मदद से गोला बना सकते हो?
2: छोटे समूह बनाकर नीचे लिखी गतिविधियां करो। हर एक समूह अलग अलग लंबाई की रस्सी व कीलें ले। हर एक समूह अरिबा की तरह जमीन पर गोला बनाए। सभी समूहों द्वारा बनाए गए गोलों को देखो। अब इन प्रश्नों के उत्तर दो। किस समूह ने सबसे छोटा गोला बनाया? रिक्त स्थान। उनकी रस्सी कितनी लंबी थी? रिक्त स्थान। क्या ज्यादा लंबी रस्सी से ज्यादा बड़ा गोला बनता है? रिक्त स्थान। क्या तुम बता सकते हो क्यों? रिक्त स्थान। यहां पर एक गोले का चित्र है जिस पर अर्धव्यास को दर्शाया गया है और साथ ही एक बंदर का चित्र है जो कह रहा है,
4: जिस रस्सी से गोला बनाया गया उसकी लंबाई गोले का अर्धव्यास यानी आधा व्यास है।
2: सबसे छोटे गोले का अर्धव्यास कितना लंबा है? रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश: इस अभ्यास का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न आकार के वृत्त बनाएं, उनके अर्धव्यास यानी त्रिज्या की लंबाई मापें तथा ये देखें कि अर्धव्यास की लंबाई बदलने से वृत्त का आकार कैसे बदलता है। पृष्ठ 86। स्केल से इस चूड़ी का अर्धव्यास बनाओ, इसकी लंबाई भी नापो। यहां पर एक चूड़ी का चित्र है। अब देखो तुम्हारे दोस्तों ने क्या बनाया है। चित्र देखो, उनसे उनके द्वारा नापी गई अर्धव्यासों की लंबाई भी पूछो। क्या सभी अर्धव्यासों की लंबाई बराबर है? यहां दिए गए गोलों के अर्धव्यास बनाओ। अब अंदाजा लगाओ कि किस गोले का अर्धव्यास बड़ा है। रिक्त स्थान। यहां पर दो गोले दिखाए गए हैं, एक छोटा है और दूसरा बड़ा। दोनों गोलों के अर्धव्यास स्केल से नापो, उनके अर्धव्यास की लंबाई लिखो। हरे रंग के गोले का अर्धव्यास, रिक्त स्थान। नीले रंग के गोले का अर्धव्यास, रिक्त स्थान। पता करो, साइकिल के पहियों या बैलगाड़ी के पहियों के अर्धव्यास नापो। तुम इसे धागे या टेप की सहायता से नाप सकते हो। क्या इसके दोनों पहियों के अर्धव्यास बराबर हैं? रिक्त स्थान। क्या तुमने ट्रैक्टर या रोड रोलर देखा है? रिक्त स्थान। तुमने सबसे बड़ा पहिया कौन सा देखा है? रिक्त स्थान। क्या ट्रैक्टर या रोड रोलर के सभी पहियों के अर्धव्यास बराबर होते हैं? रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश: बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के वृत्तों की त्रिज्या बनाने और उन्हें नापने के अनेक रोचक अभ्यास जरूरी हैं। वो पहिए और गाड़ी भी बना सकते हैं। पृष्ठ 87। लाली और काली रस्सी द्वारा खंभे से बंधी हुई हैं। काली की रस्सी ज्यादा लंबी है। दोनों में से कौन ज्यादा दूरी तक की घास खा सकती है? रिक्त स्थान। यहां पर एक चित्र में दो बकरियों का चित्र बना है जिनके नाम है काली और लाली। उन्हें रस्सी से बंधे हुए दिखाया गया है और साथ ही रस्सी पर कपड़े टंगे हुए हैं। दलजीत के डिजाइन। दलजीत ने परकार की सहायता से ये डिजाइन बनाए हैं। यहां पर तीन चित्र हैं। पहले चित्र में एक पौधा दिखाया गया है, दूसरे में एक वृत्त है और तीसरे चित्र में एक बच्चे को परकार की सहायता से गोला बनाते हुए दिखाया गया है। उसकी बहन आई और उसके साथ मिलकर और डिजाइन बनाने लगी। यहां पर एक दूसरे चित्र में एक लड़की को परकार की मदद से वृत्तों के विभिन्न डिजाइन बनाते हुए दिखाया गया है। क्या तुम ऐसे डिजाइन बनाना चाहते हो? ऐसे डिजाइन बनाने के लिए तुम्हें परकार की जरूरत है। पृष्ठ 88। परकार का इस्तेमाल। क्या तुमने पहले कभी परकार देखी है? तुम गोला बनाने के लिए इसका प्रयोग कैसे करोगे? अपनी परकार को खोलो। परकार के नुकीले सिरे को कागज पर रखो। परकार को ऊपर से पकड़ो। नुकीले सिरे को हिलाए बिना पेंसिल को गोल घुमाने की कोशिश करो। क्या तुम गोला बना पाए? यहां पर दो चित्र दिए गए हैं। ऊपर वाले चित्र में एक प्रकार को दिखाया गया है जिसके अंदर पेंसिल है, और दूसरे चित्र में लड़की को परकार की मदद से एक कागज पर गोला बनाते हुए दिखाया गया है। उस निशान को ढूंढो जहां तुमने परकार के नुकेले सिरे को रखा था। यही निशान तुम्हारे गोले का केंद्र है। क्या ये गोला उस गोले से अच्छा है जो तुमने बिना परकार के प्रयोग किए बनाया था? इस गोले का अर्धव्यास बनाओ और उसकी लंबाई नापो। अब तुम दलजीत की तरह अपने डिजाइन बनाने की कोशिश करो। तुमने कितने डिजाइन बनाए? अंदाजा लगाओ कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया। परकार की मदद से ऐसा ही डिजाइन नीचे दिए गए बॉक्स में बनाओ। इस पृष्ठ के सबसे नीचे वाले हिस्से में दो चित्र हैं। बाईं ओर एक वृत्त बना है, उसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी एक रेखा खींची है और दूसरा खाली बॉक्स है। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चों को परकार की सहायता से अपने डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। इस तरह से उन्हें परकार की सहायता से वृत्त बनाने का रोचक अभ्यास भी होगा। पृष्ठ 89। क्या ये एक वृत्त है? नैना एक गोला बना रही थी। यहां पर नैना को गोला बनाते हुए दिखाया गया है। रवि ने उससे रबर मांगा। उसने अपनी परकार रख दी और रबर दे दी। अब वो फिर से गोला बनाने लगी, लेकिन उसका गोला ऐसा बना। यहां पर फिर एक दूसरे चित्र में नैना को गोला बनाते हुए दिखाया गया है। सोचो, नैना की बनाई गई आकृति ऐसी क्यों बनी? चर्चा करो। क्या एक गोले के एक से ज्यादा केंद्र हो सकते हैं? दूसरे दिन नैना परकार की मदद से एक गोला बना रही थी, पर यह कुछ ऐसा बन गया। यहां पर एक चित्र में नैना को गोला बनाते हुए दिखाया गया है, किंतु यह टेढ़ा गोला बन रहा है। क्या तुम में से किसी की आकृति नैना द्वारा बनाई गई आकृति के समान बनी है? यहां पर सबसे नीचे नैना को पेंसिल और परकार के साथ दिखाया गया है। नैना कहती है,
3: अरे मेरी परकार का पेंच ढीला है, मुझे उसे कसने दो। अब मेरी परकार फिसलेगी नहीं।
2: पृष्ठ 90। केंद्र को खोजो। सादिक और समीना अपना अपना गोला बनाना चाहते हैं। यहां पर दो बच्चों के चित्र बने हैं। एक है सादिक और दूसरी है समीना। सादिक कहता है,
3: मैं परकार की मदद से बनाऊंगा।
2: और समीना कहती है,
3: नहीं, मैं तो चूड़ी से छाप कर बनाऊंगी।
2: इसी के नीचे एक दूसरे चित्र में दो बच्चों को गोला बनाते हुए दिखाया गया है। फिर उन्होंने अपने गोले काटे। यहां पर फिर सादिक और समीना का चित्र है। सादिक ने कहा,
3: देखो मेरे गोले का केंद्र है, लेकिन तुम्हारे गोले का केंद्र कहां है?
2: समीना ने कहा,
3: चिंता मत करो, देखो मैं उसे कैसे ढूंढती हूं।
2: उसने अपने गोले को मोड़कर आधा कर दिया। यहां पर एक गोले को मोड़कर दिखाया गया है। गोले के बीचों बीच सीधी खड़ी उसके केंद्र से जाती हुई रेखा है, और साथ ही आधे गोले को डॉट की मदद से दर्शाया गया है। पृष्ठ 91। फिर दोबारा उसने कुछ इस तरह मोड़ दिया। यहां पर एक आधे गोले का चित्र बना है जिसमें ऊपर वाले आधे भाग को डॉट की मदद से दर्शाया गया है। उसने मुड़ा हुआ गोला खोला। यहां पर सादिक और समीना का चित्र है। समीना कहती है,
4: क्या तुम एक दूसरे को काटती हुई दो लाइनें देख रहे हो?
2: सादिक ने कहा,
4: हां।
2: इसके नीचे समीना का चित्र बना है जो कहती है,
4: मैंने वहां एक बिंदु लगा दिया जहां से ये लाइनें एक दूसरे को काट रही थीं। ये इस गोले का केंद्र बिंदु है।
2: अब तुम चूड़ी की मदद से कागज पर एक गोला बनाओ, इसे काटो और समीना के तरीके से इसका केंद्र ढूंढो। हम पृष्ठ 88 पर दिए गए डिजाइन को इस तरह से भी बना सकते हैं। तुमने कैसे बनाया? इस पृष्ठ के अंतिम हिस्से में दो गोले दिखाए गए हैं। बड़े गोले के अंदर दो गोले दिखाए गए हैं। दोनों गोलों के आधे आधे भाग बिंदुओं की मदद से दर्शाए गए हैं। अब इस गोले को देखते हुए तुम दूसरे गोले में बिंदुओं की मदद से दो छोटे गोले बनाओ। पृष्ठ 92। संतुलन करना। क्या तुम एक प्लेट को अपनी उंगली पर टिका सकते हो? यहां पर एक बंदर के दो चित्र हैं जो अपनी उंगली पर प्लेट को टिकाने की कोशिश करता दिख रहा है। बंदर ने कहा,
4: मैं करके देखूंगा। गिर गई। मैं फिर कोशिश करूंगा। आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, मुझे लगता है कि मुझे प्लेट का केंद्र मिल गया है।
2: तुम भी प्लेट को उंगली पर टिकाने की कोशिश करो। देखो उंगली पर कहां टिकेगी। लट्टू को घुमाओ। जाकिर, अप्पू, नैना और गुड्डू बोर हो रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी इसलिए वो बाहर खेलने भी नहीं जा सकते थे। यहां पर एक घर का दृश्य है जिसमें चार बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अचानक गप्पू के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा,
4: चलो हम सब अपना अपना लट्टू बनाते हैं।
2: उन्होंने गत्ते का एक टुकड़ा लिया, उस पर एक गोला बनाया, उसमें छेद कर माचिस की तीली लगा दी। पृष्ठ 93। यहां पर तीन चित्र दिखाए गए हैं जिनमें चारों बच्चे अपने अपने लट्टू बनाते हुए दिख रहे हैं। अब सब अपना अपना लट्टू घुमाने के लिए उत्साहित थे। उनके लट्टू कुछ ऐसे लग रहे थे। यहां पर चारों बच्चों के लट्टुओं का चित्र है। पहला चित्र जाकिर के लट्टू का है। जाकिर के लट्टू में तीली बिल्कुल दाई तरफ है। अप्पू के लट्टू में तीली बिल्कुल बीचों बीच है। नैना के लट्टू में तीली बिल्कुल बाई तरफ है और गुड्डू के लट्टू में तीली दाई तरफ है। अब तुम इन चारों लट्टुओं को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। सोचो, किसका लट्टू बिल्कुल नहीं घूमेगा? रिक्त स्थान। किसका लट्टू थोड़ा सा घूमेगा? रिक्त स्थान। किसका लट्टू सबसे अच्छा घूमेगा? रिक्त स्थान। और किस लट्टू की तीली केंद्र के पास है? रिक्त स्थान। अपना लट्टू खुद बनाओ। तुम भी अपना लट्टू बना सकते हो और उससे खेल सकते हो। लट्टू ठीक से घूमे इसके लिए छेद कहां करना होगा? और इसी के साथ आठवां पाठ गाड़ियां और पहिए यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो, ध्वनियंकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा? अरे धैवत, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। चलो चलो, आराम से बैठ जाओ, अब दीदी आती ही होंगी।
5: अरे क्या हो रहा है भाई यहाँ पे?
4: वो दीदी, मैं आई ना और धैवत ने मुझे डरा दिया।
5: धैवत? अच्छा, तो मतलब मस्ती हो रही है यहाँ पे?
4: हाँ।
5: डरा दिया अमन को?
4: हाँ वही तो।
5: अमन, बहुत तो नहीं डर गए थे आप?
4: नहीं, मैं थोड़ा बहुत डरी थी।
5: अच्छा, तो मतलब फिर धैवत पे गुस्सा नहीं किया?
4: नहीं, मैंने उस पे गुस्सा नहीं किया।
5: ओके, तो बच्चों एक काम क्यों नहीं करते, आज हम लोग डर के बारे में ही बात कर लेते हैं। क्योंकि डर तो हम सबको लगता है ना, है ना?
4: हाँ।
5: किसी को नहीं लगता है? कोई है ऐसा जिसको बिल्कुल डर नहीं लगता?
4: नहीं, मुझे भी लगता है।
5: धैवत थोड़ा थोड़ा हाथ उठा रहा है, थोड़ा थोड़ा सोच रहा है कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मुझे डर लगता है। अच्छा चलो ठीक है बच्चों, बात करेंगे। पहले अपना अपना नाम और क्लास तो बता दो मुझे।
4: मेरा नाम है अमनप्रीत और मैं क्लास 9th में हूँ।
6: मेरा नाम है धैवत और मैं क्लास 9th में हूँ।
7: मेरा नाम है शिवानी और मैं क्लास 6th में हूँ।
5: ओके, और मेरा नाम आरुषि है और मैंने स्कूल पास किया था, मुझे तो बहुत सारे साल हो गए पता है, तो इसलिए मैं आज दीदी हूँ। अच्छा बच्चों, ये बताओ सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है?
4: वैसे सब लोग मानते नहीं है, पर मुझे सबसे ज्यादा डर भूत से लगता है।
5: ओके,
8: भूत से डर लगता है।
4: जैसे नॉर्मल कोई जैसे दिखता है, और जैसे कि जैसे कोई इंसेक्ट होता है ना जो बहुत बड़े होते हैं, उन्हें देख के हम दूर दूर भागते हैं, उनसे सबसे ज्यादा डर लगता है।
5: अच्छा, सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, मतलब इंसेक्ट से ज्यादा डर लगता है कि भूत से ज्यादा डर लगता है?
4: भूत से।
5: भूत से डर लगता है?
4: हाँ।
5: ओके, और क्यों लगता है भूत से डर?
4: क्योंकि लगता है कि वो हमें डरा रहे हैं, मतलब हमारे आसपास घूम रहे हैं, हमें कुछ करना दे,
5: हमें कुछ करना दे, इसलिए लगता है। ओके, और ये भूत होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं?
4: मैंने कभी देखा ही नहीं।
5: तो कैसे पता कि उनसे डरना होता है?
6: ये जब अपने मन का वहम है।
4: मैंने पहले यूट्यूब पे देखा था ऐसा ऐसा कुछ होता है।
7: वो हम लोग पिक्चर्स देखते हैं इसीलिए,
4: डरावनी मूवीज।
5: अच्छा शिवानी, आपको किस चीज से डर लगता है?
7: मुझे भी भूत से लगता है।
5: सबसे ज्यादा भूत से डर लगता है?
7: हाँ।
5: क्यों लगता है भूत से डर? कुछ तो वजह होगी। क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि वो आपको कुछ कर देगा, क्या होगा?
7: हाँ।
5: क्या कर देगा?
7: मुझे मार देगा।
5: आपको मार देगा, ऐसा लगता है?
4: और पता है दीदी, इसी डर से अंदर वाले कमरे में भी नहीं जाती रात के वक्त।
5: ऐसा होता है। धैवत, आपको किस चीज से डर लगता है?
6: सिर्फ अंधेरा, वो भी जब लाइट्स चली जाती है तब के टाइम, क्योंकि कोई हमारे बिल्डिंग में ऐसे शैतान बच्चे हैं कि ऊपर चढ़े नहीं और पूरे भूत का मास्क पहन के आ जाते सामने।
5: अच्छा, ऐसा भी करते हैं?
6: हाँ।
5: ओ, फिर क्या करते हो, डर जाते हो?
6: उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक छुपा के लकड़ी लेकर जाता हूँ, जैसे ही कोई दिखे लकड़ी सीधे उसके सर पे आती है।
5: अच्छा, फिर तो उनको चोट लग जाती होगी।
6: मीन्स पतली सी लकड़ी लेकर जाता हूँ, जैसे मारता हूँ अंदर चले जाते।
5: अच्छा, जब पहली बार उन्होंने डराया ऐसे भूत बन के, तो आपको डर लगा था?
6: ज्यादा नहीं, थोड़ा सा।
5: थोड़ा सा लगा था। ओके, वैसे ये कि भूत से डर लगता है, बहुत लोगों को लगता है, ऐसा नहीं कि बच्चों को लगता है, बड़ों को भी लगता है भूत से डर, है ना? भूत क्या होता है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या होते हैं भूत?
6: मन का वहम
4: शायद, ऐसा कहते हैं कि जो मर जाते हैं उसके बाद वो भूत बन जाते हैं। वैसे मैं इस बात पे ज्यादा बिलीव नहीं करती, पर लगता है कभी कभी शायद हो सकता है।
5: ओके, और शिवानी आपको क्या लगता है?
7: कुछ लोग तो कहते हैं जिनकी ना वो नहीं होती, जैसे कि उनकी कोई ख्वाहिश रह जाती है ना, तो बन जाते
5: हैं, तो भूत बन जाते हैं। वैसे एक बात बताओ, जैसे कोई भी लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, अगर वो मर जाते हैं तो एकदम से बुरे कैसे हो जाएंगे?
4: मुझे ऐसा लगता है शायद वो जो मर जाते हैं या फिर जो उन्हें मारते हैं ना, जिनका मर्डर होता है ना, ज्यादातर शायद वही लोग भूत बनते हैं, ऐसा सुना है। क्योंकि वो जो मरते हैं जिन्होंने उनको मारा होता है ना, फिर उनके प्रति उनके मन में
5: गुस्सा,
4: बुराई, हाँ ऐसा कुछ वो होने लगता है।
5: ओके,
4: तो शायद वो इसलिए, और शायद वो दूसरों के प्रति भी ऐसे ही सोचने लगते होंगे कि ये भी हमें मारना चाहते होंगे, इन्होंने हमें नहीं बचाया।
5: ओके, अच्छा एक बात बताओ शिवानी, अगर जैसे किसी दो लोगों का झगड़ा हो रहा है जो आपको बिल्कुल नहीं जानते, तो क्या वो आपको मारने के लिए आएंगे?
7: नहीं।
5: हाँ मन?
4: नहीं, ऐसा नहीं होगा।
5: देवर?
6: आ भी सकते,
5: लेकिन वो तो आपको जानते ही नहीं है।
6: ऐसा नहीं, भरोसा नहीं कर सकते कि वो तो कभी झगड़े झगड़े में भी बीच में आ जाते तो।
5: नहीं, आप बीच में नहीं हो, आप कहीं और हो।
6: हाँ, तो नहीं आएंगे।
5: नहीं आएंगे ना,
6: बिल्कुल नहीं आएंगे।
5: तो अगर कोई भूत बन भी गया और वो हमें जानता नहीं है तो हमें क्यों परेशान करने आएगा?
4: हाँ वैसे ये बात तो है।
5: है क्या?
7: वैसे ये भी माना जाता है अगर हम लोग उनके घर में चले जाओ,
4: हम जहाँ रहते हैं कभी कभी वहाँ पे भी ऐसा कुछ होता ना, नेगेटिव थिंग्स,
5: ऐसा लगता है। तो आप लोगों को कभी ऐसा खुद फील हुआ कभी?
4: हाँ,
5: आपको
4: जब हम यहाँ आए थे तो हमारा नया नया घर था, और जब हम यहाँ रहते थे ना तो हमें अजीब सी आवाजें आती थी। वैसे हम पिछड़े में सब देखते रहते हैं, नए नए घर में जो लोग जाते हैं अजीब सी आवाजें आती हैं।
5: कैसी आवाजें आती थी?
4: मतलब हमारे अलावा साउंड सुनाई देता था, महसूस कुछ पहले होता था और फिर बाद में सब नहीं होता था। बाद में पहले जब हम रहते थे ना तब डर लगता था, फिर पापा आ जाते थे तो थोड़ा ठीक लगने लगता था, फिर डर नहीं लगता था। और ऐसे हमारा बगल वाला घर भी बहुत दिनों से खाली है, वहाँ के शीशे टूटे उठे हैं, तो इसलिए उससे उसको देख के और डर लगने लगता है। और फिर लाइट चली आती है तो मतलब डर लगने ही लगता है, बाहर चले आते हैं हम लोग लाइट में, घर हम कमरे के अंदर रहते ही नहीं है।
7: तभी मैं रात को पापा के पास सोती हूँ।
5: हाँ, अच्छा शिवानी आपको क्या लगता है, आपने कभी देखा भूत को?
7: नहीं।
5: कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है यहाँ तो? क्या लगा
7: घर में?
5: क्या लगा घर में आपको?
7: भूत।
5: कैसे लगा, क्या बात, आपने कुछ सुना, आपने कुछ देखा, क्या लगा आपको?
7: सुना।
5: क्या सुना?
7: अजीब तरह की आवाजें।
5: आवाजें? कैसी आवाजें?
7: पता है एक बार क्या हुआ, पंखा ना चल रहा है वो बंद हो गया, तब भी पंखे की आवाज आ रही है।
5: अच्छा ऐसा लगा आपको? तो कोई बाजू वाले कमरे या आसपास कहीं से आवाज?
7: नहीं, उधर तो कोई रहता ही नहीं।
5: अच्छा आपको पंखे की आवाज सुनाई दे रही थी? आपको भी सुनाई दे रही थी?
7: मैं घर में तो सो रही थी।
5: सिर्फ आपको?
7: अकेले तो सो जाती है।
5: फिर आपने क्या किया?
7: फिर मैं तो इसको उठाया, फिर ये उठी ही नहीं।
5: ओ
6: तब तो तुम बहुत डर गई होगी।
5: फिर?
7: हाँ तो फिर मैं मोबाइल चलाने लगी।
5: और फिर ठीक हो गया था?
7: हाँ तो फिर ये बाद में उठी तो फिर ठीक हुआ।
5: अच्छा मतलब मोबाइल चलाने से भी ठीक नहीं हुआ डर?
4: वो अकेलेपन में ज्यादा डर लगता है। जैसे अगर हम कभी अकेले कमरे में बैठ जाते हैं ना तो हमारे माइंड में

0: देखा तो कुछ भी नहीं था,
1: वो यूपी वाले घर में।
0: हाँ मतलब हमारे जहाँ हम पहले रहते थे तो वहां पे, मतलब सच में मैं बहुत डर गई थी उस दिन, और मुझे सच में दिखे थे तीन ऐसा कुछ गुस्से में।
2: फिर पापा ने क्या किया, मम्मी ने क्या किया?
0: मम्मा ने, पापा ने बोला शायद मतलब हमारे जैसे हम बोलते हैं ना पिछले जन्म कैसे कुछ कर्म, तो वैसा पापा ने बोला शायद ऐसा कुछ होगा। तो पापा ने बोला कि आप उनसे प्रे करो और उनको बोलो कि हम आपसे सॉरी बोलते हैं।
2: फिर आपने ऐसा किया तो आपको दोबारा दिखे?
0: नहीं ऐसा दोबारा तो नहीं हुआ था मेरे साथ, लेकिन जब एक बार मेरे पापा के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था ना, मेरे पापा मतलब शादी रात को होती है ना सब जगह जहाँ, तो रात को गांव से लौट रहे थे हमारे सेट का गांव का, तो वो ना स्कूटर से आ रहे थे, अचानक उनकी लाइट लुप लुप करने लगी, स्कूटर भी चालू नहीं हो रही थी, अचानक से बंद हो गई पूरी तरह, चालू की तो भी नहीं हो रही थी। उनके साथ मेरे पापा के भतीजे मतलब बैठे हुए थे पीछे, तो ना स्कूटर नहीं चालू हो रही थी। पापा ने फिर पता नहीं क्या किया, पापा नहीं डरे थे लेकिन वैसा कुछ था, क्योंकि हम जब जाते हैं ना पेड़ों के गांव के बीच से तो शायद माना जाता है वहां ऐसा वैसा कुछ घूमता रहता है रात के टाइम बहुत रात को, तो फिर उस तरह पापा डरे नहीं। पापा ने मतलब फिर उसको कुछ बोला होगा शायद, मुझे मम्मा ने ये बात बताई कि ऐसा हुआ था, हम तो थे भी नहीं तब, तो ऐसा ऐसा पापा ने कुछ बोला उसको और फिर वो चली गई, और फिर अचानक से स्कूटर चल गई, मतलब लाइट वाइट सब चल गई, अपने मन से चालू हो गई, पापा ने कुछ किया ही नहीं। वो सच में पापा भी थोड़ा थोड़ा डर रहे थे।
2: देवत, आपको जब डर लगता है तो क्या करते हो? मम्मी पापा किसी को बताते हो? अंधेरा है और अगर आप अकेले हो क्या करते हो फिर?
1: वैसे तो मम्मी पापा यूँ शाम को यूँ कहीं बाहर जाते हैं ना आबू रोड साइड में, तो मैं वैसे तो 7:30-8 बजे तक तो ठंडी के टाइम पे तो वैसे तो पूरी रात हो जाती है, तब तो ऐसे तो घर पे मैं अकेला ही बैठा रहता हूँ। और कभी कभी सामने जो हमारे जो रहते हैं वो भी कभी कभी होते हैं, कभी नहीं, तो वैसे हम आराम से बैठे बैठे मैं टीवी देखते रहते, तो बस ऐसे डर नहीं लगता।
2: और लाइट चली गई तो टीवी तो नहीं चलेगा फिर?
1: वैसे तो मम्मी मोबाइल साइड में रख ही जाते हैं, और मोबाइल रखते हैं तो व्हाट्सएप स्टार्ट हो जाते हैं,
2: चैटिंग करने लगते हो आप।
1: और एक बार मेरे मामा और मेरी मम्मी यूं जा रहे थे ना कहीं से, यूं उनकी पूरी फैमिली कार में रात का टाइम, तो उमने देखा कि एक बच्चा यूं खेल रहा था अपने बॉल से, और वहां पे जो अंकल थे ना वो यूं काम कर रहे थे, खेलते खेलते वो रोड पे चले गए, तो वो जो आंटी थी उन्होंने देखा तो उन्होंने अचानक से अपना पूरा हाथ यूं स्ट्रेट किया, तो पूरा हाथ लंबा होकर पूरा बच्चे को ही खींच लिया, और मम्मी के सामने ये पूरी घटना हुई।
2: अच्छा,
1: मम्मी और मामा के सामने। और उसी टाइम मम्मी ने मेरे को ये बताई बात।
2: अच्छा, मम्मी को क्या लगा, डर लगा उस समय या?
1: मम्मी को थोड़ा बहुत डर लगा और मामा को भी थोड़ा बहुत लगा था, उस टाइम वो मामा शायद 7th में थे।
2: तो आपको ये सुन के डर लगा?
1: नहीं, जब भी मम्मी पापा नहीं होते ना तो मैं सबसे पहले यही चीज देखता हूँ कि कहाँ पर है भूत की पिक्चर, कहाँ पर है।
2: तो भूत की पिक्चर देखते हो?
1: हाँ, सबसे ज्यादा मैंने एक इविल डेथ 3 देखी थी, उसमें तो रियली में ऐसा लगता है कि आप यूं बैठ के देख रहे हो पूरा अंधेरा करके, आपको ऐसा लगता है कि कोई अपना आपका नीचे से पैर खींच रहा है, ऐसे पूरा महसूस भी होता है
2: जब आप वो पिक्चर देखते हो। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर पिक्चर देख के ऐसे महसूस होता है तो यानी वो रियल में तो है नहीं।
1: हाँ।
2: लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सच में कोई हमें पकड़े हुए।
1: हाँ।
2: तो यानी हमारे मन में अगर हो हल्का सा भी कुछ तो यानी हमारी बॉडी को भी महसूस हो सकता है वो तो।
1: एक बार हुआ क्या, सैटरडे को हम लोग यूँ स्कूल से आए, तो आदित्य के घर पे वो खुद अकेला था, क्या पता उसको क्या सुनाई दिया, वहां से उसने फोन किया कि देवर तू जल्दी से घर पे आ जा मेरे खेलने के लिए। मैं बोला क्या हुआ, बोले कि मेरे को आजू बाजू है ना घुंघरू की आवाज सुनाई दी, और है ना कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था आदि आदि करके।
2: ओके, फिर आप जल्दी से चले गए आदि के घर?
1: मैं बोला रुक मैं भी आ जाता हूँ। तो गया और हाँ। मैं उसको बोला तू थोड़ा यूं रुक जा, चुपचाप बैठ रहना। मैं और आदि दोनों चुपचाप बैठ रहे, कोई आवाज नहीं,
2: कोई आवाज
1: बिल्कुल, एक शब्द नहीं था।
2: मतलब अकेले में सुनाई देती है ये सब चीजें, है ना?
1: मेरे को एक भी बात नहीं सुनी नहीं भी।
2: ओके।
0: वैसे दीदी जब हमें सपने आते हैं तब भी हमें बहुत डर लगता है ना, जब हम जैसे कि मुझे एक बार सपना आया था, तो उसके बाद जब मैं उठी तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था।
2: और सपना क्या आया था?
0: अजीब सा आया था कि ऐसे कोई भूत भूत जैसे होते हैं वो मुझे मार रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डरावना था, और मतलब मैं
2: उसकी शक्ल बहुत डरावनी होगी।
0: हाँ, एक्चुअली जब सपना देखते हैं ना तो हम बिल्कुल उसको फील करते हैं, हम उसी में मतलब अंदर चले जाते हैं, तो मुझे

0: इतना ज्यादा डर लगा कि सच में ऐसा हो रहा है. और फिर जब उठी ना तो मुझे सच में बड़ा था, मैं पूरा पूरा सपना मम्मा को बता डाला. मम्मी ने बोला बता दिया ना, अब सच नहीं होगा.
1: ओके, और शिवानी आप क्या बोल रही थी?
2: मेरे साथ ना मतलब बार बार ना एक ही सपना आता है, मैं ना बिल्डिंग से नीचे गिर जाती हूँ
1: सपने में ना. सपने में हम लोग कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है.
2: आपके साथ क्या हुआ?
1: कुछ नहीं, मेरे को ऐसा लगता है सपने से मैं कि ऊपर से गिर रही हूँ नीचे, और गिर ही रही हूँ और गिर ही रही हूँ, पता नहीं जमीन कहाँ चली जाती है.
3: मेरा एक सपना आया था, उस टाइम मैं यूं सोया हुआ था आराम से. मैं और मेरे सारे दोस्त यूं घूमने गए थे जंगल के साइड में. तो जो हमारे जो दोस्त में से था ना, उसने एक अगोरी में बैठे हुए थे, उनको क्या पता क्या बोला, वो हमको भी नहीं पता क्योंकि हम तो यूं थोड़े बहुत आगे चले गए थे. तो उन्होंने कुछ ना उसको बोल दिया होगा, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम कहीं पर भी जाओगे गोल घूमकर हमारे कबीले जो है ना एरिया वहीं आओगे बार बार. तो हमको लगा यही रास्ता है, और वहाँ पे लिखा हुआ भी था बाहर जाने का रास्ता. जैसे हम स्ट्रेट जाने लगे तो वापस गोल घूम के उनके एरिया के वहीं आ गए डायरेक्ट.
1: ये आपका सपना था?
3: और आगे उन्होंने हमको पकड़ लिया, और क्या पता उन्होंने क्या किया, तो पूरे 6-7 भूत हमारे सामने वो आ गए. तो और पूरा मैं पूरा शरीर जो था ना उस टाइम बहुत छोटा था, मीन्स 5th में था उस टाइम की सपने, और पूरा हाथ पैर सब पूरा कांपने लग गया पूरा यूं. तो मम्मी को मैंने उठाया, मम्मी ने क्या किया कि हमारे साईं बाबा का फोटो था वो मम्मी ने मेरे को पकड़ा के सुला दी, बोला ये इसको पकड़ के सो जा, और वो पूरा सपना ही चला गया.
1: जब आपने साईं बाबा का फोटो पकड़ के आप सो गए तो सपना चला गया. अच्छा बच्चों ये बताओ, हॉरर मूवी धैवत ने तो बताया कि उसको देखना बड़ा पसंद है, अब अमन और शिवानी को भी पसंद है क्या?
0: हाँ एक्चुअली मैं शिवानी को हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लिए कोई ना कोई हॉरर मूवी डाउनलोड करती रहो, जो न्यू आती रहती है ना, मैं कोई ना कोई यूट्यूब पे हॉरर मूवी सर्च कर करके देखती
2: ही
0: रहती हूँ.
2: यूट्यूब पे ही है, गूगल.
0: मतलब सोनी डाउनलोड कर लेती है.
1: ओके शिवानी आप भी देखते हो क्या?
2: ये भी देखती है तो फिर मैं भी देखती हूँ.
1: अच्छा तो आपको अच्छा लगता है हॉरर मूवी देखना?
2: मुझे डर लग जाता है तो मैं इसके पीछे छुप जाती हूँ. फिर कहती है देखना तो देखो, नहीं तो मैं देख रही हूँ.
1: अच्छा
0: मैं देखती हूँ पूरी मूवी, फिर बाद में उसके बाद हमें डर लगना शुरू हो जाता है. उसमें इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, हम घर में अकेले रह ही नहीं सकते.
1: तो फिर क्यों देखते हैं, क्या अच्छा लगता है हॉरर मूवी में जब डर लगता है तो?
0: एक्चुअली हमें जो हॉरर सीन आते हैं ना उसमें देखने मजा आती है जब वो डरते हैं. और मतलब मूवी में हमें हॉरर चीजें देखने में अच्छा लगता है, जैसे जैसे कोई भूत अचानक से सामने आ गया और हम एकदम अचानक से चौंक जाते हैं, और
2: वो चीज मुझे एकदम नहीं पसंद.
0: मुझे वही अच्छा लगता है देखने में.
1: शिवानी को पसंद नहीं है तो भाई शिवानी के सामने तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए फिर.
0: वही डाउनलोड करती हूँ, उसे भी पसंद है ये सब हॉरर मूवीज देखना.
2: करती जो अचानक से आ जाए एकदम,
0: मतलब हमें ऐसी वैसी मूवी देखना नहीं पसंद. हम ज्यादातर एनाबेले, कंजरिंग ऐसे ऐसे देखते रहते हैं. एनाबेले, कंजरिंग ज्यादातर यही पार्ट्स देखते आए अभी तक तो.
1: ओके
0: और हॉरर मूवी मम्मी के साथ ज्यादातर देखते हैं क्योंकि मम्मी के साथ मम्मी को पकड़ लेते हैं फिर.
1: लेकिन उसके बाद तुरंत तो डर लगने लगता होगा फिर.
0: एक्चुअली ना फिर जब सुबह होते ही ना, जैसे हम बैठे तो दोपहर में भी हॉरर मूवी देखते हैं बैठ के, रात को नहीं देखते हम ज्यादातर, कभी रात को नहीं देखेंगे. डाउनलोड करते हैं ना तो दोपहर को ही देखते हैं, फिर भी दोपहर को भी डर लगता है.
2: मैं तो रात को जाती ही नहीं, फिर हिम्मत करके जाना पड़ता है.
1: हाँ, फिर अकेले तो मन नहीं करता ना वॉशरूम भी जाने का. अकेले
2: नहीं होता, मैं चली जाती हूँ उस कमरे का गेट बंद करके लाइट जला के चली जाती हूँ.
0: वो कमरा ना इसको बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या है उस कमरे में, इसको बहुत डर लगता है उस कमरे से.
1: अकेले लगता होगा वहाँ पे, एकदम लास्ट में है ना तो कोना लगता होगा.
2: बाथरूम के बगल में
1: इसलिए डर लगता है क्योंकि पिक्चर्स में सारे भूत बाथरूम में आते हैं क्या?
2: नहीं, उसलिए नहीं, मतलब कमरा ही डरावना है.
1: अच्छा कमरा ही डरावना
0: है, शीशा भी है इसलिए.
1: तो भूत शीशे से निकलते हैं?
0: ये तो नहीं, अचानक से शीशे में यू दिखते हैं, यू करे पूरे दिख जाते हैं भूत सामने.
1: तो सारी फिल्मों में भूत ज्यादातर शीशे में से दिखते हैं,
0: ज्यादातर मतलब जाते हैं. मतलब हॉरर मूवी देख रहे हो, अचानक से ऐसा सीन आता है कि कोई हीरोइन शीशे के सामने खड़ी है, वो पीछे देख रही है फिर सामने देख रही है, सामने भूत दिख रहा है शीशे पे पर पीछे नहीं दिख रहा, फिर वो पीछे देख रही है फिर सामने देख रही है, फिर पीछे देखिए जब सामने देखती है ना तो गले में आ जाता है उसका हाथ.
1: आप क्या बोल रहे शिवानी?
2: मैं भी बोलने वाली थी.
1: क्या बोलने वाले थे?
2: यही चीज
1: एक बार बोल के बताओ ना.
2: हाँ तो फिर जो बार बार पीछे मुड़ के देखती है तो फिर वो एकदम सामने आ जाती, फिर ऐ करके चिल्लाती है।
1: तो इसीलिए उस कमरे में जाने से आपको डर लगता है क्योंकि वहाँ शीशा है?
2: तो शीशे से बातें करती रहती है।
0: मैं एक्चुअली अकेले रहती थी तो मुझे अपने सामने मतलब
2: पता है
0: अपने आप से बात करने में मजा आती है।
2: मैं एक चीज आपको बताऊँ, जो मेरे बगल वाला घर है उधर कोई नहीं रहता और एक आंटी थी उसी घर से बातें किए जा रही कि मैं तो अपने बच्चों को स्कूल में बना के देती हूँ लंच, आप क्या देती है? मेरे को सामने तो कोई नहीं, फिर किससे बात कर रही है? घर में भी कोई नहीं रहता।
0: लगा होगा
1: तो प्रैक्टिस कर रही होंगी कि मैं जब वो आएंगा ना कोई तो मैं कैसे बात करूंगी।
2: नहीं सच्ची में कह रही थी।
1: सच्ची में कह रही थी? तो आपने फिर आंटी को पूछा नहीं कि आंटी आप किससे बात कर रही
2: हैं? मुझे देख ही नहीं पा रही है।
1: वैसे पता है बेटा एक और बात होती है, हम लोग को कई बार सब चीजें भूत लगती हैं या फिर ऐसा लगता है क्या हो रहा है। कुछ लोगों को कभी कभी जैसे हमें शरीर में बीमारी हो जाती है ना, वैसे कभी कभी मन में भी बीमारी हो जाती है। तो उससे क्या होता है, कई बार लोगों को कोई दिखने लगता है, कभी हमें कुछ बातें करने की बार बार आदत हो जाती है, भूलने की आदत हो जाती है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है। तो वो उस वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कोई खड़ा ही है कोई भूत, लेकिन हो सकता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो, है ना? तो ऐसा भी होता है। अच्छा अब ये तो हुई हॉरर मूवीज और सपनों की बात, अब ये बताओ लगता है जब डर तो सबसे पहले क्या करते हो? अगर आप अकेले होते हो तो कुछ फिजिकली भी फील होता है, वो कहीं दर्द होता है, कुछ ऐसा लगता
0: है? हमें फिजिकली महसूस होता है।
1: क्या लगता है फिजिकली
0: महसूस? मतलब जैसे हम है, हमारे पास अगर कोई बैठा है या फिर आता है तो हम आंखें बंद करके भी हम महसूस कर लेते हैं कि हमारे पास कोई है। तो वैसे ही वो भी महसूस होते हैं हमें।
1: okay.
0: जब हम होते हैं अकेले तो हमें ऐसा महसूस होता है हमारे आसपास कोई है या फिर हमारे बगल में है, जस्ट हमारे आगे है पर हमें दिख नहीं रहा, हमारे पीछे है।
1: okay.
0: हम जब पीछे मुड़ के देखते तो कोई भी नहीं होता। एक्चुअली एक बार मैं अकेले बाहर थी और फिर मैं रात भर मतलब मुझे नींद नहीं आई थी उस रात, मेरी मम्मा पापा सब सो रहे थे, मेरी बहन भी, तो मैं बाहर जाके ना थोड़ा टहल रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर टहल रही थी तो मैं अचानक से मुझे थोड़ी वॉइस आने लगी। ऐसा कहते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखते जब हमें कोई डर लग गया, हमें आवाज आए तो।
1: और ये कौन कहता है?
0: ऐसा कोई नहीं कहता, मतलब सब कहते हैं।
1: अच्छा।
0: सब ने मतलब मम्मा ने बोला, नानी ने बोला, उनके पता नहीं ऐसे बोलते रहते हैं
1: पीछे मुड़ना नहीं चाहिए जब कोई आवाज आए तो।
2: हाँ, हाँ। नहीं तो वो अंदर घुस जाती है,
0: ऐसा पता नहीं क्यों बोलते।
1: okay.
0: पर ना मेरे साथ ऐसा हो, मैं हल्का सा पता नहीं क्या हुआ महसूस हो रहा था पीछे कुछ, मैंने पीछे मुड़ के देखा एकदम अंधेरा, जबकि वहाँ कॉलोनी है वहाँ का बल्फ होता है, वहाँ पे लाइट जलती है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा था। फिर मुझे बड़ा डर लगने लगा और फिर अंदर चली गई और वैसे पापा मम्मी सब सो रहे थे तो मैं चुपचाप उड़ के सो गई थी।
1: और शिवानी आप क्या बताने वाले थे?
2: मैं बोल रही थी कि एक बार जब हम लोग घर में नहीं, जब मम्मा अकेली थी तो मम्मा कह रही थी कि बताए सोनी क्या हुआ आज ना मेरे कान में ना अभी कोई भू करके गया।
1: और दहवत आपको कुछ ऐसा लगता है कभी डर ज्यादा लगा तो कभी शिवरिंग लगी हो या फिर हार्ट बीट बढ़ गई हो, कुछ ऐसा लगे?
3: हल्की सी घबराहट, बस
1: हल्की सी घबराहट होती है फिर ठीक हो जाती है। अच्छा बच्चों आप लोगों को, क्योंकि हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कभी गीता पढ़ी है?
0: नहीं
1: पढ़ी है। गीता में लिखा है कि हम सभी आत्माएं हैं, है ना? और ये जो बॉडी है ये शरीर में, इसको चलाने वाली हम आत्माएं हैं। और उसमें ये भी लिखा है कि आत्मा का ना कभी विनाश नहीं होता, उसको पानी भिगो नहीं सकता और उसको हवा उड़ा भी नहीं सकती, उसको तलवार काट भी नहीं सकती। तो देखा जाए आत्मा तो मरती ही नहीं है, तो मरने वाली कोई चीज ही नहीं है, बस ये शरीर जो है ये जब ओल्ड हो जाता है तब भी छूट जाता है और कभी कभी पहले भी छूट जाता है। तो यानी हम तो मर ही नहीं रहे, हमें तो कोई मार ही नहीं सकता,
0: यानी हम नहीं मरेंगे।
1: हाँ, और भूत को कभी कभी हम आत्मा भी कह देते हैं ना, आत्मा।
0: हाँ,
1: है, ऐसा भूत है।
0: बोलते
2: हैं
0: कि आत्मा
2: है दिखी।
0: एक्चुअली ना हम ज्यादातर भूत को आत्मा ही बोलते हैं कि आत्मा आ गई, आत्मा ऐसा।
1: तो वो तो हमारे जैसा ही है, तो कोई हमारे जैसा हमको नुकसान कैसे पहुँचाएगा?
0: हाँ, वैसे मैंने सुना है कि आत्मा किसी चीज को टच नहीं कर सकती। मैंने एक बार मूवी में भी देखा था कि ऐसा कोई मर जाता है तो फिर उसकी आत्मा जो होती है वो किसी चीज को भी टच नहीं कर पाती।
1: अच्छा, आप लोगों को लगता है मूवी में जो बातें कही जाती हैं वो सही होती हैं हमेशा?
0: नहीं, थोड़ी बहुत शायद।
1: अध्यावत को क्या लगता है?
3: बिल्कुल नहीं,
1: बिल्कुल नहीं।
0: मुझे लगता है शायद थोड़ी सच्ची होती होगी।
2: मेरा ज्यादा नहीं।
1: ओके अच्छा बच्चों देखो, वैसे हमें जब डर लगे ना, आप जो भी भगवान जी को मानते हो ना, उनको अपना दोस्त बना लो, बेस्ट फ्रेंड बना लो. जैसे दहेवत ने क्या किया, साईं बाबा की फोटो लेके सोया और उसका डर चुटकी में गायब हो गया.
0: हाँ.
1: तो ऐसे ही आप कोई फोटो अपने पास रख लो.
0: हाँ वैसे इससे फिर हमें डर नहीं लगेगा क्योंकि हम अकेला महसूस नहीं करेंगे.
1: और वैसे तो देखा जाए तो ये जो हॉरर मूवीज है ना क्या बोलने वाली हूँ मैं आगे मुझे लग रहा है आप लोग के समझ में आ गया है.
0: हाँ,
1: क्या बोलने वाली
0: हूँ, नहीं देखनी चाहिए ज्यादा.
1: हाँ सच में. हाँ क्या लगता है धैवत
3: और देख
0: क्योंकि इससे हमारे इससे हमारे माइंड में वो फीलिंग आ जाती है, वो डर आ जाता है और वो सीन हम अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं. अभी वही
2: मैं तो कह रही हूँ कि हॉरर मूवी देखनी नहीं चाहिए कभी. पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे डर भी नहीं लगता था. जब से इसने हॉरर मूवी बोली है एक नई पिक्चर, तब से डर लग रहा है.
1: देखो अब ये तो प्रूफ हो गया हॉरर मूवी से डर लगने लगता है. और ऐसा लगता है कोई हमको टच कर रहा है, कोई हमें बोल रहा है, कोई हमारा नाम बुला रहा है.
2: नहीं तो पहले उस घर में इतना सा भी डर नहीं लगता था.
1: अब लगने लगा है.
0: लेकिन वो हॉरर मूवीज देखने में अच्छा लगता है, मजा आती है.
2: और फिर जब मैं नहीं देखती तो कहती देखो देखो
1: लेकिन बेटा ऐसा मजा ना हमको बहुत नुकसान कर सकता है ना. डर तो अच्छा नहीं लगता.
0: नहीं
1: तो मजे के लिए तो बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारे गेम्स हैं. जो चीज हमें डराए, नुकसान पहुंचाए, उससे रहना है दूर. क्योंकि बाद में अगर हम कभी अकेले हुए तो और हमें डर लगा तो
0: हाँ फिर हमारी मदद कोई नहीं करेगा.
1: तो इसलिए अपनी मदद करनी है. और जैसे शिवानी ने कहा, भाई मैंने तो कहा ही नहीं, शिवानी ने कहा कि नहीं देखनी चाहिए, तो अब शिवानी की बात तो माननी पड़ेगी ना क्योंकि वो सबसे छोटी है.
0: हाँ ये तो है,
1: है ना. चलो फिलहाल बच्चों बहुत सारा समय हो गया और हमने कर लिया ढेर सारी बातें. तो आज ये बातें करके मुझे तो बहुत मजा आया, आप लोगों को भी आया. ओके तो थैंक यू सो मच. हम फिर अगली बार मिलेंगे और कुछ और बातें करेंगे. थैंक यू बच्चों.
0: थैंक

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 4, खाएं आम बारहों महीने, पृष्ठ 35। कुछ बच्चे खाने के डिब्बे में खाना देखते हुए कुछ बातें कर रहे हैं। नीतू बोली, अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। अमन बोला, नीतू आलू की सब्जी लाई है। प्रीति ने कहा, मैं भिंडी लाई हूँ। अमन ने कहा, नीतू लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं। प्रीति बोली, हाँ इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। चर्चा करो, अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं? क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया है? प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? पृष्ठ 36। लिखो, रसोई घर में से खाने की कुछ चीजें चुनकर लिखो जो 2-3 दिन में खराब हो सकती हैं, हफ्ते भर तक खराब नहीं होंगी, महीने भर तक खराब नहीं होंगी। अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी? क्या बदलेगा? तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गईं। दुकान पर काफी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? पता करो। खाने की किन्हीं 2 चीजों के पैकेट देखो। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हो? पृष्ठ 37। खाना कैसे होता है खराब? प्रयोग। पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करे। रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज देखो, जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना दिखे। तालिका को चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करने पर तालिका को रोज भरो। दिन 1, ब्रेड में बदलाव, छूने से, गंध से, हैंड लेंस से देखने में, रंग में। इसी तरह 6 दिन की तालिका बनाओ। पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी? अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी खराब होता है तो कुछ देर में। खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी खराब हो सकता है उसकी सूची बनाओ। पृष्ठ 38। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हें एक दो दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय हैं। खाने की चीजों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करो। चीजें, दूध, पके हुए चावल, हरा धनिया, प्याज, लहसुन। घरेलू उपाय, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। दूसरा उपाय, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। उपाय तीन, उबालते हैं। उपाय चार, खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी तांड्रा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयापुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी तीन चार तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामिडी तांड्रा यानी आम पापड़ बनाओ ना। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो चार हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिडी तांड्रा बनाएंगे। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहां से चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। पृष्ठ 39। अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां दिन भर अच्छी धूप आती हो। यहां दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज्यादा पके हुए आम अलग अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला, फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेशे ना रहें। पृष्ठ 40। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ ना रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी, फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला, फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा कर दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसी ही कई परतें जमाई। अगले चार हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए। चार हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकालकर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। चिन्ना बाबू बोले, वाह मजा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें। लिखो, आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया होगा? बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छांटे? भाइयों ने मामिडी तांडरा कैसे बनाया? अलग अलग चरण समझाओ। पृष्ठ 41।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? लाइक यस। तो मम्मा को बिल देता है तो मम्मा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मम्मा आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मम्मा आपने वो छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। तो मम्मा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देख कर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है, मम्मा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मम्मा पेड इन फुल, मम्मा पेड इन फुल बट इनडेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर में आपका।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं। आइए 23 जुलाई की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज विशेष बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, शिव कुमार बाटलवी, तारा शंकर बंदोपाध्याय, निर्मल जोशी, एल सुब्रमण्यम, इन सभी का जन्मदिन है। और उसके साथ ही महमूद लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मण प्रसाद दुबे, एस एच राजा, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में कुछ यादगार बातें आपसे शेयर करूंगा। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आइए सार्वजनिक सेवा के बारे में बात करते हैं। तिलक जी के बारे में बातें हो रही हैं और निश्चित तौर पे आपको

जो है तिलक जी ने स्कूल के बारे में जो बातें की थी और सार्वजनिक सेवाओं के बारे में, और उन्होंने स्वयं को मुक्त करने के बाद अपना अधिकांश समय सार्वजनिक सेवा में लगाने का निर्णय लिया। थोड़ी फुर्सत मिली थी उसी समय लड़कियों के विवाह के लिए सहमति की आयु बढ़ाने का विधायक वायसराय की परीक्षा परिषद के सामने लाया गया। तिलक पूरे उत्साह से इस विवाद में कूद पड़े, और इसलिए नहीं कि वे समाज सुधार के सिद्धांतों के विरोध थे, बल्कि इसलिए थे कि वे इस क्षेत्र में जोर जबरदस्ती करने के विरोध थे। सहमति की आयु के विधायक चाहे इसके उद्देश्य कितने ही प्रशासनिक क्यों न रहा हो, वास्तव में हिंदू समाज में सरकारी हस्तक्षेप में सुधार लाने का प्रयास था। समाज सुधार के कुछ कट्टर समर्थक इसके विरोध थे, और इस विषय में तिलक का दृष्टिकोण से पूना का समाज दो भागों में कट्टरपंथी और सुधारवादियों में बढ़ गया था। दोनों के बीच की खाई एक मतभेद और एक झगड़ों के कारण बढ़ती जा रही थी, और उस खाई को ठीक करने का काम जो है सार्वजनिक जनसेवा के रूप में तिलक करते रहे। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, तो आइए आप सभी जो है एक और सार्वजनिक बात जो है तिलक जी की बताना चाहूँगा। विश्वविद्यालय की स्थापना उसी समय उनके विचारों के एक बुजुर्ग व्यक्ति विष्णु कृष्ण चिपलूनकर उनसे मिले, जो विष्णु शास्त्री के नाम से जाने जाते थे, और उन्होंने उन्हीं दिनों सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि अपने अफसरों से उनकी नहीं बनती थी। वे इस निश्चय के साथ पुणे आए थे कि वह एक प्राइवेट स्कूल हाईस्कूल चलाएंगे। वे मराठी के सर्वोत्तम गद्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। तिलक और अगरकर ने उनकी योजना को जानने के बाद उनके साथ विचार विमर्श किया, और बाद में इन तीनों के साथ एक और व्यक्ति शामिल हो गया, MB नाम जोशी, जो साधारण बुद्धि और ऊर्जा से परिपूर्ण थे। चिपलूनकर और तिलक ने नाम जोशी की सहायता से 2 जनवरी सन 1880 को पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल शुरू किया। V.S. अपटे ने जून में और अगरकर वर्ष ने अंत में MA करने के बाद उस स्कूल में शामिल हो गए। इन 5 आदमियों ने अपनी गतिविधियों को स्कूल तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आगे भी वो इस गतिविधियों को करते रहे। तिलक ने प्लेग की बीमारी के दौरान देशवासियों की जो सेवा की उसे भी नहीं बुलाया जा सकता। जैसे ही पुणे में प्लेग के लक्षण प्रकट हुए, और उन्होंने हिंदू प्लेग हॉस्पिटल शुरू किया और कई दिनों तक इसके लिए धन जुटाने में कार्य किया। जहां पुणे के अधिकांश नेता नगर छोड़कर भाग गए थे, तिलक वहीं रहे। उन्होंने लोगों को दिलासा भरोसा दिलाया। वे खोजी दलों के साथ स्वयं सेवक के रूप में गए, हॉस्पिटल के प्रबंधन किया और विशेष शिविर में निःशुल्क रसोई की व्यवस्था की, और जनता के सामने आ रही मुश्किलों के बारे में श्री रेड तथा महामहिम गवर्नर को बताते रहे। अपने समाचार पत्रों में उन्होंने प्लेग की समाप्ति के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का समर्थन बहुत ही हिम्मत के साथ किया, और इसी के साथ उन्होंने सलाह दी कि इन उपकरणों को सहानुभूतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण ढंग से लागू किया जाए। जनता को सलाह दी जाए कि वह अनावश्यक विरोध ना करे। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जिसमें तिलक जी की कुछ बातें आपसे शेयर कर रहे हैं। और प्लेग की बीमारी के बाद समाचार पत्र का प्रकाशन उन्होंने किया, केसरी मराठी, दी मराठा, और फिर इन सारी चीज़ों का चलते हुए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन हुआ, और फिर इसके माध्यम से काफ़ी चीज़ें हुई। फिर इसी के माध्यम से पहले डेक्कन स्कूल, फिर बाद में फर्गुन्स कॉलेज की स्थापना की। तिलक और अगरकर के बीच मतभेद हो गया, तो फिर वो अगरकर थोड़े अलग हो गए। आजीवन सदस्यों का आचरण सोसाइटी से फिर बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तिलक जी ने, और एकमात्र मालिक केलकर वर्ष के अंत तक मराठा के संपादक बना रहे, और शीघ्र उन्हें केलकर को समाचार पत्र के साथ अपना संबंध पूरी तरह समाप्त कर देना पड़ा। तब तिलक दोनों पत्रों के संपादक बन गए। तो इस तरह से चीज़ें आती गई, और आज़ादी का संग्राम नरम दल के लिए तिलक के विचार शुरू हो गए, और फिर इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करके उस आंदोलन को उन्होंने काफ़ी लंबा काल तक चलाया।
आइए इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 एफएम हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तिलक की जीवन कहानी बड़ा विस्तार पूर्वक लंबी है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके अंतिम समय के बारे में ज़रूर आपसे शेयरिंग करूँगा। और अंतिम समय में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के हिसाब से देखा जाए तो घटना प्रधान जीवन उनका रहा। तिलक का घटना प्रधान ये रहा कि वे मौलिक विचारों के व्यक्ति थे, संघर्षशील और परिश्रमशील थे। वे आसानी से कुछ भी ठुकरा सकते थे। वो तब विशेष प्रसन्नता का अनुभव करते थे जब उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उनके अधिकांश कार्य परोपकार की भावना से भरे होते थे। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, और ये बात स्वीकार की जाती है कि वे अपनी इस इच्छा को काफ़ी हद तक पूरी करने में सफल रहे हैं। उनमें योग्यता, उद्यमशीलता और देश प्रेम का ऐसा अनूठा संगम था कि अंग्रेज सरकार उनसे हमेशा एकदम चौंकना रहती थी। तिलक के अनेक मित्र उनके प्रति शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार के रवैये को संभवतः ये कहकर स्वीकार करेंगे कि ये उनके वास्तविक मूल्यों का जीता जागता प्रमाण पत्र है। और मात्र यही एक बात नहीं थी, इनकी सूझबूझ के कारण भी ब्रिटिश सरकार जो है उनसे थोड़ी सी डरती भी रहती। और 1919 में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक तिलक इतने नरम हो गए थे कि उन्होंने विशेष मैंट्यू और चेल्सफोर्ड सुधारकों के जरिए स्थापित कौंसिल विधायक परिषदों के चुनाव के बहिष्कार की गांधी की नीति का विरोध नहीं किया। इसके बजाय तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों से कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत की। शुरुआत करने वाले सुधारों में लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को सलाह दी कि वे उनके प्रचार प्रचुर मात्रा में सहयोग की नीति का प्लान करें, लेकिन नए सुधारों को निर्णय करने में दिशा देने से पहले ही हुआ ऐसे कि 1 अगस्त सन 1920 में मुंबई में तिलक की मृत्यु हो गई। तो इस कारण वो चीज़ें अधूरी रह गईं। और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने खुद उन्हें कहा था, आधुनिक भारत का निर्माता और विशेष नेहरू जी के भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी गई उन्हें। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें तिलक जी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो माधवन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गीत आपके नाम, सफर कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, सुनते रहो बस।

0: मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए एक और खास व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है शिव कुमार बटवाली और ये एक पंजाबी भाषा के बहुत ही विख्यात कवि थे जो विशेष कविताओं को लिखा करते थे और इनकी रोमांटिक कविताओं को लोग पसंद करते थे, जिनमें भावनाओं का उभार, करुणा, जादुई और प्रेम के दर्द का बखूबी चित्रण इन्होंने किया था। शिव कुमार ऐसे शायर थे और कवि थे जो एक छोटी सी जिंदगी में इतना नाम बन गए। आज भारत में इस नौजवान के सीने में हर एक नौजवान के सीने में इनके कविताओं का जो है दस्तक होता है। गीतों में विरह की पीड़ा इस कदर थी कि उस दौर की प्रसिद्ध कवियत्री अमृता प्रीतम ने उन्हें विरह का सुल्तान नाम दे दिया था। शिव कुमार जी यानी पंजाब का एक ऐसा शायर जिनके गीत हिंदी में ना आकर भी वह बहुत लोकप्रिय हो गए, तो उसने जो गीत अपनी गुम हुई महबूबा के लिए बतौर इश्तिहार लिखा था वे सब फिल्मों तक पहुँचे, जो हर कोई उसकी महबूबा फिल्मों तक पहुँची और एक कुड़ी जिद्दा नाम मोहब्बत गुम है, ये गाना जो है, ये गीत जो है बहुत ही पॉपुलर रहा उनका। तो आइए इनके बारे में और अधिक जानकारी मैं देने वाला हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और शिव कुमार जी के बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ, 23 जुलाई में इनका जन्म हुआ था। 1936 में बिंड लोहातीला श्यालकोट में, जो कि अब पाकिस्तान में है। बाद में वो अपने खानदान के साथ भारत आ गए और बाटला में कायम हो गए। अपनी शुरुआती विशेष रूप से जो तालीम है, शिक्षा दीक्षा, वो वहीं पर हासिल की। उनके बचपन के इन वाक्यातों ने शुकमान जी के अंदर एक शायर को तामीर कर दिया था। और हिजरत के दुख के साथ साथ पंजाब के गांवों की ज़िंदगी, किस्से, कहानियां, रवायत, उनके आसपास की ज़िंदगी ने उनकी जहन में एक अलग चीज़ को तराशा और ये सब चीज़ें मिलकर शायरी में तदबील हो गई और जगह जगह वो उनके चीज़ों को देखा करते थे, शायरी को। शिव कुमार जी की ज़बान ठेठ पंजाबी है और उनकी शायरी में नज़र आने वाली इश्तियारे भी तमाम गांव की ज़िंदगी की तरफ झुकाव करते हैं और उनकी शायरी में पंजाबी सूफी शायरों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इससे ये मुराद बिल्कुल नहीं है कि उन्हें आलमी अदब से सगफ नहीं था। शिव कुमार ने उर्दू के साथ साथ रूसी और दीगार मालिक के आदाब को गौर से पढ़ा था। आप सुनाए हैं रिजुमात 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं एक उनका जो है बिरा का सुल्तान जो नाम मिला उनको, तो ये नाम इसलिए मिला क्योंकि उनकी कविता में हमेशा विरा दिखाई देता है। गुम है, गुम है, गुम है एक कुड़ी जीदा नाम मोहब्बत, गुम है, गुम है, गुम है। इस तरह के जो कविताएं हैं वो बहुत ही पॉपुलर हुई उनकी। ए मेरे गीत किसी ना गाना है, मेरे गीत मैं आपे गा के भल के ही मर जाना। तो इस तरह के जो विरा के गीत थे लोगों को काफ़ी पसंद आता था और इनके शैली में नसरत फतेह अली खान द्वारा इनके नज़्मों को गाया गया। कवि सम्मेलनों से हमेशा ये दूरी बना के रखते थे, लेकिन जब भी कभी जाते तो उनको पता चल जाता था कि ये व्यक्ति इस तरह का है। और शिव कुमार जी का विवाह बाद में विवाह के बाद वो चंडीगढ़ चले गए। वहाँ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्य करते हुए अंतिम कुछ वर्षों में वो स्वास्थ्य का प्रॉब्लम इनको हुआ, खराब स्वास्थ्य के चलते रहे। हालांकि उनके बेहतर लेखन जारी रहता था, लेकिन लेखन में हमेशा मृत्यु की इच्छा स्पष्ट रहती थी। और 7 मई 1973 को सिर्फ 36 साल की कम उम्र में शराब की लत लगने के कारण लीवर सिरोसिस की वजह से पठानकोट के कीरी मंगलाई में अपने ससुर के घर पर शिव कुमार सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो गए। तो ये थी कुछ खास बातें शिव कुमार जी के बारे में। आप सुनाए हैं रिजुमत 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए आज के इस सफर कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और जाते जाते एक सुंदर विचार आपके लिए। सफलता का मुख्य आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच को बना के रखिए और निरंतर प्रयास में लगे रहें। सुनते रहो मस्कराते रहो।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच। दोस्तों, युवाओं के इस मंच पर आज जो दिन हम मनाने जा रहे हैं वो न सिर्फ जरूरी है, न सिर्फ हमें सुनना है, बल्कि उसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ने वाला है। ये बात तो दोस्तों गारंटी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि चाहे हम स्कूल में हों, चाहे हम गांव में रहते हों, स्कूल ना जाते हों, चाहे हम कॉलेज में पढ़ते हों, चाहे हम बड़े हो गए हों, लेकिन एक चीज है जो हमने देखी सुनी या हो सकता हमारे साथ हुई जरूर हो, और वो है बुलिंग। कई बार मजाक करना, कई बार टांग खींचना, कई बार उसे कोई और नाम दे दिया जाता है, लेकिन बुलिंग क्या होती है ये हम आज जानेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में कुछ बच्चे भी जुड़े हैं जो अपने मन के सवाल पूछेंगे, और किससे पूछेंगे? जी हाँ, हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित तनवर जी, जो कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आज वो रेडियो मधुबन के स्टूडियो में मौजूद हैं, और जो ये बच्चे सवाल पूछेंगे, मुझे लगता है उससे मिलते जुलते सवाल आपके भी मन में जरूर होंगे, जिनके जवाब आपको आज मिलेंगे। अमित जी, आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं रेडियो मधुबन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस डे को स्पेशल डे को बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं पे बुलिंग कर ही लेते हैं चाहे अनचाहे, बट इस डे को मनाने का कारण ये है कि जब हम इस बुलिंग कभी ओवर हो जाता है, जब बहुत ही ज्यादा उस ओवर हो जाता है, तो उस बच्चे पे या उस पर्सन पे कितना इफेक्ट पड़ता है ये जानना जरूरी है, और हम बुलिंग किस हद तक करें या करें भी या ना भी करें वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से ये जो दिन आप मना रहे हैं, आज जो भी हमारे श्रोता लोग हैं जो इस बात को सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि वो आज इस डे को हम हमारी बातें सुनेंगे और समझेंगे।
0: एक्चुअली बुलिंग क्या है, मतलब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे?
1: मैम, बुलिंग को, ये नया शब्द आ गया बुलिंग, अभी इसका और नया ट्रेंड आया है जिसका नाम है, हम कहते हैं रोस्टिंग। आप वर्चुअल लाइफ में देखेंगे तो आप वहाँ रोस्टिंग के नाम से होगा कि हम किसी भी तरीके से रोस्ट कर रहे हैं। तो आप यूट्यूबर्स देखेंगे कई सारे हैं जो दूसरों के कपड़ों पर, किसी के ऊपर बोलना। मैं आप सभी श्रोताओं को ये बात बताना चाहूंगा कि बुलिंग का मतलब क्या होता है। जैसा मैम ने पूछा, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बुलिंग का मतलब ये चीज होती है कि हम किसी भी चीज को इतना ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, किसी भी चीज को इतना ज्यादा खींच लेते हैं, जब अगले पर्सन को वो अगर दुख देने लग जाए देन वो बुलिंग होता है। अब इसका मतलब कैसे, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, तो अगर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है तो उसमें हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है।
0: बिल्कुल।
1: कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। अब हमारे हिसाब से वो पतला है या मोटा है, बट अगर हम उसे बार बार उस चीज के लिए उसको रिमाइंड कराते रहेंगे, हम उसको बार बार उसको पिंच करते रहेंगे, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे वो जैसे एक घाव होता है, अगर हम घाव को ट्रीट नहीं करते हैं तो वो नासूर बन जाता है। तो वैसे ही बुलिंग भी एक ऐसी चीज है कि अगर आपने एक चीज को पॉइंट आउट कर दिया और रोज उसी चीज को आप रिपीटेड करेंगे तो डेफिनेटली अगला इंसान बुलिंग होगा। वो मेंटली तौर पे मैम, साइकोलॉजी में ये चीज बताई जाती है कि बुलिंग जो चीज होती है वो एक पॉइजन की तरह है। अगर किसी इंसान को दिल पे लग गई तो वो पॉइजन धीरे धीरे, ये धीमा जहर बोला जाएगा बुलिंग को। बुलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने बुलिंग के लिए आपको कोई माहौल तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। बुलिंग के लिए आपको सिर्फ एक सेंटेंस बोल के आप निकल जाएंगे, बट अगले इंसान के लिए दो घंटे तक वही बुलिंग का शब्द उसके दिमाग में गूंजता है। कोई भी शब्द किसी को भी ट्रिगर पॉइंट होता है मैम, किसी भी इंसान के लिए कोई ट्रिगर, किसी के लिए मोटापा ट्रिगर पॉइंट होगा, किसी के लिए पतला ट्रिगर पॉइंट होगा, किसी के लिए लंबू ट्रिगर पॉइंट होगा, किसी के लिए छोटू ट्रिगर पॉइंट होगा, और इस तरीके के कई सारे आजकल नाम रख दिए गए हैं। तो सबके लिए ट्रिगर पॉइंट्स अलग होते हैं। वो ट्रिगर पॉइंट्स अगर

0: बहुत ज्यादा हो जाता है उसे हम बुलिंग कहते हैं.
1: ओके और ये जैसा आपने कहा कि स्लो पॉइजन है तो यानी इतना खतरनाक असर करता है, लेकिन हम देखते हैं बच्चों में भी होता है और यहाँ स्टूडियो में बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं हमारे साथ. आप लोगों में से बच्चों किसी ने देखा है ऐसा होते हो या किसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी को चिढ़ाया गया हो या कुछ नाम से बुलाया गया हो या आपको पसंद ना आई हो वो चीज बुरा लगा हो? शिवांशी कभी ऐसा हुआ है?
2: हुआ है.
1: क्या हुआ है?
2: मेरे साथ ही हुआ है. बिल्ली बोल के चिढ़ाते हैं.
1: अच्छा तो आपको खराब लगता है?
2: बोला है कई बार, मानते नहीं है.
1: अच्छा तो कौन आपके दोस्त या फिर आप कॉलन मतलब आपके
2: दोस्त ही बोलते हैं?
1: दोस्त बोलते हैं. ओके तो आपने कभी पेरेंट्स से शेयर की बात?
2: की है.
1: ठीक है तो अच्छी बात है. आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं शिवांशी को ये कहना चाहूंगा, शिवांशी जब आपको बिल्ली बोला गया शुरुआत में तो बिल्ली कब बोला गया? या तो आपकी ब्राउन आईज होंगी या फिर आप थोड़े से ज्यादा गोरे होते हैं, तो इंसान हर इंसान को उसके बॉडी के हिसाब से कहीं ना कहीं किसी एनिमल या किसी से जज करने लग जाता है. धीरे धीरे आपको बोला गया होगा, शुरुआत में आपको एक बार आपने हंस के टाला होगा, दूसरी बार भी आपने हंस के टाला होगा, जब ये तीसरी बार बोला गया तो आपको दिल पे लगा बट आपने अब हंसे नहीं, चौथी बार में तो हंसना बिल्कुल ही बंद कर दिया, पांचवी बार में आपको और ज्यादा गुस्सा आने लग गया, तो ये धीरे धीरे हमें अपने आप को आपके दिल तक बैठता गया. इसके लिए आपको क्या करना चाहिए शिवांशी, जब भी कोई आपको बोले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज समझनी चाहिए कि किसी के बोलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको कोई इंसान क्या बोल रहा है, बट आपको हमेशा एक्शन का रिएक्शन देना कभी जरूरी नहीं है. आप इस दुनिया में हर किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं, बट आपको अगर कोई बोल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना कि किसी के बोलने से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है. कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, क्योंकि आप किसी और की थिंकिंग नहीं चेंज कर सकते हैं कोई आपके बारे में क्या बोले, बट आपके अंदर कई सारे ऐसे टैलेंट है, आप उन्हें दिखाइए, आप उन्हें बताइए. आप ये मत समझिए कि आपको अगर वो बोल रहा है तो आप उसके पर इफेक्ट करें, आपको अपने बारे में इतनी अच्छी पॉजिटिव चीजें सोचनी है ताकि नेगेटिव आपके सामने वो कुछ लगे ही नहीं. तो आप इसके हिसाब से आप अपने पॉजिटिव को प्लस करेंगी तो आपको नेगेटिव कुछ नहीं लगेगा. और पहली बात, बिल्ली भी कोई खराब चीज नहीं है. अगर आप ये सोचेंगे बिल्ली खराब है तो फिर आपको ऐसा लगेगा, बट सबसे क्यूटेस्ट अगर कोई चीज होती है जानवरों में वो बिल्ली भी उसी में से एक होती है. तो इसलिए इतना दिल पे लेने की बात नहीं है, उसे एक क्यूट चीज के तौर पे समझिए. अगर आप दिल पे लेंगी तो आपको बुरा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा.
1: तो आपने कभी इस तरह सोचा पहले शिवांशी? नहीं सोचा. ओके तो जब आपको बुरा लगता था क्या करते थे आप? बोलते थे उन लोगों को कि मत बोलो मत बोलो, या मम्मी कभी रोना भी आया क्या?
2: रोई तो कभी नहीं, पर बोला उन
1: बोला लोरा, लेकिन सुनते नहीं है ना दोस्त, कभी कभी वो मजाक मजाक में.
0: मैम मेरे हिसाब से आज इनके शिवांशी के जो दोस्त थे वो जरूर आज हमारा मधुमन FM का ये एपिसोड सुन रहे होंगे और आज उन्हें पता चल चुका होगा कि शायद हमारी किसी बातों से शिवांशी या और उनके किसी दोस्त को बुरा लग रहा होगा, तो शायद आज के बाद में वो शिवांशी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे.
1: और मेरे ख्याल से जो आपने बात कही उसको कि आप पॉजिटिव तरीके से भी लें तो उससे भी शायद हमें मदद मिल सकती
0: है. यस मैम, क्योंकि आप हर किसी का मुंह नहीं बंद कर पाएंगे. आप कितने लोगों को, अगर आप हर किसी का मुंह बंद करने का सोचेंगे कभी नहीं हो पाएगा, तो उस चीज को पॉजिटिव वे में लें तो आपके लिए भी अच्छा होगा और आप अपना मेंटल स्टेट बरकरार रख सकेंगे.
1: ठीक है, और कुछ आप कहना चाहते हो शिवांशी? ओके थैंक यू. और हमारे साथ मोनिका भी है स्टूडियो में. आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया या देखा या कोई सवाल आता है आपके मन में?
3: हाँ मैंने देखा है, मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन मैंने देखा है कॉलेज में किसी और के साथ होते हुए, किसी की हाइट छोटी है या किसी को किसी के नाम से चढ़ाया जाता है. एक्चुअली मैंने स्कूल में इतना ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन कॉलेज में जब भी देखा तो ज़्यादातर किसी को किसी के नाम से चढ़ाना, किसी के लिए अफवाहें फैलाना, या कोई अच्छा नहीं दिखता है, कोई ऐसे कपड़े पहनता है जो थोड़े अच्छे नहीं दिखते हैं, बच्चों जैसे दिखते हैं, या तो उसको जोकर चढ़ाते हैं या किसी की हाइट के लिए चढ़ाते हैं, नाटी नाटी बोलते हैं. तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? और हमें किसी को बताना चाहिए, अपने पेरेंट्स को या अपने गार्डियंस को इस बारे में? हम किसको अप्रोच कर सकते हैं?
0: देखिए पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा.
3: जी मेरा नाम मोनिका है.
0: मोनिका आपका बहुत ही अच्छा सवाल है. आप ये पूछ रही हैं कि जब कॉलेज लाइफ में और स्कूल लाइफ में जब इस तरीके के होता है कि अलग अलग नाम से बुलाया जाना, और इस एज के अंदर एक आ जाता है अफवाहें फैलाना जो आप बात कर रहे हैं. टीन एज में ये एक चीज होती है कि आपके अंदर एक अलग सा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल टर्म है, जब आप टीन एज में आते हैं तो आपका इंटरेस्ट अलग जगहों पे डेवलप होता है. तो उस वक्त डेवलप होने के दौरान आपको कुछ लोग अलग अलग नाम से पुकारना, अलग अलग लोगों के साथ नाम जोड़ना, वो इतना ज़्यादा ओवर हो जाता है कई बार कि आपको रास्ते से निकलना, क्लास में बैठना, कॉरिडोर्स में जाना, हर जगह पे आपका नाम लेकर बुलाना, तो उससे अब इतने इरिटेट हो जाते हैं। तो मैं बुलिंग वालों को भी कहना चाहूंगा, और आपको ये चीज समझनी चाहिए, जो भी जो इससे अभी जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। बिकॉज कहते हैं ना, ये दुनिया नहीं आसान है ना, आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो आइए, ये हर जगह पे ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको इस चीज का पहले समझना चाहिए कि पहले अपने आपको स्ट्रांग करिए। स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं? योगा के थ्रू कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। हम आपको इतना, मैंने ये बात शिवानी दीदी से ही सुनी थी कि अपना रिमोट, हमारी जो ब्रह्म कुमारी की शिवानी दीदी, उनसे ही सुना था कि आपके मेंटल स्टेट का रिमोट किसी और के हाथ में मत दो। अगर आपने अपना मेंटल स्टेट का रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया, वो अगर आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, इट मींस आप स्ट्रांग नहीं है मेंटली तौर पे। तो सबसे पहले तो अपना रिमोट, यानी अपना मेंटल स्टेट वाला रिमोट अपने पास ही रखिए, किसी और की तरफ से आप ना हो उससे इफेक्ट। दूसरी बात, आपने कही कि नाटी, छोटी बोलना या फिर अलग अलग तरीके से इस तरीके के नाम लेकर बोलना, आप इस चीज को, मैंने जैसे पहले शिवांशी को भी बताया कि पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि आप अपने आप को पहले तो द बेस्ट माने। अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ, इट मींस मैं सबसे बेस्ट हूँ। अब आप अगर छोटी हैं, तो आप ये चीज समझिए कि छोटी आप क्यों हैं, उसके पीछे भगवान ने, ऊपर वाले ने कुछ सोच के भेजा है कि आपको छोटी क्यों बनाया है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा लंबा बनाया है, उसके पीछे कोई लॉजिक, तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। तो आपके लिए आप ये बनाइए कि ऊपर वाला कभी गलत चीज नहीं बनाएगा। तो आपको जब भी उसने भेजा है, इट मींस आपको उसने परफेक्ट पैकेज के तौर पे भेजा है, और उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है जिस तरीके से आप इस धरती पे आए हैं। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए, और अपने आप में पॉजिटिव रहना, स्ट्रांग रहना, और मेडिटेशन और योगा के साथ में अपने मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ये चीज एक्सेस हो जाती है, मैंने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने तक पहुंच जाते हैं, इतना बुलिंग हो जाते हैं कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे मेरे सारे दोस्त चिढ़ाते हैं। मैं अपनी बात बताना चाहूंगा मैम, मैं बचपन में 110 केजी का था, अभी मैं 85 का हूँ। मैं 110 केजी का था जब 9th क्लास में था। मैं जब छोटा था तो मैं इतना हेल्थ में था कि मुझे सब मोटू, आलू इस तरीके के नाम से, तो मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि मैं अपने घर में ही रहता था, मैं घर से बाहर कभी निकलता ही नहीं। मुझे याद नहीं है कि मैंने बचपन में कभी क्रिकेट खेला था, क्योंकि मैं जब क्रिकेट खेलने जाता था तो इस मोटू को तो नहीं लेना, मुझे हटा दिया जाता था वहां से। तो मैं रो करके घर में आने लग गया। उसके बाद में इतना मेरे पे इफेक्ट पड़ा बचपन में कि मैंने क्रिकेट खेलना ही बंद कर दिया। मैं शाम होती अपने घर पे बैठता, चैनल चलाता, कार्टून देखता, और देखते देखते और मोटा होता गया। तो धीरे धीरे ये आपके ऊपर हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट होता है पेरेंट्स का। अगर ये बात अपने पेरेंट्स से आप शेयर करें, और पेरेंट्स सबसे बड़ी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को मोटिवेट करें कि बेटा इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई लोग आपको क्या बोल रहे, आप हमारे लिए सितारे हो, आप मेरे लिए स्टार हो, अगर पेरेंट्स ये शब्द बोलेंगे तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स को करना पड़ेगा। मैं टीचर्स को भी ये बात बताना चाहूंगा कि प्लीज अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जज ना करें कि ये बच्चा होशियार नहीं है पढ़ाई में, ये तो कमजोर है। वो इतनी सी बात भी मैम टीचर्स की बच्चों को बहुत ज्यादा लगती है। अगर एक कमजोर बच्चा भी थोड़ा सा आकर एक गलत सवाल का जवाब दे दिया, मैंने बोल दिया 2 और 2 कितना होता है, अगर उसने 3 बोला, अगर आपने सबके सामने कहा इतना भी नहीं आता, आज 40 बच्चों के सामने वो बच्चा थोड़ा सा डर जाएगा। तो उसको टीचर्स को कहना चाहिए वेरी गुड, कोई बात नहीं बेटा, आपने ट्राई किया, बट एक बार वापस ट्राई करो, इसको वापस एक बार रिपीट करके देखिए। तो अगर वो वापस रिपीट करेगा, अगर नहीं होगा तो टीचर उसकी हेल्प करे। अगर टीचर उसकी हेल्प करेगा तो धीरे धीरे बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैम ने मुझे या सर ने मुझे कहा कि वेरी गुड, एक बार और ट्राई करो। तो ये जो है, इसका सपोर्ट पेरेंट्स और टीचर को बहुत बड़ा रोल है, वही इसको निकाल के हम बच्चों को बुलिंग से निकाल सकते हैं।
1: इससे जुड़ा एक और सवाल है मेरे मन में, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा हम बच्चों से और पूछते हैं,
0: ये बिल्कुल
1: फिर बात करेंगे। और हमारे साथ रूहान भी है, रूहानी भी है, आप लोग आ जाओ। आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन आपने कभी देखा है, या आपको किसी चीज का बुरा लगा है, या सुना है कभी रूहान, कभी ऐसा हुआ है?
4: हाँ, मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि लोग हमारी क्लास में भी किसी को वो बच्चा एक रिलीजन का है इसलिए उसको बहुत ज्यादा चिढ़ाया जाता है, ऐसे बोलते हैं कि गेम्स पीरियड में इसको नहीं खिलाएंगे, ऐसे बोला जाता है।
1: आपको कैसा लगता है ऐसा सुन के?
4: मेरे को बुरा लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता।
1: अच्छा नहीं लगता आपको?
4: इसको नहीं खिलाएंगे, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है।
1: वो बच्चे को कैसा लगता है?
4: उस बच्चे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो मैं उसके साथ खेल लेता हूँ।
1: फिर आपको कोई कुछ बोलता है आप उसके साथ खेलते हो तो?
4: मेरे को ऐसे चिढ़ाया जाता है कि ये दूसरे रिलीजन के बच्चे के साथ खेल रहे हैं, इसके साथ मत खेलो।
1: तो आपके साथ बच्चे नहीं खेलते फिर? तो फिर आपको बुरा नहीं लगता?
4: लगता है।
1: लगता है, फिर क्या करते हो बुरा लगता है तो?
4: मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि ऐसे मत सोच, हमारे साथ भगवान है तो उनको भी खिलाओ, ऐसे बोलता हूँ।
0: वेरी गुड रूहान, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी होता है कई जगहों पे, अलग अलग रिलीजन के नाम पर, कहीं अलग अलग कास्ट के नाम पर, कहीं अलग अलग रंग भेद, वो सब कुछ बहुत सारी नीतियों के तौर पे अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। बट रूहान, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि रूहान ने ये सवाल पूछा। और दूसरी बात ये बात बोली कि रूहान इन सब चीजों को नहीं मानता है। रूहान, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, और आज इन्हें ऐसा लगता है कि कोई कास्ट, कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती है, हम सब एक हैं। और आपने ये चीज बोली है कि हम सब एक होकर अगर हम खेलें, तो ये जो आपके अंदर बात है, यही अगर आपके फ्रेंड्स भी समझ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वी आर इंडियंस, हम सब इंडियंस हैं, और हम सब एक दूसरे के भाई हैं, और भाई एंड बहन हैं, तो इस तरीके से हमें रहना चाहिए कि सब एक साथ मिलकर खेलें। ये जो बातें हैं, ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, सबने अलग अलग डिफरेंस कर दिया, बट हम अंदर से तो एक ही हैं, तो हम एक साथ रहेंगे और एक साथ खेलेंगे कूदेंगे। तो मैं बच्चों को भी कहना चाहूंगा जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, प्लीज बच्चों इस तरीके से अलग अलग डिफरेंस ना करें, एक साथ रहें और एक साथ खेलें। बिकॉज आपके किसी एक सवाल या एक शब्द की वजह से किसी और को दुख ना पहुंचे। हम ऐसे शब्द कभी यूज ही ना करें जो किसी और को दुख पहुंचा सके। रोहान, थैंक यू सो मच, आप इस तरीके से अभी से मोटिवेट है और आप इस तरीके से बच्चों की मदद कर रहे हैं कि आप सब उसको अगर डिफरेंस कर रहे हैं बट आप नहीं कर रहे, ये बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच रोहान।
1: अच्छा रोहान, मैं एक बात पूछूं आपसे, और आपको ये किसने सिखाया कि सब लोग एक जैसे हैं और किसी में ऐसे अंतर नहीं करना चाहिए, किसने सिखाया आपको?
4: ये मेरे को थोड़ा थोड़ा आंसर मूलनी में मिला है, बाबा बोलते हैं, और मेरे को घर पे बताया पापा ने
1: बताया। वेरी गुड। और बिल्कुल जैसा सर ने कहा कि अंतर तो नहीं है, अंतर तो हमने बना दिया है ना। बाकी किसी की दो नाक है क्या? है क्या? नहीं ना। और किसी के चार कान है? हाँ, देखो तो हम सब तो एक जैसे हैं, बस हमारी चॉइसेस अलग अलग होती है कि हम पहनेंगे क्या, हम पूजा कैसे करेंगे, हम है ना, वो अलग अलग है। तो यानी कोई डिफरेंस भगवान ने तो नहीं बनाया, हम तो सेम दिखते हैं ना सब लोग, लेकिन हमने बना दिया तो वो नहीं बनाना है। बहुत अच्छी बात है रोहन, बहुत अच्छी बात आपने कही। एंड थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ दो और बच्चे हैं स्टूडियो में, आप में से कोई बोलना चाहेगा कभी भी आपने कुछ ऐसा फील किया हो?
5: मेरी क्लास में एक लड़का है, वो थोड़ा सा काला है और हंसता है, तो वो दांत निकाल के हंसता है, इसलिए सब उसको चिढ़ाते हैं कि ये तो बंदर जैसा दिखता है। तो उन बच्चों को मैं कैसे समझाऊं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए?
0: जो भी वो बच्चा है जो आपकी क्लास के अंदर है, वो बच्चा देखिए काला एंड गोरा, ये तो कलर है, और उसके हिसाब से उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टैलेंट होंगे। अगर आप ये चाह रही हैं कि उसकी आप मदद कैसे करें, आप लोगों को कैसे समझाएं, तो उसमें बहुत सारी और प्लस पॉइंट्स होंगे। या वो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, या वो पढ़ाई में किसी सब्जेक्ट में अच्छा होगा, या फिर वो बातों में अच्छा होगा, तो कई कुछ भी एक उसमें टैलेंट होगा। तो आप बाकी लोगों को बताएं कि प्लीज डोंट जज कि वो उसका कलर क्या है या उसके दांत कैसे हैं। आप उसे ये बताएं सारे बच्चों को कि उसके अंदर देखो, उसके अंदर तो स्पोर्ट्स कितना अच्छा खेलता है, वो फुटबॉल कितना अच्छा खेलता है, अरे यार ये तो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है। उसके साथ साथ में आप उसको बताएं कि ये पढ़ाई में, चलो ठीक है, को अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, बट वो बोलता बहुत अच्छा है, उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होगा। तो आपको उसका टैलेंट ढूंढना होगा और अपने दोस्तों को बताना होगा उसका साथ दे करके कि इसमें ये चीजें भी हैं। तो प्लीज उसको उस हिसाब से ना सोचें कि वो किस तरीके से दिखता है या बोलता है या जो भी है, आपको उसका टैलेंट बाहर निकालना पड़ेगा, तभी सारे लोग समझेंगे।
5: पर वो मेरी दोस्त है, फिर मुझे बुली करते है कि तुम उसका क्यों साथ दे रहे हो, तुम तो हमारे दोस्त हो, तो उसके
0: आपको इफेक्ट पड़ता है दूसरे बुलिंग करते हैं तो? थोड़ा थोड़ा पड़ता है,
5: थोड़ा
0: तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा और करो, क्योंकि आप ये समझिए कि आप में, हम कोई चीज अच्छा करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है, तो आप उस अब जो आपने दोस्त को जाके हेल्प करोगे जिस लड़की की आप बात बता रहे हो, तो आपको मन से अच्छा लगना चाहिए कि कोई बात नहीं, मेरे दोस्त अभी नहीं समझ रहे, बस 10 दिन बाद समझेंगे। क्योंकि अगर वो आपके रियल दोस्त हुए तो वो आज नहीं समझ रहे, बट वो 10 दिन बाद समझेंगे कि मेरी फ्रेंड गलत नहीं कर रही है, आज वो मेरी फ्रेंड किसी और की मदद कर रही है। तो आप किसी की मदद करना, अगर अपने दोस्तों से थोड़ी सी आपको अगर आपने ले लिया, दुश्मनी भी ले ली चलेगा, बट आप अपने दोस्तों के की वजह से आप अपनी किसी और की मदद कर रहे हो, तो आप उस लड़के की मदद कर रहे हो, तो ये अच्छा होगा। धीरे धीरे आपके अगर असली दोस्त हैं जरूर समझेंगे कि हाँ आप गलत नहीं कर रहे हो, आप किसी की मदद कर रहे हो। तो आप उसकी मदद करिए, आप उसके साथ रहिए और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स निकालिए और सबको बताइए कि देखो ये इसने ये चीज की है, ये ड्रॉइंग बनाई है उसने, ये उसने क्रिकेट खेला है, ये क्या बोलता है। तो ऐसे करके उसकी पॉजिटिव थिंग सारे दोस्तों के बीच बताइए, तो धीरे धीरे उसके दोस्त बनते जाएंगे और बहुत ही अच्छे कनेक्ट हो जाएंगे। मैंने जैसे अभी मैम को बात बताई रहा था कि मैं बचपन में जब बहुत फेटी था, बहुत 110 105 किलो के आसपास था, तब मुझे मेरे दोस्त है ना, मैं क्लास में ना तो मुझे मॉनिटर बनाया जाता, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं मुझे डिसग्राफिया का प्रॉब्लम था, जिसे डिसलेक्सिया तो लोगों ने सुना है, जिसमें इंग्लिश के अंदर आपको प्रॉब्लम आता है, मुझे डिसग्राफिया था। मैं कोई भी शब्द, मैं लाइन भी सीधी नहीं खींच सकता हूं। आज भी अगर आप मुझसे पूछेंगे एलिफेंट की स्पेलिंग, मुझे नहीं। आज मैं एमए साइकोलॉजी करके मैं एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन चुका हूं, बट आज भी अगर आप मेरे से स्पेलिंग पूछेंगे एप्पल, तो ए और ई में मेरे को प्रॉब्लम आता है। ये डिसग्राफिया का प्रॉब्लम है, डिसग्राफिया डिसकाउंटिया मुझे साथ में प्रॉब्लम था। बचपन में लोग मुझे समझते थे कि ये तो पढ़ाई नहीं करना चाहता, ये तो कमजोर बच्चा है, बट धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तब डायग्नोस हुआ कि ये तो मुझे बीमारी इनबिल्ट है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जब पढ़ाई मैं नहीं कर पाया तो मुझे कई सारी चीजें दी, जैसे कहते हैं ना भगवान एक चीज लेता है तो दूसरी चीज देगा, तो भगवान ने मुझे डांस का टैलेंट दिया, उसके साथ साथ में मुझे बोलने की कला दी। आज मैं अपनी बातें बोलता हूँ और मैं मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ जो बुलिंग हुआ, मैं चाहता हूँ कि लोग इस तरीके से ना हो। इस वजह से मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी का कोर्स किया, ताकि मुझे जो लग रहा था मेरे परिवार और सबको कि यार इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आज मैं बताता हूँ वो प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ होता है। तो इसलिए उस बच्चे का भी टैलेंट अगर बाहर निकालोगे तो सबके सब दोस्त बन जाएंगे उसके।
1: मतलब दोस्तों में तो होता है ना ऐसा, कुछ आपकी बात होगी जो उन्हें नहीं पसंद आएगी, उनकी बात होगी आपको नहीं पसंद आएगी, इसके कारण हम सही करना तो नहीं छोड़ सकते ना, है ना, नहीं तो फिर हमें बहुत बुरा लगेगा, है ना। तो जैसा सर ने बोला, आप उनकी शेयर करो बातें, और वैसे भी हमें तो मालूम है सारे रंग खूबसूरत हैं, है ना। भारत में जिस तरह का टेम्परेचर है उस अनुसार स्किन का कलर भी होता है, अफ्रीका में हम देखते हैं तो बहुत डार्क स्किन लोग हैं, पर क्या वो सुंदर नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सुंदर
0: मन से होता है, दिल से होता है, ना कि आपके शरीर से। तो उसकी अंदर के मन की सुंदरता सबको दिखाओ कि ये मन से सुंदर है,
1: भले दोस्तों से थोड़ा, कोई बात नहीं। जैसा उन्होंने सर ने बोला, रियल दोस्त होंगे तो समझ जाएंगे धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, है ना। ठीक है, आप करके देखना फिर बताना। ओके ओके। और हमारे साथ और भी नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, राघव आप बताइए, इस प्रकार की कोई सिचुएशन देखी कभी, हुआ है सर?
6: यस।
1: क्या देखा बेटा?
6: मेरे स्कूल में दोस्त चिढ़ाते हैं मेरे को।
1: अच्छा, क्या चिढ़ाते हैं?
6: काजल बोल के चिढ़ाते हैं।
1: काजल बोलते हैं? अच्छा, ऐसा क्यों?
6: पता नहीं।
1: ओके, कब से बोलते हैं ऐसा?
6: वो जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब तो नहीं चिढ़ाते थे, फिर एक मैम ने मेरा नाम रखा, उसके बाद सारे चिढ़ाते हैं।
1: मैम ने कुछ गलत बोल दिया आपका नाम गलती से? अच्छा, तो क्यों चिढ़ाते हैं नहीं पता आपको? कोई रीजन नहीं है, बस काजल बोलने लगे
0: आपको? पता है काजल नाम से क्या प्रॉब्लम है?
1: शिवांशी को पता है क्या बोल, क्यों बोलते हैं काजल लगाते हैं इसलिए। ओके
0: ओके, तो काजल लगाना, अगर आपने काजल लगाया, मम्मा अपना प्यार से लगाती है ना काजल, कि मेरे बेटे को नजर ना लगे, आपकी आंखें बड़ी बड़ी दिखेंगी, तो कोई बात नहीं। अगर मैम ने एक बार बोल दिया होगा बेटा काजल, या फिर काजल लगाया हुआ बच्चा, इस तरीके से कुछ बोल दिया होगा, बच्चों को तो पॉइंट चाहिए था, आपके आपके दोस्तों ने आपके लिए आपका टिकट पॉइंट पता कर लिया, तो उनको बटन पता चल चुका है कि आप चिढ़ते किस जगह से हो, आपको गुस्सा किस बात पे आता है, तो वो उस बटन को बार बार आके दबाते हैं। आपको अगर पता चल जाए आपके क्लासरूम में कि लाइट का स्विच कौन सा है या पंखे का स्विच कौन सा है, तो आपको गर्मी लगेगी, आप क्या करोगे? पंखा चलाओगे, पंखे वाला बटन जाके दबाओगे। तो उनको आपका बटन पता चल चुका है कि आपको अगर काजल बोलूंगा तो ये चिढ़ेगा, ये गुस्सा करेगा, और उन्हें क्या आता है उस चीज में, मजा आता है। तो आपको सबसे पहले तो उस बटन का स्विच ही आप अंदर से कनेक्शन काट दीजिए, यानी काजल शब्द आपको कोई बोले आप इग्नोर करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन काजल, तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो आपको स्विच का आपको कनेक्शन काटना पड़ेगा। तो जब कनेक्शन कट जाएगा उसके बाद में कोई आके उस बटन को दबाएगा तो पंखा चलेगा? अगर कनेक्शन कट गया तो नहीं चलेगा ना, वैसे ही आपको अपने कनेक्शन जो आपने काजल से बना दिया है, कोई किसी और को भी बोलेगा तो आपको लगेगा मुझे तो नहीं बोल रहे, तो इसलिए आपको वो कनेक्शन काटना होगा। जैसे ही वो कनेक्शन कट जाएगा, आपको कोई भी इंसान काजल बोलेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
6: मैं इनको इग्नोर भी करता तो बारी बार आके वो मेरे को चिढ़ा।
0: कोई बात नहीं, 10 दिन तक इग्नोर करो, 11वीं दिन जब आपको फर्क नहीं पड़ेगा ना तो वो बोलना बंद कर देंगे, उन्हें लगेगा अरे यार इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, देन वो नई चीज आपकी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज अपनी चीजें किसी और को बताओ मत कि क्या आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है या आपका बटन कौन सा जिससे आपको गुस्सा आता है। तो आपको पहले बात तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, शांत रहो, आराम से एंजॉय करो, यू आर वेरी हैंडसम।

0: बॉय, आपको मेरे हिसाब से इतना चिढ़ना नहीं चाहिए, किसी गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर वेरी क्यूट, बहुत प्यारे हो, और सारे के सारे आपकी क्लास के बच्चे वो भी बहुत प्यारे और बहुत क्यूट है, तो आप भी किसी को ना चिढ़ाएं और वो भी आपको नहीं चिढ़ाएंगे, धीरे धीरे धीरे आप इस पर वर्क ऑन करोगे, अपना किसी को पॉइंट है जो है वो आप नहीं बताओगे तो धीरे धीरे काम चल जाएगा, ठीक है।
1: अच्छा, आपने इग्नोर कैसे किया? आपने बोला कि आपने किया था ना पहले, तो आप उनके बात पे रिएक्ट नहीं करते, ऐसे चेहरा गुस्से वाला हो जाता है फिर चले जाते हो, उठ के कैसे करते हो?
2: नहीं, जैसे मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तो उनके पास ही रेजर शॉर्पनर नहीं होता तो वो काजल बोल के बोलते हैं, तो मैं उनका इग्नोर कर देता हूँ,
1: जवाब नहीं देते आप उनकी बात का। अच्छा, ये आपके दोस्त बोलते हैं या आपके फ्रेंड्स नहीं है वो लोग जो चिढ़ाते हैं?
2: मेरे दोस्त ही बोलते हैं।
1: दोस्त बोलते हैं, और आप भी उनको चिढ़ाते हो किसी नाम से? नहीं चिढ़ाते हो आप, ओके। और फिर आप क्या करते हो कि सुनते नहीं हो, जैसे उन्होंने काजल बोला तो आप ध्यान नहीं देते वो क्या बोल रहे हैं, नहीं देते, तो फिर वो बार बार फिर भी बोलते रहते हैं, तो कितने दिन कितने समय से चल रहा है ऐसा?
2: ये सेकंड टर्म से।
1: कितना टाइम हो गया सेकंड टर्म को?
2: एक साल।
1: एक साल से? तो आपको बहुत बुरा लगता है।
0: तो अगर वो आपके दोस्त है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? अब अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है या आपके अच्छे दोस्त है, आप उनके साथ बैठो और उनको एक चीज बोलो, क्या पता मेरे को एक चीज बुरी लगती है। अगर आपका असली दोस्त है तो वो समझेगा उस चीज को, वो पूछेगा क्या बुरी लगती है, तो आप उस चीज को बताओ कि यार जब आप ऐसे ऐसे बोलते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कभी आपने उससे शेयर किया कि मुझे अच्छा नहीं लगता? अलग से बैठकर, अगर आप ग्रुप में बैठोगे तो सब मजाक उड़ाएंगे, अगर आप अलग से बैठकर उसको ढंग से आप समझाओगे कि प्लीज यार तुम ऐसा बोलते हो ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो आपका असली दोस्त होगा वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था यार तुझे इतना बुरा लगता है, उनको लग रहा होगा कि शायद उसको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, तो आप अगर उसे प्यार से समझाओगे तो शायद वो समझ जाए और उस चीज के ऊपर वो कंट्रोल करे कि ठीक है वो नेक्स्ट टाइम, अगर आपके दोस्त हैं, दूसरों का तो आप मुंह बंद नहीं कर पाएंगे, बट अपने दोस्त अगर वो रियल दोस्त है तो वो जरूर आपकी बात सुनेगा, समझेगा और वो आपको आगे से बुलिंग करने से बचेगा।
1: कभी आपने बोला उसको अलग से, आपके फ्रेंड को नहीं बोला? तो बोल के ट्राई करोगे अभी आप एक बार?
2: यस,
1: है ना, उसको एक बार बोलना, सीरियसली बोलना, ठीक है, फिर आप शेयर करना, ठीक है, ओके, थैंक यू। आप बच्चों में से किसी का और कोई सवाल है, कुछ आप लोग पूछना चाहते हो? अगर कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो, ऐसा कुछ नहीं, आप पूछ सकते हो।
3: मेरे दोस्त को ना मैं बहुत सारी पेपर की चीजें बना के देती हूँ, तो भी वो मेरी बात नहीं सुनती और बार बार ऐसा बोलती है कि मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी, और अगर मैं उसको, हम जैसे शेयरिंग करते हैं ना टिफिन, तो हम ऐसा बोलते हैं कि हम जो खाना देते हैं ना एक दूसरे को, वो दोनों को पूरा खाना होता है, तो वो कभी कभी लास्ट में मेरा खाना छोड़ देती है।
0: तो आप मुझे एक चीज बताइए, आप उसके लिए पेपर के जो आइटम्स बनाती हैं या जो भी कुछ बनाती हैं, आप ये सोच के बनाती है कि वो मुझे कुछ देगी तब मैं बना रही हूँ? नहीं ना,
3: नहीं।
0: आप अपने दिल से बनाती हैं?
3: हाँ।
0: तो जब आप अपने दिल से बना रही हैं और आप उसके, जब या तो बिजनेस क्या होता है, कोई चीज हम देते हैं तब वो वापस रिटर्न चीज के हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, पैसा देंगे वस्तु लेते हैं, है ना? तो आप इस, अगर बिजनेस कर रही हैं, नहीं ना, आप जब हम किसी को दिल से रखते हैं, जब आप हम अपन दिल से उसको दोस्त मानते हैं, तो हम कोई चीज उसको दे रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो उसको अप्रिशिएट करे या फिर वो उसके रिटर्न में कुछ मुझे दे, क्योंकि वो तो हमारी दोस्त है, तो हम अच्छे हैं तो हम अपने हिसाब से वो चीज कर देंगे। आगे वाला अगला जो दोस्त है वो आप जज नहीं कर सकते कि वो जैसा मैं चाहूं कि मैं उसको दे रही हूं तो वो भी मेरे लिए पेपर का बनाए, जो कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज आप जो चीज दे रहे हो वो वापस रिटर्न में दे या ना दे इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। आपके मन में आ रहा मेरी दोस्त को ये दूंगी, मैं अपनी पूजा फ्रेंड को ये चीज दूंगी, बना के दे दो, एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो वापस आपको देगी या नहीं देगी। मैं प्रिया को ये चीज दूंगी फ्लावर बना करके, वो दे रही या नहीं दे रही कोई इशू नहीं है, तो आप अपनी तरफ से जो कर सकती हो करो, आगे देना नहीं देना उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। जब आप खाना शेयर भी करती हैं, क्या वो खाना शेयर नहीं करवाती आपसे?
3: करती है,
0: तो बस आपकी फ्रेंड है, एक बाइट आपने उससे लिया, एक बाइट उसने आपसे लिया, धीरे धीरे आप साथ में रहोगी, तो प्लीज एक्सपेक्टेशन आप किसी और के ऊपर नहीं थोप सकते हैं कि आप जो चीज कर रहे हैं तो आप मन में ये सोच ले कि आप, जैसे आप मेरे सामने सवाल पूछ रही हैं, आप मन में क्या ये सोच क्या है कि मैं जवाब क्या दूंगा?
3: नहीं
0: ना, तो जब आप मेरे से ये सोच रही हैं कि मैं जवाब क्या दूंगा, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं, तो प्लीज अपने फ्रेंड से भी नहीं, उसे फ्री छोड़िए, वो एक अलग इंसान है, उसकी मेंटेलिटी अलग है, उसका थिंकिंग प्रोसेस अलग है, तो हर इंसान अलग अलग प्रोसेस है, आपका प्रोसेस है कि अपने दूसरों की मदद करके आपको अच्छा लगता है, ठीक है? तो ऐसा करके आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, आप अच्छी हैं, आपको जो करना है करिए, ये मत सोचिए अगला वाला क्या करेगा। थैंक यू।
1: तो ये जैसा आपने बताया, सर ने बताया कि आप और सबका एक्सप्रेस करने का तरीका भी अलग होता है, हो सकता है वो अपनी फ्रेंडशिप किसी और तरीके से एक्सप्रेस करती हो, वो आपके लिए कुछ करती हो जो आप ना करते हो, ऐसा कुछ है, कोई ऐसी चीज है जो वो करती है?
3: हाँ, जब लंच होता है तब सब बाहर चले जाते हैं और वो मेरे लिए रुकती है।
1: देखा, तो हम सबका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है, किसी को कागज के नोट लिखना अच्छा लगता है, किसी को कुछ और तरीके से, है ना। हम सब अलग अलग ह्यूमन बींग्स है ना, तो हम लोग डिफरेंट है, तो इसलिए हम लोग डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो वो भी हमको पहचानना है। जैसे सर ने पहले कहा था ना, जो अच्छी चीज है उसमें वो ढूंढो, तो उसमें आप कोई अच्छी चीज जो वो करती है दोस्ती के लिए, वो और आप सोचना एक और, ठीक है? ओके, थैंक यू। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस एपिसोड को, और हमारे साथ मोनिका बनी हुई है। मोनिका, मुझे लगता है आप कुछ और कहना चाह रहे हो।
4: जी, वैसे हमने अभी जो भी डिस्कशन किया वो एक तरह से मतलब किसी को चिढ़ाने के चढ़ाने वाली बुलिंग हो गई, या फिर सोशल बुलिंग हो गई, किसी को ग्रुप में से निकाल के, वो एक टाइप की बुलिंग। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई किसी को मार रहा है या धक्के दे रहा है, कोई गया या उसको पीठ पे मारा, वो ज़रूरी नहीं है कि वो छोटा दिख रहा है या काला है या फिजिकल फीचर्स के हिसाब से नहीं। कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे पास पावर हो और सब हमारे कंट्रोल में रहे, उस वजह से भी कोई बुलिंग करते हैं। ये स्पेशली कॉलेज में देखने को मिलता है, और वर्क प्लेस में भी बुलिंग होती है, जहाँ पे कंपनीज में काम करते हैं एम्प्लॉयज, तो वहाँ पे भी कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके फैमिली में भी होता है कि उनका एनवायरमेंट ऐसा रहता है कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ किया हो, बुलिंग की हो, या उनका नेगेटिव एनवायरमेंट में वो रह चुके होते हैं, तो उनका एक आदत बन जाती है कि वो बुली करते हैं कंट्रोल बनाने के लिए, तो वो फिजिकल फीचर्स के ऊपर नहीं रहता है। तो मतलब वैसे में हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कैसे जवाब दे सकते हैं कि दूर रहना हमसे और हमें ये सब पसंद नहीं है, वो तो फिजिकल फीचर्स पे नहीं आना, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे?
0: जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। ये जो आपने बात बताई, तो मैंने एक आपको पहले भी बात बताई थी कि आपको पहले तो बहुत स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि आप हर इंसान का मुंह नहीं बंद कर पाएंगे। आपको फिजिकली अगर कोई है तो आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना होगा सबसे पहले, कि आप किसी भी बुलिंग से फर्क पड़े या ना पड़े, आपको अपने आप को स्ट्रांग बहुत बनाना होगा। तो जैसे आपने कहा कि कई परिवारों में होता है, कई परिवारों में अगर किसी लड़की में ये कुछ कमी है तो उसका नाम से मौसी, चाची या कुछ हैं, वो कुछ ना कुछ नाम से बुला देती है। अपने अपने कजिन्स भी होते हैं, वो भी किस तरीके से नाम से बुला देते हैं, कई बार उस बच्ची को बुरा लगता है। तो पहले तो हर इंसान को ये सोचना होगा कि दूसरे इंसान को इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, और अगर उसको बहुत बुरा लग रहा है तो प्लीज स्टॉप, मत करिए। मगर हर इंसान अपनी तरह तो सोच नहीं सकता है कि सच में वो चुप हो जाए। तो आपको सबसे पहले मैंने ये बात ही बताई कि आपको बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रांग तो रहना ही होगा, क्योंकि आप यहां से निकल जाएंगे, आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको मुकाबला करना होगा। मुकाबले के तरीके अच्छे होंगे, मुकाबले का तरीका ये है कि या तो आप उनसे जिस तरीके, जैसे आपको एक मैं बात बताना चाहूंगा, अगर सुअर कीचड़ में खेल रहा है और उससे हमको चलते हुए अगर छींटे लग गए, तो क्या हम भी उसके ऊपर कीचड़ में जाकर उनके ऊपर कीचड़ उछालेंगे?
4: नहीं।
0: क्यों?
4: उनमें और हम में, वो हम इंसान है ना, वो तो जानवर है।
0: तो बस यही कि आप अगर कोई आपके साथ में बुरा कर रहा है तो आपको जरूरी नहीं आप उस हिसाब से, आपने कहा मैं जवाब कैसे दूं, मत दीजिए। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर चीज को बताना और एक्सप्रेस करना भी जरूरी नहीं है। अगर आपने को किसी ने एक गाली दी तो जरूरी नहीं है आप उसको दूसरी गाली दो, क्योंकि उसमें और आपने क्या फर्क रह गया। आप में फर्क ये है कि हमें पहले सबसे पहले ये सोचना है कि हमारा संस्कार क्या है, हमारा कैरेक्टर कैसा है। शांत, हम शांत रहते हैं, हम प्यार से रहते हैं, और मेरी ये क्वालिटी है, आपकी क्वालिटी ये रहेगी। आप खुद ये बात बोलो कि मेरी ये क्वालिटी है कि मैं शांत हूँ, मैं सबसे प्यार से रहती हूँ, ये मेरी क्वालिटी है। मेरी क्वालिटी वो नहीं है कि मैं दूसरों को परेशान करना, ये तो अगर ये धीरे धीरे आप ये सोचने लग जाएंगे तो कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है आपको उससे धीरे धीरे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपको ये सोचना है कि जब भी कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है प्लीज उस पर तरस खाइए। आप मन में ये सोचिए, अरे यार इसके साथ कैसा है ना, इसकी मेंटल स्टेट कैसी है, थोड़ा सा अरे मैं तो स्ट्रांग हूँ मेंटली, बट ये स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से ये खुद का भी बुरा कर रहा है और दूसरों का भी बुरा कर रहा है। बिकॉज जो आपको बुलिंग कर रहा है वो पहले आधा घंटा तो ये सोचेगा कि मैं अगले वाले को चिढ़ाने के लिए उसका पॉइंट क्या निकालूं, बुलिंग करने का तरीका क्या निकालूं, वो अपना हाफ एन आवर वो बर्बाद कर दिया। देन हाफ एन आवर आपको बुलिंग करने के बाद वो हाफ एन आवर ये सोचता है कि अब उसके क्या क्या मजा आ रहा होगा यार, वो क्या सोच रहा होगा। तो उसने अपना एक घंटा सिर्फ एक जने के एक शब्द के ऊपर बर्बाद कर दिया। तो ये टाइम इतना कम है हमारे पास, हम इतना सोचेंगे सिर्फ एक बुलिंग के शब्द पे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्लीज, किसी ने बोल दिया, कई बार इग्नोर करो, इग्नोर सबसे बेस्ट थिंग है। इग्नोर करके भी कई बार निकल सकते हैं। हाँ, बट अगर कोई आपको फिजिकली हर्ट कर रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कॉलेज में होता है अपने आपको बाहुबली बताने के लिए, या फिर मैं बहुत मतलब बहुत ताकतवर हूँ, या मैं यहाँ का डॉन हूँ, या इस तरीके कुछ चीज बताने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप अपने से बड़ों से जरूर शेयर करिए ऐसी बात। अगर आपके साथ में फिजिकली कोई आपको बुलिंग कर रहा है, कोई आपको पीठ पे मार के जा रहा है, कोई आपको कुछ बोल करके मार के जा रहा है, प्लीज इसके लिए FIR दर्ज कराइए, आप पुलिस के पास जाइए, आप अपने घर वालों से बात करिए, क्योंकि आप उस सिचुएशन से अकेले बाहर नहीं आ पाएंगे। उस वक्त आपको किसी बड़े का सपोर्ट चाहिए होगा, तो आप खुद ही परेशान होकर घुट घुट कर जिए, इससे बेटर है अपने घर वालों से कम्युनिकेशन बनाना मैम बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब तक आपके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप बुलिंग से बाहर नहीं आ पाएंगे।
1: किसी का सपोर्ट लेना चाहिए उस वक्त, उस समय झिझकना नहीं चाहिए या शर्म नहीं,
0: नहीं चाहिए। उसमें मैम पता है क्या होता है, आजकल जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच की जो दूरी हो चुकी है ना, वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो उसमें क्या होता है, बच्चा ये सोचता है कि मैं मम्मी पापा को जाके बोलूंगा, पापा पहले ही परेशान होते हैं, उनको जाके कहूंगा तो वो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खुद अपने परेशान, मैं अपने से परेशान हूँ, मैं तेरा क्या संभालूंगा। तो अगर आपने ये जवाब दे दिया अपने बच्चे को, तो आप ये मान लीजिए कि बच्चा खुद ही मन मन में घुट रहा है, और वो किस सिचुएशन में जा रहा है आपको पता भी नहीं है।
1: कई बार लड़कों को तो कहते थे इतनी सी बात तो हैंडल नहीं कर सकता,
0: हाँ।
1: इतने में घबरा गया क्या मतलब उनको,
0: तो वो पेरेंट्स
1: बड़ी शर्म की बात हो जाती है लड़के को,
0: हाँ तू लड़का है, ये जो शब्द है तू लड़का है, उसको नहीं संभाल पाया, तो इट मीन्स लड़के के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं लड़का हूँ मैं मार दूँ, और फिर जब वो जाके उसको मार देगा, और जब ये बड़ी बात हो जाएगी तो कहेंगे कि तुमको हमने ये पढ़ाने के लिए करा था, कॉलेज जाके तुमको झगड़ा करने के लिए किया था। तो पेरेंट्स को पहले ये चीज समझनी होगी कि अगर बच्चा आके आपको बात बताना चाह रहा है, प्लीज इतनी खिड़की रखिए, मानते हैं आप सब बिजी है, बट आधा घंटा, दिन का एक आधा घंटा आपके पास रखना चाहिए, जहां आप अपने बच्चों से बात करें कि आज कैसा दिन, सिर्फ इतना सा पूछना आपको, आज दिन कैसा निकला। बच्चा आपको खुद ब खुद बता देगा कि आज का दिन कैसा निकला, बच्चा अपनी प्रॉब्लम भी बताएगा, और जिस दिन प्रॉब्लम नहीं है वो आके अच्छी बातें बताएगा कि आज मैं अपने दोस्त की पार्टी में गया, देन हमने ये किया, देन हमने ये खाया, तो वो जो गैप है, और अगर कुछ परेशानी को तो कहेगा पापा वो मुझे चिढ़ाता है, वो मुझे बुलिंग करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो शायद पापा आपको स्ट्रांगली जवाब दे करके आपसे बात कर सके। देखिए मैम, आजकल के जमाने, जैसे अभी मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट करता हूँ, कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, कई बच्चे मेरे काउंसलिंग के लिए बात करते हैं, तो मैं ये चीज देखता हूँ कि आजकल ये काउंसलर की जरूरत क्यों पड़ी, पहले क्यों नहीं थी, आज से 10 साल पहले काउंसलर क्या होता किसी पता ही नहीं था
1: जी।
0: सबको ऐसा लगता था कि काउंसलर मतलब अगर आप पागल हो गए हैं, आज भी अगर पेरेंट्स को मैं बोलूं कि आपके बेटे को काउंसलिंग की जरूरत है
1: जी, जी, जी।
0: तो पेरेंट्स कहे नहीं नहीं नहीं नहीं मेरा बच्चा पागल नहीं है, ये तो ऐसे ही नाटक कर रहा है, ये तो ऐसे ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स ये समझने को तैयार नहीं है कि काउंसलिंग करना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई बीमारी नहीं है आपके बच्चे को, आपके बच्चे को वो स्ट्रांग कर रहा है। सबसे बड़ी बात, हम काउंसलर भी कोई मैजिक नहीं करते मैम, हमारा सबसे बड़ा काम होता है सिर्फ सुनना। बच्चे को सिर्फ इतनी बात चाहिए होती है कि जो पेरेंट्स नहीं सुन पा रहे हैं, जो टीचर्स नहीं सुन पा रहे हैं, जो दादा दादी नहीं सुन पा रहे हैं, जो भाई बहन नहीं सुन पा रहे हैं, हम काउंसलर सिर्फ उनको सुनते हैं बिना जज करे। मेरे पास कई बच्चे आते हैं जो आकर कहते हैं कि सर मैंने ऐसा कर लिया, मैंने जाकर के मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फोर्स किया और मैंने जाकर के स्मोक कर ली, देन उसने स्मोक कर ली और वो आकर के मुझे बोलता है कि सर मैंने ऐसा कर लिया, तो मैं कहता हूँ अच्छा, तो मैं उसको ये बात बोलता हूँ कि कैसा लगा आपको, तो वो शॉक्ड हो जाता है कि सर मुझे डांट नहीं रहे हैं, मुझे जज नहीं कर रहे हैं कि आपने गलत किया, मैंने उसको बोला अच्छा आपको कैसा लगा, वो कहता है नहीं सर अच्छा तो नहीं लगा, तो मैंने कहा अच्छा, तो जब खुद ही तुम जवाब दे रहे कि तुम्हें अच्छा लगा फिर आपने क्यों किया, कि सर है ना वो मेरे फ्रेंड्स ने सबने मुझे बोला कि तू मर्द नहीं है क्या, तू लड़का नहीं है क्या, तू बड़ा हो चुका है, प्लीज इसको कर ले कर ले, तो वो उसको प्रवोक किया, तो एक प्रेशर ग्रुप आपको प्रवोक करेगा, और आपको ये चीज समझनी है कि आप अच्छा कर रहे हो। तो हम जो काउंसलर होते हैं हम कोई मैजिक नहीं करते, हम सिर्फ बच्चे की बात सुनते हैं, और सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी होगी, प्लीज डोंट जजमेंटल, कभी जजमेंटल हो ही नहीं, अपने बेटे को कभी जज ना करें कि उसने कोई गलती कर दी, प्लीज उसको कहें कि कोई बात नहीं बेटा नेक्स्ट टाइम मत करना। तो मैम ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चे को समझना, और सबसे बड़ी बात है बच्चा गलती करता है, आपने भी की है, पापा ने भी की है, दादा ने भी की होगी, उसके दादा ने भी की होगी, बट ये जो चीज है कि बच्चा जब कर लेता है, वो जो चीज आपने की और बच्चा कर लेगा तो बच्चे को डांट देंगे, बट जब आपने की थी तब आपको आपके पापा ने डांटा, तो आपको ये चीज समझनी होगी कि आपको डांटना नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, तब जाके हमारे जैसे काउंसलर है उनके पास इतनी जो आजकल भीड़ आती है, जो बच्चे परेशान होते हैं वो हमसे आके बात करते हैं, तो प्लीज अपने पेरेंट्स से मैं बात करना चाहूंगा कि प्लीज अपना थोड़ा सा खिड़की खोल के रखें, बच्चों को आने दे, अपनी बात रखने दे, तभी ये जो बुलिंग का मैम चल रहा है ये बुलिंग धीरे धीरे कम होगा और ये रुकेगा नहीं, बट हमें अपने बच्चों को स्ट्रांग करना पड़ेगा कि वो इस चीज से रुके।
1: जैसा आपने बोला स्ट्रांग करना पड़ेगा, तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि लोग बोलते हैं कि अरे अगर तुम इतने में घबरा जाओगे तो स्ट्रांग कैसे बनोगे, अगर हम बुली करेंगे, जैसे दोस्त ही बोल देते हैं कई बार कि इसीलिए तो चिढ़ा रहे तो थोड़ा स्ट्रांग बनेगा, इसमें क्या है, इतनी सी बात पे क्या रोना, इतनी सी बात पे क्या परेशान होना।
0: तो मैम देखिए, बहुत ये चीज को समझना होगा कि किसी को छोटी बात भी बुरी लग जाती है, और क्योंकि आपको नहीं पता आपके हिसाब से वो छोटी बात है, बट कोई बच्चा अगर बचपन से वो चीज सुनता हुआ रहा है उसके दिमाग में इतना, आप ये सोचोगे कि मेरा तो ये छोटा सा फुंसी हुई थी वो इतना सा है, मगर उस जिसके हुई है और जिसके बहुत सालों से है, उसको जब दबाओगे ना उसे पता चलेगा इसमें पस है, इसमें बहुत ही नासूर बन चुका है, ये दर्द होता है। वो तकलीफ किसे पता होगी जो उस तकलीफ को सह रहा है। हमारे लिए वो छोटी सी फुंसी है, मगर अगले के लिए, उस बच्चे के लिए वो कब से है और वो उस दर्द को रोज सह रहा है, हर घंटे हर पल वो उसको सहता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि वो उस चीज को समझना होता है कि यार अगले वाले को कितना इफेक्ट हो रहा है। तो प्लीज मैं, अब जो मैम ने कहा स्ट्रांग बनना होता है, तो इसके लिए कोई मैजिक नहीं हो सकता है, कोई मेरे पास छड़ी नहीं है कि मैं आपको आके कहूंगा कि गिली गिली अप्पा छू तो आपके यहाँ से बुलीनेस चली जाएगी, नहीं जाएगी। आपको अपने आप को स्ट्रांग करना होगा, और सबसे बड़ी बात है जो कर रहे हैं, अगर आप में से भी कोई इंसान कर रहा है प्लीज उसे स्टॉप करें। और आज के बाद मुझे लग रहा है मैम ये मधुबन ने जो ये आज मुहिम छेड़ी है कि हम बुलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, इस मैटर को, जो अनछुआ मैटर है, जो शायद लगता है कि ये अपने दोस्तों की बात है, आज हम इस दोस्तों की बात को आज FM पर लाकर बैठे हैं मधुबन के ऊपर, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आज ये कर भी रहे होंगे। इस एपिसोड के बाद मुझे इतना पता है कि अगर आज हम ये जो बात कर रहे हैं, अगर 1000 लोग सुन रहे होंगे, 1000 में से 10 लोगों ने भी सोच लिया कि आज से मैं किसी को बुलिंग नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से हमारा जो एपिसोड करना है ये कारगर साबित हो गया कि 10 बच्चों ने भी मन परिवर्तन अगर हमने कर लिया तो आज हमने जीत लिया कि मधुबन ने आज सबसे बड़ा है दिल जीते हैं कि लोगों के बुलिंग नेस बंद करवा दी।
1: क्या बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर छोटा सा भी अंतर आता है तो वो एक शुरुआत होती है,
0: yes, ma'am.
1: वो एक बड़ा स्टेप होता है। और एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, वैसे तो हमारे पास समय कम ही बचा है, आपके पास कोई सवाल है मोनिका?
4: हाँ जी, मैं साइबर बुलिंग के बारे में पूछना चाहती थी, पर वो एक बड़ा टॉपिक है। आप शॉर्ट में बता देंगे कि मैंने सुना है कि कोई वीडियो किसी की शूट कर देता है और फिर उसको धमकाता है कि अगर आपने ये चीज नहीं की तो आपकी वीडियो वायरल कर देंगे।
0: अच्छी, सही कहा आपने कि बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम कहीं और डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, आजकल दो जीवन में हम रहते हैं, एक वास्तविक जीवन में और एक वर्चुअल जीवन में, दोनों पे हमको रहना कंपलसरी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कई बड़ी बड़ी कंपनी से जो हायर करती है आपको और आपके फॉर्म में लिखती है कि अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स बताइए, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हमसे क्यों जानती है, वो वहां जाकर अपना हरी सर्च करती है इंस्टाग्राम फेसबुक और इन सबको, और वहां जाकर आपकी जो पोस्ट है उससे पता चलता है कि आपका नेचर और कैरेक्टर कैसा है, क्या आप फेमिनिज्म वाले हैं, क्या आप गर्ल्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप देश के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आप कम्युनिटी के हिसाब से कुछ सोचते हैं, आपका जो दर्पण है वो सोशल मीडिया है। इस चीज के बारे में आपने कहा कि कई बार बुलिंग करते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी कमेंट के ऊपर ये आया है कि आप बहुत बुरे लग रहे हो, ये क्या लग रही है, या फिर इस तरीके से कुछ गाली या अपशब्द आए हैं, ऑप्शन है डिलीट करो, रिपोर्ट करो। यूट्यूब में अगर आप चैनल बना रहे हैं, अगर उसके अंदर जा करके कोई करता है देन आप उसके रिपोर्ट कर दीजिए, देन वहां से ब्लॉक हो जाएगा। ऑप्शंस कई सारे हैं, तो आपको भी, आप देखिए अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो आपको ये चीज समझनी होगी कि ये बड़ी दुनिया है, अभी तो हम छोटी जगह रह रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे तो ये पूरा दुनिया आपका संसार है, कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है। प्लीज अपनी रिपोर्ट पे जाकर आप उसको ब्लॉक करिए, उसको हटाइए और इफेक्ट ना करिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जरूरी नहीं है हर चीज का जवाब देना, अगर आप उसके जैसा बन गए, उसने बोला कितनी बेकार लग रही है, आपने कहा तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, अगर आप उस लेवल पे आ गए देन आप खुद उसके बराबर हो गए, तो प्लीज उसको इग्नोर करिए और आप धीरे धीरे उसको ब्लॉक करते जाइए, अपने आप को बचाते जाएंगे इस तरह। और अगर आपको बहुत ज्यादा, आप जिस तरीके से रहे कि अगर आपने ये नहीं किया वो, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में अब साइबर लॉज बन चुके हैं, आप उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस सिर्फ आपके व्हाट्सएप मैसेज पे, इंस्टाग्राम आईडी के कमेंट्स पे उन्हें ट्रैक कर सकती है। मैम सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आजकल लोग ये सोचते हैं कि हमें ट्रैक नहीं कर सकता, बिकॉज जो आपको कमेंट कर रहा है जरूरी नहीं वो लड़का, अगर लड़की की आईडी है तो जरूरी नहीं वो लड़का है। कई बार लड़कियां लड़की की आईडी बनाती है, लड़कियां लड़के की आईडी बनाती है। कई बार कोई ऐसे आईडी बना देते हैं जो कोई होते ही नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है हमें ट्रैक नहीं कर सकते। मैं आप सबको बता दूं, आप सभी ट्रैक होते हैं, आप सबका रिकॉर्ड बनता है, आप सबका पता होता है कि आपके जो हिस्ट्री है वो आपने कहां पर कहां पर क्या क्या सर्च किया है। तो प्लीज आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है,
1: आपने डिलीट कर दिया तो नहीं दिखेगा,
0: नहीं दिखेगा, आपका सब कुछ स्टोर होता है। तो इसलिए आप ये चीज को ना सोचें कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो आप बच सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है तो आप जाकर के पुलिस में कंप्लेन करिए, उसके ऊपर जरूर एक्शन होगा, जहां पर भी होगा, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, उसके ऊपर एक्शन होगा।
1: और अगर कोई थ्रेट दे रहा है, धमकी दे रहा है, तो जरूर कंप्लेन करनी चाहिए,
0: जरूर कंप्लेन करनी चाहिए। और अपने सबसे बड़ी बात है अपने परिवार और अपने जो बेस्ट फ्रेंड है, जो भी आपके अगर परिवार के साथ नहीं रहते हैं बाहर के जगहों पर, तो अपने फ्रेंड्स या सबको जरूर बता के रखें, ताकि आपका माइंड सेट क्लियर हो। अभी मैम आपने सुना ही होगा कि एक मुंबई में भी LGBTQ का एक बच्चा था जिसको सिर्फ एक कमेंट के लिए उसको उसने सुसाइड कर लिया। तो मतलब आप सोचिए आपका एक कमेंट किसी के दिमाग पर कितना बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। तो मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि आप किसी के कमेंट से किसी पे इफेक्ट ना करें, तो क्योंकि लोग आपको जज नहीं कर सकते हैं। आपको आप अपने परिवार के सुपरस्टार हैं, आप अपने दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इस दुनिया के सबसे नायाब हैं। तो अगर आप ये चीज सोच के रखेंगे तो आपको दूसरों के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
1: बिल्कुल, और अगर पढ़ रहा है तो शेयर कीजिए प्लीज।
0: जी बिल्कुल, शेयर करने से ही बात बनेगी, क्योंकि जब तक ये कब होता है, जब हम अकेलेपन में हो जाते हैं, हम किससे शेयर करें। तो इसीलिए मैंने कहा पेरेंट्स और एक ऐसा दोस्त होना जरूरी है जिससे आप हर चीज शेयर करें जो आपकी मदद कर सके। तो प्लीज जो भी बुलिंगनेस के शिकार हो रहे हैं, अपने बड़ों से बात करिए, आपकी सोल्यूशन जरूर निकलेगा।
1: जी, हम एकदम अंतिम मोड़ पे पहुंच गए हैं शो के। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, जो बुली कर रहा है, जो बुली है, अगर वो कभी कभी उसको इतनी आदत पड़ चुकी है कि भाई नहीं होता कंट्रोल, निकल ही जाता है, उसको हेल्प चाहिए तो क्या करे? अगर उसको बंद करना है बट बंद नहीं हो रहा, तो क्या वो भी काउंसलर के पास जाए या वो क्या स्टेप्स?
0: मैम पहले तो एक बात बता दूं, वो बुलिंगनेस कोई करता क्यों है? क्योंकि वो ये सोचता है जो मेरे साथ हुआ है मैं दूसरे के साथ करूंगा। आप ये नहीं कह सकते कि वो गिल्टी है, बिकॉज वो ये सोचता है मेरे साथ तो इतने साल तक हुआ ना, अब मैं दूसरे के साथ वो करूंगा। तो इसके लिए उसका मेंटल स्टेट इस तरीके से हिला हुआ होता है, वो दिमाग से ऐसा होता है कि मुझे जो जो लोगों ने जैसा जैसा किया मैं उन सबको अब चिढ़ाऊंगा, मैं अब दूसरों को जाकर करूंगा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए मैम? मैं जो भी बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव है या जिस इस तरीके कर रहे हैं, आपने एक स्पंज बॉल देखी होगी, स्माइली वाली बॉल आती है
1: जी।
0: मैं घर पे कहूंगा कि उन जिन पे पेरेंट्स के बच्चों को लग रहा है कि वो बच्चा काफी ऐसा ओवर एक्टिव हो चुका है, हाइपर एक्टिव है, या फिर कुछ भी बोल देता है, बुलिंग करता रहता है या किसी को कुछ भी बोले, प्लीज वो स्माइली वाली बॉल उसके हाथ में दीजिए। जब भी उससे गुस्सा आ रहा है उस बॉल को 10 बार प्रेस करना है। जैसे ही उसको 10 टाइम्स वो प्रेस करेगा, उसके जो गुस्सा है, उसकी जो दिमाग है, वो वहां से डाइवर्ट होगा और उस बॉल की तरफ जाएगा उसको पुश करने में। 10 सेकंड्स के अंदर ही वो अपना गुस्सा और सब कुछ भूल जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है। कई बार आपने देखा होगा कि ये जो हम कपड़े सुखाने की पिंस होती हैं
1: जी,
0: मैं कह रहा हूँ उनका भी यूज करिए। अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा है तो आप उसे बोलिए कि ये पिंस को लगाओ, देन निकालो और पिंस का आप प्लेन बना दो। तो पिंस को जोड़ जोड़ जोड़ के जब प्लेन बनाएगा, गुस्से को शांत होगा, तो आपको उसकी जो एनर्जी है वो डाइवर्ट करनी पड़ेगी। तो जब एनर्जी डाइवर्ट होगी, मुश्किल है, बुलिंग जो कर रहा है अपनी आदत धीरे धीरे छूटेगी, मगर वो कंट्रोल करना सीख जाएगा
1: जी। और अगर उनको ज्यादा लगता है कि भाई वो परेशानी कर रहा है किसी को या खुद भी वो उससे परेशान है, तो काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हैं
0: जी। बिल्कुल मैम, काउंसलर की हेल्प लेंगे। अभी तो मैंने ये घर का उपाय बताया, ऐसे कई सारे ट्रिक्स होते हैं, हमारे पास कई सारे टेस्ट होते हैं, हम उनके साथ भी टेस्ट करते हैं। 3-4 सिटिंग लगती है, वो बच्चा आकर बैठता है, बात करता है, देन धीरे धीरे धीरे उसे पहले तो हम एक्सेप्ट करते हैं जैसा वो है, धीरे धीरे उसे चेंज करना होता है, क्योंकि कोई भी चीज जल्दी नहीं होती है, तो धीरे धीरे उसे चेंज करना होता है। देन काउंसलर आपकी जरूर मदद करेंगे अगर बहुत ज्यादा, मगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कई सिचुएशन में काउंसलर की जरूरत भी नहीं होगी, अगर पेरेंट्स एक्टिव हो जाते हैं, तो पेरेंट्स अगर उसको एक्टिव होकर उसे बहुत अच्छे से संभाल लें तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स भी कर पाएंगे, नहीं तो एंड आपका हथियार जो है वो काउंसलर है, काउंसलर जरूर उसे चेंज कर पाएगा
1: जी। जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स भी कर सकते हैं, और अगर बच्चे अपने आसपास ही बुलिंग होते हुए देखते हैं, मान लीजिए कोई फादर है वो भी मम्मी को अलग अलग चीजों से बुला रहे हैं या कुछ और अपशब्द बोल रहे हैं, तो शायद वो बड़ी आम बात हो जाती है उनके लिए। क्योंकि हम जब जैसे गाँव में स्कूल में जाते हैं और तो टीचर्स बताते हैं कि भाई अभी वो बच्चा घर में ही गाली सुन रहा है, घर में ही वो देख रहा है कि उसके पिताजी अपने माँ को क्या बोल रहे हैं तो वो ही बात वो स्कूल में करता है दूसरे बच्चों के साथ, फिर दूसरे बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि देखो भाई ये तो ऐसे बोलता है, पर उस बच्चे को समझ नहीं है वो शब्द क्या है या वो बात क्या है। तो कहीं ना कहीं माता पिता का बहुत बहुत बड़ा योगदान है।
0: मैं यही कहता हूँ, मैं हर जगह पे कहीं पे वर्कशॉप लेने जाता हूँ या अपनी काउंसलिंग का सेशन लेने जाता हूँ, मैं सबसे पहले कहता हूँ आपके बच्चों में कोई कमी नहीं है, कमी आप लोगों में। आप अपने आप में सुधार कर लेंगे तो बच्चों में ऑटोमेटिक सुधार आएगा। तो पेरेंट्स कई बार जाके कहते हैं नहीं नहीं सर

0: तो हमने तो कभी हमारे बचपन में किया नहीं। आपका जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। आपको रोकने के लिए आपके दादा दादी थे, वो आकर आपको समझाते थे। वो आपकी बात, मम्मी पापा बिजी थे आपके भी उस वक्त, वो भी फ्री नहीं थे, बट वहाँ दादा दादी थे जो आपको संभाल लेते थे। वो कह देते क्या क्या हो गया, क्यों झगड़ा करके आया, नहीं गलत है, सॉरी बोलो, नहीं चल उसके साथ चल के खेल। तो ये कौन बोलता था, ये दो तीन शब्द हमारे दादा दादी। आजकल हम न्यूक्लियर फैमिली वाले लोग आ गए, अब हमें समझाए कौन, रोके कौन। इस वजह से मुझे लगता है कि पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा होता है,
1: बहुत बड़ा। तो चलिए फिलहाल हम इस एपिसोड को तो यहीं पे हमें समाप्त करना होगा, क्योंकि समय की सीमा में यहीं तक इजाजत दी।
0: बट मैम मन तो नहीं कर रहा है समाप्त करें, मुझे लग रहा है और बातें करें, क्योंकि ये जो सेशन है ये बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सेशन नहीं है, ये मन परिवर्तन करने का, और हम किसी ना किसी की मदद कर रहे हैं, तो इसलिए ये सेशन ऐसा ही आगे हम चलाएंगे। आज तो वक्त कम है, क्योंकि वक्त का भी हमें देखना होगा
1: जी। तो दोस्तों फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो मधुबन के नंबर 9414151415 पर। और सर आपका बहुत बहुत स्पेशल धन्यवाद कि आपने इतने सारे बच्चों के सवालों के जवाब दिए, और वो सवाल मुझे लगता है हर किसी के मन के हैं, पर इन बच्चों ने यहाँ आके रखे माइक पे, तो आपको बहुत धन्यवाद।
0: मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा रेडियो मधुबन का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आकर के बच्चों के मन के सवाल, और जो हमारे श्रोता हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल थे जो वो बोल नहीं पा रहे थे, वो सवाल का हमने जवाब दिया।
1: और थैंक यू मोनिका, थैंक यू बच्चों। फिलहाल लेते हैं इजाजत, मुलाकात होगी युवा मंच के अगले कार्यक्रम में मंडे टू फ्राइडे शाम 5 बजे। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
3: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है, इसमें रेलवे की सहायता करें।
2: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन इस खूबसूरत गीत के साथ मैं मोना आप दोस्तों के बीच आ चुकी हूँ। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत गुरुवार की शाम बिताने आ गई हूँ कुछ कहानियां, बेहतर गीत और कविता के साथ साथ अमेजिंग जानकारी भी जरूर लेकर आऊंगी और सवाल आप दोस्तों के बीच जरूर रखूंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।

0: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
1: की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
0: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो आवाज

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए
2: वेलकम बैक। दोस्तों, अमेजिंग जानकारी के साथ आप दोस्तों को जोड़ लिया है। अभी हमारा जो आकाश है वो कुछ कुछ काला और कुछ ग्रेश कलर का है, लेकिन लाल, पीला, नारंगी आसमान भी होता है। क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? तो चलिए दोस्तों, आज इसके विषय पर कुछ जानकारियां जरूर देते हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं उड़ान के साथ अमेजिंग जानकारी। कई दिनों से राजस्थान में समय समय पर आसमान लाल नजर आने लगे, वहीं बाड़मेर के आसमान पीले, ऐसे ही कई आसमान ग्रीस के कैट आइलैंड में आसमान नारंगी, नीले से नारंगी हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? ये कारण है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तूफान, विजिबिलिटी जीरो हो जाना, साथ ही साथ घना बादल मंडराना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके साथ साथ शुष्क और मरुस्थली इलाकों में मानसून के गरज के साथ ये सब कुछ दिखाई ज़रूर देता है। ऐसा क्यों हुआ? आखिर ये जो कलर, अलग अलग कलर्स हैं, पीले रंग का, नीले रंग का, नारंगी रंग का आसमान क्यों बना? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि रेत और धूल के तूफान के कारण ऐसा आमतौर पर होता है। बहुत सारे सूखे और रेतीले इलाकों में जहाँ ज़मीन और पेड़ कम होते हैं, जब तेज़ हवाएं रेत और मिट्टी के बारीक कणों को उड़ाकर अपने साथ ले जाती हैं, तब ये तूफान रेत और धूल मिलकर एक अजीब सा रंग पैदा करते हैं। असल में तूफान खुद अपना आसमान का रंग बदलता नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी बदलती है। जब सूरज की रोशनी हवा में उड़ रहे धूल के कणों से टकराती है, तो वह अलग अलग तरीके से बिखरती है। अगर धूल में लोहे जैसे खनिज ज़्यादा हों, तो आसमान लाल या नारंगी दिखता है। वहीं धूल कम हो या कण अलग हो, तो पीले रंग का दिखता है। इसकी वजह से एक ही तूफान में कहीं पर लाल, कहीं पर नारंगी दिखाई जरूर देता है। और आपको ये सारे दृश्य हमें हमारे राजस्थान में ही देखने को मिल जाता है।

जी हाँ, भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर हर रंग मौजूद है। रेगिस्तान है तो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, पठार है तो वहीं पर घने जंगल भी मौजूद हैं, गहरी खाइयां भी मौजूद हैं, तो नर्मदा नदी ऐसे जो रिफ्ट वैली उसका भी निर्माण करती है। वहीं पर दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र भी इस भारत देश में मौजूद है। बर्फ़ से घनी जो वादियां हैं वो भी देखने को मिलती है, तो समुद्र के किनारे सुंदर बीच भी इसी भारत देश में ही है। तो इस देश के अलावा कौन से देश में और जाओगे? इस भारत देश की महानता को ज़रूर पहचानो, तो प्रभु को धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। तो चलिए आगे बढ़ते खूबसूरत गीत आप तक पहुंचाते, क्योंकि आप जुड़े हैं उड़ान के साथ। पर उससे पहले आज का सवाल, पियानो की कुंजी या कीज आमतौर पे किस दो रंगों में होती है? पियानो की कुंजी या फिर जिसे कहते हैं कीज, वो आमतौर पे किस दो रंगों की होती है? काला और सफ़ेद, या फिर बी पीला और लाल, या फिर सी नीला और हरा। सही जवाब जरूर देना, प्रभु को धन्यवाद करना। अगला गीत जरूर सुन लीजिए, क्योंकि आप जुड़े हो उड़ान के साथ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की कविता आप तक पहुंचाते हैं। जहां पर बात हो रही थी राजस्थान की भूमि की और वहां पर लाल पीले नारंगी रंग के आसमान की, तो कविता भी कुछ उसी भूमि से जुड़ी है। रेत की ये टीले और सुनहरी धूप है, बड़ा ही निराला राजस्थान का यह स्वरूप है।
1: जन्मे यहाँ सूरमे और बांके वीर महान, इसी माटी से है देश भर की आन बान और शान।
0: झूमर की है मस्ती और केसरिया बालम, पधारो मारो देश कहे हर एक आदम।
1: राणा प्रताप का यहाँ गूंजता है नाम, भामा शाह और चौहानों को शत शत प्रणाम।
0: पानी की एक बूंद का मोल है यहाँ जाना जाता, शौर्य और त्याग का दूसरा अफसाना भी तो गाया जाता।
1: गर्व है हमें इस मरुभूमि की माटी पर, जो बलिदान लिखती है हर एक घाटी पर।
0: जी हाँ दोस्तों, सौंधी सौंधी सुगंध आती है इस खूबसूरत माटी पर, गाथाएं भी है राणा चौहान और भाटी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल भी आप तक जरूर पहुंचाते हैं। पियानो की कुंजियां अर्थात कीज आम तौर पर किस दो रंगों की होती है? ए
1: काला और सफेद, ऑप्शन बी है लाल और पीला, ऑप्शन सी है नीला और हरा।
0: सही जवाब झटपट देना 9414151415 पर देना। दोस्तों भी हाल ही हाल जबरदस्त फीफा वर्ल्ड कप फिनिश हुआ है और एक गीत तो बनता ही है उससे जुड़ा, सुना देते हैं आपको वर्ल्ड कप का गीत।

0: वेल दोस्तों, पुनः आज का सवाल एक बार और।
1: पियानो की कुंजिया यानी उसकी कीज आमतौर पर किन दो रंगों की होती है? ऑप्शन है ए काला और सफेद, ऑप्शन बी है लाल और पीला, ऑप्शन सी है नीला और हरा।
0: तो चलिए एक कविता इसी से जुड़ी आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।

0: एक छोटे से गांव में महेश अपने परिवार के साथ रहता था, जहां उसका बेटा अनुज और पत्नी माला रहती थी। एक सुबह महेश खेत पर जा रहा होता है कि तभी माला कहती है, अरे आप सुबह सुबह खेत पर जा रहे हैं? आपसे कहा था ना कि हमारे घर की छत टूट गई है, छत को बनवा दीजिए। लेकिन फिर भी आप सुबह सुबह ही खेतों के लिए जा रहे हैं, अगर मौसम बिगड़ गया तो हमें बहुत परेशानी हो जाएगी।
1: हाँ कहा तो था, लेकिन खेत में नहीं जाऊंगा तो आज का खाना कैसे होगा? तुम्हें तो पता ही है मैं दूसरों के खेत में काम करता हूँ, वहाँ पर हर रोज जाना पड़ता है।
0: छत का क्या होगा? टूटी हुई छत के नीचे हम कैसे रहेंगे? आप खेतों पर देरी से भी जा सकते हैं, सबसे पहले आपको छत ठीक करवानी चाहिए।
1: अभी तो पैसे भी नहीं है कि मैं किसी को बोल दूं छत ठीक करने को। एक काम करता हूँ, आज मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, शाम को सूखी हुई घास लगा दूंगा, जिससे थोड़ा तो बेहतर होगा।
0: बस यही करो आप, सूखी हुई घास ही लगाओ, ये नहीं कि थोड़े पैसे जमा करके छत ही ठीक करवा ले। मेरे तो करम ही फूट गए जो मेरी आप जैसे गरीब से शादी हो गई।
1: अब गरीब है हम लोग, गरीबी में चार पैसे भी हमारे लिए बहुत होते हैं।

0: महेश अपनी बीवी से मुंह बनाकर खेत में चला जाता है। वहाँ खेत का मालिक पहले से ही महेश का इंतजार कर रहा था।
1: अरे मालिक, आज आप खेत में सब कुशल मंगल तो है ना?
2: हाँ हाँ, सब कुशल मंगल है। ये खेत मेरा ही है और मुझे अपने खेत में आने के लिए तो किसी से पूछना नहीं पड़ता ना।
1: अरे मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सब कुछ तो आपका ही है, आपको किसी से क्यों पूछना? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, आप बेकार में मेरी बात का बुरा मत मानिए।
2: मैं यहाँ ये कहने आया था कि अब से तुम्हें जो दिन की खेत की दिहाड़ी मिलती थी उसमें से मैं 100 रुपए कम कर रहा हूँ।
1: ये आप क्या कह रहे हो मालिक, दिन के वैसे भी 300 रुपए मिलते हैं, अगर आप उसमें से भी 100 रुपए कम कर दोगे तो बचेगा ही क्या? थोड़ा तो मेरे बारे में भी सोचिए ना।
2: अरे मेरे पास किसान की कमी नहीं है, अगर तुमसे 200 रुपए में खेती नहीं हो रही है तो साफ साफ बता दो, मैं किसी और किसान को यहाँ रख लूंगा।
1: नहीं नहीं मालिक, आप किसी और को मत रखिए, मैं ही यहाँ खेती कर लूंगा। मैं गरीब हूँ और आपके खेतों में खेती करके ही मेरा गुजारा चलता है, अगर आप किसी और को रख लेंगे तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मैं आपको कोई गलती का मौका नहीं दूंगा, आप मुझसे मेरा काम मत लीजिए।
0: महेश बेचारा जो परिवार के लिए ही सब कर रहा था, उस पर और भी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। महेश अब परेशान रहने लगा था।
1: अब मैं क्या करूं? पैसे भी नहीं है, अनुज की पढ़ाई का भी खर्चा देखना है, किसानी से भी कुछ नहीं मिल रहा है। अगर घर में सबको बताऊंगा तो सब परेशान हो जाएंगे, अनुज भी मना कर देगा पढ़ने लिखने से।
0: कई दिन निकल रहे थे और अब परिवार के बारे में सोच सोच कर महेश की तबीयत खराब रहने लगी थी। उसे जब देखो अपने परिवार की चिंता सताने लगती कि वो अपने परिवार को कैसे संभालेगा।
1: बाबा को क्या हो रहा है? आजकल बाबा ठीक से किसी से बात भी नहीं करते हैं, सबके साथ खाना भी नहीं खाते। बाबा को जरूर कुछ चिंता सता रही है, मुझे बाबा की चिंता को कम करना ही पड़ेगा।
0: अनुज भी अब अपने पिता के ऊपर नजर रखने लगा था। एक दिन जब वो खेत में अपने पिता को पहले से ज्यादा काम करते देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं। और उसने ये सब देखकर अपने आप से कहा,
1: ये क्या, पहले तो बाबा शाम को बस 6 बजे तक ही काम करते थे, लेकिन अब तो 8 बज गए हैं, लाइट लगाकर भी खेती कर रहे हैं और घर पर अब पैसे तो पहले की तरह ही दे रहे हैं, ये सब क्या है?
0: अनुज को कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए वो अब और किसानों से बात करने लगता है ताकि वो जान सके कि उसके पिता इतनी चिंता में अक्सर क्यों रहते हैं।
1: अरे हरिया काका, आप भी तो मनोहर काका के खेत में दिहाड़ी पर काम करते हो ना?
3: हाँ अनुज बेटा, पर क्या हुआ, तुम ऐसे अचानक से क्यों पूछ रहे हो?
1: वो दरअसल मैं देख रहा हूँ, आजकल जो भी मनोहर काका के खेतों में काम कर रहा है वो पहले से ज्यादा काम कर रहा है, कुछ बात हुई है क्या?
3: बेटा बात क्या होनी है, खेती उस मनोहर का है, उसने दिहाड़ी के पैसे घटा दिए हैं। मरता क्या ना करता, जब पैसे कम हो जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा काम करके पहले जितने पैसे तो बनाने ही पड़ेंगे ना।
1: ये तो गलत है ना, आप सबने कुछ बोला नहीं क्या उन्हें? वो आखिर किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं?
3: किसकी इतनी हिम्मत, अरे इस गांव में सारे खेत मनोहर के ही तो हैं, और अब पेट को पालने के लिए शरीर को मार तो खानी ही पड़ेगी ना।
1: ठीक है हरिया काका, ये सब आपने मुझे बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अनुज को सब समझ में आ जाता है और वो चुपचाप घर आ जाता है।
1: मेरा शक सही था, बाबा अक्सर इसलिए ही इतने परेशान रहते हैं क्योंकि मनोहर काका ने पैसे कम कर दिए हैं। लेकिन अब मनोहर काका का बहुत हो गया, खेत से उनका भी घर चलता है और हमारा भी। लेकिन किसानों के साथ उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है, अब उनको सबक तो जरूर मिलेगा।
0: अनुज काफी चतुर था, इसीलिए अब वो अपनी चतुराई का ही इस्तेमाल करता है और अब सारे किसानों को एक साथ बुलाता है और सब लोगों को प्यार से समझाते हुए कहता है,
1: देखिए आप सब किसान एक ही समस्या से जूझ रहे हो, इसलिए मरहम भी अब आप सभी एक दूसरे का भी बन सकते हो।
3: ये क्या है अनुज बेटा, तुमने यहाँ हम सबको क्यों बुलाया है और ये क्या बात कर रहे हो? समस्या, मरहम, हम सब कुछ समझ नहीं पा रहे।
1: बाबा मुझे पता है, मनोहर काका ने दिन की दिहाड़ी के 100 रुपए घटा दिए हैं, लेकिन अब आप सब इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा अकल से भी काम लो।
3: वो कैसे अनुज बेटा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?
1: देखिए हमारे गांव से बाहर और भी जमीन है, आप सब वहां भी किसानी कर सकते हो। और मेरी मानो तो अब आप सब खेत में जाओ ही मत, क्योंकि मनोहर काका के खेत को भी आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी आप सबको खेत की।
4: अनुज की बातों में वजन तो है, ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर हम इसकी बात मानेंगे तो हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएगी।
1: और ये वजन आप सबकी बातों में भी होगा जब आप सब मनोहर काका को उनकी भाषा में ही जवाब दोगे। जब मनोहर काका को पता चलेगा कि उनका एक भी किसान काम नहीं कर रहा, सबको दूसरा काम मिल गया है, तो आप सबकी इज्जत करेंगे।
5: मैं तो अनुज की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ,
3: हमें यही करना चाहिए अब।
0: सभी लोग अनुज की बात मान जाते हैं और अब कोई भी अगले दिन से खेत में नहीं जाता।
2: ये क्या है, अचानक से सारे किसान कहाँ मर गए हैं? कोई भी खेत में नहीं आया। कोई बात नहीं, एक दो दिन में जब पैसे की जरूरत लगेगी तो सब खुद ही भाग आएंगे।
0: देखते ही देखते एक हफ्ता निकल जाता है और अब भी कोई खेत में नहीं आ रहा था। ये सब कुछ देखकर मनोहर बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारे किसानों को आखिर हो क्या गया है।
2: अब बस बहुत हो गया, एक हफ्ता निकल गया है और किसान खेत में आ ही नहीं रहे। वो सब भूल गए क्या कि मेरे खेतों में फसल काटने का समय आ रहा है।
0: मनोहर अब किसानों के घर जाने लगा था।
2: अरे हरिया, एक हफ्ता हो गया है, अब तक खेत क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है ना, मेरे पास किसान की कमी नहीं है।
3: ओहो, किसान की कमी नहीं है तो एक काम करिए, आप उन किसान को ही बुला लीजिए, क्योंकि मुझे तो दूसरा काम मिल गया है।
2: दूसरा काम? अरे मेरे खेत का क्या होगा?
3: आपके खेत के लिए वो बहुत किसान है ना, जिनकी कमी नहीं है आपके पास, उनमें से ही किसी को पकड़ लेना।
0: एक के बाद एक मनोहर हर किसान के घर जाता है और खाली हाथ ही लौटता है।
2: कोई भी किसान आने को तैयार ही नहीं है, ऐसे तो मेरे सारे खेत बंजर हो जाएंगे, अब मैं क्या करूं?
0: मनोहर उदास बैठा होता है, तभी अनुज वहाँ सब किसानों के साथ आता है।
1: क्या वो मनोहर काका, जब खुद पर बीती तो माथे पर लकीरें आ गई।
2: तुम सब यहाँ? मुझे माफ कर दो किसान भाइयों, और ऐसा मत करो, अगर आप सब मेरे खेतों में काम नहीं करोगे तो मेरा क्या होगा?
1: और आपने जो इनके साथ पैसे घटा कर किया है उसका क्या?
2: मैं अपनी गलती सुधार लूंगा, सबको उनकी मेहनत का पैसा मिलेगा।
4: गरीब किसान का चतुर बेटा अनुज, जिसने हम किसानों के लिए मनोहर जी को अच्छा सबक सिखाया।
6: वेल, किसी का भी नुकसान करना उचित नहीं है और सभी के साथ मिलजुल कर एकजुट होकर काम करने में ही भलाई है। सवाल है, पियानो की कुंजी या कीज जिसे कहते हैं आमतौर पर किस दो रंग के होते हैं?
7: ऑप्शन है ए काला और सफेद, ऑप्शन बी है लाल और पीला, ऑप्शन सी है नीला और हरा।
6: सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर देना, क्योंकि आप सुन रहे हो
7: उड़ान,
6: सुनते रहो
7: मुस्कुराते रहो।
8: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
9: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
8: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
9: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: मेरे वतन ए वतन मेरे वतन। पियानो की कुंजी आमतौर पर किस दो रंगों की होती है? ए
1: काला और सफेद, ऑप्शन बी है लाल और पीला, सी है नीला और हरा।
0: वेल, पियानो के आधार पर बहुत सारे लोग संगीत सीखते हैं और संगीत को देश दुनिया में जरूर पहुंचाते हैं। तो चलिए, आज के सवाल का जवाब देने का भी वक्त आ चुका है।
1: आंसर है ऑप्शन ए काला और सफेद।
0: भाई लाल और पीला क्यों नहीं?
1: क्योंकि पियानो की कीज काले और सफेद रंग की होती है।
0: अच्छा, तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे रूहानी ने आप सभी को। और जो कविता है वो भी जरा सुनाई दो। सफेद और काली चाबियां, इन पर चलती उंगलियां, मीठी मीठी धुन निकाले, सबके मन को यह मोह ले।
1: सूरज सी इसकी चमक है, संगीत की यह महक है, जब भी इसके स्वर सजते, सारे गम दूर ये करते।
0: जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलना का वादा है ठीक शाम
1: 6 बजे।
0: तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे
1: गुड बाय।
0: सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं सभी वर्ग से मिलते हैं, क्योंकि सरकार का जो मंच है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देती है, जिस मंच का माध्यम से हम अपना हुनर को हमारा टैलेंट को प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सरकार का आशा है हमारा बच्चे आगे बढ़े और विद्यार्थी विकास में ईश्वरीय विद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से आज प्रस्तुतिकरण होगा। क्योंकि आज खासकर हम आए हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हीरापुरा, जो कि आबू रोड का पास ही, जो अंबाजी रोड जाते हैं उसमें हीरापुरा मेन रोड का सामने ही साइड में ही इनका स्कूल है। तो सभी बच्चे अपना बारी बारी प्रस्तुतिकरण देंगे। हमें खुशी है जब भी आते हैं एक इशारा से अचानक में आते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं, तब भी बच्चे आगे बढ़ चढ़ हिस्सा लेते। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमें सभी स्टाफ को भी धन्यवाद देते हैं और हमारा HM मैम को भी धन्यवाद देते हैं। मैम बच्चों को वार्म अप करा देते हैं और मैम अपना परिचय देंगे, क्योंकि संस्था का संस्था प्रधान है, प्रभारी और कप्तान जैसे सभी बच्चों को और स्टाफ को कोऑपरेट करते हैं, एकजुट बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो मैम अपना परिचय देंगे, मुझे खुशी लगे उनका व्यवहार में बच्चों को भी ऐसे आप समान बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे मैम बने तो बच्चों को भी हम टीचर बनाने के लिए कोशिश करते, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो अलग बात है, लेकिन उनका पहला प्रयास जो बच्चे भी हमारा जैसे बने हम जींस को उठाने के लिए। मैम आपका परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम हेमलता है और मैं राजकीय उच्च प्राथमिक हीरापुरा में संस्था प्रधान हूँ। आज हमारे बीच में पवित्र भाई रेडियो मधुबन से पधारे हैं, वो आपको आत्मा के बारे में और मैं कौन हूँ इसके बारे में जानकारी देने आए हैं। आप ध्यान से सुने उनको। धन्यवाद
0: मैडम। ध्यान तो सुन लिए आत्मा के बारे में, अभी बच्चों को और क्या उमंग उत्साह दिलाना चाहते हैं?
1: मेरी यही इच्छा है कि तुम लोग जो हम है ना वैसे बनो। हाँ। बस यही मेरी इच्छा है, मेरी दिली इच्छा है कि जैसे हम है ना वैसे तुम बनो। मैं तुमको ये बनाना चाहती हूँ। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रयास। और प्रयास कैसे होगा? स्वयं से, स्वयं प्रयास करोगे। कोई कुछ कहेगा नहीं तुमको कि तुमको, तुम्हारे माता पिता नहीं कहेंगे कि तुमको क्या बनना है। वो स्वयं को होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है आगे जाके, ठीक है?
0: मैम आपके छोटे बच्चे का समय में क्या मेहनत की है जो आज मैडम बन गए? ये बच्चे भी मैडम बनना चाहेंगे, तो आप पढ़ाई के समय में इतना उम्र में 8वीं क्लास का याद तो होगा, तो कितना मेहनत करते थे उस समय? देखिए मैम कैसे प्रैक्टिस करके आज मैडम बने। सुनो ध्यान से, आप भी बनना है आपको।
1: जैसे तुम एक गांव में रहते हो ना वैसे मैं भी गांव में पली बड़ी हूँ। मेरा जन्म भी रोहिड़ा गांव में हुआ था जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। और मैं, मेरे माता पिता के हम 6 संतान थे, उसमें हम 3 भाई और 3 बहने और हम सब पढ़े लिखे। और आज हमारे घर में 9 टीचर है।
0: क्या बात, ताली बजाओ भाई जोर से मैडम के लिए।
1: और वो सब ऊंची ऊंची पोस्ट पे है, कोई कॉलेज लेक्चरर है तो कोई प्रिंसिपल है, कोई फर्स्ट ग्रेड है। ऐसे हमारे घर में सारे 9 के 9 पूरे टीचर है। वो कैसे बने? वो हमारे माता पिता की मेहनत से, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया हमारे को पढ़ाने में। मेरे पिताजी 7वीं पास थे और मेरी माता 5वीं पास थी, लेकिन मेरी मम्मी की ये इच्छा थी, क्योंकि मेरी मम्मी के जो भाई थे ना वो 5ों भाई टीचर थे, तो मेरी मम्मी की ये इच्छा थी कि मेरे बच्चे सारे टीचर बने। तो मेरी मम्मी ने और पापा ने हमको बहुत मेहनत करके और पढ़ाया, तो आज हम इस मुकाम पर है। तो मैं, मेरी भी यही इच्छा है कि तुम लोग भी यही बनो।
0: इच्छा शक्ति है ना, इच्छा शक्ति जब होगा तो जरूर कामयाब होंगे और ठान लेंगे जो मैं बनूंगी बा बनूंगा तो जरूर बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन लेकिन क्या है, खुद को संकल्प लेना है। पढ़ाई में, विद्यार्थी जीवन में जो पढ़ाई होता है स्कूल, वो तो पढ़ाई करना ही है, इसका साथ साथ घर में जो जाते होमवर्क रेगुलर करना है और 2-3 घंटा पूरा एक्यूरेट करेंगे ना तो 5 साल मेहनत करेंगे ना, अगला 90 साल कोई सोचना नहीं पड़ेगा, पैसा ही पैसा आएगा और सम्मान मिलेगा और 10 परिवार को सजा देंगे, मात्र 5 साल 10 साल।
1: तुम्हारी बुद्धियां बहुत तेज है।
0: हाँ।
1: लेकिन तुम उसका क्या नहीं कर रहे हो?
0: यूज करो।
1: यूज नहीं कर रहे हो ना, बुद्धि सबके समान है, ऐसा नहीं है कि इसके ज्यादा है या इसके कम है, ऐसे नहीं है, सबकी बुद्धि समान है। लेकिन कोई बुद्धि का यूज कहाँ करता है, कोई ज्यादा खेलने में करता है तो कोई ज्यादा पढ़ने में करता है, जो पढ़ने में करता है वो आगे बढ़ जाता है और जो खेलने में करता है वो वहीं रह जाता है। फिर वो क्या करता है? मजदूरी करता है। क्या करता है?
2: मजदूरी।
1: हाँ। और जो पढ़ता है और अपनी बुद्धि का यूज करता है वो कहाँ पहुंचता है?
2: जो भी चाहे वो कर सकता, आगे
1: जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो बन सकता है। तो तुमको क्या करना है, पढ़ लिख कर
2: मेहनत करके आगे बढ़ना है,
1: आगे बढ़ना है। तो मेहनत करोगे, करोगे?
2: हाँ जी,
3: हाँ जी,
2: हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बोलो। हम ही किए थे, हम ही
3: करेंगे,
2: जरूर करेंगे, खुद का, हमारा परिवार का, हमारा विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, ये हमारा संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, पक्का संकल्प है, पक्का। वेरी गुड, ऐसे होने, बहुत अच्छा। बच्चों के लिए मैं ताली बजा देता हूँ, वाह, हमारा बच्चा ऐसे होना चाहिए, है ना। लेकिन कल भूलना नहीं, ये स्कूल बाहर जाएंगे पूरा याद भूल जाएंगे तो हमारा गया सब पानी ही मिल जाएगा। इसलिए याद रखना, मैं कौन और मुझे क्या करना चाहिए, दो चीज, मैं कौन और मुझे क्या करना चाहिए। कोई क्या करे उसको नहीं देखना है, मैं क्या कर रहा हूँ वो देखना है। मैं अच्छा करूंगा, आप करूंगी तो मैं अच्छा बोलूंगा, वो खराब करके वो जाने, लेकिन हमें ठान लेना जे हम करके दिखाएंगे।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति हमारा छात्र उपस्थित है। सभी बच्चे रेडी? ओके डन, शुरू करते हैं। अपना नाम और कौन सा क्लास से, नाम बताइए।
1: किरण।
0: कौन सा क्लास और स्कूल का नाम पूरा बताना।
1: मैं क्लास 7वीं में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हीरापुरा सातपुर।
0: वेरी गुड। नेक्स्ट।
2: मेरा नाम प्रियंका है, मैं 7वीं में पढ़ती हूँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हीरापुरा सातपुर।
3: मेरा नाम दिव्या है, मैं 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हीरापुरा सातपुर।
4: मेरा नाम रिंकू है, मेरा विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हीरापुरा सातपुर।
5: मेरा नाम लक्षिता है, मैं 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हीरापुरा सातपुर।
0: वेरी गुड। सभी मिलकर एक प्रस्तुति सुनाएंगे और भी प्रार्थना में। चलो शुरू करें।

सुंदर प्रस्तुति। और जब स्कूल में जाते हैं, इसे हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में गीत गाते हैं, बच्चों का उमंग उत्साह देखते हुए रेडियो मधुबन भी एक मंच आज दिए हैं, जिसका चलते बच्चे अपना भाव और भावना को प्रकट किए गीत भजन के माध्यम से। इस तरह कार्यक्रम जब होता है तो बच्चे बढ़ चढ़ भाग लेते हैं और उनका अंदर में जो भावना है, जो भाव है, दिल का बात रखते हैं। और जो मंच आज आवश्यकता था वो मंच बच्चों को मिला, क्योंकि आकाशवाणी में जब बच्चे आते हैं, जैसे ऑल इंडिया रेडियो होते हैं, तो पूरा आदिवासी बच्चे नहीं जा पाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मास कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आरजे सीखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट राइटर सीखना पड़ेगा। लेकिन आज हमारा बच्चे आरजे बन गए, रेडियो जॉकी बन गए, क्योंकि रेडियो में जो बोलते हैं उसको आरजे कहते हैं। तो सरकार को धन्यवाद देते हैं, सरकार इस तरह कम्युनिटी रेडियो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और आदिवासी जो लोकल कम्युनिटी को दिए हैं। कमर्शियल रेडियो बड़े बड़े शहर में होते हैं पैसा कमाने के लिए, कमर्शियल रेडियो एडवर्टाइज आता है, लेकिन ये कम्युनिटी रेडियो मीन्स आपका रेडियो, थेमर रेडियो, थेमर वास्ते आपका रेडियो आपके लिए काम करते, आपका आवाज आप बढ़ चढ़ हिस्सा लिए। तो रेडियो में जो बोलते हैं तो उसको आरजे कहते हैं। तो हमारा चार आरजे जैसे रिंकू और प्रियंका, दिव्या नाम है, कितना सुंदर, उसका माँ बाप को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि माँ बाप जब सुनते हैं इस तरह आकाशवाणी में बच्चों का आवाज, जब सुनेंगे उनका आवाज ही उनका पहचान होगा, अरे ये तो हमारा रिंकू का आवाज है, ये हमारा पिंकी का आवाज है, ये हमारा दक्षा का आवाज है, ये हमारा दिव्या का आवाज है, जब सुनेंगे तो नामांकन भी वृद्धि होगा, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाई का साथ साथ ऐसे आकाशवाणी में बच्चे जब आते हैं उनका आवाज जब सुनते हैं तो मैम आपका स्कूल का तो चार चांद लगेगा, बहुत भीड़ लगेगा आगे के लिए, क्योंकि बच्चे रेडियो में कार्यक्रम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक प्रस्तुति जो दिए सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। लेकिन बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। यह था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हीरापुरा जो कि सातपुर ग्राम पंचायत में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुनते हैं अगला प्रस्तुति और सेम ग्रुप वंस मोर करते करते और एक प्रस्तुति के लिए सभी बच्चे सुन रहे ध्यान से प्यार से बोलिए हाँ जी, दिल से बोलिए हाँ जी। और हमारा जो बहन सुना रहे उनके लिए एक हाथ का ताली ऐसे करो, एक हाथ का ताली ऐसे ऊपर टाटा करो सभी। देखो तुम्हारा लिए कितना खुशी, तुम हमारा होबनहार बच्चे, वेरी गुड। क्योंकि इतना बच्चे, सिर्फ 5 बच्चे ही सिलेक्टेड हुए, इनके पास विशेषता है गायन कला बोलने में। तो आप लोग भी डांस करते, कौन कौन डांस करते हैं? सब नाचते हैं। जब प्रोग्राम होता है कब? अगस्त 15 अभी आने वाला समय में खूब देखेंगे, लेकिन रेडियो प्रोग्राम है। तो लेते हैं अगला प्रस्तुति के लिए रिंकू एंड पार्टी, है ना दिव्या, शुरू करेंगे।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और खासकर ये सब सुन पा रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, मेरा गांव मेरा अंचल आप सब सुन पा रहे हैं। और इसमें बच्चों का जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना देखने को मिला, उनको पहला बार मिला मौका, फिर भी मौका का फायदा ले रहे हैं। चलिए सभी को धन्यवाद देते, तुम बताओ तुम्हारा नाम बता फिर से।
1: प्रियंका।
0: प्रियंका बढ़ाकर क्या बनेगी, तुमको चांस मिलेगा डॉक्टर इंजीनियर, क्या बनना चाहेंगे मैडम, क्या बनना चाहेंगे?
1: डॉक्टर।
0: डॉक्टर, वाह। डॉक्टर का काम क्या होता है प्रियंका, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर का काम क्या होता है? जैसे मैडम का काम पढ़ाना होता है, जैसे डॉक्टर का काम क्या होता है?
1: इंजेक्शन।
0: इंजेक्शन लगाना, वाह। अच्छा आदमी को इंजेक्शन नहीं लगा देना, मरीज को जो बीमारी, मरीज का इलाज करना होता है, बीमारी आदमी को ठीक कर देना, दुखी होकर आएंगे आपका पास, आपको खुशी खुशी में छोड़ देना, ज्ञान इंजेक्शन लग गया जी, है ना, ज्ञान इंजेक्शन, वो भी इंजेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम बताओ, देखिए तुम्हारा नाम बताओ।
2: मेरा नाम दिव्या है, मैं बड़ी होकर पुलिस बनूंगी।
0: पुलिस, देखो भाई याद रखना, हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे हैं, और हीरापुरा स्कूल को याद रखना, किसको पुलिस चाहिए और किसको डॉक्टर चाहिए, तो ये बच्चे आगे जाकर बड़े होकर डॉक्टर पुलिस बनेंगे, सही बनेंगे ना, तुम भी तो कुछ बनेंगे ना, क्या बनेंगे तुम लोग जो सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ बनेंगे। बहुत अच्छा। तो घर में कोई पुलिस है तुम्हारा परिवार में, फिर भी कैसे पुलिस को इच्छा हुई तुम पुलिस बनेंगे बोलकर, कांस्टेबल पुलिस IAS, प्रेरणा कहाँ से मिली?
2: टीचरों से।
0: टीचर से प्रेरणा मिलती है, वाह, कुछ तो बनना चाहिए। और सबसे अच्छा पोस्ट है, देश को रक्षा करना और भ्रष्टाचार को मिटाना है ना। पुलिस का काम क्या होता है? चोर को पकड़ना है, जो खराब काम करेंगे उसको दंड देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट नाम बताओ।
3: मेरा नाम रिंकू है, मैं भी पुलिस बनूंगी।
0: अरे वाह, दोनों पुलिस मिल गए, और पुलिस तो चोर तो भागेगा ही, और पुलिस का काम ही है रक्षा सुरक्षा,

0: का सुरक्षा, गांव का सुरक्षा, देश का सुरक्षा और विश्व का सुरक्षा, पहले खुद का सुरक्षा करना पड़ेगा, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे पुलिस नहीं बनते, कैसे बनेंगे? मेहनत क्या करेंगे? मेहनत कितना घंटा मेहनत करेंगे? रिंकू, पढ़ाई का साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं, खेलकूद दौड़ना भागना होता है?
1: हाँ।
0: और हाइट भी बढ़ाना है, नहीं तो छोटा हाइट लेंगे नहीं। तो हमारा मैम भी सुन रही, मैडम आप तो पुलिस का भी सोचा नहीं था, पुलिस बनने के लिए आप क्या सोचे थे?
1: मैं टीचर बनने का ही सोचा था मैंने।
0: क्या नाम आपका?
1: हर्षिता।
0: कहाँ से?
1: आबू रोड से।
0: आबू रोड से। और यहाँ पर आपका पोस्टिंग?
1: यहाँ पर।
0: क्या बात भैया, देखा ऐसे होना चाहिए। आबू रोड में पढ़ाई किए, कौन सा स्कूल में पढ़ाई किए थे?
1: सेंट जॉन स्कूल।
0: सेंट जॉन स्कूल में, प्राइवेट में स्कूल में पढ़ाई किए थे और आज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई दे रहे, ध्यान दे रहे। बच्चों को क्या एक टिप्स देंगे, एक बच्चों को क्या तैयार करना चाहिए?
1: बच्चों को सबसे पहले अच्छा इंसान बनने के लिए मैं कहूँगी।
0: अच्छा इंसान, सबसे नौकरी जरूरत नहीं, अच्छा इंसान होगा ना, एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा नागरिक होना चाहिए देश को। डिग्री नहीं चाहिए, नौकरी करेगा भ्रष्टाचार करेगा, लेकिन एक अच्छा इंसान होगा, जनहित में सब काम कर सकता है, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, एक मानव, अच्छा मानव होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते छोटा सा ब्रेक और एक प्रश्न सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और हमारा साथ रिंकू एंड टीम प्रियंका, रिंकू और दिव्या सभी उपस्थित है। वंस मोर वही ग्रुप हमारा चार चांद लगाएंगे, सबको खुशी लग रहा है। और बड़े कर कोई डॉक्टर, कोई पुलिस, कोई मैम बनेंगे, उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। और स्कूल में जो आते हैं पढ़ाई भी बड़े से करते हैं, है ना लक्षिता? अच्छा लक्षिता, तुम्हारा
1: किरण,
0: किरण आज तक किरण खेलाएगी हमारा किरण बहन। चलिए एक प्रस्तुति सुनेंगे, सुना किरण और लक्षिता शुरू।

0: क्या बात क्या बात, कितना सुंदर। और प्रार्थना में इस तरह प्रभु को याद में गाते हैं, और बच्चे सच्चे होते, सच्चे मन से अपना बात को रख रहे हैं। और दिव्या, तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है, दोस्त का नाम बताओ।
1: रिंकू।
0: रिंकू, अरे वाह, रिंकू के पास क्या विशेषता है, क्या गुण है जो आपको अच्छा लगता है? और देखने में तो सुंदर लग रहे हैं, फिर भी कौन सा विशेषता है रिंकू के पास?
1: वो पढ़ाई भी अच्छी करती है, गाना भी अच्छी गाता है।
0: वो दो कला है, गायन कला भी है और पढ़ाई का कला भी है, दो कला, 16 कला संपन्न बनेंगे देवी देवता जैसे। लेकिन रिंकू के पास ये विशेषता है। और रिंकू बढ़ेगा क्या बनेगी, पुलिस, ये भी पुलिस, इसलिए दोनों बोले हम पुलिस बनेंगे। दोस्त होते ऐसे सुदामा और श्री कृष्ण जैसे दोस्ती है ना, गरीब अमीर का बात नहीं, काला गोरा का बात नहीं, लेकिन बुद्धि का खेल है, दिमाग का खेल है। उसका पास विशेषता है, पढ़ाई के में होशियार है ना। रिंकू कितने घंटा पढ़ाई करती तुम?
1: हाँ।
0: स्कूल में पढ़ाई होता है, इसका बाद घर में
1: भी पढ़ाई करते हैं।
0: कितने घंटा?
1: 2 घंटे।
0: बस 2 घंटे में चलेगा ना, पुलिस के लिए और 2 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे।
1: हाँ।
0: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अंतिम प्रस्तुति की ओर हम जाएंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, धन्यवाद।

एक का बाद एक प्रस्तुतियां मिल रहा है, रिंकू, प्रियंका, दिव्या और लक्षिता सब लोग मिलकर गा रहे, तो उनका नाम जो सुनेंगे प्रियंका और लक्षिता, उनका मम्मी पापा सुनेंगे तो कितना खुशी लगेगा, रिंकू को भी उनका माँ बाप सुनेंगे, हमारा रिंकू आज आकाशवाणी में रेडियो में गा रहे हैं तो कितना खुशी लगेगा, दिव्या को भी खुशी लगेगा, सभी को खुशी लगेगा ना, प्रियंका को भी खुशी लगेगा और किरण को भी, कौन भूल पाएगा किरण को, किरण, दिव्या, रिंकू, लक्षिता और प्रियंका और दिव्या। ओके शुरू करेंगे।

0: क्या बात क्या बात, इतना विश्वास ट्रस्ट होना चाहिए दाता का प्रति। दाता तो भाग्य विधाता है, सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो मांगेंगे दिल से तो उनको मिलता है। और प्रभु को याद करेंगे तो याद में हमें शक्ति, खुशी, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान मिलता है, जिसका आधार से हम अच्छे बन पाते हैं। और दाता को इतना शक्ति हमें देना दाता है, इतना मजबूत, इतना पावर मिल जाएगा तो क्या से क्या बन जाएंगे, है कि नहीं दिव्या? हमको शक्ति मिलेगा तो चुटकी में हम पुलिस बन जाएंगे, है कि नहीं? कोई भी पोस्ट क्या बनेगी, पुलिस है ना। तनख्वाह मिलेगा किसको देंगे?
1: माँ बाप को।
0: माँ बाप को, हाँ, कि माँ बाप हमारा भगवान तुल्य है। जब पहला तनख्वाह आएगा बाप और माँ को देंगे, क्योंकि पेरेंट्स को देंगे तो पेरेंट्स खुश होंगे, और अभी पेरेंट्स उनको दे रहे हैं, अभी माँ बाप दे रहे हैं, अब बड़े होकर क्या करेंगे, हम भी माँ बाप को
1: देंगे।
0: हाँ, और कुछ है? और वंस मोर, चलिए इसी कड़ी में और एक गीत सुनाएंगे, एकल, ओके?
1: जो

0: पर हिम्मत वाले उस पार गए, माना गहरा दियारा है पर हमने कब स्वीकारा है, हम दीपक है जलते रहते, हमसे पंग पंग उजियारा है, जो बीज रहा में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते, जो लगाता चलते रहते वो निश्चय मंजिल पाते हैं।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति, और अंतिम प्रस्तुति में चार चांद लगा दी वंस मोर कहते हुए, और दिव्या एंड पार्टी को बड़े कर सभी अच्छा अच्छा पोस्ट में जाएंगे, नाम रोशन करेंगे, और हमको आज समझ मिला है, ज्ञान मिला है, समझ मिला है, मिला ना दिव्या?
2: हाँ।
1: और आत्मा तो दिव्यता है, आत्मा में दिव्यता है, दिव्यता मतलब दैवी गुण, गुण में नम्रता, हर्षित मुक्तता, सरलता, पवित्रता, ऐसे होना

0: चाहिए, और दृढ़ता, नम्रता, दायक गुण है। और दिव्या महाराज इस कार्यक्रम को सजाए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नाम का साथ प्रियंका,
1: दिव्या, रिंकू, लक्षिता,
0: सबको धन्यवाद। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा धन्यवाद, आभार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ज्यादा, सर्दियों में सर्दी ज्यादा। कहा जाता है इसका कारण एटम बम के टेस्ट हैं। अभी चीन ने एटम बम बनाकर दूसरा टेस्ट किया। सूचना यह भी मिली है कि फ्रांस ने भी एटम बम बना लिया है। भारत का अटल फैसला है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे संसार के नष्ट होने का भय हो। आइटमी दौर में रूस और अमरीका सबसे आगे हैं।

0: again.
1: Hi, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: अभी बजे हैं रात के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीना इसी का नाम है कार्यक्रम में और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। पिछली कड़ी में हम बातचीत कर रहे थे सुधीर भाई जी से, जो वर्तमान समय में ब्रह्म कुमारी शांतिवन मुख्यालय परिसर में बिजली विभाग के इंचार्ज हैं और वो अपनी जीवन के उन चंद पलों को हमारे सामने खोल रहे थे और एक एक बात में हम उस ज्ञान की गहराई को समझ रहे हैं और उनके जीवन की जो यथार्थ अर्थ उन्होंने समझा है उसको हम भी समझने की और अनुभव करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे थे भाई जी के साथ अपनी समर्पित जीवन की निर्णय के बारे में, जहाँ पे उन्होंने ये निर्णय किया कि अभी मुझे अपने आप को समर्पित करना है और ये नौकरी वगैरह सब छोड़ करके चले जाना है। और उनको बुलावा भी आया था भगवान के घर से कि आपकी सेवा उनकी बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए, आगे क्या हुआ है उस समर्पित जीवन में और कैसे उन्होंने वो निर्णय, वो दृढ़ता को कायम रखा है और आगे कैसे बढ़े हैं और अभी तक की यात्रा कैसी रही, हम जानते हैं। सुधीर भाई जी, आपको फिर से एक बार स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हम जानते हैं, जहाँ पे आप बातचीत कर रहे थे कि आपने एक लेटर लिख करके दे दिया है आप उषा दीदी जी, जो आपकी सेंटर के निमित्त है, और उसके बाद क्या हुआ है?
1: फिर इस पीरियड में मेरे को इतना वैराग्य आया, ठीक है, कि मैंने लौकिक में आना जाना बंद कर दिया। बहुत वैराग्य था, ठीक है। और जो सर्विस में मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, ठीक है, था सर्विस में, तो वहां से भी जो सैलरी मिलता था, मैंने फिर दीदी के साथ एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया। तो मैं अपने खर्चे के लिए जो मेरा रनिंग अकाउंट वहाँ R&D सेंटर में था वो रहता था, और बाकी की सैलरी निकाल के जो जॉइंट अकाउंट था उसमें डाल देता था। जब मैंने समर्पणता का पत्र लिख करके दीदी को दिया था तो दीदी ने मुझे एक पाठशाला में रहने के लिए छोड़ दिया था।
0: अच्छा।
1: कि आप इस पाठशाला में रहो। इस तरीके से 3 साल तक ये ऐसा क्रम रहा कि सर्विस करते हुए भी मैंने घर में कैश के रूप में पैसा नहीं दिया। अगर घर वाले आए, ठीक है, उनकी सेवा में जो खर्च होना था किया। उसी बीच में मेरे ताऊ जी आए, उनकी आंखों का ऑपरेशन कराया, पिताजी आए, माताजी आए, सबका, ठीक है, जो मेरे से सहयोग बन पड़ता था सब कराया, ठीक है। लास्ट में मेरे फादर आए, ठीक है। तो उन दिनों फिर मधुबन से भी ताराचंद भाई साहब का दीदी के पास बार बार फोन जाता था कि अब सुधीर को फ्री करो, इसको यहाँ भेजो, मधुबन भेजो, अब इसको फ्री करो, ठीक है। तो फिर दीदी मेरे को बोली कि सुधीर, अब तो तुम्हारा बुलावा बार बार आ रहा है, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन दिनों मेरी सर्विस लगभग 5 साल होने वाली थी। फिर मैंने भाई साहब को बात किया कि अगर आप चाहते हो कि मेरे को ग्रेच्युटी का लाभ मिले, वो भी यज्ञ का ही होगा, ठीक है, तो मैं आगे और ये 3 महीने की सर्विस करूं। अगर आप कहते हो नहीं अभी रिजाइन करो, तो मैं अभी रिजाइन करके आता हूँ। तो बोले जब ऐसी बात है तो भले ही, और ठीक है, कर लो सर्विस, ठीक है। उसमें भी लास्ट के 1 मंथ का तो नोटिस ही होता है, ठीक है जी, लीव व्यू करके उसमें 15 दिन तो ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आखिर फिर मैंने रिजाइन किया। और जो घर वालों की बात आपने पूछी, छुट्टी दे दी, ठीक है, तो उसमें एक तो क्योंकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना मेरी तरफ से बंद हो गया था, तो उनके लिए तो मैं यहाँ रहूं या माउंट आबू में रहूं, उनको क्या फर्क पड़ना, परिवार की ऐसी स्थिति थी, ठीक है।
0: और वैसे भी कोई आपके ऊपर डिपेंडेंसी तो नहीं थी?
1: नहीं, डिपेंडेंसी नहीं थी, 2 बड़े भाई थे, संभालते थे सब, ठीक है जी, ऐसे मेरे ऊपर डिपेंडेंसी भी कुछ नहीं। हाँ, इतना है कि मैं अपना रोल प्ले करता था, सहयोग देता था सब बातों में। परिवार पर भी, माता पिता पर भी कोई इतनी डिपेंडेंसी किसी बात की नहीं रही थी, क्योंकि हम जो भाई बहने थे सब अपने पैरों लगभग खड़े हो गए थे। मेरी बहनों की 3 बहनें थी, उनकी शादियां हो चुकी थी। छोटा भाई था उस समय, वो ग्रेजुएशन कर रहा था, ठीक है, उसने भी देखा जब ये नौकरी छोड़ के जा रहे हैं तो मैं आगे पढ़ के क्या करूं, ठीक है। उसका भी एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। फिर बोला कि जब ये नौकरी लगी हुई छोड़ के जा रहे हैं तो मैं क्यों ज्वाइन करूं, मैं भी इसी मार्ग पे चलूंगा।
0: अच्छा,
1: ठीक है।
0: फिर वो भी आ गए आपके साथ?
1: हाँ जी हाँ, वो मेरठ में रहता है, ठीक है।
0: अच्छा।
1: और समर्पण में यहाँ मेरे मामा जी का लड़का है संजीव भाई, यात्रा भोजन में वो समर्पित मेरे साथ साथ, फिर वो भी पीछे पीछे आ गए हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके का हमारा ये परिवार से छुट्टी की बात है, ठीक है।
0: कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप नौकरी कर रहे हैं और ये सभी चीजें, शादी का उम्र है, शादी का या नहीं, और ये भी होता है कि परिवार में वंश बढ़ाने की बात होती है और ये सब कहाँ छोड़ के जा रहे हो, क्यों संन्यास ले रहे हो?
1: इसमें मेरा सिर्फ एक ही रिप्लाई सदा रहा, होता है, ठीक है जी, उम्र होती है तो आप जानते हैं होता है, रिश्तेदार भी कोशिश करते हैं, ठीक है, ननिहाल पक्ष भी पूरी कोशिश करता है, ठीक है जी। मेरा एक ही जवाब रहता था, मुझे अभी नहीं करनी है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, सिर्फ एक जवाब देता था कि मुझे अभी नहीं करनी, और अभी नहीं करनी है ऐसे करते करते, ठीक है, समय बढ़ता गया, मेरी ज्ञान में परिपक्वता बढ़ती गई, उन्होंने भी देखा ये तो वैरागी ही है। एक दो बार कोई लड़की वाले आए देखने के लिए, जब उन्होंने मेरे कमरे में चित्र टंगे देखे, बोला ये तो राजयोगी है, चुपचाप चले
0: सन्यासी
1: सन्यासी है, ठीक है। तो बात आगे बढ़ाने की फिर कोशिश भी नहीं की उन्होंने।
0: सो भाई साहब, जैसे आप 1992 से मधुबन में आ गए थे हेडक्वार्टर में और समर्पित रूप से जीवन जीना शुरू किया, तो आप अपने जीवन में क्या उन्नति या क्या सिद्धियां पाया है या प्रोग्रेस कैसे क्या देखते? क्योंकि आपने जैसे कहा कि जब 7 डेज कोर्स किया तो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को आपने बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखा अपने अंदर, तो इतनी लगभग 30-35 साल की आपकी जो जर्नी रही है इस मधुबन तपोभूमि में, तो अपने अंदर आप क्या प्रोग्रेस देखते हैं?
1: जब मैं यहाँ आया, ठीक है, तो लगभग 1-1.5 साल के बाद मुझे लगा कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है यहाँ। उसके पीछे फिर मैंने एक एनालिसिस किया कि यहाँ आने से पहले मैं क्या करता था और क्या नहीं करता था, वो मैंने लिखा, ठीक है, यहाँ आने से पहले मैं क्या करता था और क्या नहीं करता था, और यहाँ आने के बाद क्या करने लगा हूँ और क्या नहीं करता हूँ, एक कंपैरेटिव स्टडी किया, तो मेरे को समझ में आया, ठीक है ना, कि ये मेरी लाइफ में ऐड हो गया है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये मेरी लाइफ से निकल गया है जो जरूरी है, जो होना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या था कि जब यहाँ आए, ठीक है, तो जैसे सेंटर में बहनों का टच रहता है, हमारे पर ध्यान रहता है उनका, मुरली क्लास में आए कि नहीं आए, ठीक है, योग में कैसा चल रहा है, संगठित योग होता है तो

0: कर्मणा सेवा में,
1: कर्मणा सेवा में, जिसके कारण थोड़ा ज्ञान योग का जो
0: समय कम होता है,
1: समय कम मिलता था। बस सवेरे योग किया, मुरली सुनी, फिर नाश्ता करते फील्ड में, कब रात होगी, शाम का योग का समय भी चला जाएगा, 8 बज जाएंगे सेवा करते करते, ऐसा चलता था। तो अपने पर जो समय देना चाहिए था, ठीक, वो योग में समय नहीं जाता था। और आप तो समझते हैं कि अगर योग कम होगा तो अवस्था पर उसका असर आएगा ही है। फिर मैंने उस पर ध्यान दिया, जो कहा कि एनालिसिस किया, उस पर ध्यान दिया, फिर मैं कैसे भी करके सेवाओं से भी अपने आप को निकाल करके योग में समय निकालता था, जाके बैठता था संगठन में, योग में बैठता था, उससे फिर वो मेकअप हो गया। अभी आपने कहा कि इतना समय आपको हो गया है, ठीक है, जैसे अभी भी आदरणीय हमारी ब्रह्मा कुमारी की चीफ राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, जो वर्तमान समय भी न्यूयॉर्क में है, अभी हम सब मधुबन वालों से मिल रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब वो कानून चाहे भारत सरकार का कानून कहें, राज्य सरकार का कानून कहें, जो भी है, अथवा ऐसे ही हमारे ईश्वरीय इस परिवार का कानून कहें, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विधि विधान कहें, हम उससे ऊपर नहीं है। तो कोशिश यही होती है कि चाहे वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कहें, ईश्वरीय परिवार का कहें, चाहे सरकार का कहें, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग रहता ही रहता है, ठीक है जी। तो इन दोनों में मैं ध्यान रखता हूँ कि हम उसको कहीं क्रॉस नहीं करें। तो जब क्रॉस करने से बचते हैं तो डिस्प्यूट्स खत्म हो जाते हैं, एक तरीके से जनरेट ही नहीं होंगे तो खत्म होने का बात ही नहीं आता है। तो इसलिए इस बात पर मैं ध्यान देता हूँ। हालांकि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें एक पाठ पढ़ाया जाता है कि ना कहना माना नास्तिक और हाँ कहना माना आस्तिक। तो यहाँ हाँ और ना आस्तिक का विषय नहीं है वास्तव में, ठीक है, हमें बड़ों का ओबीडियंट होकर के चलना है। पर अगर हम देख रहे हैं कि वो नियम के अनुसार नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट का नियम है, चाहे हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का है, तो मैं वहाँ थोड़ा सा साइलेंट हो जाता हूँ, मैं वहाँ अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाता हूँ, इन्वॉल्व नहीं करता हूँ अपने आप को। तो इस रीति से फिर हम, ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, चाहे वो थॉट प्रोसेस की एनर्जी हो, ठीक है, चाहे एक्ट के लेवल की एनर्जी हो, मानसिक स्तर पर भी और कर्म के स्तर पर भी, ठीक है, अपनी एनर्जी लॉस नहीं होने देते हैं। और जमा है तो प्रोग्रेस है, सिंपल सी बात है, जमा है तो आप खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड भी होंगे आप। तो इसको मैं ध्यान रखता हूँ, जैसे मैंने कहा कि जब ज्ञान में चला तो प्रोटेक्शन लिया मैंने, ठीक है जी, ऐसे ही यज्ञ में भी मैं इस बात का ध्यान।
0: आप जो भी बिजली विभाग का कारोबार करते हैं उसमें आप ये ध्यान रखते हैं कि लौकिक दुनिया का भी कानून और इस ईश्वरीय मर्यादाओं का भी कानून का भी आप ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाओं को बैलेंस रीति से चलाते हैं।
1: हाँ,
0: तो आप आध्यात्मिक जगत में हैं और अपनी, जैसे कहा कि जब समर्पित होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम ईश्वर को समर्पित हैं, तो एक इसीलिए करते हैं कि हम एक स्वउन्नति कर सके, हम एक बेहतर इंसान बन सके। और जैसे आपने कहा, अपने लक्ष्मी नारायण को जाते हुए देखा और उनकी जो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य गुण हैं, वो हमारे जीवन में इसी जन्म में लेके आ सकते हैं। तो फिर ये जो सेल्फ प्रोग्रेस की बात है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपने किन विषयों के ऊपर आपने बहुत अच्छे से साधना की है या कुछ सिद्धियां प्राप्त की है या फिर कुछ ऐसी आपकी प्राप्तियां हैं जो आपको लगता है कि इन चीजों पे मैंने बहुत अच्छा मेहनत किया है?
1: मेहनत तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं मेहनत करने वाला हूं नहीं, ठीक है जी, ठीक है। मैं इस राजयोग का एक दूसरा नाम है सहज योग, तो मैं इस योग को भी सहज रीति से ही जीता हूं। और अल्टीमेटली जो ज्ञान क्या है वो हमारे कर्म से प्रतीत होता है। हमें कितना ज्ञान है ये भी हमारे कर्म से उजागर होता है, हमें कितनी समझ आई है ये भी हमारे कर्म से ही पता लगता है। जैसे आपने कहा सिद्धि, तो उसमें भी अर्थात हमें कितनी शक्ति है, चाहे वो दिव्यता की शक्ति कहें, पवित्रता की शक्ति कहें, समझ की शक्ति कहें, उसका भी जो पैमाना है वो हमारे कर्म ही हैं।

0: कि हमें कर्मों में कितनी सफलता मिल रही है, हमारे कर्म यज्ञ हित में कितने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी शक्तियों को उजागर करता है, ठीक है, प्रत्यक्ष करता है कि हमें वो शक्ति आई है कि हम इस लेवल पर कर पा रहे हैं, इस लेवल पर जी पा रहे हैं। ठीक है, और वह करते हुए भी जब उसमें पोलाइटनेस रहती है, मधुरता रहती है, निर्माणता रहती है, निमित्त भाव रहता है, तो ये हमारे गुणों को प्रत्यक्ष करता है। कई बार क्या होता है, करते तो हैं पर उसमें ईगो क्रिएट होता है, मैं आता है, तो शक्ति का फिर मैं में कन्वर्जन, तो वहां डिविनिटी लॉस हो जाती है, जीवन के गुणों का ह्रास हो जाता है। तो फिर वो आज सफलता है, कल वो फिर असफलता में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए जीवन में शक्तियों का और गुणों का संतुलन चाहिए। जो दिव्य गुण है वो हमारे व्यवहार में परिलक्षित होते हैं, व्यवहार में दृष्टिगोचर होते हैं, और जो हमारी शक्तियां हैं वो कर्म की सफलता के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो इसलिए कर्म के स्तर पर सफलता हमारी शक्तियों का सूचक है, और व्यवहार में सफलता ये हमारे दिव्य गुणों कि जीवन में उपस्थिति का कहें, प्रधानता का सूचक है। तो इनको दोनों को लेके चलना चाहिए।
1: बहुत सुंदर कहा भाई जी आपने। सो लास्ट में सवाल है कि इस जीवन को जीते हुए या फिर वो कौन सा मोड था जब आपको लगा कि यही जीवन है, ऐसा ही जीना है, या इसे ही कहते हैं कि जीना इसी का नाम है?
0: ज्यादा सोचने की जरूरत पड़े नहीं, जब देखा मैंने बाबा रजिस्टर में नाम लिख रहा है और आगे से आगे ऑफर हो रही है, ठीक है, मधुबन कॉल कर रहा है, आप मधुबन में आइए, सेवाएं दीजिए, तो मैं कुछ करूं, ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी नहीं। यहाँ भी हेडक्वार्टर में जैसा आपने कहा कि आपको 92 से हैं, 34 साल हो गए हैं, यहाँ भी मैं किसी दौड़ में शामिल नहीं हूँ, मैं किसी दौड़ में शामिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज को समझा है, अंततः क्या, इस समग्र सृष्टि पर मैं जब झांक कर देखता हूं तो वो कोई भी फील्ड है, ठीक है, चाहे वो आर्थिक जगत की हस्तियों को देख लें, ठीक है, चाहे हम आप एक जो शो है जीवन का, ठीक है, तो जो भी फेमस पर्सनालिटी है किसी भी फील्ड की है उस दृष्टि से देख लें, चाहे हम विद्वता की दृष्टि से देख लें, अंततः सब जाकर के ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, अंततः उनकी मंजिल ईश्वर पर जाकर के खत्म होती है, उसके बाद नया कुछ नहीं होता, ठीक है। उससे पहले यही होगा कि मैं धनवान बन जाऊं तो भगवान का ध्यान करेंगे, ठीक है, धनवान होकर के भी उस पर ही अर्पित होना है, मैं सारी दुनिया में जाना जाऊं, सारी दुनिया मुझे जाने, जान करके भी खाली, सबने जान लिया फिर भी हम खाली, फिर भरने के लिए फिर ईश्वर के पास जाते हैं। हम राजनीतिक दृष्टि से देख लें, वैज्ञानिक दृष्टि से देख लें, कोई भी फील्ड है, अंततः हम अपने आप को सब कुछ पाकर के भी खाली ही पाते हैं। तो जब पाकर के खाली पाना है तो उस पाने की दौड़ में क्यों अपने को शामिल करना है? ठीक है, हम इस जगत में हैं, इस जगत में कर्म जरूरी है क्योंकि कर्म का ही हमें फल मिलेगा, सोच का फल कर्म के रूप में जब घटित होगा तो ही मिलेगा, अंततः कर्म का फल है। अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो कहते हैं इंसान को उसके कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो भोगना के रूप में मिले, चाहे उसको प्राप्ति के रूप में मिले। तो प्रधान हुआ कर्म, पद प्रधान नहीं हुआ, प्रतिष्ठा प्रधान नहीं हुई, प्राप्ति प्रधान नहीं हुई, कर्म प्रधान हुआ। कर्म से मैंने नंबर वन बन गया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप में मेरा नाम है, ठीक है, पर मेरा कर्म का फल क्या है? वो फोर्ब्स की लिस्ट से मेरा फल नहीं है, वो नामाचार होगा, ठीक है, पर फल मेरे कर्म का है। तो मेरा कर्म कैसा है इस पर मैं ध्यान देता हूं। मेरे को बहुत सारे स्लोगन हैं इस ज्ञान मार्ग में, मुझे सबसे जो फेवरेट मेरा स्लोगन है कि आपके शब्द कितने ही महान हो लेकिन आप अपने कर्मों के द्वारा ही पहचाने जाओ। अब यह पहचान बनाने की भी बात नहीं है, यानी प्रधानता किसकी हुई? कर्म की हुई। तो जब कर्म प्रधान है, वो तुलसीदास जी की चौपाइयों में भी एक ऐसी चौपाई है कि कर्म प्रधान है, इसलिए मैं कर्म पर ध्यान देता हूँ, ठीक है जी। और उस कर्म में, ठीक है, जो ईश्वरीय विधान है उसके अनुसार उस कर्म को करना, उस कर्म के आधार से अपने जीवन को जीना, जो ईश्वरीय विधान है, या इस जगत में रहते हैं तो इस जगत के विधान से बंधे हुए हैं, उसके अनुसार जीवन जीना, तो ये मुझे सुख देता है, सुकून देता है।
1: जी, बहुत सुंदर तरीके से बताया भाई जी आपने, वो जीवन क्या जीवन है जिसमें सब कुछ होते हुए भी प्राप्ति नहीं है, लेकिन वो एक जो प्राप्ति मिलती है उस एक से जुड़े रहने में सर्व प्राप्तियां प्राप्त होते हैं। इस जीवन के सार को आपने समझा और यही जीवन है और ऐसा ही जीना है, आपने निर्णय करके परमात्मा के पास आकर के आप अपने आप को समर्पित किया और आप अपने कर्म से प्राप्ति भी या भाग्य भी बना रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते जा रहे हैं। बहुत सुंदर अनुभव है भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आज अपना समय निकाल कर आप आए हैं और आपकी इस योगी जीवन की अनुभव को हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया। यही समझ में आता है कि आप कितना भी बड़े हो जाओ, जीवन में कितने भी नाम मान शान सब प्राप्त कर लो, लेकिन अल्टीमेटली हमें कहाँ पहुँचना है, उस ईश्वर के पास पहुँचना है। और आप इस बात को बहुत जल्दी रियलाइज किया और आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया और इस जीवन की यात्रा को आपने जिस तरीके से सुनाया है वो भी बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, आपको भी और आप सभी को भी।
1: जी दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीना, इसी का नाम है, और हमारे साथ आदरणीय सुधीर भाई जी, आप ब्रह्म कुमारी मुख्यालय के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के इंचार्ज है। ऐसे ही कुछ और विशेष अनुभवों से हम फिर से जुड़ेंगे अगले कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: करते रहूं।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आसमान में छाए हैं काले बादल, सूरज आंख में चोली खेल रहा है और हवा ऐसी चल रही है मानो अपने साथ उड़ाकर ही ले जाएगी।

0: आप सोच रहे होंगे कि खिड़की के बाहर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा,
1: आखिर ये मौसम के गलत सलत हाल क्यों बताए जा रहे हैं हमें? तो जी मैं आपको बता दूं कि ये मौसम की जानकारी नहीं बल्कि एक घर का हाल है। जी हाँ, ऐसे घर का जहाँ लोगों का स्वभाव ऐसा है जैसे सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ एक साथ रहते हों, और जज्बात ऐसे कि सूरज को पश्चिम से उगा दे और तारों को दिन में दिखा दे। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर। मिलिए राजस्थान के राठौड़ परिवार से। आज जब सब न्यूक्लियर परिवार के ढांचे में ढल चुके हैं, वहीं राठौड़ परिवार में रहते हैं 16 सदस्य साथ साथ, यानी 16 अलग अलग स्वभाव, 16 अलग अलग अनूठे कैरेक्टर और 16 अलग अलग कहानियां। आइए मिलते हैं राठौड़ परिवार के पहले सदस्य, घर के सबसे बड़े भाई यानी बच्चों के ताऊजी श्री गजेंद्र सिंह राठौड़ से। ये आदर्शवादी, आशावादी, बात सभ्यता से करते हैं, स्कूल टीचर हैं, संस्कारों से इनके दिन रात चलते हैं। अरे अरे रुकिए रुकिए, और भाई इनके बिना गजेंद्र सिंह जी कहां पूरे होते हैं। साथ में मिलिए गजेंद्र सिंह जी की धर्म पत्नी श्रीमती चंद्रावती राठौड़ से, जो बात बात पे नाक चढ़ाती हैं, खबर ये सब की रखती हैं, पल में तोला, पल में माशा, पल पल में रंग बदलती हैं।
2: ठीक है, लगाता हूँ।
3: अरे मैंने बोला ना यार, उसमें नहीं लगाने पैसे, इसमें लगा।
4: पैसे लगाना मतलब सट्टा। आजकल के बच्चे ना शर्म है ना संस्कार, क्या कर रहे हो तुम लोग ये हैं जी? ये सट्टा वट्टा इस देश को बर्बाद कर रहा है।
3: अंकल हम
4: देखो, तुम युवा पीढ़ी हो, तुम्हारे ऊपर अपने देश की जिम्मेवारी है।
2: अंकल हम
4: आदर्श ये कहते हैं कि मानव को सदा सच्चा धन ही कमाना चाहिए, झूठा धन समृद्धि नहीं लाता है।
5: ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं अंकल जी?
2: अरे ताऊ जी हैं ये राठौड़ परिवार के, एक बार को प्लेन को भी ब्रेक लग सकता है लेकिन इनका ब्रेक।
6: अजी सुनते हैं, जल्दी आइए, आपके कॉन्स्टिपेशन की दवा आ गई।
4: अरे आ रहा हूँ, क्या तुम सबके सामने बोले जा रही हो?
6: झूठ बोलूं तो मिर्ची खाऊं, मैं तो इनकी चिंता कर रही थी। अब मेरे अलावा इस घर में है ही कौन जो इतना ध्यान रखे किसी का। ये बहू को देखो, बाप समान जेब की कोई फिक्र ही नहीं है, लगी हुई है टीवी देखने।
1: अगर कोई आपसे कहे कि चलता फिरता रेडियो देखा है तो आप उसे एक बार ताई जी से जरूर मिलवा दीजिएगा। कभी ताने कभी गम, इनका तो बस यही नारा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं राठौड़ परिवार की दो बहनों से। बड़ी बहन है रागिनी, ये फेमिनिज्म के राग अलापती हैं। छोटी बहन है शांति, लेकिन असल में जिनसे शांति कोसों दूर भागती है।
7: आज तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, मुंह काला करके गधे पे घुमाएंगे। अरे पत्नी पे हाथ उठाना ये कोई आम बात नहीं है। जिस दिन सारी पत्नियां जाग गई ना, देखना इन मर्दों की तो खैर नहीं। चलो कल सुबह अनशन पर मिलती हूँ।
8: फिर से सुबह सुबह शुरू हो गई। दीदी थोड़ा चिल करो, हिंसा तो आप मेरी नींद पर कर रही हो। थोड़ा सोने दो ना, मेरे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, मुझे आज पार्टी में भी जाना है।
9: शांति शांति शांति शांति।
8: क्या हुआ माँ, सुबह सुबह मुझे क्यों बुला रही हो?
9: अरे मैं भगवान को बुला रही हूँ, तुझे नहीं। और आंखें खोल, 8 बज गए हैं, क्या कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है? ओ राम राम राम राम, माफ करना प्रभु माफ करना, मैंने आपको याद करते करते अपने मुख से राक्षस का नाम ले लिया। माफ करना भगवान माफ करना। आज ही मंदिर जाके पूरे 2 नारियल चढ़ाऊंगी प्रभु।
1: चलिए बढ़ते हैं अब आगे और मिलवाते हैं आपको राठौड़ परिवार के सबसे छोटे भाई किशन राठौड़ जी से। बच्चों के साथ ये बच्चे बन जाते हैं, छोटे हैं पर बड़ा शायराना मिजाज रखते हैं। मनमौजी हैं थोड़े, थोड़े से हैं जिम्मेदार। जिंदगी के पेचीदा मसले इनकी कलम से सुलझते हैं।
10: अंधेरे बाहर हो तो मंजर, अंदर तलक आए तो गम है। जिंदगी की तस्वीर में मुश्किलों के भी अपने रंग हैं।
11: चाचू, लिखा तो बहुत अच्छा है आपने, लेकिन
10: लेकिन क्या?
11: लेकिन बात कुछ समझ नहीं आई।
10: कोई बात नहीं बेटा, जीवन है, जीवन में सब कुछ समझ नहीं आता। ये बताओ, कल जो टेबल याद कराई थी वो तो भूल नहीं गया ना?
11: नहीं चाचू, आपने गाने में गा के सिखाई थी ना, कैसे भूलूंगी। लेकिन एक बात बोलूं प्लीज?
10: बोल बेटा बोल।
11: ये कविताएं आप किसी अपने उम्र वालों को क्यों नहीं सुनाते हो? हम बच्चों को क्यों सताते हो?
10: अच्छा बेटा रुक, अभी बताता हूँ।
11: अरे चाचू मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ।
1: बचपन किसी पौधे की तरह होता है, अगर शिक्षा की खाद और स्नेह का पानी न मिले तो ये पनप नहीं पाता। जहाँ इतने बड़ों का हाथ सर पर हो वहाँ तो ये हंसी खुशी लहराएंगी ना। अब मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि बा मुलायजा होशियार पधार रही हैं राठौड़ परिवार की राजकुमारी, मतलब राठौड़ परिवार की मंझली बहुरानी राजकुमारी जी, जो भोली भाली है दिल की पर रहती है थोड़ी अस्त व्यस्त। किचन के बर्तन भी डरते हैं इनसे, देती हैं उन्हें इतना कष्ट। और साथ में आपको मिलवाते हैं घर की सासू माँ यानी अंबिका देवी राठौड़ से, जो सबका रखती हैं ख्याल पर इनके ख्याल कभी कभी करते हैं सबको हैरान।
12: ये बर्तन किसने बनाए? अब कटोरी इतनी गोल कि हाथ से सरक जाए और थाली इतनी चपटी कि हाथ पकड़ ही न पाए। किसी का बुरा ना बोलूं। चल राजकुमारी फिर से सारा काम कर।
13: राजकुमारी क्या कर रही है, आराम से कर।
12: हाँ ठीक है माँ साहब, बस खाना तैयार है, लेके आई बस।
13: बेटा राजकुमारी, दाल में इस बार नमक ही डाला है ना?
12: हाँ माँ, इस बार तो चीनी का डब्बा ही खाली हो गया ना, तो पक्का नमक ही डाला है।
1: आई नो आप लोग यही आशा कर रहे होंगे कि खाने में नमक ही पड़ा हो, वरना खाने वालों का तो भगवान ही मालिक है। चलिए अब आपको मिलवाता हूँ घर के सबसे बड़े व्यक्ति यानी राठौड़ परिवार के पिताजी श्री भगवत सिंह राठौड़ जी से, जो हैं ज्ञानी, धैर्य है इनकी निशानी, दुनिया के किसी भी मुद्दे पर सुना सकते हैं ये एक न एक कहानी। और साथ में मिलिए इनके मंझले बेटे यानी वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी से, जो वक्त के हैं पक्के, करते हैं सबका सम्मान, नई टेक्नोलॉजी से जूझते हैं। इनके जोक्स को तो करता हूँ मैं भी सलाम।
14: श्री ये बताओ कि मौसम का हाल कैसा है? अरे बोलो श्री। अब क्या तुमको श्री श्री महाराज बोलूं तब जवाब दोगे?
15: Dad, what happened?
14: अरे ये श्री जवाब ही नहीं दे रही।
15: ये श्री कौन है डैड?
14: अरे ये फोन में होती है, हमारे ऑफिस में आज हमने देखा था, वो सौरभ अपने फोन से बात कर रहा था कि श्री ये बताओ वो बताओ, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूं।
15: अरे डैड वो श्री नहीं सीरी है, और वो महंगे वाले फोन में होता है, आपके वाले बजट फोन में नहीं।
14: ठीक है पढ़ाई करो जाकर, वरना बड़े होकर ये बजट वाला फोन भी नहीं खरीद पाओगी।
16: अरे ये फोन क्यों खरीदेगी, मैं दिलाऊंगा ना इसको मेरी प्यारी पोती को।
14: पिताजी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, इसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊंगा मैं।
16: हाँ भाई बिल्कुल बने, आखिर भगवत सिंह राठौड़ की पोती जो है, बच्चों को प्यार और शिक्षा के बैलेंस से बड़ा करो तो वो जीवन में सफल भी होंगे और अच्छा इंसान भी बनेंगे।
14: जी पिताजी, बच्चों के सर पर माँ बाप के साथ साथ दादी दादा और बड़ों का साया है तो फिर मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। चलो आ जाओ बच्चों, आज दादाजी तुम सब के लिए मालपुआ लाए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
0: देखिए भाई, सारे परिवार के सदस्यों से तो मैंने आपको मिलवा दिया, अब ये कौन आया है गेट पर? आइए चलिए देखते हैं।
17: मैडम, 50 पिज्जा की डिलीवरी है आपके घर।
3: 50 पिज्जा किसने मंगाए?
18: राजकुमारी।
3: राजकुमारी,
18: राजकुमारी,
19: राजकुमारी।
12: अरे मैंने कुछ नहीं किया।
7: हाँ हाँ, इल्जाम हमेशा एक औरत पर ही आता है।
12: वाओ पिज्जा, मजा आ गया।
3: ये विदेशी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हो तुम लोग। दाल बाटी चूरमा खाओ, ये क्या लगा रखा है पिज्जा?
18: बच्चों रुको, लाओ इधर लाओ पिज्जा, ये हमने नहीं मंगवाया भाई साहब।
3: कौन मंगवाते रहे?
16: अरे फिर मंगवाया किसने?
12: मुझे
16: रहते हो
12: कैसे
16: वापस कर दो उसको।
12: मेरा वाला पिज्जा तो वापस नहीं जाएगा।
3: नहीं नहीं, कोई पिज्जा नहीं रहेगा यहाँ पर।
0: अब इतने सारे पिज्जा का क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर पता है कि इस परिवार से मिलके आपको बहुत मजा आने वाला है। खुशी, नोक झोंक, प्यार की मिठास और अनबन का तड़का भी है। राठौड़ परिवार में सब कुछ मिलेगा आपको। अब जिस घर में इतनी वैरायटी है लोगों की, सोचिए किस्सों की कितनी होगी। जीवन के हर रंग को लेकर अगले एपिसोड में फिर लौटेगा कार्यक्रम घर ऑन एयर, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, 107.8 की फ्रीक्वेंसी पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
20: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौड़ परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? लाइक यस। तो मामा को बिल देता है तो मामा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मामा, इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मामा आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मामा आपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। तो मामा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देख कर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है, मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इनडेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर में आपका

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। अब आपको बहुत ही सुंदर विचार आज का सुनाऊंगी कि हमारे ऊपर विपत्तियां आती है तो हम अक्सर अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, परंतु वो भी मजबूर होकर के सहायता नहीं कर सकते तो लास्ट में हम किसको याद करते हैं? भगवान को। कैसे? तो जरा विचार करेंगे और चाय की पत्ती को उबाल करके क्या करेंगे? चाय की पत्ती को उबाल करके आगे क्या भाई? वो तो आप आशियाना सुनिए जरूर जान जाएंगे। और कहते हैं कि इस दुनिया में वो इंसान ही ठीक है जो हमेशा कहता है मैं ठीक हूँ। तो इस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे और आज बनाएंगे मठिया, गुजराती डिश। सीखने के लिए तैयार रहिएगा और प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: ओए रुक रुक, कुछ सुनाई नहीं देती। वो ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो आप। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार ध्यान से सुनेंगे। पहले आपको सुना चुकी हूँ, फिर भी हमारे ऊपर विपत्तियाँ आती है तो हम अक्सर अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, परंतु वो भी मजबूर होकर के सहायता नहीं कर सकते, तो लास्ट में हम किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार बहुत ही सुंदर है, एक दृष्टांत के साथ समझाना चाहूंगी कि बहुत समय पहले त्रिकुट नामक पर्वत के पास एक गज माने हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। वहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर था, मीठी नदियाँ, बगीचे, रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से वह स्थान अति सुंदर लगता था। एक दिन गज अपने परिवार के साथ सरोवर में नहाने के लिए निकला। सरोवर में बहुत आनंद से और स्वच्छंदता पूर्वक तैर रहा गज माने हाथी आने वाले संकट को पहचान न सका। उसी सरोवर में एक ग्राह माने मगरमच्छ भी रहता था। ग्राह ने गज के पैर को पकड़ करके अंदर खींचना शुरू किया और दोनों ने अपनी अपनी शारीरिक शक्ति को आजमाना शुरू किया। गज अच्छे डील डोल वाला विशाल काय शक्तिशाली प्राणी था, परंतु उसकी शक्ति सफल नहीं हुई। ग्राह खींचता ही गया, गज जल में धंसता चला गया। गज के प्राण संकट में पड़ गए। पुकारने लगा अपने रिश्तेदारों को। किनारे पर खड़े गज के साथी परिवार वाले सदस्य देखते ही रह गए, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर सके, गज की कोई मदद नहीं कर पाए। आखिर गज ने सोचा कि संकट से बचाने वाला एक ही ईश्वर है। ऐसा निश्चय करके, सभी को भूल करके, एक ही परमात्मा को अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगा। दयालु ईश्वर ने तुरंत प्रत्यक्ष होकर के सुदर्शन चक्र से ग्राह का संहार कर दिया और गज को बचा लिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कि हमारे ऊपर विपत्तियां आती है तो हम अक्सर क्या करते, पहले अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं। जब रिश्तेदार मदद नहीं करते ना, तो फिर भगवान याद आते हैं। लेकिन हमें कौन याद आने चाहिए?

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बड़े सुंदर नुस्खे, बहुत ही अच्छे सुंदर नुस्खे दूंगी कि भाई चाय की पत्ती को उबाल करके क्या करेंगे। तो चाय की पत्ती को उबाल करके उस पानी से बाल धोइए, इससे बाल कम झड़ेंगे। ठीक है, तो चाय की पत्ती उबाल दीजिए पानी में।

डाल करके फिर उस पानी को छान दीजिए, उससे सिर धोइएगा, इससे बाल कम गिरेंगे। बहुत बाल गिरते हो तो क्या करें, कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा ना, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। अब आपको अगला नुस्खा दे रही हूँ, बैंगन के भरते में शहद मिला करके खाइए, इससे अनिद्रा रोग का नाश होता है। ऐसा शाम को भोजन में भरता बनाते समय करें, सुबह नहीं, ठीक है। बैंगन के भरते में शहद मिलाकर खाइए, इससे अनिद्रा रोग का नाश होगा, परंतु शाम के समय। अगर शाम को आप भरता बना रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। और भी सुनेंगे आप अगला नुस्खा कि संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिला दीजिए और दिन में 3 बार 1-1 कप पीजिए। गर्भवती माताओं के लिए है ये, तो गर्भवती माताओं को जब ये दस्त की शिकायत होती ना तो दूर हो जाएगी। संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिला करके दिन में 3 बार 1-1 कप पीना है गर्भवती माताओं को, इससे उनके दस्त की शिकायत होगी, वो ठीक हो जाएगी। और भी सुनेंगे आपके गले में खराश होने पर सुबह ही सुबह सौंफ चबाइए, इससे बंद गला खुल जाएगा। गले में खराश हो रही हो तो सुबह ही सुबह आप सौंफ चबाइए, इससे बंद गला खुल जाएगा। और लास्ट नुस्खा है कि सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरिया निकाल करके कुछ दिन खाइए, इससे घुटनों का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरिया निकाल करके कुछ दिनों तक लगातार आपको खाना है, इससे घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये सारे ही नुस्खे लाजवाब है, आप चाहो तो आजमा सकते हो, और जो भी ये समस्या कही है वो आप ठीक कर सकते हो। और हाँ, ज़्यादा है तो देखिए डॉक्टर को भी बताइए, कम है तो हम खुद ही घर पर करने की कोशिश करते हैं, पर ज़्यादा है तो लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। और अब आज का प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझाए, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है, अब आप जवाब देंगे, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस इतना सही कहूंगी कि भाई बेटी को समझाते हैं लेकिन वो समझ जाते हैं, अब वो कौन है जो समझ जाते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा, हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अभी सुनेंगे गीत, उसके बाद में पुनः लौट करके आ रही हूँ खुशनुमा जीवन में अच्छे विषय पर चर्चा करने के लिए, ठीक है। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझ जाए। आज का ये प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। तो आज का प्रश्न बड़ा सुंदर है, आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, फिर भी आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और आज का विषय है कि इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी कहते कैसे हो आप, तो वो बोलेंगे हम ठीक है। ये आज का विषय है। क्या कहेंगे आप इस विषय पर, आप अपने राय जरूर व्यक्त करिएगा और प्रश्न का जवाब भी जरूर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर विषय है। देखते हैं आप चर्चा में कौन कौन भाग लेते हैं। नंबर हमारे हैं 94-14-15-14-15। प्रश्न भी बड़ा सुंदर है, विषय भी बड़ा सुंदर है कि इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जिसका अपना सब कुछ लुट गया हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, फिर भी उनको कहते हैं कि कैसे हैं जी आप। मिलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं ना, सबसे पहले नमस्कार या राम राम करते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, कैसे हो आप, तो क्या कहते हैं। अगर उदासीन व्यक्ति होगा तो मुंह लटका करके बोलेगा ठीक हूँ। खुश मिजाज व्यक्ति होगा तो क्या कहेगा, हाँ जी बिल्कुल, हम तो ओके है, बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए आप कैसे हो। और ज़्यादा ही उमंग उत्साह वाला होगा तो क्या कहेगा, अरे ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, हम तो एकदम ओके है, आप सुनाइए आप कैसे हो। तो बोलने का लहजा अलग अलग होता है। अरे मैं ही बोले जा रही हूँ इतने सुंदर और सरल विषय पर, मैं तो आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ इस विषय पर कि इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो मैं तो आपके साथ बात करना चाहती हूँ। शायद इस विषय पर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्या? ठीक है, मुश्किल लग रहा है तो हम ही चर्चा कर लेते हैं भाई, हम तो बैठे किस लिए, इसीलिए है। पर अवसर हम आपको देते हैं कि आप भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि सरल विषय है। तो बहुत सारे देखे, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अपनों से ही रूठे रहते हैं, परायों से बड़े खुश रहते हैं। वो कहते हैं कि अपने ही काम आते हैं और अपने ही काम बिगाड़ते हैं, दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: सब बिल्कुल अच्छे हैं और काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे।
1: जी जी जी,
2: क्योंकि काम भी चलता है, बात भी चलती, सुनते भी है, क्योंकि हर साथ में काम होता है।
1: जी जी बिल्कुल,
2: तो सुविधा है रेडियो की, हम आराम से सब कुछ कर सकते हैं रेडियो सुन के।
1: जी जी जी, क्या बात है।
2: तो बहुत अच्छा, दोनों ही आपने प्रश्न भी अच्छा पूछा, विषय भी अच्छा है कि आज आप बता रहे, बिल्कुल सही है कि आज चाहे लोग के पास कुछ ना हो, फिर भी कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। कई लोग हमने देखा है, कई लोग को भी हमने सुना है कि चाहे कितने प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी परेशानी हो, पैसा ना हो, पैसे की दिक्कत हो, फिर भी कहते हैं कि हम अच्छे हैं।
1: जी
2: वही तो सही है दीदी, क्योंकि कई बार क्या होता है, पैसा वाला होता है, पैसा बहुत ज्यादा होता है, सब अच्छा होता है, फिर भी बोलता है कि ठीक है।
1: जी
2: तो
1: जी जी,
2: ठीक का मतलब तो ठीक ही होता है, लेकिन कहते हैं कि भाई हम बहुत अच्छे हैं।
1: जी
2: तो वही तो एक कहते हैं कि हमारे हम चाहे 600 रोटी खा के बाहर निकले, लेकिन जब हमें ऐसा किया कि चलो हम सब कुछ 32,000 का भोजन खा के बाहर निकले।
1: जी जी,
2: तो ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हम ऐसे कहेंगे चलो भाई हमको ठीक नहीं है, ऐसा नहीं तो कोई कुछ देता तो नहीं है, कुछ कोई देने वाला नहीं है।
1: जी,
2: लेकिन हम हमारे सोच से दूसरे अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि आज कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है।
1: जी,
2: तो हम भी चाहे कुछ भी हो, देरी आज तक चाहे कितनी दिक्कत आई हो, लेकिन हमने क्या है कि हम बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं।
1: क्या बात है,
2: क्योंकि अब तो क्या दीदी, पहले तो हमारी परिस्थिति बहुत नाजुक थी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं।
1: जी जी जी,
2: तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं, आज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आगे।
1: क्या बात है, वो कहते हैं हम पॉजिटिव रहते हैं ना तो पॉजिटिव एनर्जी आती ही है, मिलती ही है और हम अच्छे हो जाते हैं।
2: ऐसे मोलट करके मेरे बैठे रहेंगे हमारे, तो कहेंगे नहीं हमको अच्छा नहीं है यार, अच्छा तो कोई देने वाला तो नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, उल्टा हम ऐसे कहेंगे तो सामने वाला भी उदास हो जाएगा,
2: जो आपके ऊपर हट्टी उड़ाएंगे और आपका फायदा उठा गए ऐसे करके नाम के बहुत बहुत अच्छे हैं। आज हमारे को कितने लोग पूछते हैं, हमारा एक ही जवाब होता है बहुत अच्छे
1: जी,
2: बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे ही रहेंगे जब तक हमें
1: जी जी जी, बहुत सुंदर। अच्छा और आज के प्रश्न का जवाब आप ऑफ एयर देंगे?
2: हाँ लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तो है कि थोड़ा सा सुनने में समझने में दिक्कत है, तो अब थोड़ा सा जरूर बात थी कि आपका कहना क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं।
1: बिल्कुल हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही
2: अच्छा,
1: सरल प्रश्न है, अगर नहीं आएगा तो हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, बाकी बहुत ही सरल है।
2: लेकिन थोड़ा वो तो सही है लेकिन थोड़ा सा
1: जरूर जरूर
2: हो जाए तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं।
1: हाँ जी हाँ जी जरूर, हम थोड़ा सा हिंट देंगे। ठीक है जी जी, नमस्कार। तो देखिए प्रश्न बड़ा सुंदर है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। बहुत ही सरल और सुंदर प्रश्न है, थोड़ा सा सोचिए आप, दिमाग जरूर लड़ाइएगा। हेलो,
3: राम राम दीदी।
1: राम राम जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: हम हनुमान जी बोल रहे हैं।
1: हाँ जी हनुमान जी, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
3: बढ़िया है जी, एकदम परफेक्ट।
1: क्या बात है, हमेशा अच्छे ही रहिए, हम तो यही चाहते हैं। और आज का विषय आपने सुना?
3: विषय वो हाथी वाला गज और ग्रह वाला
1: नहीं, वो तो हमारा विचार था, जो विचार को एक्सप्लेन किया। आज का विषय है कि इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। क्या कहेंगे आप?
3: जी जी, वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में एक ये चलन सा हो गया है, जो मर्जी जैसे मर्जी बंदा हो उसके ऊपर कितनी भी विपत्ति हो, पर जब एक दूसरे से हाल चाल पूछते तो हर कोई सही ही बताता है, पर वो वास्तव में सही जब होगा तो सही बताते समय भगवान पे ध्यान रखे, उस पर विश्वास करे। और वैसे हर कोई सही ही बताता है, और जब हम सामने वाले को अपना अगर दुख भी सुना देंगे ना तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे अच्छा हम अगर दुख सुनाएं तो भगवान को सुनाएं और लोगों से खुद मिजाज के बीच में रहें, अपनी उसकी प्रॉब्लम को सलूशन ढूंढने में लगे। और क्या
1: क्या बात है, बहुत अच्छा है। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
3: हाँ, उसी लिए तो मैंने फोन किया था।
1: हाँ जी बता दीजिए।
3: ये जो पर्सन है, ये पर्सन इशारा कर रहा है हमें बहू को समझाने को।
1: अच्छा,
3: तो बेटी को कहेंगे ना तो बहू समझ जाएगी और डायरेक्ट हम बहू को नहीं कह पाएंगे कुछ।
1: देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत, आप आशियाना सुनते रहिए, ठीक है, हम जवाब जरूर देंगे आपका। और हनुमान जी, आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन से गांव के रहने वाले हैं?
3: हम उत्तर प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से हैं, इधर नेपाल से सटा हुआ है जी।
1: अच्छा, बलरामपुर।
3: हाँ, और ये एप्लीकेशन के माध्यम से सुनते हैं, कई बार हमें दिक्कत भी होती है नेटवर्क से, एप्लीकेशन में टूट जाते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं टूट जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सारा दिन पकड़े ही रहता है
1: जी,
3: तो मौसम के हिसाब से होता है जी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, कभी कभी मौसम ऐसा होता है तो वो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है।
3: हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, कई बार तो सही रहता है मौसम, तो सही पकड़े रहता है कई बार, तो वैसे इस समय तो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, बीच में बहुत दिक्कत हुआ करता था
1: जी जी जी,
3: तो हम कई बार सुनते भी नहीं थे, क्या करें जब नहीं पकड़ते तो क्या करें
1: जी जी जी। चलिए आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका, रेडियो से जुड़े आप इसके लिए, और जरूर जुड़ते रहिए, हम तो यही कहेंगे। हमारे जो नए नए श्रोता बंधु सुन रहे हैं, जो बात नहीं कर पाते हैं, वो भी जरूर एक बार तो जरूर बात करें ताकि हमें पता चले कि कौन कौन रेडियो मधुबन सुनते हैं। इसलिए देखिए गुप्त मत रहिए, गुप्त रहने से कोई पहचान नहीं पाएंगे, आप सामने आइएगा, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई देख रहे हैं, आपकी आवाज पहुंच रही है ना, तो अच्छा है, हमें भी अच्छा लगेगा कि कौन कौन रेडियो मधुबन सुनते हैं। और आज का प्रश्न और विषय दोनों ही अच्छा है, प्रश्न है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए और वो समझ जाए, तो जवाब जरूर दीजिएगा। नंबर हमारे है रेडियो मधुबन के 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट करके आ रही हूँ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब जरूर दीजिएगा। नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। और आज का विषय भी बड़ा सुंदर है कि कोई भी विकट परिस्थितियों में घिरे हुए हो, चाहे सभी साथ छोड़ दे, लेकिन कोई पूछे कि कैसे हो आप, तो क्या कहेंगे हम? ठीक है, अब वो सभी के बस में नहीं है ऐसा कहना। हर कोई नहीं कह सकता विपरीत परिस्थितियों में कि हम ठीक है। कोई कोई तो क्या कहते हैं कि अरे अरे बात मत पूछो भाई, अभी हमारे बात करने का मूड नहीं है, हम कैसे, हम ही जानते हैं, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो। अब ये कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो वो इतने निराश, इतने हताश, इतने उदास हो जाते हैं कि वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं और अंदर अंदर घुटते जाते हैं, घुटते जाते हैं। परिवार में अगर बच्चा कुछ कहता है तो उस पर भन्नाएंगे, ऐसे चिल्ला कर बात करेंगे। पत्नी कुछ कहती है तो उसको भी डांट देंगे। परिवार के अन्य सदस्य भी बात करना चाहते हैं तो उनको भी ऐसे खराब मूड से बात करेंगे, चिड़चिड़ेपन से बात करेंगे। तो इससे तो कोई समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है भाई। समस्या किसके जीवन में नहीं आती है, हर कोई। अगर मैं अभी पूछूं कि अच्छा किस किस के जीवन में समस्याएं आई, तो हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़ जाएंगे कि हाँ बहन जी हमारे जीवन में आई थी। सभी के जीवन में आती है ना, और समस्या आती है तो अच्छा है कि हमें उस समय पता चलता है कि कौन अपने कौन पर आए। दूसरी बात यह है कि हमें इस परिस्थिति में कैसे हम अपने आप को स्टेबल बना करके रख सकते हैं वो भी पता चलता है। फिर तीसरी बात यह है कि हम दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और चौथी बात यह कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि परिस्थितियां आती है ना तो अपने ही दामन छोड़ देते हैं, सबसे पहले तो अपने ही साथ छोड़ेंगे, अपने भाई, अपने काका, चाचा, मामा, जो भी है कुटुंब के वो साथ छोड़ेंगे कि अरे ये तो दिवालिया हो गया, ये तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अभी बात करेंगे तो पैसा मांगेगा या कुछ मदद मांगेगा। तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ते हैं, और अपने साथ छोड़ देते हैं तो फिर इंसान को ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। फिर कोई कोई व्यक्ति तो गलत काम भी कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। कोरोना काल में आपने सुना होगा, कोरोना इतना भयंकर रूप से पहला कोरोना आया था, तब बहुत समय तक रहा और बहुत समय तक ये बाजार बंद रहे, दुकानें सब बंद रही। उसके बाद व्यापारी बहुत जनों के व्यापार ठप हो गया, किसी के देना हो गया और बहुत कुछ हो गया। तो बहुत लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि उस समय उन लोगों ने सुसाइड कर ली। तो ये कोई समस्या का समाधान नहीं है कि हम अपने आप को ख़त्म कर देवे। अरे जिएंगे तो समस्याओं से लड़ेंगे, मरने के बाद क्या सुखी रह पाएंगे? मरने के बाद की बात अलग है, लेकिन कहते हैं ना कि जो हम करते हैं वैसा हमें भरना पड़ता है। मरने के बाद भी कहीं हम जाने वाले नहीं, फिर से जन्म लेकर इसी दुनिया में आने वाले हैं, तो फिर और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज समेत भुगतना पड़ेगा। अभी तो क्या है कि ठीक है, जो समस्या आई है उसका ही सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम उससे छूटने की कोशिश करेंगे तो समस्याएं ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा जटिल हो जाएगी। इसलिए जो भी समस्याएं आती है, लेकिन कोई भी पूछे, कोई भी मिले, कैसे हो आप, तो जी हम ठीक है, तो कोई भी आपसे बात करने की इच्छा करेगा और उदास होकर के ठीक हूँ, कैसा वो हूँ, आपको क्या लेना देना। बहुत जने ऐसे होते हैं जो ऐसे फटकारते हैं सामने कि हम कैसे भी हैं, आपको क्या लेना देना। अरे भाई लेना देना तो किसी को नहीं है, लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हर कोई हमको टोंट से बात करता है, जबकि सामने वाला स्वाभाविक रीत से पूछता है कि कैसे हो भाई साहब या कैसे हो बहन जी। लेकिन परिस्थिति में घिरे रहने के बाद वो कहते हैं ना कि हमारी बुद्धि भी काम करना बंद हो जाती, ऐसा लगता है कि अरे इन्होंने टोंट पास किया कैसे हैं, क्योंकि हम दुखी हैं ना तो इनको भी मज़ा आ रहा है, जबकि उनको पता ही नहीं कि हम कैसे हैं या हमारे अंदर से दुखी है या नहीं है, तो हमें क्यों बताना, बिल्कुल अच्छे हैं। अगर आप हंस करके मूड अच्छे मूड से बोलेंगे हाँ जी हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, तो सामने वाला अगर थोड़ा सा उदासीन होगा ना तो वो भी खुश हो जाएगा कि देखो जब भी इनसे बात करते हैं बड़े मुस्कुराहट के साथ आते हैं कि हाँ जी हम अच्छे हैं। और ऐसे लोग लोगों के साथ लोग बात करना पसंद करते हैं, अपनी समस्याएं व्यक्त करते हैं कि देखो आज मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि पता है कि इतने एनर्जी के साथ कहा है कि मैं हाँ जी हम खुश हैं, तो एक दिन नहीं जब रोज इसी तरह कहते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि अपने कुछ अंदर की बातें हैं जिनके साथ शेयर कर सकते हैं, ये हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ दुख सुख की बातें भी करते हैं और उसका समाधान भी मिलता है। भले हम अंदर से दुखी हैं वो हम जानते हैं और ईश्वर जानता है, लेकिन हमें अच्छी सलाह देनी है लोगों को, उनको ये नहीं जताना है कि हम अंदर से टूट चुके हैं या दुखी है। अरे भाई, इधर उधर भटकने के बजाय हम एक ही लगन से कार्य करें, एकाग्रता से कार्य करें और एक ईश्वर के याद में कार्य करें कि हे भगवान जो भी हुआ है ये सब शायद पहले से ही लिखा हुआ था, हो गया, लेकिन मैं अच्छा करने का प्रयत्न करूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। हम ईश्वर को याद करें, देहधारियों को क्यों याद करें, क्यों हम अपने रिश्तेदारों से मदद मांगे। बहुत सही है कि देखिए रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि हम भी कभी उनके काम आए होते हैं तो अपेक्षाएं रहती है कि हमारे भी वो काम आए, लेकिन ये भूल जाइएगा कि हमने मदद की तो वो भी करेगा हमारी, ये बिल्कुल आप भूल जाइएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाइएगा कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। करने वाले होंगे वो सामने आकर के कहेंगे कोई तकलीफ तो नहीं है, अगर तकलीफ हो तो ज़रूर बताना, हम तैयार हैं आपके लिए। करने वाले होंगे वो सामने कहेंगे, नहीं करने वाले आपसे 10 फुट दूर हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि ये। और सबसे पहले पता किससे चलता है, किसको चलता है, जब समस्याएं आती है तो अपनों को ही पता चलता है कि अब इसके ऊपर ये विपत्तियां आई है, भाई खिसक लो साइड में हो जाओ, और फिर आपसे अच्छी तरह बात नहीं करेंगे। आप बोलेंगे बात करने जाएंगे तो कहेंगे अरे समय नहीं है, अभी वहाँ जाना है वहाँ जाना है, ऐसे अपने आप को व्यस्त बताएंगे कि जैसे कि वो बहुत ही राजा भोज हो, बहुत ही व्यस्त रहने वाले हो, जबकि भले उनके पास समय ही समय है लेकिन वो आपको समय नहीं देंगे, ऐसा जताएंगे कि हमें बहुत सारा काम है। जानते हैं कि अगर उसको समय दिया तो वो कुछ मांग लेगा, इसलिए पहले से किनारा कर लेते हैं। और ये मैंने तो अच्छी तरह देखा है, बहुत जनों की कहानियां मैंने अपने आंखों से देखी है, बहुत सारे रिश्तेदारों की। आज भी फ़ोन कॉल्स आते हैं तो कहते हैं कि बहन जी जब ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे मीठे मीठे बोलते हैं, अपने ही देवर जेठ इतने मीठे मीठे बोलेंगे, और अरे भाई तुम ये कर लो वो कर लो, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा किनारा करते हैं कि बात करना भी बंद कर देते हैं। मतलब कैसे इस नेचर को बना सकते हैं कि आप घर के समय तो गधे को भी बाप बना लेते हो और फिर आप दूर हट जाते हो, जब आपका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो फिर आपके तकलीफ आई तो आप आ जाते हो और फिर आप दूर हट जाते हो। लेकिन कोई कोई लोग क्या है, ऐसे मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे मतलब रहते हैं कि जैसे सामने वाला यही समझता है कि नहीं ये तो हमारे है, भले उनके साथ बार बार छल कपट करते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि फिर से आएंगे और इतने प्यार से चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे कि बंदा फंस ही जाएगा। अरे नहीं नहीं मेरा भाई है ना, अरे नहीं नहीं मेरा रिश्तेदार है, ऐसा नहीं हो सकता है। हेलो
3: हेलो, गुड मॉर्निंग ओम शांति, नमस्कार।
2: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत आपका कंचन भाई, कैसे हो आप?
3: बहन जी, सस्ता अनाज की दुकान में आज जो मिलता है तो उसको खा कर उसको लेने के लिए आए हैं।
2: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है।
3: जेब में है, सुनता हूँ घड़ी, मोबाइल।
2: जी जी,
3: बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं आप, हमने सुन रहे थे।
2: जी
3: तो हाँ, जीवन में सही बात है बहन जी, हमने किसी का काम किया है तो वो भूलेगा नहीं, वो तो सही बात, जरूर हमारा काम मदद में आएगा।
2: जी,
3: हमने भी कई अनुभव किए हैं जीवन, तो
2: जी।
3: हमें ये करना चाहिए। तो आज
2: जी
3: का सवाल क्या,
2: आज का सवाल है कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझ जाए।
3: बिल्कुल
2: जी,
3: सही बात है, इसमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। और ये क्या है आज का
2: जी, आज का विषय अब पूरा हो गया, समय समाप्त हो गया।
3: और
2: आप बहुत लेट जुड़े।
3: हाँ जी, थोड़ा बाइक पे था तो।
2: अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप प्रश्न सोच करके जवाब जरूर दीजिएगा, फिर से आप फोन कॉल्स कर सकते हो, ठीक है?
3: जी जी,
2: जी, बहुत बहुत आभार आपका। और अब प्यारे श्रोता बंधु, आप समझ गए होंगे कि कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपना रोना किसी के सामने नहीं रोना है, अपने दुख को किसी के सामने जताना नहीं है, अंदर अंदर उसको समझ करके परिवार के साथ, अपने ही परिवार, बीवी बच्चे जो भी है उनके साथ मिल करके, अपने बातचीत करके फिर कैसे आगे बढ़ा जाए और उस समस्या से कैसे सुलझा जाए। ठीक है, बाकी कोई भी आपको कहे कैसे हो तो एकदम ठीक है, हम बहुत ही एनर्जी के साथ कहिए ताकि सामने वाला भी फुल एनर्जी में आ जाए। ठीक है, इससे क्या है कि सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है, दुआएं मिलती है, यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आइए बढ़ते हैं एक गीत की ओर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो भाई हम जरूर नए व्यंजन सिखाएंगे जिसमें आपको बता चुके हैं कि मठिया पे गुजराती रेसिपी आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी दीपावली के दिनों में आप देखेंगे कि घर घर में सुवारी मठिया चोराफली घोघरा ये तो लगभग आपको खाने को मिलेंगे, घर घर में बनाए जाते हैं। और सुवारी मठिया चोराफली ये घोघरा ऐसी चीज़ है कि आप 15-20 दिन तक रखो ना बना करके इकट्ठा, तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, आराम से फिर आप नाश्ता कर सकते हो भाई। क्योंकि त्यौहार वार पर हम एक दूसरे के घर पर जाते हैं, क्योंकि नए दिन कहलाते हैं ना, दीपावली के बाद के सारे दिन कहते हैं भाई नया दिन है। अब नए दिन में सब एक दूसरे से मिलते हैं तो स्वाभाविक है भोजन बनाने में लेट हो जाते हैं। तो इस तरह आप घर पर नाश्ता कर सकते हो, ये चीज़ें बना करके रखोगे तो आप आराम से खा सकोगे, ताकि इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी भोजन की। कभी कभी त्यौहार वार पर वो कहते हैं ना कि इन चीज़ों से काम चलाना पड़ता है, हमारे घर इतने मेहमान आते हैं कि उनको सभी को यही नाश्ता वगैरह रखना पड़ता है और हमको समय भी देना पड़ता है, तो भोजन हम नहीं बना पाते, नहीं खा पाते। ऐसी परिस्थितियां बहुत जनों के सामने क्रिएट होती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, इन चीज़ों से भी पेट भर जाता है और कभी कभार खाने में कोई तकलीफ भी नहीं। तो मठिया की सामग्री आप सभी को लिखवा रही हूँ कि आप ले लीजिए मटकी दाल। मटकी दाल लीजिएगा आप, अगर 1 किलो ले रहे हैं तो आप लीजिए 700 ग्राम मटकी दाल, ठीक है, और इसमें 300 ग्राम उड़द की दाल लीजिएगा। और आटा बनवा दीजिए इसका, ठीक है, पिसवा करके आटा तैयार कर लीजिए और छान दीजिए आटे को। और अब सामग्री में लेना है आपको एक तो नमक, खाने वाला मीठा सोडा, अजवाइन, तीखी वाली हरी मिर्च और हींग। हींग तो आपको विशेष लेनी ही है, ठीक है, और शक्कर, ठीक है, यही सामग्री है। फिर से दोहरा रही हूँ, मटका आटा मतलब मटकी दाल का आटा, उड़द की दाल का आटा, इसमें आप मोगर ले सकते हो, बस दोनों ही दाल को धुलाई करके सूखा दीजिए, सूखा करके आप पिसवा लीजिए, ठीक है, तो ये आटा। और फिर नमक, खाने का सोडा, मिर्ची हरी मिर्च तीखी वाली, अगर आप सफ़ेद मिर्च लेना चाहो तो सफ़ेद मिर्च भी ले सकते हो स्वाद के अनुसार, ठीक है, और बाकी हरी मिर्च ले सकते हो। और फिर लेना है शक्कर, स्वाद के अनुसार शक्कर भी लेनी है, ठीक है। और फिर आप ले लीजिए अजवाइन थोड़ी सी और थोड़ी सी हींग। तो ये हो गई सामग्री। तेल तो लेना ही है तलने के लिए। बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि आप ऐसा करेंगे कि इसमें भी देखिए बनाने की अलग अलग विधि है, कोई किस तरह से बनाते हैं, कोई किस तरह से, कोई क्या करते हैं कच्चे मसाले ही इसमें डाल देते हैं, जैसे हरी मिर्च की अच्छी पेस्ट करके डाल देते हैं, हरी मिर्च नहीं डालते तो सफ़ेद मिर्च का पाउडर आता है वो मठे में डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, दोनों आटों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, उड़द की दाल का और मठ की दाल का आटा छान करके मिक्स करके इसमें सारे ही मसाले कच्चे ही डाल देते हैं, और फिर हींग भी ऐसे डाल करके फिर 9 सेके पानी से इसको बांध लेते हैं फिट। बांधने के बाद इसको अच्छी तरह कूटते पीटते हैं, शक्कर वगैरह सब डाल देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है कि एक तो कूटने की मेहनत है और एक इसको तुंबने की मेहनत है। तुंबने की बोले तो दोनों हाथों में जब ये अच्छी तरह कूट करके मिक्स कर दो आप, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइट चाहिए, ठीक है, आटा जो हम गूंद रहे हैं वो, फिर उसको मूसल से कूटो या फिर बहुत जने गुजरात में क्या करते हैं कि प्लास्टिक का कट्टा ले लेते हैं और प्लास्टिक के कट्टे के थोड़ा सा तेल लगा करके इस आटे को मतलब थोड़ा सा इसको पानी डाल करके गूंद दिया है, फिर उस कट्टे में रख करके कट्टे को फोल्ड करते हैं, फिर माताएं बहनें क्या करती, पैरों से उसको कुचलती है, क्योंकि आटे के डायरेक्ट पैर नहीं लग रहे हैं, वो प्लास्टिक के कट्टे के बीच में है और ऊपर कट्टा आ गया है, फिर ऊपर माताएं बहनें पैरों से कुचलती है, क्योंकि अब हाथ से तो इतनी मेहनत नहीं होती ना, हाथ ही दर्द करने लग जाते हैं। तो इस तरह किल्ला किल्ला दो दो किल्ला का आटा होता है, तो पैर से अच्छी तरह तुम करके मतलब अच्छी तरह उसको कुचल करके फिर उस कट्टे को ऊपर का भाग हटा करके उसको लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा तोड़ करके फिर दोनों हाथों से उसको खींचते हैं,
इससे क्या है, जितना तुंबते हैं ना उतने ही मठिया सॉफ्ट बनते हैं। तो बहुत इसको खींचना पड़ता है और खींचने के बाद फिर लास्ट में लुए बनाते हैं, लंबी सी बेल, जैसे पापड़ की बेल कैसे बनाते हैं ऐसी लंबी सी गोल गोल करके एक बेलन की तरह इसकी बेल बनाई जाती है। फिर अंगूठे में धागे को फंसा करके एक हाथ से उसके लुए काटे जाते हैं और फिर उसको बेल करके तले जाते हैं। पापड़ तो यह है कि बस सुखा करके हम भर देते हैं डिब्बे में, जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। मठिया क्या है, आजकल तो वैसे मठिया रेडीमेड भी मिलने लगे हैं, पहले नहीं मिलते थे, पहले हाथों से ही बनाते थे। तो बनाने के बाद बस सारा बेल करके इकट्ठा, पहले वाले सूखते जाते थे थोड़ा थोड़ा, तो उनको इकट्ठा करते जाते थे, दूसरे बेलते जाते थे, क्योंकि ज़्यादा सूख जाएगा तो भी मज़ा नहीं आएगा, वो फूलेंगे नहीं, सॉफ्ट नहीं बनेंगे, है ना, तो उसको टूट जाएंगे मतलब। तो ज़्यादा नहीं सुखाना है, इस तरह झेट बना करके फिर इनको तलना है। और आजकल तो ऐसा है कि मठिया आप बना करके जब इच्छा हो तब तल सकते हो, कि ताज़ा ताज़ा तल के खाना है तो इकट्ठी थप्पी करके एक अच्छे से एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए और जब मूड हो, जब इच्छा हो तब आप तलिए। ऐसा हो गया, पहले नहीं रखे जाते थे, पहले तो आटा रात को रात नहीं रखते थे, कोई भी प्रकार का गूंदा हुआ आटा रात नहीं रखते थे। अब आज समय के साथ परिवर्तन हुआ है तो रात भी रखते हैं और जब चाहे तब बनाते हैं, लुए बना करके भी रख देते हैं, दूसरे दिन भी बेलते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ठीक है, ये मठिया की आपको विधि सिखाई है, ज़रूर आप बना करके खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये मठिया की दूसरी विधि भी आपको मैं सिखाने वाली हूँ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ठीक है, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे मठिया, और मठिया की दूसरी विधि अब फिर से आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि मठिया अच्छी तरह बना लीजिए, सुवारी अच्छी तरह बना लीजिए, कुछ एक दो रेसिपी और भी सिखाएंगे दीपावली से पहले, वो अच्छी तरह बन जाए ना तो बस और क्या चाहिए, फिर तो आप दूसरी चीज़ें बना सको ना बना सको तो भी आपके गुणगान हो ही जाएंगे कि अरे वाह क्या आपने स्वादिष्ट बनाया। अभी तो देखिए समय के साथ इतना चेंज आ रहा है कि मठिया रेडीमेड लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि माताओं बहनों को इतना समय नहीं होता है, अक्सर कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, और दीपावली के दिन ऐसे होते हैं कमाने के दिन होते हैं, इस समय ज़्यादा बिजनेस चलता है और जॉब वाले भी छुट्टी नहीं देते हैं कि नहीं नहीं भाई अभी तो आपको आना ही है, दीपावली के एक आध दिन पहले भले छुट्टी देंगे लेकिन ये सारी चीज़ें एकदम तो नहीं बना सकते ना, दीपावली के दिन या एक दिन पहले तो नहीं बना सकते हैं भाई, धनतेरस के बाद तो ये सब कुछ बनाना बंद कर देते हैं, फिर तो त्यौहार की खुशियां मनाते हैं ना, दीपक जलाए जाते हैं और घर की सजावट में ही हम लग जाते हैं। पहले हाँ थोड़े से घर की साफ सफाई पहले शुरू होती है, कुछ खाना बनाना ये सब ग्यारस से शुरू हो जाता है एकादशी से, ताकि क्या है कि एकादशी से पहले भी बनाते हैं, जैसे कि सातम आठम से ये करवा चौथ चली गई ना, करवा चौथ के बाद माताएं बहने सफाई अच्छी तरह पहले से कर लेती है, उसके बाद ये खाना खजाना ही बनाती है, क्योंकि जिनको शौक है वो तो अपने हाथ से ही बनाते हैं और हाथ से बनाते हैं उसमें समय लगता है, तो फिर वो शुरू कर देती है करवा चौथ के बाद, ताकि दीपावली पर कुछ करना ना पड़े, आराम से सब्जी रोटी बनाई और ये सारी मिठाइयाँ पहले से ही तैयार है, नमकीन आइटम पहले से तैयार है, तो सब्जी और पूरी बना देते हैं, बाकी ये मिठाइयाँ वगैरह रख देते हैं और रिलैक्स रहते हैं, ताकि हल्के रहते हैं कि कहीं जाना हो, घर पर कोई आवे, देव दर्शन मंदिर जाए तो भी सरल रहता है। तो इसलिए मैं आपको अब मिठाइयाँ सिखा रही हूँ, ताकि आप बना करके आराम से रख दीजिए, 20-25 दिन कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। महीने भर के बाद थोड़ा सा तेल चढ़ना शुरू हो जाता है, बाकी कच्चा पक्का महीना आप निकाल सकते हो ऐसी चीज़ें बना कर रखने से, ठीक है, हाथ से बनाते हैं तो क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि मठिया बना करके रख दो, जब चाहो तब तल सकते हो, तलने में कोई समय नहीं लगता, चीज़ बनी हुई तैयार है तो तलने में समय नहीं लगता, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी विधि बता रही हूँ, आप क्या करेंगे, देखिए भोजन क्या करते हैं, नमक को सेकते हैं और नमक को सेक करके दूसरे मसाले कच्चे डालते हैं और फिर सिका हुआ नमक डालते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी विधि बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा पानी लीजिए, ठीक है, हरी मिर्च की पेस्ट भी आप तैयार कर लीजिए और उस पानी में आप शक्कर, नमक, पापड़ खारा, हरी मिर्च ये डाल करके थोड़ा सा गर्म करिए, ठीक है। अजवाइन भी इसमें डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, हींग मत डालना, ठीक है, अजवाइन भी इसमें डाल दो और इसको अच्छी तरह गर्म कर दो, गर्म करने के बाद इस पानी को छान दो, ठीक है, छानने के बाद थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, हाँ आप इसमें थोड़ा सा घी डाल दो, गर्म गर्म में थोड़ा सा घी डाल दो, एक किलो है तो एक छोटा चम्मच घी डाल दो, ठीक है, और जब ये पानी गर्म हो जाए तो इसको छान दो, छान करके जब ये ठंडा हो जाए तो नवसेका रहे तो भी चलेगा, फिर आप मठिया के लोट को इसी तरह बांध दो, ठीक है, पानी आवश्यकता के अनुसार ही लेना है, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि भाई उसमें सारे मसाले पड़े हुए हैं, ज़्यादा पानी डाल दिया तो मठिया का टेस्ट बिगड़ गया और वो पानी आपका वेस्ट चला गया, ऐसा नहीं करना है। ऊपर से आप पानी ऐड कर सकते हो लेकिन मसाला वाला पानी ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे आप, वो तो काम नहीं आएगा ना, फिर मठिया का टेस्ट बिगड़ेगा, इसलिए आप आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा ही पानी लो, ज़रूरत पड़े तो ऊपर नवसे का पानी करके आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इस पानी को छान करके इससे आप बांध दीजिए, तिखास मिठास जैसा आप पसंद करें वैसा डालिएगा, और अच्छी तरह इसको वही प्रोसेस है फिर उसके बाद कि पानी से इसको अच्छी तरह मिक्स कर दो सारे आटे को, सूखा नहीं रहना चाहिए, फिट भी होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, अगर आप प्लास्टिक के कट्टे में रख करके पैरों से कुचलना नहीं चाहते हैं तो फिर आप लोखंड वाला हमाम दस्ता का मूसला लीजिए, ठीक है। और पत्थर होना चाहिए, टाइल्स पर मत आप पीटिएगा नहीं तो टाइल्स टूट जाती हैं। मजबूत पत्थर हो वहाँ पर आप एकदम तेल लगा करके, मतलब पहले तो उसको पोछा लगाइए अच्छी तरह, फिर वहाँ पर पोछा लगाने के बाद सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लीजिए, फिर तेल लगा दीजिए और फिर मठिया के लोट को वहाँ डाल करके अच्छी तरह आप उसको कूटिए, ठीक है। जितना हो सके आप में दम है उतना आप कूटिए और कूट पीट करके ऐसा उसको बना देना है कि एकदम वो खींचो ना तो वो टूटे नहीं, एकदम खींचा जाए रबड़ की तरह खींच जाए, ऐसा सॉफ्ट आपको बना देना है। इतनी देर आपको इसमें क्या है

इसे अंगूठे में धागे को पलटिए, फिर एक हाथ में उस धागे को पकड़ करके एक हाथ में उस बेल को लीजिए और ऐसे जो भी साइज आप पसंद करते हो गोल गोल काट लीजिए। काटने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा आपको रखना है, ठीक है, थोड़े से आटे में तेल डालना है, ठीक है, और तेल डाल करके फिर ये जो लुए तैयार हो गए हैं ना, इनको उस आटे वाले तेल वाले आटे में इनको पलटना है। जैसे हम चपाती बनाते हैं तो बीच बीच में आटा लगाते जाते हैं ना, इसमें बीच बीच में आटा नहीं लगाना है, तेल आटा मिक्स करके इसमें अच्छी तरह इन सारे लुए को आपको ऐसे तरह हिलाना है कि सभी के वो तेल वाला आटा लग जाए। फिर आपको क्या, बनाते समय कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बेलते समय। तो ये लुए आप रख दीजिए और जब चाहो तब आप बेलिए, जो साइज आप पसंद करना चाहते हो उस साइज के ही लुए काटिए ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और उसके बाद फिर आप बेल करके फिर आप तलिए, तलने का भी बड़ा ध्यान रखना है, एकदम लाल नहीं होना चाहिए। आप एक बार तेल को गर्म कर दीजिए, फिर उसको मध्यम आंच पर कर दीजिए, ज़रूरत पड़े तो बीच में स्लो कर दीजिए, फिर ज़रूरत पड़े तो गैस को तेज कर दीजिए, तलने की भी कला होती है, ठीक है। और फिर आप डालिए और चिमटे से ही निकालना है, ठीक है। हींग आपको बताई ना कि हींग हमको गर्म पानी में नहीं डालना है, फिर वो लोट बांधते समय ही उसमें हींग का पाउडर डाल देना है, हींग से अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। अजवाइन तो आपने डाल ही दिया है, तो फिर इस तरह तलिए, हल्का हल्का सा रेड होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे आप तलेंगे ना तो उसके वो फूलेंगे, एक वो क्या कहते हैं, बूंदी की तरह फूलेंगे, फूले हुए मट्ठे ही अच्छे लगते हैं, बैठे हुए तो फिर पापड़ हो जाएंगे, पापड़ की तरह हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, फूलने चाहिए बीच बीच में से, ठीक है, टिपके टिपके फुली हुई होनी चाहिए। तो सही मायने में प्रॉपर मठिया उसे ही कहते हैं। फिर अब आप तल करके डिब्बा भर दो और उसके बाद जब चाहो तब खा सकते हो। तो चलिए, जब चाहे तब क्यों, अभी ही भोग लगा देते हैं। तो लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप सुवारी रखिए, मठिया रखिए, सब्जी चपाती जो भी बनाई है रखिए, और तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा मठिया का, साथ ही गीत का। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं, बहुत ही सुंदर आपको विचार दिया है, जरूर उस पर गौर करिएगा। और नुस्खे भी बड़े अच्छे हैं, जरूर आप आजमा सकते हो। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत अच्छी हुई है कि कोई भी हमें कहे कैसे हो तो बड़े खुशी से एनर्जी के साथ बोलना है, हम ठीक है, हम अच्छे हैं, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बड़ा सुंदर था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझ जाए। तो कौन समझ जाए भाई? हमारे भाई जो हनुमान जी है उत्तर प्रदेश बलरामपुर से, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि भाई आजकल क्या है, बहुओं को डायरेक्ट नहीं कह सकते हो आप, बेटी को सुनाएंगे तो बहुत समझ जाएगी। पहले के समय में लोग क्या करते थे कि कोई भी बात होती, पहले क्या है कि जल्दी शादियां हो जाती थी, बहुएं भी बेचारी कम उम्र की आती थी तो वो समझ नहीं पाती थी। तो माँ अक्सर माता पिता घर में तो पहले संयुक्त परिवार होते थे, तो माताएं ऐसे मिल करके अपनी बेटियों को समझाते थे, देखो बेटा तुम ससुराल में जाओ तो ऐसे रहना, ऐसे करना, वैसे करना। अब बहू भी सुन रही है सब, तो फिर बहू भी फॉलो करती है कि अरे मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे चलना है। तो और आज का समय भी ऐसा है, पहले तो फिर भी बहुओं को आप दो बात सुना देते थे, लेकिन आज सुना के देखो, दो सुनाओगे तो दस सुनने को नहीं मिले तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अक्सर, ठीक है। तो आज भी माताएं बहनें यही करती है कि अगर घर में बहू भी है बेटी भी है, बहू कहना नहीं मानती या फिर कहना मानती है लेकिन डायरेक्ट तो उनको शिक्षा नहीं दे सकते ना, तो बेटियों को ही समझाती है। कुछ भी बात होती है तो बेटियों को ही डांटती है ताकि बहू सुने और वो भी समझे। तो हनुमान जी ने सबसे पहले जवाब दिया, उसके बाद तो खैर सभी ने दिया है, सुरेश भाई चोटाना से और कंचन भाई मंडाली से, आप सभी का जवाब सही है। सुरेश भाई ने कहा है कि बेटी को समझाएंगे तो बेटा समझ जाएगा, मतलब सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। तो देखो बेटा और बेटी तो माता पिता का अधिकार है, वो बच्चों को डायरेक्ट ही डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन बहू को डायरेक्ट नहीं कह सकते, एक मर्यादा रहती है। और कहीं बहू को बुरा न लग जाए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बहू को कोई डायरेक्ट नहीं कहते, मतलब कह सकते हैं। तो सबसे पहले तालियां बजेगी हनुमान जी के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया सबसे पहले, और उसके बाद सुरेश भाई चौटाना से, कंचन भाई मंडाली से, आपने भी सही जवाब दिया, इसके लिए तालियां। और बाकी सभी ने कोशिश अच्छी की, सुरेश भाई ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। और अब आज का सुविचार आपको सुना रही हूँ कि फूल है जीवन तो सुगंध है दोस्ती, तन है मंदिर तो आत्मा है दोस्ती। अब मैं आपको एक प्यारा सा हनुमान जी पर भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। ये भजन इस तरह का है कि जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा जब बाण लगता है और वो अचेत हो जाते हैं, तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। अब जाते हैं लेकिन आने में विलम्ब होता है, तो इधर सभी घबरा जाते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर भजन है, सुनेंगे।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है जागृति इस कार्यक्रम में। जागृति ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए डेडिकेट किया हुआ कार्यक्रम है और हम अभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और पिछले कड़ी में हमने मानसिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन विषयों के ऊपर हमने चर्चा की है और हमें मदद किया है इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे विशेषज्ञ हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आप दोनों साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, लेकिन आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है अनिद्रा के बारे में। यानी कि कई बार हम ये महिलाओं के अंदर देखते हैं कि दिन भर की मेहनत करने के बावजूद, थकान होने के बावजूद रात को चैन से सो नहीं पाते हैं या नींद नहीं आती है। वो कारण कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है या फिर वो किसी बात की चिंता में पड़ी हुई है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कारण कुछ भी है, लेकिन उसका जो रूप है उनके जीवन में वो अनिद्रा के रूप में दिखता है। तो कई बार वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या है जो अनिद्रा का कारण बनता है और हम एक चैन की नींद सोना क्यों जरूरी है और नींद अच्छी होने से हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव पड़ता है, आज इन विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ, जैसे हमने कहा कि पिछली कड़ी में हमें जिस तरीके से हर्षिता जी और वीरेंद्र जी ने मदद किया है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से, आप हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में अब अपनी सेवाएँ दे रहे हैं हरियाणा में, और आज रेडियो मधुबन पे बने हुए हैं अपने अनुभवों से आप सभी को मदद करने के लिए। तो हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस दूसरी एपिसोड में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद
1: जी। तो हम आज आपसे ये सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि एक जो कॉमन बीमारी है, या शायद इसको बीमारी कहे या ना कहे आप बता सकते हैं, अनिद्रा होना या सो नहीं पाना। महिलाएं दिन भर काम करती हैं बावजूद उनको ये कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है, घर पे ही तो बैठी हुई थी। मगर उसका एक रिजल्ट, एंड रिजल्ट में ये देखने को मिलता है कि वो सो नहीं पाती है। तो उसका क्या कारण हो सकते हैं और नींद ना होने से उनके जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है?
3: नींद मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा इंडिकेटर या सबसे बड़ा इशारा है। एक अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब वो नींद कितनी उचित है वो पर्सन से पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग शॉर्ट स्लीपर होते हैं जो 4-5 घंटे सोकर एकदम फ्रेश हो जाते हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती। कुछ लोग लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं जिनको 10-11 घंटे का नींद चाहिए, बट उन्हें एवरेज अगर देखा जाए तो 7-9 घंटे का नींद जो है वो एक नॉर्मल मनुष्य को चाहिए होता है अपने अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगर कभी भी नींद में कुछ दिक्कत आ रही है, अनिद्रा हो रही है तो हमें समझना होगा कि वह क्यों आ रही है, उसके कारण हमें ढूंढकर निकालने होंगे। अब अनिद्रा की जो बीमारी है वो या तो प्राइमरी इंसोम्निया हो सकता है जिसको हम बोलते हैं, जो अपने आप आ रही है, जिसके पीछे और कोई कारण नहीं है, सिर्फ नींद कम हो रही है। वो या तो सिर्फ नींद कम हो रही है या फिर उम्र के साथ साथ नींद कम होती जा रही है। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके नींद का समय कम होने लग पड़ता है। हम सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे जब पैदा होते थे वो 16 घंटे 17 घंटे 20 घंटे सोते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद की ड्यूरेशन कम होती रहती है। अडल्ट लाइफ आने के बाद में आपकी नींद 7-8 घंटे की सेट हो जाती है, वो फिर काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और जब उम्र ढलने लगती है या जेरियाट्रिक एज ग्रुप आने लगती है, जब आप 50-55 साल के ऊपर के हो जाते हैं, तब आप नींद आपकी धीरे धीरे कम होकर 5-4 घंटे की रह जाती है। अगर आप उतनी नींद लेकर भी खुद को फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, जब आप सुबह उठे तो आपका दिमाग एकदम स्वस्थ है, फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, आपको काम करने में कोई थकान महसूस नहीं हो रही, तो मतलब आपकी नींद बिल्कुल ठीक ठाक है। पर जब ऐसा नहीं हो रहा तो वो अनिद्रा है। अब अनिद्रा के अगर कारणों में जाएंगे, जिसको हम सेकेंडरी इंसोमनिया बोलते हैं, तो वो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। अब उसके कारण कुछ शारीरिक हो सकते हैं, आपको बुखार है, आपके शरीर में कुछ दर्दें हैं, आपको कोई और शारीरिक परेशानी है, डायबिटीज के अंदर में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हाइपरटेंशन में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से अनिद्रा हो सकती है। या फिर कोई मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, डिप्रेशन में नींद ज़्यादा भी होती है कम भी होती है, एंग्जाइटी की दिक्कत, बेचैनी की दिक्कत जिसे बोलते हैं, उसमें भी नींद की दिक्कत आती है, या और कुछ गंभीर मानसिक बीमारियां लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन डिसऑर्डर, जो ऐसी बड़ी मानसिक बीमारियां हैं, उनमें भी नींद कम या ज़्यादा होती रहती है।
1: जी सर, ये आपने बात तो सही कहा कि बीमारियां हो तो फिर नींद नहीं आती है, वो समझ में आता है कि ये इस कारण से हो रहा है। लेकिन एक आम तौर पे महिलाओं का अगर हम टेंडेंसी देखते हैं, ऐसी बड़ी बीमारियों के आइडेंटिफिकेशन तो उनके अंदर नहीं होता है, लेकिन वो सो नहीं पाती है, चाहे वो उनको आने वाली कल की चिंता हो या पूरे दिन में जिस प्रकार की बातें या फिर जिस तरीके के व्यवहार उसने सामना किया है वो उसको दिमाग में खा रहा है, या जो भी है, मन को शांत नहीं कर पा रही है, अगर हम सरल भाषा में कहें तो, उस कारण से भी जब सो नहीं पाती हैं, तो ऐसे में वो क्या प्रैक्टिस करे ऐसे दिन भर में, या फिर रात को सोने से पहले वो ऐसा क्या खुद के लिए ऐसा करे जिससे वो मन को शांत कर सके और वो सो सके।
3: अच्छी नींद के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे स्लीप हाइजीन बोलते हैं, जैसे हमारी डेंटल हाइजीन है, फिजिकल हाइजीन है, वैसे ही नींद, अच्छी नींद के लिए स्लीप हाइजीन होती है। उसके अंदर में कुछ प्रमुख चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको करेंगे तो आपकी नींद लगभग ठीक हो जाएगी, अन्यथा वो किसी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है। अगर सिर्फ कुछ चिंता या कुछ कारणों की वजह से आपको नींद नहीं आ रही तो वो उससे ठीक हो जाएगी। उसमें सबसे जो ज़रूरी है वो है आपको अपनी नींद का समय फिक्स रखना पड़ेगा कि मुझे हर रोज इस समय सोने के लिए जाना है और इस समय उठना है, हफ्ते के सातों दिन, रविवार को लेकर। अधिकतर हम देखते हैं कि लोग शनिवार रात को लेट नाइट तक जागते हैं, पर उसका इम्पैक्ट, उसका असर अगले दिन भी रहता है, अगली नींद भी आपकी खराब होगी। तो रोजाना एक समय पर सोना शुरू करें, रात को 9 बजे के बाद में किसी भी ब्राइट लाइट का एक्सपोजर कम से कम रखें, लाइक मोबाइल फोन का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद, टीवी का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद ना करें, क्योंकि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्स स्टेट में चला जाना चाहता है। अगर वो एक्टिवेटिंग स्टेट में है तो हमें कभी भी अच्छी नींद नहीं आएगी। जब हम बहुत देर तक फोन या टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को 10, 11, 12 बजे तक फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद जब हम सोने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो इमीडिएटली रेस्ट स्टेट में नहीं जाएगा, वो बहुत देर तक उन्हीं वीडियोज को सबकॉन्शियस लेवल पे घुमाता रहेगा और चलाता रहेगा। इसलिए जब हम सुबह उठेंगे तो हम सो भी गए हैं, साथ वाला आदमी बोलेगा कि तू तो अच्छा खासा सो रहा था, खराटे ले रहा था और ये कर रहा था, बट आप जब सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेश फील नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो नींद की क्वालिटी है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है, आपकी नींद की क्वालिटी भी खराब हो गई। तो उसको ठीक करने के लिए आपको रात को 9 बजे के बाद ब्राइट लाइट एक्सपोजर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना है। तीसरी चीज़ जो होती है वो शाम को 5 बजे के बाद कैफीन इनटेक को कम कर दीजिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, रेडबुल, जो ऐसी चीज़ें जो एक्टिवेटिंग या जगाने वाली चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल शाम को 5 बजे के बाद बिल्कुल बंद कर दिए, ताकि ब्रेन को कूल डाउन होने के लिए 3 से 4 घंटे मिले। अपने बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। बिस्तर पर बैठ के अगर टीवी देख रहे हैं, बिस्तर पर बैठ के अगर खाना खा रहे हैं, तो उस चीज़ का अवॉइड करें, क्योंकि बिस्तर का आविष्कार सिर्फ सोने के लिए हुआ था। तो जब बिस्तर पर सिर्फ सोने के लिए जाएंगे तो ब्रेन को ये ऑटोमेटिक सिग्नल जाएंगे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ सोना है। सोते समय कोशिश करें कि एब्सोल्यूट डार्क रहे कमरा, बिल्कुल अंधेरा रहे, रोशनी ना रहे बिल्कुल भी, टेम्परेचर हमेशा ठीक ठाक हो कि आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगे, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा हो। और सोने से पहले कभी भी भारी काम मत करें, मतलब बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम मत करें कि शरीर में कोई पीड़ा रह जाए, तो उस वजह से भी नींद गड़बड़ होने लग पड़ती है। तो शाम के समय अगर एक्सरसाइज करनी है तो एकदम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी, 10-15 मिनट का सैर कर लिया हल्का, बिना शरीर को ज़्यादा कष्ट दिए हुए। और आई थिंक ये अगर चीज़ें करेंगे तो स्लीप हाइजीन बहुत अच्छी रहेगी और आपको नींद अच्छी आएगी। डॉक्टर हर्षिता, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं?
2: जब हम सोने जा रहे हैं, सर ने बहुत अच्छी स्लीप हाइजीन एक हमारे लिए 6 से 7 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे ऐड ऑन करे हैं। इसमें बस मैं 2 से 3 पॉइंट्स और है जो ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो जो आपका पिलो है उसका मेजर ध्यान रखें कि वो 3 से 4 इंच का पिलो है जो आपके नेक के लिए, और बिना पिलो लिए नहीं सोना है। या तो आप बेडशीट को फोल्ड करके सोएं, क्योंकि आपकी जो गर्दन की शेप है वो उस हिसाब से डिजाइन है। जो पिलो का साइज है वो कम से कम 3 से 4 इंच का होना चाहिए। आप उतना पिलो लगाकर ही सोएं, आपकी गर्दन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और रात को सोते हुए एक एक्सरसाइज है जो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिसको हम जैकॉब्सन रिलैक्सेशन मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो JPMR आप ये लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज अगर आप करके सोते हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको सोने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। ये एक्सरसाइज आप एक ऐसे नाइट रूटीन बना लें कि ये तो मुझे करके ही सोनी है, इसके बिना मुझे सोना ही नहीं है। आप फील करेंगे कि अगर ये पूरी स्लीप हाइजीन आप मेंटेन कर रहे हैं, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा और फ्रेश होगा। लास्ट चीज जो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब भी हम स्टिल कह रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, सब कुछ तो कर लिया, एक बुक उठाएं, पढ़ने लग जाएं, नींद आने लग जाएगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बोरिंग काम हमें लगता है। बोरिंग काम करते हुए हम कैसे बच्चों को नींद आने लग जाती है पढ़ाई के नाम पे, बोरिंग से बुक उठाएं या फिर कुछ ऐसी जो कुछ शिक्षादायक हो, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ भी नेगेटिव, कोई नोवेल, वो चीजें पढ़ने की जगह आप कुछ पॉजिटिव उठाएं, वो पढ़ें, पढ़ते पढ़ते आपको जरूर नींद आ जाएगी। एक प्रॉपर 10 से 12 पॉइंट्स जो हमने मिलके बताए हैं, ये आप अगर करेंगे बहुत ही अच्छी आपको नींद आएगी।
1: जी ये बहुत सारी अपने टिप्स दी हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मैं एक और बात जानना चाहती हूँ। वो महिलाएं जो शाम को निकल नहीं पाती हैं या जो भी हैं, ये सारी चीज़ें अपनी बाहरी तौर पे एक फिजिकल कंफर्ट दे सकें और एक कॉन्शियस लेवल पे हमको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि मुझे अभी सोना है तो सोने के लिए मुझे ये चीज़ें नहीं करना है, मतलब शाम से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे, रात को मुझे ये सोना है तो ये चीज़ें करनी है। उसके साथ साथ जो सुबह से हमारे दिमाग में जो लोड है, सुबह से जो कैरी किया है हमने चीज़ें, वो भी कई बार सताते हैं। और जैसे आपने कहा कि लाइट होने से भी नींद नहीं आती है, तो वो भी एक फिज़िकल ऐड ऑन वर्क है, लाइट्स बंद कर दिया, सब कुछ बंद किया, लेकिन जो दिमाग में जो चल रहा है, जो पीड़ा वो पकड़े हुए हैं या वो पीड़ा जो सता रही है, अगले दिन की चिंता हो या फिर जो सुबह से बातें हुई है, वो खुद को जवाब नहीं दे पा रहे हैं या फिर उसको स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मोमेंट में उन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल करें?
2: इसका बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि जब सुबह से हम उठे, ऐसा तो नहीं है जीवन में चीज़ें होनी बंद हो गई, रिश्तेदारों ने कुछ कहना बंद कर दिया, या फिर परिवार वालों से टोन नहीं मिले, या फिर बच्चों ने कुछ गलत नहीं बोला। नॉर्मल है, सुबह उठते हैं उनके लिए काम करना शुरू करते हैं, रात तक जब तक वो सोते हैं उनके लिए काम करते ही रहते हैं, और उनके अगले दिन उठने से पहले महिलाएं उठ जाती हैं। तो सुबह से लेकर रात तक आप जिनके लिए काम करते हैं उन्हीं से आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हमें प्यार तो है अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने आसपास के लोगों से, लेकिन जब हम चीज़ें सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है, फिर हम कहते हैं कि हम हर्ट होते हैं, हमें ये जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी नहीं लग, क्योंकि वो हमें एट द एंड कर तो हर्ट ही रहे हैं, अपनी बातों से करते हैं, अपने एक्शन से करते हैं। अब आते हैं कि चीज़ें हम नहीं बदल सकते, हम लोग नहीं बदल सकते, हम परिवार नहीं बदल सकते, लेकिन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें निकालना है। तो इसका जो सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है कि हमें कुछ अपने मेंटल हेल्थ में चेंज करना है, वो ये है कि आपको वेंट आउट करना है, अपनी चीज़ों को बाहर निकालना है। अगर आप बाहर निकालते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, आप अच्छा फील करते हैं, आपको हल्का फील होता है। अब वेंट आउट करने के 3 से 4 तरीके मैं आज आपको बता सकती हूँ। एक जो लोग या महिलाएं लिख सकती हैं, वो एक डायरी राइटिंग करना शुरू करें, सुबह से लेकर रात तक जो भी आपको कुछ भी ऐसा फील हुआ, जो आपको नेगेटिव फील होता है, किसी की कोई बातें फील होती हैं, वो आप लिखना शुरू करें। बेस्ट सोल्यूशन है अपनी फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए। दूसरा, जिनको आलस आता है कि मुझे लिखना नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो नहीं लिख पाऊंगी इतना ज्यादा।
1: कई बार हो सकते हो महिला को लिखना भी नहीं आता हो।
2: हाँ एग्जैक्टली, उसी के लिए मैंने बताया। तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, आपको किसी को बुरा भी लग रहा है किसी को कुछ कहना, लेकिन आप उसके फेस पे नहीं कह पा रहे, लेकिन अगर अंदर रखेंगे तो राई का पहाड़ तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए आपको उसको पहाड़ को नहीं बनने देना है, उसको वहीं के वहीं खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए आप बोलिए, आप बात करिए, ठीक है। तीसरा है कि अगर जिनको लिखना आता है वो उस इंसान के लिए डायरी राइटिंग कर सकते, जैसे हमने बोला वैसे ही लेटर राइटिंग कर सकते हैं। ये तीन सॉल्यूशंस हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपके वो जो विचारों का एक लूप चल रहा है, जो टर्न ऑन की जगह ऑफ नहीं हो पा रहा, वो स्विच आप ऑफ कर सकते हैं।
1: जी, तो कुल मिला के यही है कि हम उसको स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी हुआ है, जो चीज़ बीत गया है, उसको पकड़ के बैठे तो फिर उसका समाधान नहीं है। या तो हम उसके लिए सोल्यूशन खुद से ढूंढें, अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो किसी और से सोल्यूशन लें, लेकिन उसको वहाँ पे उसको ख़त्म कर दें।
2: अंदर ना रखें, उसको बाहर निकालें। उसको जितना अंदर रखेंगे आप अपने आप को ही ख़राब कर रहे हैं। उसको बाहर निकालें, जैसे मैंने चार तरीके बताए, चारों में से ये उनके लिए भी है जो लिख सकते हैं, उनके लिए भी है जो नहीं भी लिख सकते, नहीं भी पढ़ सकते। चारों में से जो आपको सेट बैठता है आप वैसे वेंट आउट करें, बट करें ज़रूर। किसी को अपना फ्रेंड बनाएं या कुछ कैसे भी, बट आप वेंट आउट ज़रूर करें।
1: जी, मैं आप दोनों से एक और सवाल करना चाहती हूँ। हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें हमारी लाइफस्टाइल में कि ये मेरी नींद की डिसऑर्डर या इंसोमनिया या निद्रा, जिस भी कारण से जो नींद डिस्टर्ब हुआ है, उस कारण से ये मेरी लाइफस्टाइल में चीज़ें आ रही है या फिर मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो कई बार जैसे हेडेक है, क्रॉनिक हो जाता है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, इरिटेशन है, ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो कई बार ये हम नहीं समझ पाते हैं कि ये मैंने नींद पूरा नहीं किया या फिर टाइम पे खाना नहीं खाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ऐड ऑन होकर के उसका रिफ्लेक्शन दूसरी तरीके से होता है। तो फिर ये अनिद्रा से किस प्रकार की हमारी लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंसेस होते हैं या फिर हमारे जीवन शैली में क्या ऐसे नुकसान दिखते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ, मुझे ये नींद ना करने के कारण मेरे अंदर ये दिख रहा है, मुझे सामने वाले व्यक्ति को या किसी को ब्लेम करने की जगह मुझे खुद को ठीक करना है।
3: देखिए, सबसे पहले एक अच्छी नींद का इंडिकेटर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो है अगली सुबह आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप सुबह उठे तो आप अपने आप को कितना फ्रेश महसूस कर रहे हैं अगले दिन के चैलेंजेस को लेने के लिए। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपकी नींद अच्छी हुई है या नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नींद का समय से उतना लेना देना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो 5 घंटे सोकर भी अगले दिन सुबह एकदम फ्रेश होते हैं और कुछ लोग 12 घंटे सोने के बाद में अगले दिन सुबह फ्रेश फील कर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप सुबह उठे तो आपका मन कितना शांत है, आपका मन कितना संतुलित है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, अगले दिन के काम करने के लिए। सिर्फ मन ही नहीं, शारीरिक भी। अगर आपकी नींद ठीक नहीं होगी तो अगले दिन आपको शारीरिक रूप से भी थका थका लगेगा, आपको काम करने में एनर्जी महसूस नहीं होगी, जिस तेजी से आप भाग सकते हैं आप उस तेजी से नहीं भाग रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा साइन है अच्छी नींद होने का। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि आप बिना बात के बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, बातचीत में सबके साथ में थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो रहा है, किसी की छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बुरी लग रही हैं जो कि पहले नहीं लगती थी, तो आपको सबसे पहले अपनी नींद के ऊपर ध्यान देना होगा कि मेरी नींद ठीक हो रही है या नहीं, मैं अच्छे से सो पा रही हूँ या नहीं सो पा रही। उसके अलावा अगर आपकी शारीरिक कुछ बीमारियाँ, अगर आपका हाइपरटेंशन अचानक से बीपी बढ़ने लग पड़ा है, आपकी शुगर ठीक नहीं रह रही, आप खाना ठीक ठाक परहेज कर रही हैं फिर भी, दवाई भी ले रही हैं फिर भी शुगर ठीक नहीं रह रही, तो तब भी आपको उसी समय आप ध्यान कीजिए कि आपकी नींद 90% चांस है कि आपकी नींद ठीक नहीं हो रही, क्योंकि नींद से फिजिकल और मेंटल दोनों इश्यूज आते हैं। तो आपके जो बीमारियां आपको चल रही हैं, थायराइड की, शुगर की, बीपी की, उसमें गड़बड़ आएगी, आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप एनर्जी, आपके काम के लिए प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ेगी और आपके बिहेवियर में लोग देख पाएंगे और आपको बोल पाएंगे कि पहले तो तू इतना चिड़चिड़ी नहीं हुआ करती थी, अब तू क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा कर रही है, क्यों हर बात को इतना दिल से लगा रही है, और आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं चीजों को ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ।
1: जी, तो हमारी जीवन में जब अनयूजुअल बिहेवियर को हम खुद नोटिस करते हैं तो उसमें हम अपनी नींद को चेक करना बहुत जरूरी है।
4: जी।
1: इसके अलावा कोई और मेथड्स या कोई और पैरामीटर्स जो आपको लगता है कि इन चीज़ों पे नींद के लिए अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, खास करके एज वाइज स्लीपिंग ऑर्डर्स में? जैसे आपने कहा कि एज के अनुसार स्लीप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम होते जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। आजकल हम यंग एज गर्ल्स को देखते हैं, वो नौकरी के कारण है या जैसे भी, लेट नाइट सोना, और फिर वो लेट नाइट सोने से कई बार हम ये भी डॉक्टर्स के साथ या किसी से सुनने को मिलता है कि मोटापा बढ़ने में भी नींद का बहुत
3: बिल्कुल मोटापा बढ़ने में, हार्मोन्स चेंज होने में, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है लड़कियों के अंदर में, मोटापा बढ़ता है, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है, हार्मोनल चेंज होने लग पड़ते हैं लड़कियों के अंदर में, वो सबका नींद के साथ में रिलेशन है। तो एक अच्छी नींद जो है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों को आइदर पूरा कंट्रोल कर देती है या फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका कंट्रोल करने में मदद करती है, और दवाइयों का असर भी ज़्यादा बेटर होता है अगर आपकी नींद ठीक ठाक है।
1: जी, ये तो यंग एज गर्ल्स के लिए आपने कहा कि इस प्रकार की बीमारियों से वो बच सकती हैं अगर वो अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करती हैं। तो ये जो 12 बजे 2 बजे 3 बजे के बाद जो सोते हैं उससे क्या असर पड़ता है लाइफ में?
3: जब आप लगातार 12 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसा करके, देखिए सबसे पहले मैं चीज समझनी पड़ेगी कि जब भगवान ने चीज़ों को बनाया तो दिन और रात जब बने तो रात नींद के लिए दी गई, तो इसलिए समय को उसी तरह से बनाया गया कि हमारे शरीर के अंदर में क्लॉक होती है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या सिकार्डियन रिदम, वो डिसाइड करती है कि हमें कब सोना है। जैसे जैसे दिन ढलता है तो हमारी बॉडी के अंदर में कुछ केमिकल चेंज होने लग पड़ते हैं अपने आप से, और वो भगवान ने वैसे ही बना के दिए। जब वो केमिकल चेंज आने लगते हैं तो हमें अपने आप से नींद आने लग पड़ती है और हम एक समय के बाद सो जाते हैं, और जैसे ही सूरज निकलता है तो उसके बाद फिर से हमारी बॉडी में केमिकल चेंज होने लगते हैं और हम दोबारा से जाग जाते हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन है, जो कि हम बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कर रहे हैं जो भगवान ने बनाकर भेजी है। पर जब हम उस क्लॉक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, जो किसी भी भगवान की बनाई हुई चीज़ से जब हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस या उसके रिजल्ट तो आएंगे। तो जब हम बहुत देर तक रात को 2 बजे तक 3 बजे तक लगातार काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पर सोने को अवॉइड कर रहे हैं, और उसकी जगह हम लोग उसको दिन में सोने को शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि वो सोने का समय उन्होंने चेंज कर दिया, वो रात को 3-4 बजे सोते हैं फिर सुबह 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो उसके शरीर को अपने नुकसान होते हैं, उसके शरीर को नुकसान होते हैं, मानसिक नुकसान होते हैं उसके, क्योंकि हम नेचर की बनाई हुई चीज़ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं।
1: तो ऐसे में क्या डिस्टर्बेंसेस देखते हैं साइकोलॉजिकली या फिजिकली?
3: लोग बहुत चिड़चिड़े रहने लग पड़ते हैं, बिहेवियरल इशू आने लग पड़ते हैं, जब आप सुबह नहीं उठ रहे, जब आप लेट उठ रहे हैं तो आपका दिन काम करने का बहुत छोटा हो जाता है, आपका लोगों से मिलने का समय बहुत छोटा हो जाता है। देखिए अगर आप 4 बजे तक जाग रहे हैं रात को तो रात के समय तो कोई आपसे नहीं मिल रहा, तो जो आपका ह्यूमन टच का जो काम है जिसमें आप लोगों से मिल रहे हैं वो आपका समय अपने आप से छोटा हो जाएगा अगर आप 2 बजे सोकर उठ रहे हैं, 2 से लेकर शाम को 6 बजे तक 3-4 घंटे ही आप अपने काम कर पाएंगे, बाकी सब काम ऐसे हैं जो आप अकेले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लग पड़ते हैं। आप देखेंगे कि इस तरह के लोग बिना वजह गुस्सा रहते हैं, काम करने में उनका जो ध्यान है वो कम होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ती है, और उनको जो शारीरिक नुकसान है वो भी होने लग पड़ते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि आपकी बीपी शुगर की समस्याएं और ये सब प्रॉब्लम भी आने लग पड़ती है।
1: लेकिन कई युवा महिलाएं जो इस तरीके से नाइट शिफ्ट में काम करती है या ऐसा, उनका ये कहना होता है कि दिन में हमारा काम नहीं होता है, वो क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी जो है वो रात को ही होती है।
3: ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि सिर्फ क्रिएटिव काम में सिर्फ रात को कर सकती हैं या दिन में नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आप दिन में भी सभी प्रोडक्टिव और सभी क्रिएटिव काम कर सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ रात में बैठकर ही क्रिएटिव काम कर पाएंगी और सुबह नहीं कर पाएंगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और हम तो बचपन से मतलब सिखाया गया है कि सुबह का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, सुबह अगर आप 4-5 बजे उठ रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं तो आई थिंक उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव समय आपको कोई नहीं मिलेगा।
1: जी, सो लास्ट में व्हाट इज द आइडियल टाइम कि यही लास्ट आवर है, इसके बाद जागना नहीं चाहिए, इस समय वो सोना है एंड दिस इज द लास्ट आवर, इसके बाद सोना नहीं है।
3: देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से तो हमें बहुत जल्दी सो जाना चाहिए, हमारा जो नींद का समय है वो 8-8:30 बजे बनता है और सुबह जल्दी उठना उसके साथ में लगभग 4-4:30 बजे उठ जाना, तो 8 घंटे की नींद भी हो रही है और हम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं। बट फिर भी आज के मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से अगर आप 10 बजे के आसपास भी सो रहे हैं और सुबह 6 बजे भी उठ रहे हैं तो आई थिंक वो समय आपके लिए बहुत ठीक है
1: जी, लेकिन 10 के बाद फिर जागना कोई फायदेमंद नहीं है।
3: नहीं,
1: थैंक यू सो मच आप दोनों को, वीरेंद्र जी और हर्षिता जी, हमारी जो ये स्लीप हाइजीन, आज एक नया शब्द हमको सीखने को मिला है, और आइडियल टाइम क्या है सोने का और नहीं सोने के कारण समय पे हम और सही तरीके से उससे क्या नुकसान होता है और उसको कैसे ठीक करना है, सबसे बड़ी बात है कि सॉल्यूशन कि हम उसको कैसे ठीक करें, आज आप दोनों ने हमें उपलब्ध कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम, अनिद्रा के बारे में, खास करके महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जागरूकता इस कार्यक्रम में। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं सभी वर्ग से मिलते हैं, क्योंकि सरकार का जो मंच है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देती है, जिस मंच का माध्यम से हम अपना हुनर को हमारा टैलेंट को प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सरकार का आशा है हमारा बच्चे आगे बढ़े और विद्यार्थी विकास में ईश्वरीय विद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से आज प्रस्तुतिकरण होगा। क्योंकि आज खासकर हम आए हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हीरापुरा, जो कि आबू रोड का पास ही, जो अंबाजी रोड जाते हैं उसमें हीरापुरा मेन रोड का सामने ही साइड में ही इनका स्कूल है। तो सभी बच्चे अपना बारी बारी प्रस्तुतिकरण देंगे। हमें खुशी है जब भी आते हैं एक इशारा से अचानक में आते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं, तब भी बच्चे आगे बढ़ चढ़ हिस्सा लेते। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमें सभी स्टाफ को भी धन्यवाद देते और हमारा HM मैम को भी धन्यवाद देते हैं। मैम बच्चों को वार्म अप करा देते हैं और मैम अपना परिचय देंगे, क्योंकि संस्था का संस्था प्रधान है, प्रभारी है और कप्तान जैसे सभी बच्चों को और स्टाफ को कोऑपरेट करते हैं, एकजुट बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो मैम अपना परिचय देंगे, मुझे खुशी लगे उनका व्यवहार में बच्चों को भी ऐसे आप समान बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे मैम बने तो बच्चों को भी हम टीचर बनाने के लिए कोशिश करते, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो अलग बात है, लेकिन उनका पहला प्रयास जो बच्चे भी हमारा जैसे बने हम जिन को उठाने के लिए। मैम आपका परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम हेमलता है और मैं राजकीय उच्च प्राथमिक हीरापुरा में संस्था प्रधान हूँ। आज हमारे बीच में पवित्र भाई रेडियो मधुबन से पधारे हैं, वो आपको आत्मा के बारे में और मैं कौन हूँ इसके बारे में जानकारी देने आए हैं। आप ध्यान से सुने उन, धन्यवाद।
0: मैडम ध्यान तो सुन लिए आत्मा का बारे में, अभी बच्चों को और क्या उमंग उत्साह दिलाना चाहते हैं?
1: मेरी यही इच्छा है कि तुम लोग जो हम है ना वैसे बनो। हाँ। बस यही मेरी इच्छा है, मेरी दिली इच्छा है कि जैसे हम है ना वैसे तुम बनो। मैं तुमको ये बनाना चाहती हूँ। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रयास। और प्रयास कैसे होगा? स्वयं से, स्वयं प्रयास करोगे। कोई कुछ कहेगा नहीं तुमको कि तुमको, तुम्हारे माता पिता नहीं कहेंगे कि तुमको क्या बनना है। वो स्वयं को होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है आगे जाके, ठीक है?
0: मैम आपके छोटे बच्चे का समय में क्या मेहनत किए जो आज मैडम बन गए, ये बच्चे भी मैडम बनना चाहेंगे, तो आप पढ़ाई के समय में इतना उम्र में 8वीं क्लास का याद तो होगा, तो कितना मेहनत करते थे उस समय? देखिए मैम कैसे प्रैक्टिस करके आज मैडम बने, सुनो ध्यान से, आप भी बनना है आपको।
1: जैसे तुम एक गांव में रहते हो ना वैसे मैं भी गांव में ही पली बड़ी हूँ। मेरा जन्म भी रोहिड़ा गांव में हुआ था जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। और मैं, मेरे माता पिता के हम 6 संतान थे, उसमें हम 3 भाई और 3 बहने और हम सब पढ़े लिखे। और आज हमारे घर में 9 टीचर है।
0: क्या बात, ताली बजा भाई जोर से मैडम के लिए।
1: और वो सब ऊंची ऊंची पोस्ट पे है, कोई कॉलेज लेक्चरर है तो कोई प्रिंसिपल है, कोई फर्स्ट ग्रेड है। ऐसे हमारे घर में सारे 9 के 9 पूरे टीचर है। वो कैसे बने? वो हमारे माता पिता की मेहनत से, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया हमारे को पढ़ाने में। मेरे पिताजी 7वीं पास थे और मेरी माता 5वीं पास थी, लेकिन मेरी मम्मी की ये इच्छा थी, क्योंकि मेरी मम्मी के जो भाई थे ना वो 5ों भाई टीचर थे, तो मेरी मम्मी की यही इच्छा थी कि मेरे बच्चे सारे टीचर बने। तो मेरी मम्मी ने और पापा ने हमको बहुत मेहनत करके और पढ़ाया, तो आज हम इस मुकाम पर है। तो मैं, मेरी भी यही इच्छा है कि तुम लोग भी यही बनो।
0: इच्छा शक्ति है ना, इच्छा शक्ति जब होगा तो जरूर कामयाब होंगे और ठान लेंगे जो मैं बनूंगी बा बनूंगा तो जरूर बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन लेकिन क्या है, खुद को संकल्प लेना है पढ़ाई में। विद्यार्थी जीवन में जो पढ़ाई होता है स्कूल, वो तो पढ़ाई करना ही है, इसका साथ साथ घर में जो जाते होमवर्क रेगुलर करना है और 2-3 घंटा पूरा एक्यूरेट करेंगे ना तो 5 साल मेहनत करेंगे ना, अगला 90 साल कोई सोचना नहीं पड़ेगा, पैसा ही पैसा आएगा और सम्मान मिलेगा और 10 परिवार को सजा देंगे मात्र 5 साल 10 साल।
1: तुम्हारी बुद्धियां बहुत तेज है।
0: हाँ।
1: लेकिन तुम उसका क्या नहीं कर रहे हो?
0: यूज करो।
1: यूज नहीं कर रहे हो ना, बुद्धि सबके समान है, ऐसा नहीं है कि इसके ज्यादा है या इसके कम है, ऐसे नहीं है, सबकी बुद्धि समान है। लेकिन कोई बुद्धि का यूज कहाँ करता है, कोई ज्यादा खेलने में करता है तो कोई ज्यादा पढ़ने में करता है, जो पढ़ने में करता है वो आगे बढ़ जाता है और जो खेलने में करता है वो वहीं रह जाता है। फिर वो क्या करता है? मजदूरी करता है। क्या करता है?
2: मजदूरी।
1: हाँ, और जो पढ़ता है और अपनी बुद्धि का यूज करता है वो कहाँ पहुंचता है?
2: जो भी चाहे वो कर सकता आगे,
1: जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो बन सकता है। तो तुमको क्या करना है, पढ़ लिख कर
2: मेहनत करके आगे बढ़ना है,
1: आगे बढ़ना है। तो मेहनत करोगे, करोगे?
2: हाँ जी,
3: हाँ जी,
2: हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बोलो? हम ही किए थे, हम ही
3: करेंगे,
2: जरूर करेंगे, खुद का, हमारा परिवार का, हमारा विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, ये हमारा संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, पक्का संकल्प है, पक्का, वेरी गुड, ऐसे होना, बहुत अच्छा। बच्चों के लिए मैं ताली बजा देता हूँ, वाह, हमारा बच्चे ऐसे होना चाहिए, है ना। लेकिन कल भूलना नहीं, ये स्कूल बाहर जाएंगे पूरा याद भूल जाएंगे तो हमारा गया सब पानी में जाएगा। इसलिए याद रखना, मैं कौन और मुझे क्या करना चाहिए, दो चीज, मैं कौन और मुझे क्या करना चाहिए। कोई क्या करे उसको नहीं देखना है, मैं क्या कर रहा हूँ वो देखना है। मैं अच्छा करूंगा बा करूंगी तो मैं अच्छा बोलूंगा, वो खराब करके वो जाने, लेकिन हमें ठान लेना जे हम करके दिखाएंगे, बोलो हम करके
3: दिखाएंगे।
2: धन्यवाद, वार्म अप कर दिए मैडम ने, और बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, वो भी अपना प्रस्तुतियां देंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे कार्यक्रम को अगला प्रस्तुति में। खासकर हमारा छात्राएं उपस्थित है, पूरा रेडी, सभी बच्चे रेडी है, और प्रार्थना में अपना आवाज को सुनाएंगे। लेकिन अल्प विराम के बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति हमारा छात्र उपस्थित है। सभी बच्चे रेडी? ओके डन, शुरू करते हैं। अपना नाम और कौन सा क्लास से, नाम बताइए।
1: किरण।
0: कौन सा क्लास और स्कूल का नाम पूरा बताना।
1: मैं क्लास 7वीं में पढ़ती हूँ।

0: स्कूल का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हीरापुरा सातपुर।
1: वेरी गुड। नेक्स्ट।
2: मेरा नाम प्रियंका है, मैं कक्षा सातवीं में पढ़ती हूँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हीरापुरा सातपुर।
3: मेरा नाम दिव्या है, मैं कक्षा आठवीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हीरापुरा सातपुर।
4: मेरा नाम रिंकू है, मेरा विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हीरापुरा सातपुर।
5: मेरा नाम लक्षिता है, मैं कक्षा सातवीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हीरापुरा सातपुर।
1: वेरी गुड। सभी मिलकर एक प्रस्तुति सुनाएंगे और भी प्रार्थना में। चलो शुरू करिए।

सुंदर प्रस्तुति। और जब स्कूल में जाते हैं, इसे हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में गीत गाते हैं, बच्चों का उमंग उत्साह देखते हुए रेडियो मधुबन भी एक मंच आज दिए हैं, जिसका चलते बच्चे अपना भाव और भावना को प्रकट किए गीत भजन के माध्यम से। इस तरह कार्यक्रम जब होता है तो बच्चे बढ़ चढ़ भाग लेते हैं और उनका अंदर में जो भावना है, जो भाव है, दिल का बात रखते हैं। और जो मंच आज आवश्यकता था वो मंच बच्चों को मिला, क्योंकि आकाशवाणी में जब बच्चे आते हैं, जैसे ऑल इंडिया रेडियो होते हैं, तो पूरा आदिवासी बच्चे नहीं जा पाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मास कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आरजे सीखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट राइटर सीखना पड़ेगा। लेकिन आज हमारा बच्चे आरजे बन गए, रेडियो जॉकी बन गए, क्योंकि रेडियो में जो बोलते हैं उसको आरजे कहते हैं। तो सरकार को धन्यवाद देते हैं, सरकार इस तरह कम्युनिटी रेडियो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और आदिवासी जो लोकल कम्युनिटी को दिए हैं। कमर्शियल रेडियो बड़े बड़े शहर में होते हैं पैसा कमाने के लिए, कमर्शियल रेडियो एडवर्टाइज आता है, लेकिन ये कम्युनिटी रेडियो मीन्स आपका रेडियो, थेमरो रेडियो, थेमरो वास्ते आपका रेडियो आपके लिए काम करते, आपका आवाज आप बढ़ चढ़ हिस्सा लिए। तो रेडियो में जो बोलते हैं तो उसको आरजे कहते हैं। तो हमारा चार आरजे जैसे रिंकू और प्रियंका, दिव्या नाम है, कितना सुंदर, उसका माँ बाप को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि माँ बाप जब सुनते हैं इस तरह आकाशवाणी में बच्चों का आवाज, जब सुनेंगे उनका आवाज ही उनका पहचान होगा, अरे ये तो हमारा रिंकू का आवाज है, ये हमारा पिंकी का आवाज है, ये हमारा दक्षा का आवाज है, ये हमारा दिव्या का आवाज है। जब सुनेंगे तो नामांकन भी वृद्धि होगा, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाई का साथ साथ ऐसे आकाशवाणी में बच्चे जब आते हैं, उनका आवाज जब सुनते हैं, तो मैम आपका स्कूल का तो चार चांद लगेगा, बहुत भीड़ लगेगा आगे के लिए, क्योंकि बच्चे रेडियो में कार्यक्रम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक प्रस्तुति जो दिए सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। लेकिन बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। यह था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हीरापुरा, जो कि सातपुर ग्राम पंचायत में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सुनते हैं अगला प्रस्तुति और सेम ग्रुप वंस मोर करते करते और एक प्रस्तुति के लिए सभी बच्चे सुन रहे ध्यान से
1: हाँ जी।
0: प्यार से बोलिए हाँ जी,
1: हाँ जी।
0: दिल से बोलिए हाँ जी,
1: हाँ जी।
0: और हमारा जो बहन सुना रहे उनके लिए एक हाथ का ताली ऐसे करो, एक हाथ का ताली ऐसे ऊपर टाटा करो सभी। देखो तुम्हारा लिए कितना खुशी, तुम हमारा होनहार बच्चे, वेरी गुड। क्योंकि इतना बच्चे, सिर्फ 5 बच्चे ही सिलेक्टेड हुए, उनके पास विशेषता है गायन कला बोलने में। तो आप लोग भी डांस करते, कौन कौन डांस करते हैं? सब नाचते हैं। जब प्रोग्राम होता है कब? अगस्त 15 अभी आने वाला समय में खूब देखेंगे, लेकिन रेडियो प्रोग्राम है। तो लेते हैं अगला प्रस्तुति के लिए रिंकू एंड पार्टी, है ना दिव्या, शुरू करेंगे।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और खासकर ये सब सुन पा रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, मेरा गांव मेरा अंचल आप सब सुन पा रहे हैं। और इसमें बच्चों का जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना देखने को मिला, उनको पहला बार मिला मौका, फिर भी मौका का फायदा ले रहे हैं। चलिए सभी को धन्यवाद देते, तुम बताओ तुम्हारा नाम बता फिर से।
1: प्रियंका।
0: प्रियंका बढ़ाकर क्या बनेगी, तुमको चांस मिलेगा डॉक्टर इंजीनियर क्या बनना चाहेंगे, मैडम क्या बनना चाहेंगे?
1: डॉक्टर।
0: डॉक्टर, वाह। डॉक्टर का काम क्या होता है प्रियंका, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर का काम क्या होता है? जैसे मैडम का काम पढ़ाना होता है, जैसे डॉक्टर का काम क्या होता है?
1: इंजेक्शन।
0: इंजेक्शन लगाना, वाह। अच्छा आदमी को इंजेक्शन नहीं लगा देना, मरीज को जो बीमारी, मरीज का इलाज करना होता है, बीमारी आदमी को ठीक कर देना, दुखी होकर आएंगे आपका पास, आपको खुशी खुशी में छोड़ देना, ज्ञान इंजेक्शन लग गया जी, है ना, ज्ञान इंजेक्शन, वो भी इंजेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम बताओ देखिए तुम्हारा नाम बताओ।
1: मेरा नाम दिव्या है, मैं बड़ी होकर पुलिस बनूंगी।
0: पुलिस, देखो भाई याद रखना, हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे हैं, और हीरापुरा स्कूल को याद रखना, किसको पुलिस चाहिए और किसको डॉक्टर चाहिए, तो ये बच्चे आगे जाकर बड़े होकर डॉक्टर पुलिस बनेंगे, सही बनेंगे ना, तुम भी तो कुछ बनेंगे ना, क्या बनेंगे तुम लोग जो सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ बनेंगे। बहुत अच्छा, तो घर में कोई पुलिस है तुम्हारा परिवार में, फिर भी कैसे पुलिस को इच्छा हुई तुम पुलिस बनेंगे बोलकर, कांस्टेबल पुलिस IAS, प्रेरणा कहाँ से मिली?
1: टीचरों से।
0: टीचर से प्रेरणा मिलती है, वाह, कुछ तो बनना चाहिए। और सबसे अच्छा पोस्ट है देश को रक्षा करना और भ्रष्टाचार को मिटाना है ना। पुलिस का काम क्या होता है? चोर को पकड़ना है, जो खराब काम करेंगे उसको दंड देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट नाम बताओ।
2: मेरा नाम रिंकू है, मैं भी पुलिस बनूंगी।
0: अरे वाह, दोनों पुलिस मिल गए, और पुलिस तो चोर तो भागेगा ही, और पुलिस का काम है रक्षा, सुरक्षा, खुद का सुरक्षा, गांव का सुरक्षा, देश का सुरक्षा और विश्व का सुरक्षा, पहले खुद का सुरक्षा करना पड़ेगा, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे पुलिस नहीं बनते। कैसे बनेंगे? मेहनत, क्या करेंगे मेहनत, कितने घंटा मेहनत करेंगे? रिंकू पढ़ाई का साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं, खेल कूद दौड़ना भागना होता है, और हाइट भी बढ़ाना है, नहीं तो छोटा हाइट लेंगे नहीं। तो हमारा मैम भी सुन रही, मैडम आप तो पुलिस का भी सोचा नहीं था, पुलिस बनने के लिए आप क्या सोचे थे?
3: मैं टीचर बनने का ही सोचा था मैंने।
0: क्या नाम है आपका?
3: हर्षिता।
0: कहाँ से?
3: आबू रोड से।
0: आबू रोड से, और यहाँ पर आपका पोस्टिंग?
3: यहाँ पर।
0: क्या बात भैया, देखा ऐसे होना चाहिए। आबू रोड में पढ़ाई किए, कौन सा स्कूल में पढ़ाई किए थे?
3: सेंट जॉन स्कूल।
0: देखा सेंट जॉन स्कूल में, प्राइवेट में स्कूल में पढ़ाई किए थे, और आज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई दे रहे, ध्यान दे रहे। बच्चों को क्या एक टिप्स देंगे, एक बच्चों को क्या तैयार करना चाहिए?
3: बच्चों को सबसे पहले अच्छा इंसान बनने के लिए मैं कहूंगी।
0: अच्छा इंसान, सबसे नौकरी जरूरत नहीं, अच्छा इंसान होगा ना, एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा नागरिक होना चाहिए देश को, डिग्री नहीं चाहिए, नौकरी नहीं, नौकरी करेगा भ्रष्टाचार करेगा, लेकिन एक अच्छा इंसान होगा, जनहित में सब काम कर सकता है, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, एक मानव, अच्छा मानव होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते छोटा सा ब्रेक, और एक प्रश्न सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और हमारा साथ रिंकू एंड टीम प्रियंका रिंकू और दिव्या सभी उपस्थित है। वंस मोर वही ग्रुप हमारा चार चांद लगाएंगे, सबको खुशी लग रहा है और बड़े कर कोई डॉक्टर कोई पुलिस कोई मैम बनेंगे, उसके लिए मेहनत करना जरूरी है और स्कूल में जो आते हैं पढ़ाई भी बड़े से करते हैं, है ना लक्षिता। अच्छा लक्षिता तुम्हारा
1: किरण
0: किरण आज तक किरण खेलाएगी हमारा किरण बहन। चलिए एक प्रस्तुति सुनेंगे, सुना किरण और लक्षिता शुरू।

0: क्या बात क्या बात, कितना सुंदर। और वो प्रार्थना में इस तरह प्रभु को याद में गाते हैं, और वो बच्चे सच्चे होते, सच्चे मन से अपना बात को रख रहे हैं। और दिव्या, तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है, दोस्त का नाम बताओ।
1: रिंकू।
0: रिंकू, अरे वाह, रिंकू के पास क्या विशेषता है, क्या गुण है जो आपको अच्छा लगता है? और देखने में तो सुंदर लग रहे हैं, फिर भी कौन सा विशेषता है रिंकू के पास?
1: वो पढ़ाई भी अच्छी करती है, गाना भी अच्छी गाते है।
0: वो दो कला है, गायन कला भी है और पढ़ाई का कला भी है, दो कला, 16 कला संपन्न बनेंगे देवी देवता जैसे। लेकिन रिंकू के पास ये विशेषता है। और रिंकू बड़े कर क्या बनेगी? पुलिस, ये भी पुलिस, इसलिए दोनों बोले हम पुलिस बनेंगे। दोस्त होते ऐसे सुदामा और श्री कृष्ण जैसे दोस्ती है ना। गरीब अमीर का बात नहीं, काला गोरा का बात नहीं, लेकिन बुद्धि का खेल है, दिमाग का खेल है। उसका पास विशेषता है, पढ़ाई में होशियार है ना। रिंकू कितने घंटा पढ़ाई करती तुम?
1: हाँ।
0: स्कूल में पढ़ाई होता है, इसका बाद घर में
1: भी पढ़ाई करते हैं।
0: कितने घंटा?
1: 2 घंटे।
0: बस 2 घंटे में चलेगा ना, पुलिस के लिए और 2 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे।
1: हाँ।
0: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अंतिम प्रस्तुति की और हम जाएंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, धन्यवाद।

उनका दिव्या और लक्षिता सब लोग मिलकर गा रहे, तो उनका नाम जब सुनेंगे प्रियंका और लक्षिता उनका मम्मी पापा सुनेंगे तो कितना खुशी लगेगा। रिंकू को भी उनका माँ बाप सुनेंगे, हमारा रिंकू आज आकाशवाणी में रेडियो में गा रहे हैं, तो कितना खुशी लगेगा। दिव्या को भी खुशी लगेगा, सभी को खुशी लगेगा ना। हाँ। प्रियंका को भी खुशी लगेगा और किरण को भी, कौन भूल पाएगा किरण को। किरण, दिव्या, रिंकू, लक्षिता और प्रियंका और दिव्या। ओके शुरू करेंगे।

0: क्या बात क्या बात, इतना विश्वास ट्रस्ट होना चाहिए दाता का प्रति। दाता तो भाग्य विधाता है, सबके मनस्कामना पूर्ण करते हैं, जो मांगेंगे दिल से तो उनको मिलता है, और प्रभु को याद करेंगे तो याद में हमें शक्ति खुशी आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान मिलता है, जिसका आधार से हम अच्छे बन पाते हैं। और दाता को इतना शक्ति हमें देना दाता है, इतना मजबूत इतना पावर मिल जाएगा तो क्या से क्या बन जाएंगे, है कि नहीं दिव्या? हमको शक्ति मिलेगा तो चुटकी में हम पुलिस बन जाएंगे, है कि नहीं? कोई भी पोस्ट क्या बनेगी, पुलिस है ना। तनख्वाह मिलेगा किसको देंगे?
1: माँ बाप को।
0: हाँ, कि माँ बाप हमारा भगवान तुल्य है, जब पहला तनख्वाह आएगा बाप और माँ को देंगे, क्योंकि पेरेंट्स को देंगे तो पेरेंट्स खुश होंगे, और अभी पेरेंट्स उनको दे रहे हैं, अभी माँ बाप दे रहे हैं, अब बड़े होकर क्या करेंगे, हम भी माँ बाप को
1: देंगे।
0: हाँ, और कुछ है? और वंस मोर, चलिए इसी कड़ी में और एक गीत सुनाएंगे, दिव्य एकल। ओके।

0: हमसे पंग पंग उजियारा है, जो बीज रहा में बैठ गए वो बैठे रह जाते, जो लगाता चलते रहते वो निश्चय मंजिल पाते हैं।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति, और अंतिम प्रस्तुति में चार चंद लगा दी वंस मोर कहते हुए, और दिव्या एंड पार्टी को बढ़ाकर सभी अच्छा अच्छा पोस्ट में जाएंगे, नाम रोशन करेंगे, और हमको आज समझ मिला है, ज्ञान मिला है, समझ मिला है, मिला ना दिव्या?
0: हाँ।
1: और आत्मा तो दिव्यता है, आत्मा में दिव्यता है, दिव्यता मतलब दैवी गुण, गुण में नम्रता, हर्षित मुक्तता, सरलता, पवित्रता ऐसे होना चाहिए, और दृढ़ता, नम्रता, ताया के गुण है। और दिव्या महाराज इस कार्यक्रम को सजाए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नाम का साथ प्रियंका,
0: दिव्या, रिंकू, लक्षिता,
1: सबको धन्यवाद। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, और किसी बात को लेकर सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा धन्यवाद, आभार।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें आरसी संदीप का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह हाजिर हूं प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के, और आप सब तो जानती हैं इस कार्यक्रम में हम लोग ऐसे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने कुछ अनोखा करके दिखाया है या जिनके अंदर कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खास बातें हैं जो शायद औरों से हट करके हों, और सही मायने में जिन्होंने अपने मन की आंखों से कुछ कर दिखाया हो। तो ऐसे ही एक मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं नागपुर महाराष्ट्र से, भारती जी। भारती जी, रेडियो मधुबन के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्ते सर।
0: तो भारती जी, हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताइए कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, आपको कौन सी परेशानी है।
1: जी सर, मैं नागपुर से हूँ और मैं अभी LLM क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट हूँ दीक्षा भूमि अम्बेडकर लॉ कॉलेज से। और पहले मैं देख सकती थी, लेकिन 10वीं के बाद मुझे ये तकलीफ शुरू हुई और मुझे डॉक्टरों से पता चला कि मुझे रेटिना प्रॉब्लम है और धीरे धीरे मेरे आंखों के पर्दे पतले हो रहे हैं और जलते हुए आ रहे हैं, और फर्स्ट ईयर से मेरा पढ़ना असंभव हो गया तो मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा सर। 8 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी और मेरी लाइफ 8 साल हॉस्पिटलाइज रही, 2.3 पॉइंट ब्लड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन, यही मेरी जिंदगी रही। डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने गुरु अकील अहमद सर के संगीत का सहारा लिया। गुरु अकील अहमद सर संगीत के टीचर है जो क्लासिकल संगीत पढ़ाते हैं। और फिर मैंने जब इस कॉलेज में क्लास में एडमिशन किया तब मुझे पता चला कि दिव्यांग भी पढ़ते हैं, ब्रेल के माध्यम से पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग कर सुनकर पढ़ते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं भी पढ़ सकती हूँ, जब दिव्यांग पढ़ सकते हैं तो मैं भी पढ़ सकती हूँ। और फिर मैंने 1 महीने में अपनी ब्रेल कंप्लीट की और फिर बाद में फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया 8 साल की गैप के बाद। और अब फिर मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर लॉ किया सर, और अभी मैं LLM सेकेंड ईयर की विद्यार्थिनी हूँ क्रिमिनल लॉ में।
0: बहुत खूब। तो अभी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है भारती जी?
1: जी सर, अभी मुझे सिर्फ 20% दिखाई देता है।
0: अच्छा, तो धीरे धीरे आपको ऐसा भी लग रहा है कि दिखना कम हो रहा है आपको?
1: धीरे धीरे करके मेरी आंखों की रोशनी पूरी चले जाएगी, डॉक्टरों का कहना है। मेरी दादी की आई डोनेट करने वाले थे 2010 में, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि अगर आई डोनेट भी की जाए तो मेरे अंदर की बीमारी वो नई आंखों को भी खराब कर देगी, इसलिए आई डोनेट करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा उनका कहना था सर।
0: तो भारती जी, फैमिली में कौन कौन है आपके?
1: जी, मेरे पापा सुरेश महादेव यादव जो मेहो हॉस्पिटल PWD में क्लर्क थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। मम्मा हाउसवाइफ है मेरी, और हम 3 भाई और 3 बहन है सर।
0: अच्छा, 6 भाई बहन है। तो आप सबसे छोटे हैं, बड़े हैं या बीच में हैं?
1: जी सर, मैं दूसरे नंबर की हूँ।
0: अच्छा, आप सेकंड नंबर पे। तो 8 साल डिप्रेशन में जब आप रही भारती जी, तो क्या किया उस दौरान आपने? मतलब
1: सर, उस दौरान तो सिर्फ सोच थी मेरे दिमाग में कि आंखें जाने के बाद मैं करूंगी क्या, और मैं फ्यूचर में बोला जाए तो दूसरों पे डिपेंड रहूंगी, ना मैं कमा सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो लाइफ बोला जाए तो उसी डिप्रेशन के कारण 2 पॉइंट ब्लड होना, 3 पॉइंट ब्लड होना, अनेमिया, जिसके कारण मैंने अपने 8 साल ऐसे ही गवा दिए।
0: उस दौरान कुछ सीखने का भी काम कर पाए या बिल्कुल एकदम खाली हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ करने का मन ही नहीं किया आपका?
1: नहीं सर, वो 8 सालों में तो पहले तो कोई गाइडेंस करने वाला मिला ही ना था। डैडी का कहना था कि मैं आज रिटायर हूँ लेकिन मैं अपनी बेटी को पाल सकता हूँ, रास्ते पे अगर जाएगी कम ज्यादा हो गया तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जब गुरु अकील अहमद सर को मेरे फैमिली डॉक्टर से पता चला कि सिर्फ किताबें दे दी जाए तो वो फिर से जीने की उम्मीद जाग उठेगी, और फिर सर ने मुझे ब्रेल में एडमिशन कराया। फिर मैंने 1 महीने में ब्रेल कंप्लीट की और फिर उसके बाद मैंने LED कॉलेज में फिर से एडमिशन कराया BA में।
0: तो आपने ब्रेल लिपि कौन से इंस्टीट्यूट से सीखी?
1: जी, आत्मदीपम सोसाइटी जो अंबाझरी में है सर, वहां से सीखी।
0: नागपुर में ही आपके?
1: जी हाँ।
0: तो अब आप ब्रेल अच्छे से जानते हैं, ब्रेल लिपि?
1: जी हाँ सर।
0: अच्छा, तो अब जो आप LLM की पढ़ाई कर रहे हैं अभी इन दिनों में, वो कैसे कर रहे हैं?
1: सर, वो LLM की पढ़ाई में इंस्टा रीडर है हमारे पास, जो ऐप है मोबाइल में, उसमें बुक की फोटो क्लिक कर लो तो वो रीडर पढ़ता है, और सर अभी क्या बोलते हैं, हम जो मोबाइल में नेट पैक होता है जिसमें यूट्यूब में बहुत सारे लॉ के वीडियोस आते हैं, जीके नॉलेज आते हैं, अगर हम उस नेट पैक का सही में अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, FB इंस्टा रीडर में वक्त बिताने से बेटर अगर हम इस तरफ वीडियो पे फोकस किया जाए, तो सर LLB की पढ़ाई हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने तो अपना ज्यादातर समय अपने मोबाइल में यूट्यूब के वीडियो, जनरल नॉलेज, इन्हीं रिसेंटली केसेस, इसी में बिताया। और सबसे बड़ा सहयोग मेरे कॉलेज के टीचर्स का रहा, जैसे मेरे प्रोफेसर शाजिया मैम, डॉक्टर हिमा मिनोन मैम, वर्षा देशपांडे मैम, प्रतिमा लोखंडे मैम, और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल मेहरे मैम और बहादुर सर। और ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे प्रिंसिपल मैम इतने सपोर्ट करते हैं हमें कि उन्होंने चेन्नई फाउंडेशन जो अभी गोवा की है सर, और ये हमें 10,000 की स्कॉलरशिप ब्लाइंड स्टूडेंट को देती ही है, साथ ही साथ जो अभी क्या बोलते हैं लैपटॉप के जो जितने भी क्या बोलते हैं कोर्स है अभी, MSCIT हो गया, टैली हो गया, ये सारे कोर्स करने के लिए हमारे कॉलेज की मैम ने एक बड़ा सा रूम दिया हुआ है जिसमें चेन्नई फाउंडेशन की जो सर है वो हमें प्री MSCIT की क्लासेस कराते हैं, ताकि हम उनका मोटिव हमें स्कॉलरशिप देना ही ना हो, हमें टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी हासिल कराना है ताकि हम एक पर्टिकुलर जॉब हासिल कर सके।
0: तो अब आप फोन वगैरह भी चला लेती हैं अच्छे से?
1: जी हाँ, मैं टॉकबैक सिस्टम से फोन अच्छे से चला लेती हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। यानी कि जिस तरह से आपने वापस एक तरह से अपने आप को खड़ा किया, तो मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हो सकते हैं, क्योंकि 8 साल डिप्रेशन में रहना कम बात नहीं है। ये बताइए भारती जी कि लॉ फील्ड में जाने का सपना कब देखा आपने?
1: सर ये सपना तो मैंने बचपन से ही देखा था, छोटी सी थी तो अदालत सीरियल देखती थी जिसमें वकीलों को देखती थी कि क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कैसे, तो मेरी इच्छा थी कि मैं लॉयर बनूं। लेकिन ये सपने जब 10वीं के बाद टूटते हुए नजर आए कि मैं पढ़ नहीं सकती अब, तो फिर मैंने वहाँ जब ब्रेल सीखने गई आत्मदीपम सोसाइटी में, वहाँ नंदिता त्रिपाठी मैम को देखा, और वो असिस्टेंट गवर्नमेंट लॉयर है और वो भी टोटली ब्लाइंड है, लेकिन टोटली ब्लाइंड होने के बावजूद भी आज मैंने जब उनको देखा तो मेरे सपने फिर जाग उठे कि भारतीय जब मैम भी टोटली ब्लाइंड है, उन्होंने तो दुनिया नहीं देखी, अंधेरी किसी का नहीं देखा, लेकिन तो भी आज एक वो लॉयर है और क्रिमिनल मैटर में वो केस लेते हैं, तो मेरे लिए वो सपने फिर से जाग उठे। और दूसरी बात, फिर मैंने डॉक्टर शिप्रा सरकार मैम को जब मैं बीए में एलईडी में थी उनको देखा, उन्होंने मुझे हर बार एक ही चीज बोली कि भारती इंसान बोला जाए तो सब कुछ कर सकता है, हमने तो दुनिया नहीं देखी, इंसान कैसे दिखते हैं हमने ये नहीं देखा, लेकिन तो भी आज हम आगे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों फिर आंखों के लिए रो रही हूँ, जिन्होंने दुनिया आज तक नहीं देखी, रंग कैसे होते हैं, इंसान कैसे होते हैं, वो जब दुनिया से इतने खुश है और अपनी जिंदगी में वो कामयाबी पे है, तो मैं इन सब के लिए रोते हुए अपना क्यों समय बर्बाद करूं। और मैंने फोकस अपने LLB के तरफ किया, और तब तक तो मैं BA में एडमिशन कर चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर लॉ करूं, और फिर LLM में मैंने एडमिशन किया, और आज मैं LLM लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूं सर।
0: वेरी नाइस। तो ये शिप्रा मैम भी ब्लाइंड है?
1: जी, शिप्रा सरकार मैम भी ब्लाइंड है। और सर साइड बाय साइड मेरे साथ बोला जाए तो बहुत सारी संस्थाएं थी, जैसे गायत्री वात्सल्य मैम जो ऑटिस्टिक बच्चे और जो बोला जाए तो जो बातें ठीक से नहीं कर सकते वो बच्चों की संस्था चलाती है, SVK शिक्षा संस्था, जिसमें मैंने ये देखा कि वो बच्चे ऑटिस्टिक होने के बावजूद भी अभी उन्होंने झनकार ब्रांड लॉन्च किया है, और जिसमें अनूप ताइड़े सर इन बच्चों को पढ़ाते हैं, और सारा खर्चा वो मैम उठाती है उन 17 बच्चों का, कि यानी कि टीचर हायर करना, फिर और उनसे कोई पैसे नहीं लेती, उनका मोटिव यही होता है कि वो बच्चे कुछ बन सके। और फिर बाद में एक विलासिता मैम की एक संस्था है सर, जो कैंसर सर्वाइवर बच्चे और गरीब बच्चों के लिए कार्य करती है, और इतने ऑनेस्ट है कि वो स्पॉन्सरशिप नहीं लेते। और आत्मदीपम जो ये आशादीप सोसाइटी है, उसमें से मेरी 40 कविता प्रकाशित हुई वेद सोच करके, जिसमें मेरी 40 कविता है सर, और वो साइड बाय साइड क्या बोलते हैं हमें रिकॉर्डिंग भी BA तक तो देते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग का भी वो संस्था कार्य करती है, और जिन्हें राइटर लगे तो वो राइटर भी देती है सर। और अभी दिल्ली में एक उपाध्याय सर की संस्था है प्रोग्रेसिव फेडरेशन करके, बालचंद्र उपाध्याय, ये संस्था का मोटिव हमें राजनीति में भी हमें आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ऐसी बात है जब हमें चुनाव का अधिकार है तो हमें खड़े होने का भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो दिमाग के बल पर चलती है ना सर, और जब राजनीति दिमाग के बल पर चलती है तो आप एक ब्लाइंड के दिमाग को ये उसके आंखों आंखें न होने पर आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो राजनीति के लायक नहीं है। तो अभी हमारे उपाध्याय सर का मोटिव यही है कि हमें राजनीति में भी दिया जाए कि राजनीति में भी हमें जगह चाहिए, हमें सिर्फ चुनाव का अधिकारी नहीं, हमें आरक्षण मिला है नौकरी में, और लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमें सब जब इक्वल समझा जा रहा है तो राजनीति के दौर पे हमें क्यों नहीं इक्वल समझा जा रहा है। और इसीलिए अभी उनकी अयोध्या में 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक उन्होंने कार्यक्रम रखा है। साइड बाय साइड यही मोटिव होता है कि तीर्थ धाम के दर्शन भी हो सके और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो सके। और अभी मुझे ऑडियंस के डिमांड पे कविता बनानी है सर।
0: जी भारती जी, बहुत खूब। तो भारती जी, आपकी बातों से ये भी समझ में आ रहा है कि आपने अपने अंदर कविताएं लिखने का जो शौक है वो भी पैदा कर लिया है। तो ये कब सोचा कविताएं लिखने का?
1: सर, पहली बात तो मैं कोई पोइटिस्ट ही नहीं, बीए से अचानक पता चला कि मुझ में जो गुण है, और मेरे दोस्तों ने कि भारती वहां कविता चल बोल रहे हैं लोग, तो मैं सोचा मैं ऐसी मजाक में गई माइक में कि मैं भी कविता बोलूंगी करके, और पता चला मैंने अपनी पहली कविता बनाई गुण स्वभाव और संस्कार पे, जिसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। और सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे दोस्तों का रहा सर। मेरी एक दोस्त है शुभांगी बावने, उसकी हर बातें नहीं पता कविताएं बन जाती, और हर दोस्त होते हैं जो खुशियां बांटते हैं, लेकिन मेरे दोस्त का स्वभाव बोला तो पानी पूरी जैसा था, कभी कड़वा कभी तीखा, और हर गुणों में एक मैंने कविता देखी। ऐसी बात नहीं कि दोस्त लड़ते झगड़ते तो सारे दोस्त है, लेकिन ये दोस्त वो थी जो फिक्र के साथ मुझे एक कविता की सौगात देते गई, और शीघ्र कवि बनने का श्रेय मेरा उसी पे जाएगा। हालांकि मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, स्वप्नाली है, प्रीति है, कल्याणी है, उन्नति है, निर्मिषा है, जो LLB में मेरी मदद करते हैं, लेकिन शीघ्र कवि का श्रेय बोला जाए तो शुभांगी बावने पर ही जाता है। और मेरे जो अंकल थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, विजय अंकल, वो हर बार मुझे कहते थे कि भारती जिस मंच पर खड़े हो जाओ वो मंच समझना अपना है, और अपना कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होने देना। और इसी बातों ने आज मुझे हर मंच से विजेता बनाकर लाया, मैं कभी हार कर वापस नहीं आई। तो मुझे साइड बाय साइड बोला जाए तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट मिलता गया और मैं आगे बढ़ते गई सर।
0: वो जो पहली कविता है उसकी दो लाइनें सुना सकते हैं आप हमारे श्रोताओं को?
1: घमंड किया इंसान ने, घमंड किया इंसान ने रूप रंग धन दौलत पे, ना किया घमंड गुण स्वभाव संस्कार पे, नादा इंसान भूल गया रूप रंग धन दौलत मट्टी बन गई, गुण स्वभाव और संस्कार की वो कीमती दौलत ले गया।
0: वाह, बहुत खूब, बहुत खूब भारती जी। और आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिला, आपने बताया भी, और आपने खुद ने भी अपने अंदर हिम्मत पैदा की, जो कि सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। श्रोताओं, आज सुन रहे हैं मन की आंखों से कार्यक्रम में आप भारती जी को, जो कि नागपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं और जो देख नहीं पाती हैं। तो भारती जी, अब भविष्य में क्या करना चाह रही हैं?
1: सर, पहली बात तो साइड बाय साइड मेरी कविता है सारे मेरे दिव्यांग दोस्तों के लिए रहेगी, कि उसमें जो भी मेरा इनकम होगा, जो भी वो कविता है, कल चल के कौन से भी लेवल में जाए, लेकिन ये कविताओं का सारा श्रेय जब मेरे दोस्तों पर जाता है तो मैं सारी कविताएं अपने दिव्यांग दोस्तों के काम आ सके, मैं यही मोटिव के साथ आगे चलूंगी। और हाँ, मैंने LLB इसलिए किया सर क्योंकि आजकल कई ऐसे मैटर है जिसमें क्या बोलते हैं फ्रॉड हो जाते हैं, ब्लाइंड के साथ तो ज्यादातर होते हैं, कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें दिव्यांगों के साथ गलत हो जाता है, लेकिन उनको न्याय जस्टिस मिल ही नहीं पाता सर, क्योंकि एक तो गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है और दूसरी तरफ कि वो अच्छा वकील हायर नहीं कर सकते। तो मेरा मोटिव तो ये रहेगा कि अगर मैं प्री लीगल एड बन सकी तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती होगी कि मैंने न्याय के लिए लड़ा।
0: इसके अलावा जॉब वगैरह के बारे में क्या सोचा है?
1: सर, साइड बाय साइड यही कि मैं लॉयर बनकर एक अच्छा वकील बनूं और साइड बाय साइड अपनी कविताओं में नया रंग भरती रहूं।
0: तो भारती, जब ये आंखों की प्रॉब्लम हुई तो फैमिली का क्या कहना था उस समय?
1: सर, फैमिली में तो बोला जाए तो मुझे सपोर्ट ही किया, बोला जाए तो मेरे भाई ने सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। वो एक ही चीज बोलता था, भारती अगर आप घर के अंदर से बाहर नहीं निकलोगे तो ब्लाइंड लोग बाहर निकलते हैं, तो उनको एक हैबिट हो जाती है मोबिलिटी की, अंदर से जब डर नहीं निकलेगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो भाई की वो शब्दों की प्रेरणा, और साइड बाय साइड डैडी को डर था मेरे लिए कि रास्ते पे कम ज्यादा हो जाए, तो ये हर माता पिता को ये डर होता है सर। साइड बाय साइड फिर मैं जब पढ़ने लगी और मेरे जब अच्छे परसेंट आने लगे मैं, तो मेरे फैमिली भी बहुत खुश हुई कि मैंने आज यानी कि धीरे धीरे करके प्रोग्रेस किया अपने लाइफ में।
0: अब आज आपकी प्रोग्रेस को देख करके अब क्या फैमिली अब क्या कहती है?
1: फैमिली को प्राउड होता है मुझ पे कि आज आके नहीं रहने पर भी मैं आज एलएलएम कर रही हूँ, साइड बाय साइड कविताएं भी लिखती हूँ।
0: तो और इसके अलावा क्या क्या करती हैं? कविताएं और पढ़ाई के अलावा भारती क्या क्या करती है?
1: जी पढ़ाई जी। और इसके अलावा बोला जाए तो सर मैं अखिल अहमद सर के क्लास में संगीत के स्टूडेंट को सुनकर उनके गीतों की मधुर आवाज को सुनकर ऑन द स्पॉट कविता बनाती हूँ और अखिल सर से मैंने यही सीखा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि संगीत वो प्लेटफॉर्म है जो इंसान के दिमाग को खुश रहना सिखाता है, लेकिन आज संगीत बोला जाए तो बीए से ही है, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि पहली से दसवीं तक क्यों नहीं है। एग्जाम्पल तो मैं हूँ, जब मुझ जैसा इंसान आज डिप्रेशन से निकल गया तो जरूरी थोड़ी ना दिव्यांगी डिप्रेशन में जाते हैं, आंख वाले भी तो जाते हैं ना सर। और आज जब मैंने बीए में स्टूडेंट की जो सिचुएशन देखी कि बीए में उस लेवल से कुछ नहीं आता, अच्छा करते हैं तो वही लोग करते हैं जिन्होंने प्राइवेट क्लासेस लगाई है, लेकिन सर हर कोई क्लासेस नहीं लगा सकता ना प्राइवेट, इसलिए अगर पहली से लेकर दसवीं तक अगर स्कूल में ही ये चीजें दी जाए तो आज जो बीए में जो स्टूडेंट की सिचुएशन है तो सिर्फ प्राइवेट क्लास लगाए वाले बच्चे ही नहीं, जिनको पहली से लेकर दसवीं तक भी म्यूजिक का नॉलेज दिया गया है बेसिक, तो वो लोग भी तो अच्छे करेंगे ना सर। आज गोल्ड मेडलिस्ट बोला जाए तो एमएमए वही लोग हैं जिनको पहले से बचपन से ही प्राइवेट क्लासेस में वो शिक्षा दी गई, लेकिन आप भी जानते हो कि आज गरीब घर का बच्चा या तो उसकी मम्मी डैडी उसकी फीस भर पाएंगे या तो क्लासेस का खर्चा दे पाएंगे। तो सर ये चीज बोला जाए तो संगीत आज वंचित है लोगों से, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर पहली से लेकर दसवीं तक दिया जाए तो सब अच्छा करेंगे। और जहां तक मैंने मेरे ब्लाइंड दोस्तों को देखा तो ये ज्यादातर ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम करते हैं सर, गाना गाते हैं, तो इन्हें ये चीज बेसिक नहीं मिला लेकिन तो भी ये आज इतना अच्छा गाते हैं, तो आप ही सोचिए अगर ये इन्हें पहली से लेकर दसवीं से ही मिले तो ये कितना अच्छा गाएंगे। इनकी आवाज क्या इंडियन आइडल में जाने लायक ये है अगर वो चीज उन्हें बचपन से दी जाए तो?
0: सही है, बिल्कुल सही है। संगीत में आप क्या, आप भी, आपकी भी रुचि है संगीत में?
1: जी हाँ, मैंने प्रवेशिका पूर्ण तक की एग्जाम दी है सर।
0: गायन में?
1: जी हाँ, लेकिन मैं उतना बेस्ट नहीं गाती हूँ, लेकिन हाँ अपने दिमाग को सही जगह पर लाने के लिए, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए संगीत ने मुझे खुश रहना सिखाया। बोला जाए तो संगीत के गुरु अखिल अहमद सर मेरे दूसरे जीवन दाता है।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अखिल अहमद सर भी ब्लाइंड है?
1: नहीं सर, अखिल अहमद सर देख सकते हैं, और ज्यादातर तो अगर अखिल अहमद सर ब्लाइंड हो गए तो मुझे राह कौन दिखाएगा?
0: नहीं क्यों, वैसे तो ब्लाइंड लोगों ने भी तो राह दिखाई है आपको
1: सर, ऑब्वियसली। लेकिन सबसे पहली बात सर, मेरे दोस्त बोला जाए तो मैं बहुत लेट मिली उनसे, लेकिन जब मैं पहली बार मिली तो मैं गुरु अखिल अहमद सर से मिली, क्योंकि मैं जानती नहीं थी कोई ब्लाइंड संस्थाओं को, क्योंकि अब तक बचपन से लेके अभी तक साइटेड के बीच में रही तो ये सब नहीं पता था कि ब्लाइंड स्कूल बच्चे कैसे होते हैं। और मेरे दोस्त बोला जाए तो आज हीरे है सर, भले ही उनके पास आंखें नहीं है लेकिन उनकी मन की ज्योति इतनी प्यारी है कि उनके गुण और स्वभाव और संस्कार के कारण आज मैं उन पर खींची जाती हूँ, जो बहुत बड़ी बात है कि बोलते ना कि आंखों से देखा जाए इंसान धोखा खाता है, मन से पढ़ा जाए आईना साफ नजर आता है। तो शायद भगवान ने मुझे दिव्यांग इसीलिए बनाना था ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ मिल पाऊँ।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा भारती जी। तो अभी आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कविताओं का, और शीघ्र कवि एक शब्द जो आपके लिए कहा जाता है,
1: तो सर आप मुझे कोई भी शब्द वहां से दे दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके दिए हुए शब्दों को मैं कविताओं में ढाल पाऊं।
0: ये भी एक आपका हुनर है, गुण है ये आपका बहुत बड़ा।
1: जी हाँ।
0: आपने रेडियो सुना है? रेडियो के बारे में जानते हैं आप?
1: जी हाँ सर।
0: क्या जानते हैं?
1: सर रेडियो के बारे में संगीत और न्यूज मिलते हैं हमें, वहां से सारी खबरें मिलती है, दूसरों के विचार हम सबको दूर भी रहकर यहाँ तक हम सुन पाते हैं। और जहां तक है आपके कार्यक्रम का नाम है मन की आंखों से, तो आज बोला जाए तो मैं दूर भी हूँ लेकिन मन की आंखों से आज सभी कोई मेरी आवाज सुन रहे हैं।
0: रेडियो शब्द देता हूँ मैं आपको।
1: जी
0: बताइए।
1: जी ठीक है, आज इसे दूरदर्शन ही बोलूंगी ना सर मैं हिंदी में?
0: नहीं नहीं, दूरदर्शन अलग चीज है, वो टीवी का एक रूपांतरित रूप है।
1: तो रेडियो बोल सकती हूँ ना मैं ऐसे हिंदी में?
0: हाँ रेडियो बिल्कुल बोल सकते हैं।
1: आज रेडियो के माध्यम से देखो आप सबके समक्ष में आ गई, अपनी गहरी शब्दों की सोच लेकर मैं आपके समक्ष में आ गई, आवाज मेरी सुनकर शायद आप खुश हो जाओगे, लेकिन आपको बिन देखे ही मैं खुश हो जाती हूँ। दूर दूर से जब मधुर आवाज की ध्वनि कानों में मेरे पड़ती है, दूर दूर से जब मधुर आवाज की ध्वनि कानों में मेरे पड़ती है, सारी खबर मुझे जल्दी जल्दी मिलती है। दूर रह के भी आपके विचार मुझ तक आ ही जाते हैं, तो जानो ऐसा लगता कि रेडियो ने जानो वो अहम भूमिका बनाई है। इसीलिए तो संचार के माध्यम से आप सभी की बातें मैं तो सुन ही पाती हूँ, और जानो हर शब्दों को सुनकर शब्दों की नई सोच बनाती हूँ। दूर दूर ही हो लगता उस समय की पास आप मेरे नजर ही आते हो, रेडियो के माध्यम से बिल्कुल मेरे समक्ष नजर ही आते हो। तो जानो ऐसा लगता मुझको रेडियो मेरा साथी आज ही बन गया, जिसने शब्दों की सोच दी वो अनोखा अनमोल साथी रेडियो आज मेरा बन गया।
0: क्या बात है, वाह, बहुत खूब बहुत खूब, सचमुच ये बहुत जबरदस्त गुण है आपका, और आपने इसको पहचाना, ये और अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि आपको इसमें और मेहनत करनी चाहिए।
1: जी सर।
0: और लगातार मेहनत करनी चाहिए इस तरीके से कि श्रोता बंध जाएं आपके शब्दों के साथ।
1: जी सर।
0: बहुत खूब भारती जी, तो कुछ गा के भी सुनाने का मन है, एक दो लाइन?
1: जी नहीं सर, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगी कि मैं उतनी बेस्ट सिंगर नहीं हूँ। हाँ, मेरे बाजू में मेरी दोस्त है।
0: सवाल बेस्ट का नहीं है, सवाल बेस्ट का नहीं है, सवाल सिर्फ गुनगुनाने का है।
1: सर पहली बात तो सर अभी मेरे वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, तो शायद नहीं कर पाऊंगी सर।
0: नहीं, कोई बात नहीं। तो भारती जी, जो संस्थाएं जिनके साथ आप जुड़ी हुई हैं,
1: जी सर,
0: उन संस्थाओं में भी आप जाकर के अपना योगदान देती हैं, उनमें कोई पद वगैरह आपने ले रखा है?
1: हाँ सर, वो संस्थाओं में भी मैं जाती हूँ, अपनी कविताएं प्रस्तुत करती हूँ, और अपने दिव्यांग दोस्तों के लिए भी कविता बनाती हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरी कविताएं उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि मेरी एक कविता है कि भगवान से प्रश्न मैं करती, निरंतर चलती है सोच मेरी, उन सोच को कैसे कागज कलम पर लिख मैं पाऊँ। भगवान मुझे बता दो कि कैसे इन शब्दों को लिख मैं पाऊँ। ब्रेल टकते हाथ है दुखते, कैसे कागज कलम से लिख मैं पाऊँ। तो भगवान मेरे कहते, ना लेता तेरी आँखें और नाखों का दर्द कैसे बताती, दिव्यांग की पीड़ा कविताओं के सुनहरे अक्षरों में कैसे सजाती, ना लेता किसी के आँख हाथ और पैर, इस दुनिया को उन अंगों की कीमत कैसे बताता, हर होते हैं अंग कीमती, इस दुनिया को मैं कैसे बताता। माना है कमजोर कदम ये, आज गिरते पड़ते लड़खड़ाते हैं, पर खुद ही तो संभल जाते हैं। गिरना पड़ना लड़खड़ा कर संभलना, यही जिंदगी होती है, इन्हीं दोनों पहलुओं से तो संसार की रचना होती है।
0: बहुत खूब भारती जी, आपने एक बुक का जिक्र किया कि आपकी एक पुस्तक भी छपी है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो कैसे शुरुआत हुई?
1: सर मेरी वेद सोच बुक प्रकाशित हुई। वैसे तो मैं लिखती नहीं हूँ सर ब्रेल में, मेरे दिमाग में जो भी चीज रास्ते में हो या कहीं पे भी हो, अगर जो चीज बन जाती है तो मैं तुरंत उसको वॉइस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो जब मैंने वेद सोच बुक लिखी तो मैंने 20 कविता मैम को दी थी, फिर मैम बोले भारती 40 कविता चाहिए, तो मैंने आधे घंटे में 20 कविता बनाकर मैम को दे दी।
0: क्या बात है। फिर
1: फिर अभी मेरे पास 250 कविता है सर, और अगर बनाने बैठूं तो एक घंटे में 25-30, जो जो टॉपिक आगे वाला देते जाएगा मैं कविता बनाते जाऊंगी।
0: तो वो जो 40 कविताएं हैं जो बुक आपकी निकली है, वेद सोच आपने उसका नाम बताया, तो ये मार्केट में मतलब भी है या केवल एक तरह से आपने इसको?
1: सर ये बुक तो आशादीप संस्था में आपको मिलेगी, जो प्रतिमा शास्त्री मैम है इन्होंने ये बुक क्या बोलते प्रकाशित की है, तो ये बुक वहीं से मिलती है सर, आशादीप संस्था से।
0: ब्रेल लिपि में?
1: जी नहीं सर, ये साइटेड लिपि में है ये बुक,
0: इंक में है। ओके, जी जी जी जी जी। और सारी कविताएं इसमें हिंदी में ही हैं?
1: जी सर, सारी कविताएं हिंदी में हैं। मैम ने मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग को सुन सुनकर वो कविताओं को लिखा, यानी उन्होंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि जो कविता मैं बोल दूं दोबारा बोलोगे कि भारती उसे फिर से बोल, तो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी।
0: ये सबके साथ होता है भारती जी, एक बार जो शब्द आ जाते हैं मन में वो दोबारा बदल जाते हैं। इसके अलावा हिंदी के अलावा भी किसी भाषा में लिखती हैं आप?
1: जी नहीं सर।
0: जैसे आपकी अपनी भाषा तो शायद मराठी होगी?
1: नहीं नहीं नहीं, मेरी अपनी भाषा हिंदी है सर, मराठी अच्छा, मुझे नहीं आती है।
0: अच्छा, मराठी नहीं आती
1: है, पर बोलते ठीक से नहीं आता है।
0: घर में आपके हिंदी ही बोलते हैं?
1: जी हाँ सर, सभी हिंदी बोलते हैं।
0: अच्छा, तो आप हिंदी में ही लिखती हैं?
1: जी हाँ।
0: और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? हमने थोड़ी देर पहले भी पूछा था आपसे।
1: सर हॉबी तो मेरी बहुत है। जब मेरे पास आंखें थी तो मुझे बाम्बू आर्ट आते थे, सिरामिक वर्क आता था, और थर्माकोल के बड़े बड़े मंदिर बनाती थी मैं गणपतियों के, और मेहंदी क्लासेस लेती थी, और एलईडी कॉलेज में प्रथम पुरस्कार भी मैंने जीता था मेहंदी में। तो बोला जाए मुझे सभी कलाएं आती है। तो फिर बाद में जब मेरे पास आंखें गई और मैं कॉटन का गणपति बनाती हूँ बियर के बॉटल पे, वो चीज फिर मेरे पास है अभी कि मैं बिन हाथों के स्पर्श से वो कॉटन का गणपति बना सकती हूँ, लेकिन बाम्बू आर्ट, सिरामिक वर्क, मेहंदी, ये सब अब नहीं कर सकती सर।
0: ये नहीं कर सकते आप? तो ये जो आपका आर्ट है उसको आप कर रहे हैं अभी उस पर काम, या आप छोड़ दिया वो भी आपने उस पर?
1: हाँ सर, बाकी के जो बारीक काम है उसके लिए आंखें लगती है।
0: नहीं, ये जो आपने गणपति बनाने का जो बताया कॉटन से,
1: जी सर ये बनाती हूँ मैं। अच्छा। मुझे 2.5 घंटे लगते हैं इसे बनाने में, बियर की बोतल पे पूरा तैयार करने को फ्रेम।
0: अच्छा, फिर उसको बनाते हो? मतलब मेरा मतलब ये कि लोगों को देते हैं आप या नहीं?
1: हाँ, शादी में मेरे दोस्तों के गिफ्ट करती हूँ, लेकिन सर बेचने के इससे नहीं बनाती, क्योंकि वैसे बहुत समय लगता है, बारीक वर्क भी, उसकी आंखें बनाने के लिए मुझे मेरे दोस्तों की हेल्प लेनी पड़ती है, तो इसीलिए वो बोला जाए तो शादी में रुखवंत के लिए ही बना के देती हूँ सर।
0: ओके ओके, बहुत खूब। तो अभी आपने एलएलएम में, मतलब एलएलबी जब किया आपने, तो क्रिमिनोलॉजी को ही क्यों चुना?
1: सर मेरा मोटिव यही था कि मैं क्राइम के मैटर लूं, कि मर्डर हो गए, रेप हो गए,
0: जो हीनियस। तो इसी को ही क्यों चूज किया आपने? जी
1: इसीलिए किया सर कि आजकल बोलो तो क्राइम इसी में तो ज्यादा हो रहे है ना, क्योंकि बोला जाए तो आज इतनी लड़कियों के साथ गलत हो जाता, लेकिन अच्छा वकील नहीं मिल पाता पैसों की कमी के कारण। तो मैंने ये सोचा कि मैं ऐसी फील्ड चुनूं जिसमें सही में लोगों के काम में आ सकूं।
0: तो आप इस माध्यम से, यानी अपनी जो लॉ प्रैक्टिस है उसकी मदद से भी आप लोगों को हेल्प करना चाहती हैं?
1: जी हाँ सर।
0: इसके अलावा आपकी अध्यात्म में भी रुचि है भारती जी?
1: जी हाँ सर।
0: कैसे, क्या करते हैं आप उसके लिए?
1: सर जैसे कि मुझे रामायण सुनना अच्छा लगता है, तो ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है। चालीसा सुनना, सप्तशृंगी सुनना, मुझे मंदिर जाना सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे लाइफ में सिर्फ दो ही काम है, खाना बनाना तो मुझे आता नहीं, पूजा करना और पढ़ना, ये दो ही काम आते हैं मुझे।
0: अच्छा, और कविताएं लिखना?
1: जी हाँ,
0: कविता लिखना
1: वेद सोच रखा ना सर, क्योंकि मैं उसे कंसीडर सरस्वती से करती हूँ, और बोला जाए तो जो किताबें हैं वेद पुराण, ये सब वो ज्ञान है जिसके माध्यम से आज हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, और जब तक हमारे दिमाग में ही ज्ञान नहीं होगा तो कविता कहाँ से क्या बोलते बनेगी सर।
0: अच्छा, कविताएं लिखना तो ठीक है, कविताएं सुनने का भी शौक है आपको?
1: जी हाँ सर, सुनने का शौक है मुझे। सबसे ज्यादा हरीश्वर राय बच्चन की कविता बहुत अच्छी लगती है।
0: हरिवंश राय बच्चन?
1: जी हरिवंश राय बच्चन।
0: उनकी कोई कविता याद है, दो लाइनें आपको?
1: जी सर उतनी ज्यादा याद नहीं है, लेकिन सुना है, और अटल बिहारी वाजपेयी की कविता।
0: तो आपके पसंदीदा कवियों में बच्चन साहब हैं और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी हैं?
1: जी सर।
0: जी, और किसी जो प्रोग्राम होते हैं कवि सम्मेलनों के, वहां कभी गए आप?
1: जी हाँ सर, मैं विदर्भ कवि सम्मेलन में गेस्ट बन के गई थी वहां। नहीं, पर
0: कवियत्री के रूप में गए कहीं आप?
1: जी हाँ, कवियत्री के रूप में मुझे गेस्ट बनाकर बुलाया गया था विदर्भ कवि सम्मेलन में सर।
0: अच्छा, कब की बात है ये?
1: ये 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात, जब मैं एलएलबी फाइनल ईयर में थी सर।
0: अच्छा, फिर वहाँ आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही?
1: सर वहाँ पे मैंने बोला जाए तो तुरंत ही कोरोना खत्म हुआ था, तो मैंने उस समय कोरोना को तुरंत एनालाइज किया और अपनी कविता बनाई। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। किसी के मांग का सिंदूर है छीना, बेटे को पिता से छीना था, कितने बच्चे अनाथ हुए, कोरोना विश्व में आया था। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। अब कारखाने में चिमनी धुआं अब ना उगले, अब मंदी चढ़ी बाजारों में, घर में चूल्हे ना जले, अब आग लगी शमशानों में, चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। नई नवेली दुल्हन कितने सपने लेकर आई थी, अच्छे संस्कारों से ससुराल की बगिया को महकाए, वो तो आशाएं लेकर आई थी। कोरोना इसमें नजर लगाए, नई नवेली दुल्हन सफेद लिबास में नजर ही आई थी। हाथों की चुड़िया टूट गई, हाथों की चुड़िया टूट गई, जबकि मेहंदी की हाथों की फीकी ना होने पाई थी। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। जिस पिता ने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, बुढ़ापे का वो बनेगा सहारा, अपना पेट काट काट कर बड़ा इंसान उसे बनाया था। कोरोना इसमें नजर लगाए, बेटा पिता का सहारा न बन पाया था, अंतिम समय पिता अपने लाल की सूरत देख न पाया था। यह बेटा पिता को अग्नि देता, यह बेटा पिता को अग्नि देता, पिता ने जलती हुई चिता दूर से देखी थी। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। खुशियां मची है घर में, देखो नन्ना मेहमान आने वाला है, इस घर का कुल दीपक देखो वारिस आने वाला है। सपने सारे सपने रह गए, घर का वारिस माँ की कोख में ही चला गया, किलकारी ना गूंजी घर में, मातम देखो फैल गया। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। और इस कविता ने सर 3 बार मुझे पुरस्कार दिया, त्र्यंबकेश्वर में भी मैंने प्रथम पुरस्कार लिया, एलईडी कॉलेज में भी मुझे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त हुनर है ये आपका, वाकई में कहना पड़ेगा। लुई ब्रेल साहब, अभी अभी हमने ब्रेल जयंती भी मनाई और
1: वर्ल्ड
0: ब्रेल डे भी मनाया, तो लुई ब्रेल पर भी आपने कोई कविता लिखी है भारती?
1: जी हाँ सर, मैंने वो इंटर पॉइंट पे कविता लिखी थी, जो छे अक्षरों की ब्रेल होती है ना, उस पर कि जैसे वो छे अक्षरों की पार्टी पे, उस पे मैंने अपनी कविता लिखी थी सर।
0: अच्छा, लुई ब्रेल साहब पर नहीं लिखी आपने?
1: जी नहीं सर, वो इंटर पॉइंट पे मैंने कविता लिखी थी।
0: सुनाइए दो, उसकी दो लाइनें। याद है?
1: छह अंकों पर देखो आज कितने कमाल में कर गई, कविताओं के सुनहरे अक्षरों को ब्रेल की पाटी पर ही घड़कर, देखो शब्दों की रचना घड़ गई। आई नहीं मैं, अम आहा हूं मैं, तभी तो पूरे शब्दों की 12 खड़ी हूं मैं। ना होती वो ही ब्रेल पाटी, तो कैसे कविताओं को लिख मैं पाती, और कैसे स्पर्श कर उन कविताओं को मैं खुद ही पढ़ ही पाती। उभरे हुए ये सारे अक्षर सफेद मोती की भांति लगते हैं, कागज में जब कलम से लिखो तो वो काले काले मोती अलग ही जानो लगते हैं। लेकिन मन के दर्पण को देखो, आज सफेद रूप में मैंने ब्रेल के माध्यम से आज उतारा है। देखो ना, काले मोती का सहारा लेकर मैंने सफेद मोती के सहारे से ही तो ब्रेल लिपि के माध्यम से आज अपनी कविताओं के सोच को घड़ ही डाला है।
0: क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो खाली समय में क्या करती है भारती?
1: सर खाली समय में सिर्फ शब्दों में गुम रहती हूँ कविताओं।
0: अच्छा?
1: से क्योंकि मैं पढ़ के थक जाती हूँ सर, बोला जाए तो मेरी पढ़ाई, बोला जाए तो 8-9 घंटे पढ़ो तो ही मैं पास होगी, तो उसके बाद जब दिमाग पूरा थक जाता है तो मैं अपने शब्दों में कविताओं की दुनिया में समय बिताती हूँ।
0: अच्छा, और फैमिली के साथ समय कब बिताती हैं भारती जी?
1: सर वो तो बहुत कम।
0: तो ये शिकायत नहीं रहती कभी फैमिली को?
1: नहीं, उनको पहले से पता है कि मैं बचपन से अकेला रहना ज्यादा पसंद करती हूँ, अपने किताबों के साथ और जब दिखता था तो अपने आर्ट के साथ, तो उन्हें पता है कि मैं ज्यादातर शांत अपने रूम में रहना पसंद करती हूँ, तो कोई परेशान भी नहीं करता। उसे पता है ज्यादातर मेरे कान में हेडफोन होता है सर, कि मेरी रिकॉर्डिंग चलते रहती है यूट्यूब की, तो मम्मी को पता रहता है कि पढ़ रही है करके, तो कोई डिस्टर्ब तो करता नहीं है।
0: आपके फैमिली में भारती जी किसी और को भी कभी ये प्रॉब्लम हुई आंखों की? या
1: जी
0: आप
1: नहीं,
0: ही पहले
1: सर, किसी को नहीं हुई, परिवार में सभी देख सकते हैं, सिर्फ मैं ही
0: हुई, आपको हुई। अच्छा भारती जी, कुकिंग वगैरह का भी कुछ है शौक या वो नहीं करती हैं बिल्कुल भी आप?
1: सर वो बताते हुए तो मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे चाय बनाना भी नहीं आता।
0: आपको नहीं लगता कि नॉर्मली ये सभी ज्यादातर लोगों की ये दिक्कत रहती है ब्लाइंड होने के बाद, तो आपको इस फील्ड में भी मतलब कोशिश करनी चाहिए, या आपको फैमिली करने नहीं देती है?
1: सर, पहली बात तो मुझे खाना बनाना ये बिल्कुल नहीं पसंद है।
0: अच्छा, आपको लगता है जोमेटो स्विगी है, कहाँ दिक्कत है, क्यों?
1: जी हाँ, वैसे है ना सर, मम्मा है,
0: नहीं नहीं कभी अकेले भी, कभी अकेले भी अगर हुए किसी मामले में तो ऑर्डर कर देंगे ना,
1: उनके घर चले जाऊंगी खाना खाने,
0: उनके उनके घर चली जाऊंगी, ये भी ठीक है। इसलिए आपको कुकिंग पसंद नहीं है?
1: जी बिल्कुल नहीं पसंद है,
0: और इसीलिए उस तरफ आपने,
1: कुकिंग के साथ मुझे खाना खाना भी नहीं पसंद है सर।
0: ओ तो इसीलिए आपने,
1: बोला जाए तो मैं चल फिर पाऊं,
0: जीने जीने के लिए खाना पड़ता है।
1: जी हाँ,
0: और इसीलिए आप उस फील्ड में नहीं गए, वरना कुकिंग में भी आप अपना हाथ आजमा सकते थे, राइट?
1: जी जी जी।
0: चलिए तो कोई नहीं, ये पता चला हमको कि भारती कुछ ऐसा भी है जो भारती जी को नहीं आता है।
1: जी हाँ। तो सर, अगर सभी इंसान सभी तरह से संपूर्ण हो जाए तो भगवान की जगह ले ले, हम इंसान है इसलिए तो हमें कुछ ना कुछ कमियां होती है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने कि हर एक में कोई ना कोई कमी होती है। भारती जी बताइए कि तो जीवन तो अच्छा खासा चल ही रहा है, अब डिप्रेशन से अब आप बाहर आ गए हैं, बल्कि आप खुद बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन गए हैं, कुल मिला के सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अब कभी बात होती है फैमिली में शादी वगैरह के बारे में?
1: सर पहले से मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ, शादी के मैं खिलाफ हूँ, और इसीलिए अच्छा। भाई को भी पता है कि अगर शादी की बात की जाए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, फिर 2 पॉइंट ब्लड पे चले जाऊंगी, इसलिए ये सब बातें तो कोई करता ही नहीं, और मुझे सिर्फ पूजा पाठ करना और पढ़ाई करना पसंद है, थर्ड चीज के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, शादी ब्याह इन सब के बारे में कभी सोचा नहीं सर, और ना ही कभी सोचूंगी।
0: आपने तो नहीं सोचा कभी फैमिली, मम्मी वगैरह पापा वगैरह?
1: नहीं नहीं नहीं, भाई ने भी कभी प्रेशर नहीं डाला, ना ही पापा ने ना ही मम्मी ने।
0: अच्छा ओके, और आपने ये सोच ही रखा है कि आपको अकेले मतलब रहना है, मैंने यानी बिना शादी के ही आपको रहना है ना?
1: जी जी जी सर।
0: अच्छा चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने डिसीजन में बिल्कुल पक्के हैं, ये आपने सोच रखा।
1: जी हाँ सर,
0: इस वजह से कोई बात भी नहीं करता है?
1: नहीं नहीं नहीं, मैं बीएफ और जीएफ वालों से पहले ही दूर रहती हूँ सर, क्योंकि मुझे वो आध्यात्मिक विषय पसंद नहीं है। हाँ पढ़ाई के टूवर्ड्स अगर मुझे कोई मेरे दोस्त मेरी किताब लेके अगर वो अपनी आंखों से देख देख के पढ़ रहे हैं तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मेरे दोस्त बोला जाए तो गिनती के 3 या 4 दोस्त हैं अभी तक, और इससे ज्यादा दोस्त नहीं बने कभी, वो मुझे बोरिंग समझते हैं।
0: भारती जी होता क्या है ना कि जो आप कह रही हैं वो एक पहलू हो सकता है, लेकिन हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है ना कि जो समाज में कई सारी चीजें होते हैं उनमें से विवाह भी एक है, शादी ब्याह भी एक उसमें से।
1: जी हाँ सर, आपकी बात सही है
0: जी, इसलिए हर कोई गलत हो ऐसा भी नहीं है।
1: नहीं सर देखो, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन मैं इंटरफेयर भी नहीं करती हूँ किसी के मामले में, क्योंकि ऐसी बात है, मैं अपने विचारों से शादी के खिलाफ हूँ, मेरे दोस्त हो ये जरूरी थोड़ी ना,
0: जरूरी नहीं, इसीलिए मैं कह रही
1: हूँ अपनी लाइफ जिए, लेकिन मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ किसी के इसमें।
0: बिल्कुल ठीक, तो अब तो आंखों को लेकर के तो आप चिंतित नहीं है कि, क्योंकि अब आपने एक राह पकड़ ली है, अब अच्छी चल रही है जिंदगी आपकी, ये अभी भी आपको कभी कभी अकेले में ख्याल आता है कि अरे कहां ही गड़बड़ हो गई है सब आंखों को लेकर?
1: जी कभी कभी आता है कि मुझे कैसे, मुझे पढ़ने का शौक है और कभी रिकॉर्डिंग जल्दी नहीं मिलती, तो उन किताबों को पढ़ने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है कि काश मेरे पास आंखें आ जाए, मैं पढ़ लू, मैं खुद पढ़ू ना कि रिकॉर्डिंग में कब रिकॉर्डिंग मिलेगी और कब कोई सर्च करके देगा, क्योंकि एलएलएम की सारी नोट्स अभी गूगल से सर्च करना है सर, कोई मार्केट में किताब नहीं है, तो जब वो आगे वाला सर्च करके देगा उस टॉपिक पे तभी मैं पढ़ूंगी, और मुझे रोज पढ़ने की आदत है, एकदम से पढ़ना नहीं होता मुझसे, तो इसीलिए ये चीज का एहसास होता है सर कि मैं खुद करूँ जल्दी से पढ़ू, और मेरा सिलेबस पेपर के पहले मैं पूरा पढ़ के कम्प्लीट कर लूँ, तो होती है ये चीज का एहसास होता है,
2: अवेलेबल नहीं हमारे को।
0: तो भारती आपका जो जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पसंदीदा टॉपिक कौन सा है क्रिमिनोलॉजी में?
1: हाँ सर, मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा टॉपिक है जो मेरी मैम पढ़ाती है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 14 के बारे में उन्होंने मुझे पढ़ाया था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन कोरोना के समय मुझे एहसास हुआ कि इक्वालिटी किधर है, जब मैंने ये देखा कि क्या बोलते सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, उन किताबों को सिर्फ मैं देख सकती हूँ, उन काले अक्षरों को मैं पढ़ नहीं सकती, तो शिकायत तो सबसे पहले मेरी भगवान से थी मैंने भगवान से कहा कि मेरी मैडम आर्टिकल 14 पढ़ाती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो भगवान मेरे प्रश्नों का उत्तर दो कि संविधान की किताब में पढ़ती हूँ समान अधिकार, सोच सोच खुश हो जाती हूँ, फिर भगवान से शिकायत करती हूँ तेरी दुनिया में भगवान समान अधिकार न दिए दुनिया में लोगों को, भविष्य के वकीलों की कतार लगी है, मैं गुनहगार बनकर कटघरे में खड़ी नजर आई, सब आंखों से देख के पढ़ते भगवान, मैं कानों से सुनती पढ़ती हुई नजर आई, सोचा ना था पहला मुकदमा अपने आप के लिए ही लड़ना होगा, अपनी कमजोरी के संग आगे मुझे ही बढ़ना होगा, तो हर लेक्चर ने मुझे एक कविता दी और ज्यादातर मेरी कविताएं मेरी मैम जो पढ़ाती गई तो साइड बाय साइड मेरे नॉलेज के साथ वो मुझे कविताओं की भी सौगात देते गए।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्योंकि नॉलेज तो जब बढ़ता जाता है तो फिर हमारा सोचने समझने का जो दायरा है वो भी बढ़ता जाता है और कहीं ना कहीं वो आपकी कविताओं में भी दिखता है। बिल्कुल ठीक। तो आए दिन रोज अखबारों में क्राइम की खबरें तो छाई रहती हैं भारती जी, परेशान नहीं होती हैं आप उन सबको पढ़ करके देख करके?
1: नहीं।
0: अच्छा आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं?
1: मंदिर में अपना मूड फ्रेश करने चले जाती हूँ क्योंकि
0: आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं?
1: समाज में होते ही रहेगी।

0: जो हुआ था,
1: जी
0: और अभी जो क्या बोलते हैं वो डॉक्टर का केस जो हुआ, तो ये बोला
1: जी
0: जाए तो बहुत ही इतना दहशत थी कि ऐसा लग रहा था कि इंसानियत शायद अभी रही नहीं।
1: रही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे जी। अच्छा भारती, काफी हम कविताएं तो सुन ही रहे हैं आपसे और प्रोग्राम में बातचीत भी चल रही है। मम्मी पर भी कभी कुछ लिखा है आपने, माँ पर?
0: जी हाँ,
1: जी
0: मम्मी पे लिखा है, माँ की ममता का तुमको महत्व आज बताऊँ, उसके अनमोल प्यार की मैं कीमत कैसे लगाऊँ। जिस माँ की बेटी दिव्यांग हो जाती है वो अपने मम्मी के चिंता का कारण बन जाती है। कॉलेज में जब बेटी जाती माँ चिंतित हो जाती है, सही सलामत मेरी लाडली घर को आ पाती है। माँ की ममता का तुमको महत्व आज बताऊँ, उसके अनमोल प्यार की मैं कीमत कैसे लगाऊँ। घर के सारे काम करे पर मन बेटी में होता है, बुरी बुरी बातों से उसका मन घेरा हुआ होता है। लोगों की बुरी नजरों से क्या मेरी लाडली बच पाती है, सही सलामत मेरी लाडली घर को आ पाती है। माँ की ममता का तुमको महत्व आज बताऊँ, उसके अनमोल प्यार की मैं कीमत कैसे लगाऊँ।
1: बहुत अच्छे, बहुत खूब। वही मैं इसीलिए मुझे लगा कि इस पर जरूर आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो अभी आंखों की दवाई वगैरह भी चल रही है आपकी?
0: जी नहीं सर,
1: अब सब बंद? तो बहुत खूब भारती जी, काफी अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और मुझे लगता है बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी आपकी बातें सुन करके। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है मन की आंखों से, आपने अपनी आंखों की रोशनी के कम होने के बाद, इतने सालों तक डिप्रेशन में रहने के बाद, अपने आप को जिस दमदार तरीके से खड़ा किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत जबरदस्त बात है ये। तो नागपुर के बाहर कहाँ गए, कहाँ कहाँ गए आप प्रोग्राम के लिए भारती?
0: सर मैं त्र्यंबकेश्वर गई ना, और क्या बोलते हैं अभी अयोध्या जाऊंगी। इसके पहले भी मैं
1: गए कहाँ
0: सर
1: कहाँ अभी वो बताइए, अभी तक कहाँ कहाँ गए हो?
0: सर अभी तक तो मैं इधर ही तक गई हूँ, नागपुर के बाहर नहीं गई हूँ। बोला जाए तो
1: अच्छा
0: त्र्यंबकेश्वर इधर तक ही गई हूँ, बॉम्बे तक गई हूँ, बस उसके आगे नहीं गई सर।
1: अच्छा मतलब अभी तो आप महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकले हैं।
0: नहीं, सर
1: और ज्यादातर प्रोग्राम आपके नागपुर में ही होते हैं,
0: जी हाँ सर, यहीं पे हुए
1: तो हर महीने एक आध प्रोग्राम हो जाता है।
0: सर। हर महीने बोला तो 5-6 प्रोग्राम हो जाते हैं।
1: अच्छा 5-6 प्रोग्राम हो जाते हैं। इसमें कुछ आपको भारती जी, हम जानना ही चाह रहे हैं कि कुछ मतलब आर्थिक सहयोग भी मिल जाता है या केवल परफॉर्मेंस के
0: हाँ
1: तौर
0: सर,
1: पर?
0: वैसे तो कॉलेज के जितने भी कंपटीशन हो तो उस लिफाफे में 1,000-2,000 ये तो मुझे मिल ही जाते हैं। और त्र्यंबकेश्वर में भी मैंने जब प्रथम पुरस्कार जीता तो उसमें मुझे 2,000 रुपये प्रथम पुरस्कार दिया गया।
1: यानी कुल मिला के आप जहां भी जाते हैं प्रोग्राम के लिए, वहां पे एक तरह से आपको आर्थिक सहयोग भी मिल जाता है, आपकी पॉकेट मनी भी निकल जाती है, आराम से आप अपना खर्चा भी निकाल लेती हैं, राइट?
0: जी सर,
1: चलिए बहुत अच्छी बात
0: पॉकेट
1: है।
0: मनी नहीं, मेरे जो भी पैसे आते हैं वो भगवान के मंदिर में जाते हैं।
1: अच्छा
0: तो मैं जैसे कि जिस उद्देश्य से मैं चल रही हूँ कि ये कविताओं के पैसे मैं अपने दिव्यांग दोस्तों के लिए कल चल के उनको सहयोग करूँ, तो जब तक मैं कुछ नहीं बन जाती तो वो अमानत तो मंदिर की दान पेटी की है ना, तो मेरे
1: हाँ
0: लिफाफों के सारे पैसे मंदिर में जाते हैं।
1: वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छी बात है भारती जी, आपको जो एक कला आपके अंदर है कविताएं लिखने की और कविताएं सुनाने की, सबसे बड़ी बात इंस्टेंटली यानी तुरंत शीघ्रता से किसी भी विषय पर कविता लिखने का ये जो हुनर है, ये बहुत ही अच्छा है, और आगे और इसमें आप तरक्की करें यही हम चाहते हैं। और जिंदगी में आपके जो भी सपने हैं वो सब पूरे हों, और जो अब आंखों की जो समस्या है उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरीके से परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि आप तो अब लोगों को रोशनी एक तरह से दिखाने का काम कर रही हैं, रास्ता दिखाने का काम कर रही हैं, तो उसी में ही आपको लगे रहना चाहिए। रेडियो मधुबन पर आज मन की आंखों से कार्यक्रम में आप ने आकर के इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि चलते चलते कार्यक्रम के अंत में आप हमारे श्रोताओं को कोई प्रेरणादायी कविता सुनाएं, और आप क्या कहना चाहते हैं, आपका मैसेज क्या है लास्ट में?
0: अपने श्रोताओं से

0: इतना कहना चाहूंगी, अपनी श्रोताओं से मैं इतना कहना चाहूंगी, आप सभी के सहयोग के कारण ही तो आज मैं आगे बढ़ ही पाई हूँ। आप न होते हर मंच पर जब मैं कविताओं की सोच प्रस्तुत करती हूँ तो कैसे मेरे कविताओं में नई रंगत मैं ढा पाती, और आप सभी के सहयोग के बिना कैसे कविताओं की दुनिया में मैं रंग जमा ही पाती। धन्यवाद
1: जी। बहुत बहुत खूब भारती जी, ये भी शीघ्रता से आपने लगता है सोच लिया अभी अभी, है ना
0: जी।
1: चलिए बहुत खूब। तो आपको आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भारती जी, आज एक बार फिर से आपने जो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज का मन की आंखों से कार्यक्रम आप सबको जरूर पसंद आएगा, उम्मीद करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा 9414151415 पर। मिलते हैं फिर किसी और कार्यक्रम में, तब तक दीजिए इजाजत मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर के पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति, मैं हूं ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। आज 24 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म बात बताई है। बाबा कहते, जब कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना किस चीज की? नई दुनिया की, देवी देवता धर्म की। तो ये तो गायन नहीं है कि विष्णु द्वारा स्थापना हो सकती है या श्री कृष्ण के द्वारा स्थापना हो सकती है। ये बड़ी समझने की बातें हैं कि ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ने अगर स्थापना कराई तो किस चीज की स्थापना कराई, और अवश्य स्थापना कराई है तो ऐसे मनुष्य को योग्य बनाने का कार्य भी परमात्मा का है। जो दूर देश का मुसाफिर बनकर आता है इस पुरानी दुनिया में, पुराने तन में, और आकर के ज्ञान दे करके हमें योग्य बनाते हैं। तो इसीलिए ज्ञान देने का कार्य जो परमात्मा करते हैं वो विष्णु द्वारा या श्री कृष्ण के द्वारा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके द्वारा तो पालना करानी है। तो ये एक बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। तो गीता ज्ञान दाता परमात्मा आकर के व गीता ज्ञान दे करके सतयुगी स्वराज्य की स्थापना करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का विनाश कराते हैं, फिर विष्णु द्वारा या

से कृष्ण द्वारा उस नई दुनिया की पालना का कार्य चलता है। उन्होंने द्वारा श्री कृष्ण या नारायण के द्वारा स्थापना का कार्य संभव ही नहीं है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो, कैसा संगठन चाहिए बाबा को? उत्तर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे। दूसरा, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन बन पावन दुनिया बनानी है, तो पतित नहीं बनना है। और तीसरा, नष्टो मोहा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाएं। तो बाबा को एक तो देही अभिमानी बच्चों का संगठन चाहिए, जिन्हें नशा हो कि हमें पावन बन पावन दुनिया बनानी है और इसलिए पतित नहीं बनना है, और तीसरा, नष्टो मोहा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाएं। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए, मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। तो ऐसा संगठन बाबा को माताओं का चाहिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है, हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंद में है, रावण राज्य के बंधन में है, ये बात बाप जानते और बच्चे जानते हैं, और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। इसको उसको खुशी होनी चाहिए, आत्मा को। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, आत्मा को। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे, वह बाप मिला है। आधा कल्प याद किया करते थे, वह बाप मिला। दुख में बाप को सिमरण करते रहते हैं, तुम भी सिमरण करते थे। अभी तुम दुखी होकर सिमरण नहीं करते हो, जिसको सारी दुनिया सिमरण करती है वह बाप आया है, यह तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहां जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा है। बाबा परमधाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते, कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है संगम पर। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहां बैठे हो, जानते हो, बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं साधारण तन में आया हूं। कल्प पहले मुआफिक, ये भूलना नहीं चाहिए।
माया ऐसे बाबा को भी भुला देती है। वंडर तो ये है कि माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल, पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी है कि हे पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सन्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उनकी कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के। ये गुप्त वेश में कौन आया हुआ है? बाबा कहते दुनिया में तो बड़े बड़े बैंड बाजे बजाते हैं, अजियान के लिए ये गुप्त वेश में कौन आया हुआ है? ये तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली है। यहां मुसाफिर बन आए हैं किस लिए? पार्ट बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तुम बाप से सुन रहे हो वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम सब आत्माएं मुसाफिर है इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर है, 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर वह अंत का समय है तो बाप आए हुए हैं इसलिए पुरानी सृष्टि को नया बनाने। यदि तुम जानते हो चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ऐसे तो नहीं। बाबा ने बहुत अच्छी बात देखो समझाए कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ऐसे तो नहीं श्री कृष्ण द्वारा विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने, है ना। इसीलिए ब्रह्मा को स्वर्ग का रचयिता बताया है या नई दुनिया की रचना करने वाला बताया है। बाप आए हैं साधारण तन में। यह है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने, सारी डिनास्टी सहित। तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे वह अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। बल अमेरिका आदि में बड़े बड़े शाहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। ये सब पिछाड़ी में बने हैं, ये अल्पकाल का भपका है। विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद न करें, कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती है। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। बाबा कहते तुम बच्चे ऐसे कहते हो कि बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। बाबा भी कहते क्या तुम उनको याद नहीं कर सकते हो? प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना, सब सुखी रहते हैं। अभी तो सब दुखी है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है।
परंतु उसमें क्या हुआ था, ये किसकी बुद्धि में

वो देवता धर्म का इतना छोटा झाड़ था, आदि सनातन देवता धर्म था। अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। बल कहेंगे ये वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है ये पता नहीं है। तुम अभी रोशनी में हो, हमें ज्ञान का प्रकाश मिला है तो रोशनी में है। जानते हो विनाश होना है, इसीलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवे। बाबा कहते हैं ये तुम जानते हो कि विनाश होने वाला है, तो क्यों नहीं लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवे। बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियां के ऊपर अत्याचार होते हैं, बाबा को कितना रहम आता है। दुनिया में जब बाबा देखते हैं कि बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। उसके लिए देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, ये पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, हम स्वदर्शन चक्रधारी है, ये नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये समझाते रहो। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है, पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है, हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना बाप को याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। यहां तो आते ही हो रिफ्रेश होने, मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है, कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है, इस शरीर में भी मोह न रहे, अपने शरीर में भी बाबा कहे मोह न रहे। ये तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है, क्योंकि इसी शरीर द्वारा पुरुषार्थ करना है, इसलिए इसकी संभाल रखनी है, लेकिन मोह नहीं रखना है। जो पढ़ाई पढ़ सके संभाल रखनी है, ताकि जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं हम पढ़ सके। तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। शरीर में अगर कोई तकलीफ है तो बाबा कहे उसकी देखभाल करने के लिए चत्ती भी लगानी पड़ती, ऑपरेशन आदि भी कराना पड़ता है। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ ना कुछ होता रहता है, दुख आत्मा को होता है। जानते हो अब तो ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है, संगम युग पूरा होने तक इसको थमाना है। बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस, और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूं। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा, सतो प्रदान प्रकृति का मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं, सारी सूर्यवंशी डिनास्टी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे, एक युग पीछे आए तो 84 जन्म तो नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84

जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो, चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं, चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो, बाबा कहते अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो, कहां ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, विजिटिंग कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे ये बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, जब मनुष्य नहीं समझते हैं तो विघ्न तो जरूर डालेंगे। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है, हमारी ये फैमिली है, दादा और बाबा है, दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, ये याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है, पोत्रों को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, ये याद रहना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है, पढ़ना भी है पढ़ाना भी है, ये बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग न बने बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना, पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं कहाँ के लिए, 21 जन्मों के लिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है, 21 जन्म का प्रारब्ध मिलता है, फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने, ये सत्य नारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भक्त होंगे तो कहेंगे राधे हाजरा हजूर है, जिधर देखो राधे ही राधे हैं, श्री कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है, ये गुड़ गुड़धानी कर दी है, यानी सारा कंफ्यूजन कर दिया है। ईश्वर राधे श्री कृष्ण सब सर्वव्यापी है, तो कंफ्यूजन हो गया ना, मुंज गया, सूती में मुंज गया। ये सब ईश्वर के रूप है, भगवान ने ये रूप धारण किए हैं, जिधर देखो उधर तू ही तू है, बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। यह है विकारी पतित दुनिया, सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वॉइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। बाबा कहते वॉइसलेस यानी निर्विकारी दुनिया का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहां बच्चे तो है ना, वो कैसे पैदा होंगे, बस सवाल ही ये पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, कैसे बढ़ेगी। हर साल आदम शुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए, ये नहीं बताते कि इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है, मैं आत्मा हूं, पहले तो ये निश्चय करो, बाबा को याद करना है। अंत काल जो नारायण सिमरे है, अब नारायण सिमरे ये अक्षर झूठे लिखे हैं। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, नारायण सिमरे नहीं, जो शिव बाबा को सिमरे, परमात्मा को सिमरे, उसी चिंता में जो मरे सुस्वर्ग का नारायण बने। नारायण सिमरे तो कहां जाएंगे, इसलिए शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण बनेंगे।
अंत काल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला श्री कृष्ण को सिमरे ना, श्री कृष्ण को याद करते हैं, नारायण का किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ है? श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको भी पता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए? कहते ब्राह्मण देवी देवताए नमः, ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा परंतु शिव बाबा ने रचा है। सारा बाबा एक एक जैसे उस सूत को खोलते जाते हैं, कंफ्यूजन दूर करते जाते हैं। यह तो अभी ब्रह्मा बना है और शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है। इस पुराने शरीर की संभाल जरूर करनी, उसी के द्वारा पढ़ाई पढ़कर कमाई करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है, यानी मोह की रग नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता, यानी ये बात हम नहीं जानते हैं, ऐसे अनजानपन नहीं रहता। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता है, और जो योगयुक्त है उन्हें अनुभव होता जैसे पहले से सब कुछ जानते हैं। तो यह जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है। बाबा कहते हैं वो यह भी जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए उनके लिए हार खाना असंभव है। आज का स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न चित है वह कभी प्रश्न चित नहीं हो सकता। जो सदा प्रसन्न चित है वह कभी प्रश्न चित नहीं हो सकता। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती है, टाइम नहीं लगता। अच्छा, ओम।